पूरी सब राखी हुए सर्व दयाल रहाउ। अन दिन नानक नाम त्याहे जी प्राण का दाता अपने दास को कंठ लाए राख ज्यों बारिक पित माता। सूरठ महला पंजवां घर तीजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिल पंचो नहीं सहसा चुकाया सिकदारू नह पति आया। उमराव हुआ गै तेरा मिल राजन रामन बेरा अब ढूंढन कतहु ना जाई गोविंद भेटे गुरु।

सारी प्रभ पूरी लोच हमारी कर स्नान ग्रह आए आनंद मंगल सुख पाए संतो राम नाम निस्तरी है उठत बैठत हर हर त्याई है अन दिन सो कृत करिय रहाओ संत का मार्ग धर्म की पौड़ी कोवड

जंत सब पए पवित्रा सतगुर की सच साखी बिघन बनासन सब दुख नासन सतगुर नाम दिरड़ाया होए पाप पए सब पावन जन नानक सुख घर।

पूरे गुर कृपा तारी तां गत पई हमारी हर की प्रेम भगत मन लीना नित बाजे अनहत बीना रहाओ हर चरण की ओत सतानी सब चूकी कान लुकानी जग जीवन दाता पाया

पार ब्रह्म निभाई पूरी, काई बात न रही आयूरी। गुर चरण लाए निस्तारी, हर हर नाम समारी। अपने दास का सदा रखवाला, कर कृपा अपने कर राखे। मात पिता ज्यों पाला रहाओ, वडभागी सतगुर पाया। जिन जम का पंथ मटाया,

सदा सुपहाई मन चिंदे सगले फल पावहु जी कै संग सहाई रहाउ नारायण प्राण आधारा

कार्य सगल सवारी रहाउ मिन साधु दुर्मत खोए पतत पनीत सब होए रामदास।

मिल त्याई है मन बांछत फल पाई गुर पूरा हृदय त्याई गुर गोपाल आनंदा जप जप जीवे परमानंदा जन नानक नाम त्याया प्रभ अपना बिरद रखाया राग सोरठ महला पंजवा दह दिस शतर मेघ कटा घट दामन चमक डरायो।

जैसा बालक पाए सुपाई लाख अपराध कमावे कार्य उपदेश छिड़के बहु भांति।

सब बिद जाने ता किस पह आख सुनाई है कहने कथन ना पीजे गोविंद हर पावे पैज रखाई है अवर ओट मैं सगली देखी एक तेरी ओट रहाई है।

तेल मिलावे सब तू कै मन की चिंती हर हर नाम अवखद मुख पाया गन नानक सुख बसंती सोरठ महला पंजवा सिमर सिमर प्रभ भये आनंदा दुख कलेश सब नाथे गुण गावत त्यावत प्रभ अपना कारज सगले सांठे जग जीवन नाम तुम्हारा गुर पूरे दियो उपदेसा जप भौजल पार उतारा रहाओ तू है मंत्री सुन है प्रभ तू है सब किश

आप प्रभु स्वामी पात मत की नी पूरी सदा सदा नानक बलिहारी बांचो संतां तूड़ी।

प्रभ की अकथ कहानी जन बोलह अमृत बाणी नानक दास बखाणी गुरपुरे ते जानी सोठ महला पंजवां आग्ञा।

मन निर्मल पूरन पुरख विधाता रहाउ। नानक प्रभु अविनाशी ताकी सेवना बिरथी जासी।

करोया, सब काज हमारा होया, प्रभ चरणी मन लागा, पूर्ण जाके भागा, मिल साध संग हर त्याया, आठ पहर अरादेओ हर हर, मन चिंदिया फल पाया रहाउ, परा पूर्बला अंकुर जागया, राम नाम मन लागया, मन तन हर दर

हर हर हर अरादु हर अराद सबो किश पाई है कार्ज सगले साधु रहाव प्रेम भगत प्रबलागी सो पाए जिस वड भागी जन नानक नाम ते आया

पन्ना आनंद कर है नर नारी हर हर प्रभु कृपा तारी संतो हो सुख हो आ सब थाई पार।

सोई संत गुण गावे प्रेम भगत ताका मन लीना पार ब्रह्म मन पावे आठ पहर हर का जस रवना।

जो सिवरै तिसकी गत होवै उधरह सगले कोटा रहाउ संत संग जस गाया एहो पूरन हर तन पाया कहो नानक आप मटाया सब पार ब्रह्म।

गावह पाई, ओह सफल सदा सुखदाई। नानक नाम ते आया, पूर्व लिखिया पाया।

नानक प्रभ सुखदाई जिन पूरी बणत बनाई सोठ महला पंजवा प्रभ अपना हृदय त्याई कर सही सलामत आई संतोख भया संस्था।

आओ जो जन भजन करे प्रभ तेरा तिसै अंदेसा नाही सतगुर चरण लगे पहु मिटिया हर गुण गाए मन माही सुख सहज आनंद कनेरे सतगुर दिया दलासा जिन घर आए सोभा सेती पूर्ण होई आसा पूरा गुर पूरी मत जाकी।

सिमर माधो होहे पतत पनीत। काल बयाल ज्यो परयो डोले मुख पसारे मीत। आज काल फुन तोहे ग्रस है समझ।

पूरन सब मही अवर सगल मिथ्या ए जानो भजन राम को सही फिरत फिरत बहुते जो गहारियो।

निंदया रस रचियो राम भगत नह कीनी रहाओ मुकत पंथ जानियो तै नाहन धन जोरन को ताया अंत संग काहू नहीं दीना बिरथा आप बंधाया ना हर भजियो ना गुर जन सेवियो नह उपजियो कछ ज्ञाना घट ही माहे निरंजन तेरे तैं खोजत उदयाना बहुत जन्म परमत तैं हारियो अस्थिर मत नहीं पाई मानस दे पाए पद हर भज नानक बात बताई सोरठ महला नवा मन रे प्रभ की सरन बिचारो जेहे सिमरत गनकासी उदरी तां को जस उरतारो रहाओ अतल पयो त्रू जा कै सिमरन हर निरपै पद पाया दुख हरता एह बिद को स्वामी तैं काहे बिसराया जब ही शरण गही कृपा निधि

जाते भगत राम की पावे, जम को त्रास हरे रहाव। कौन कर्म विद्या कहो कैसी, धर्म कौन फुन करे। कौन नाम गुर जा कै सिमरै, भव सागर कहो।

मन तिमर मोह मन रहयो पुरजाई रहाओ सगल जन्म परम ही परम खोयो नह अस्थिर मत पाई विख्या सकत रहयो निसबासुर नह छूटी अधमाई साध

बिखियन को तावत केहे बिदरु को ताहि रहाउ बेद प्राण सिमरत के मत सुन निमख नाही ए बसावे पर धन पर दारा स्यो रचियो बिरथा जन्म सिरावे मद माया कै भयो बावरू सूजत नह कश ज्ञाना घट ही भीतर बस्त निरंजन ता को मर्म ना जाना जब ही सरन साध की आयो दुर्मत सगल बनासी तब नानक चेते हो चिंता मन काटी जब की फांसी सोरठ महला नवा रे नार यह साची जी तार सगल जगत है जैसे सुपना बिन सत लगत ना बार रहाओ बारू पीत बनाई रच पच रहत नहीं दिन चार तैसे ही एह सुख माया के उर्जे ओ कहां गवार अज हूं।

पूत संबंधी सगरे तन सिंह लागे जब ही निर्तन देखो नर कौ संग साड सब भागे कहो कहा या मन बौरे को इन सिंह ने हो लगायो दीना नाथ सकल पै पंजन जसता को बिसरायो स्वान पूछ ज्यो भयो ना सूदो बहुत जतन मैं कीनो नानक लाज।

तू ठह लागे जन्मे अकारत खोयो कर पर पंच उदर निज पोखयो पश की न्यायी सोयो राम भजन की गत नहीं जानी माया हाथ बिकाना उर्ज रहे हो बिखियन संग बौरा नाम रतन बिसराना रहे हो अचेत ना चेते हो गोविंद बिरथा औद सरानी कहो नानक हर बिरद पछानो।

बिंद सुख वास्ती नाम बसै सुख पाई जिहवा नेतर सोतर सच राती जल बूझी तुझ है बुझाई आस निरास रह बैरागी

मनमुख जंत दुख सदा निवासी गुरमुख दे वडियाई अपर अपार अगम अगोचर कहना कीम ना पाई सुन संवाद महा परमार्थ तीन पवन पत नामन मस्त कलेख जिया जग जोनी सिर सिर लेख सहामन कर्म सुकर्म कराए आपे आपे भगत दृढ़ामन मन मुख झूठ लह पैमान आपे ज्ञान अगामन जिन चाखिया से साध जानन ज्यों गुंगे मिठियाई अकथ का क्या कथिय भाई चालो सदा रजाई गुरदाता मेले ता मत होवे निगुरे मत ना काई ज्यों चलाए त्यों चाल है भाई होर क्या को करे चतराई एक परम पलाए एक भगती रात।

राम नाम मन वसिया नामे ही मुक्त पाई रिद सिद्ध सब भगतां चरणी लागी गुर कै सहज सुपाई मन मुखा नो प्रतीत ना आवी अंतर लोभ सुवाओ गुरमुख हिरदय शब्द ना भेदियो हर नाम न लागा पाओ कूड़ कपट पाज लह जासी मन मुख फीका अलाओ भगतां विच आप वरतदा प्रभ जी

सा मन वस्या सब काज सुवारन हारा उन्ना की रीस करे सो विगुच्च जिन हर प्रभ है रखवारा बिन सतगुर सेवे किन ना पाया मन मुख भौंक मोए बिललाई आवह जावह ठौर ना पावह दुख मह दुख समाई गुरमुख होवै सो अमृत पीवै सहजे साच समाई बिन सतगुर सेवे जन्म ना छोड़ै जे अनेक कर्म करै अधिकाई वेद पढ़ै तै वाद बखाणै बिन हार पत गवाई सच्चा सतगुर साची जिस बाणी भज सूत है गुर सरनाई जिन हार

अवरना करना हार प्यारी अंतर जामी एक रहाव कोट जन्म भ्रम आया प्यारी अनक जोन दुख पाई साचा साहिब विसरिया प्यारी बहुती मिले सजाई जिन पे तै पूरा सतगुरु प्यारी के लागे साचे नाई तिन्ना पिछे छुटिए प्यारी जो साची सर

तिसते उपजिया सोगा भोग पुंछाए पुलायन प्यारी उतरह नहीं वजोगा जो गुर मेल उदारिया प्यारी तिन तुरे पया संजोग माया लालच अटिया प्यारी चेतना आवह मूल जिन तू विसरह पार ब्रह्म स्वामी चेतन होए तूड़ बिललाप करह बहु तेरे आ प्यारी उतरै नाही सूल जो गुर मेल सवारिया प्यारी तिनका रह आ मूल साकत संग ना कीजई प्यारे जे का पार वसाए जिस मिले हर विसरै प्यारी सो मोह काल उठ जाए मन मुख ढोई नह मिले प्यारी दरगाह मिले सजाए जो गुर मेल सवारे आ प्यारी तिन्ना पूरी पाए संजम सहस सियान पां प्यारी एक ना चली नाल जो बेमुख गोबिंद ते प्यारी तिन कुल लागे गाल हुंदी वस्त ना जातिया प्यारी कूड़ ना चली नाल सतगुर जिना मलाय उन प्यारी साचा नाम समाल सत संतोख ज्ञान ध्यान प्यारी जिसनो नदर करे अन दिन कीर्तन गुण रवे प्यारी अमृत पूर भरे दुख सागर तिन लंघे आ प्यारी भव जल पार परे जिस भावे तिस मेल लह प्यारी से ही सदा खरे समरथ पुरख दयाल देव प्यारी भगता तिस का तान तिस सरनाई टह पे प्यारे जे अंतर जामी जान हलत पलत सवारिया प्यारी मस्तक सच निशान सो प्रभ कदे ना विसरै प्यारे नानक सद कुर्बान सोरठ महला पंजवां घर दूजा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद पाठ पढ़ियो अर वेद बिचारियो निवल पुवंगम साधे पंच जना स्यो संग ना छुटकियो अधिक हम बुद बाधे प्यारे इन बिद मिलन ना जाई मैं किए कर्म अनेका।

पाती रहो नग्न फिर बन माही तट तीरथ सब धरती भ्रम्यो दुबदा छुटकै नाही मन कामना तीरथ जाए बस्यो सिर करवत तराई मन की मैल ना उतरै एह बिद जे

भूम बहु अर्पे नह मिलिए हर द्वारा। पूजा अर्चा बंदन दंडो होता खट कर्मा रत रहता। हाँ हाँ करत बंदन मह परया।

फिर जन्मे हर सिंह संग ना गया। राज लीला राजन की रचना करिया हुक्म अखारा, सेज सोनी चंदन चोआ नरक कोर।

कहो नानक तिस भयो परापत जिस पुरब लिखे का लहना तेरो सेवक एह रंग माता भयो कृपाल दी।

फुरमाई कौ गुरमुख कार कमावा जे गुर समझाई है। सलोक महला तीजा पूर्व लिखिया कमावना जे करता है आप लिखियास मोहठ गौली पाइन विसरिया गुणतास मत जानो जग जीवंदा दूजे पाए मुहयास जिन्नी गुरमुख नाम ना चेते हो से बहन ना मिलनी पास दुख लागा बहुआत घना

जग कमला फिरे गुरमुख नदरी आया तंदा करत्या निफल जन्म गवाया सुख दाता मन ना वसाया नानक नाम तिना को मिलया जिनको तुर लिख पाया महला तीजा घर ही मह अमृत भरपूर है मन मुखा साधना पाया ज्यों कस्तूरी मिर्ग ना जाने भ्रम दा परम पलाया अमृत ताज बिक संग्रह करत आप खवाया गुरमुख विरले सोजी पई तिना अंदर ब्रह्म दिखाया तन मन सीतल होया

बिरखा जन्म गवाया। अमृत एको शब्द है नानक गुरमुख पाया। पौड़ी सो हर पुरख अगम है कहो कित बिद पाइये। तिस रूप नारेख अदृष्ट कहो जन क्यों त्याइये। निरंकार निरंजन हर अगम क्या कह गुण गाइये। जिसे आप बुझाए आप सो हर मार्ग पाइये। गुरपूरै वेखा लिया गुर सेवा पाइये। श्लोक महला तीजा ज्यों तन कोलू पीड़िए। रतना भोरी दे जियो वंजै चौखनिए। सच्चे संदड़ै ने नानक मेल ना चुकई।

हरे आपे से टसवार सिर तंदे लाए दा इक ना भगती लाए इक आप खुआए दा इक ना मार्ग पाए।

बंधन तोड़े मुक्त होए सच्चे रहे समाए। इस जग में नाम अलभ है गुरमुख वसै मन आए। नानक जो गुर सेव है अपना हों तिन बलिहारे जाओ। महला तीजा मनमुख मन अजित है दूजे लगे जाय। तिसनु सुख सुपने नहीं दुखे दुख व्याय। कर कर पढ़ पढ़ पंडित थके सिद्ध समाध लगाए। एहो मन वस न आवे थके कर्म कमाए। भेख धारी भेख कर थके अखट तीरथ नहाए। मन की सार ना जाननी हों मैं परम पलाए। गुर प्रसादी भउ पया वडभाग वस्या मन आए। पै पये मन वस हुआ हों मैं शब्द जलाए। सच रत्ते से निर्मले ज्योति ज्योत मलाए। सतगुर मिले नाउ पाया नानक सुख समाए। पौड़ी।

पकड़ चलाया काल ता खरा द्रामना ओ वेला हाथ ना आवे फिर पछतावना। श्लोक महला तीजा। सतगुर ते जो मोह फिरे से पत्ते दुख सहाय फिर मिलन ना पाए नी जमह तै मर जाय सहसा रोग ना छोड़ई दुख ही मह दुख पाए नानक नदरी बख्श ले शब्दे मेल मलाहे। महला तीजा। जो सतगुर ते मोह फिरे तिन्ना ठौर ना ठाउ ज्यों छुट्टड़ घर घर फिरे दुह चारन बदनाउ नानक गुरमुख बख्शी है जे सतगुर मेल मलाओ। पौड़ी। जो सेवह सत मरार से पवजल तर गया जो बोले हर हर नाउ तिन जम छड गया ते दरगाह पैंदे जाहे जिन्ना हर जप लया हर सेवह से पुरख जिन्ना हर तुदमया गुण गावा प्यारे नित गुरमुख भ्रम भउ गया। श्लोक महला तीजा। थाले विच तै वस्तु पइयो हर भोजन अमृत सार जित खादै मन तृप्ती है पाइयै मोख द्वार इहो भोजन अलभ है संतो लभै गुर विचार ए मदावनी क्यों विचों कढ़ीऐ सदा रखीऐ उर धार ए मदावनी सतगुरु पाई गुरसिखा लद्दी पाल नानक जिस बुझाए सो बुझसी हर पाया गुरमुख काल। महला तीजा। जो तुर मेले से मिल रहे सतगुर स्यों चित लाए आप विछोड़न से बिछड़े दूजे पाए खवाए नानक बिन कर्मा क्या पाई है पूर्व लिखिया कमाई। पौड़ी। बह सखियां जस गाव है गावन हारियां हर नाम सलाहे हो नित हर को

लायो अंत दुख पहुताए आई अंदरों बाहरों अंधिया सुध न काई पाए पंडित तिनकी बरकती सब जगत खाए जो रत्ते हर नाए जिन गुर कै शब्द सलाहया हर त्यों रहे समाए पंडित दूजे पाए बरकत ना हो गई ना तन पल्ले पाए पढ़ थके संतोख ना आयो

पावड़ी हर सज्जन मेल प्यारी मिल पंथ दसाई जो हर दसे मित किस हों बल जाई गुण सांझी तिन स्यों करी हर नाम त्याई हर सेवी प्यारा नित सेव हर सुख पाई बलिहारी।

अंतर अज्ञान अंधेर है, शुद्ध ना काई पाए, मन हठ सहज ना बीजेओ, भुखा के अगे खाए, नाम निदान वसारिया दूजे लगा जाए, नानक गुरमुख मिलै वडियाईया, जे आपे मेल मिलाए पौड़ी, हर रसना हर जस गावे हरी सुहावनी, जो मन तन मुख हर बोले सा हर पावनी, जो गुरमुख चखे साध सा त्रिपतावनी, गुण गावे प्यारे नित गुण गाए गुणी समझावनी, जिस होवे आप दयाल सा सत गुरु गुरु बुलावनी, सलोक महला तीजा हस्ती सिर ज्यों अंकस है, अहरण ज्यों सिर दे मन तन आगे राख कै ऊभी सेव करे, यों गुरमुख आप निवारी है सब राज सृष्ट काली, नानक गुरमुख बुझी है जाय आपे नदर करी, महला तीजा जिन गुरमुख नाम ते आया आए ते परवान, नानक कुल उदार है अपना दरगाह पावे मान, पौड़ी गुरमुख सखियां सिख गुरु मेलाइया, एक सेवक गुरपास एक गुर कार लाइया, जिन्ना गुर प्यारा मन चित तिन्ना पाओ गुरु देवाइया, गुर सिखा एको प्यार गुर मित्ता पुत्ता पाइया, गुर सतगुरु

आई सलोक महला तीजा बिन कर्म नाओ ना पाईए पूरे कर्म पाया जाए नानक नदर करे जे अपनी ता गुरमत मेल मलाए महला पहला एक दज है एक दबी है एक ना कुत्ते खाए एक पानी विच उसती है एक पी फिर हसन पाए नानक एव ना जापई किथे जाए समाहे पौड़ी तिनका खादा पैंदा माया सब पवित है जो नाम हर राती तिनके घर मंदर महल सराई सब पवित है जिनी गुरमुख सेवक सिख अभ्यागत जाए बरसाती तिनके तुरे जीन खुरगीर सब पवित है जिनी गुरमुख सिख साध संत चढ़ जाती तिनके कर्म धर्म कार्य सब पवित है जो बोल है हर हर राम नाम हर साती जिनके पोते पुन है

पिच्छा सुख नहीं, मर जम्मे वारु वार, तृष्णा कदे ना बुझई, दुबदा हो एक वार, मुह काले तिना निंदका, तित सच्चा दरबार, नानक नाम विहुनिया, ना उरवार ना पार पौड़ी, जो हर नाम ते आएंगे, से हर हर नाम रते मन माही, जिन्ना मन चेतेक अरादेया, तिना एक सबेन दूजा को नाही, से पुरख हर सेम दे, जिन तुर मस्तक लेख लखाही, हर के गुण नित गाम दे, हर गुण गाए गुणी समझाही, वड्याई वड्डी गुरमखा, गुरपूरे हर नाम समाही, सलोक महला तीजा, सतगुर की सेवा गाखड़ी,

पारस परसे है पारस हुए सच रह लिवलाई जिस पूर्व होए लिखिया किस सतगुर मिले प्रभ आई नानक गणतै सेवक ना मिले जिस बख्शे सो पवै थाई महला तीजा महल कुमहल ना जाननी मूर्ख अपने सुआई।

काली कांडी एक उत्तम पदवी इस जुग माहे गुरमुख हर कीरत फल पाई है जिनको हर लिख पाहे नानक गुर प्रसादी अन दिन भगत हर उच्चर है हर भगती माहे समाहे पौड़ी हर हर मेल साध जन संगत मुख बोली हर हर भली बाण हर गुण गावा हर नित चवा गुरमती हर रंग सदा मान हर जप जप औखद खाद्या सब रोग गवाते दुखा कान जिन्ना सास ग्रास ना विसरै से हर जन पूरे सही जान जो गुरमुख हर आराध दे तिन चूकी जम की जगत कान सलोक महला तीजा रे जन उथारै तप्यो सुत्या गई विहाय सतगुर का शब्द सुनना जाग्यो अंतर ना उपजो चाओ शरीर जलो गुण बाहरा जो गुर कार ना कमाए जगत जलंदा डिठ मैं हम मैं दूजे पाए नानक गुर सरनाई उपरे सच मन शब्द त्याई।

ना हर मरै ना कदे दुख लागै, सदा सुहागण नार, नानक हर प्रभ मेल लई, गुर कै हित प्यार पौड़ी, जिन्ना गुरु गोपिया अपना, ते नर बुरियारी, हर जियो तिनका दर्शन ना करहु, पापिष्ट हत्यारी, ओहे घर घर फिरहै कसुध मन, ज्यों तरखट नारी, वडभागी संगत मिले गुरमुख सवारी, हर मेलो हो सतगुरु दया कर।

हर सेती मन राव रहया सच्चे रहे आसमाय। नानक हों बलिहारी तिनको जो चलन सतगुर पाए। महला तीजा बिन शब्द सुध ना होवे जे अनेक करे शिंगार। फिर की सार ना जाने दूजे पाए प्यार। साक सुत साक लखणी नानक नारी विच कुनार। पौड़ी हर हर अपनी दया कर हर बोली बैणी। हर नाम त्याई हर उच्चरा हर लाहा लैणी। जो जप दे हर हर दिन सरात तिन हों कुरबैणी। जिन्ना सतगुर मेरा प्यारा अरादिया तिन जन देखा नैणी। हों वारिया अपने गुरु को जिन मेरा हर सज्जन मिलिया सैणी। सलोक महला चौथा हर दासन स्यो प्रीत है। हर दासन को मित हर दासन कै वस है। ज्यों जंती कै वस जंत हर के दास हर त्याईंदे। कर प्रीतम स्यो नेव कृपा कर कै सुनो प्रभ सब जग मह वरसै मेह। जो हर दासन की उस्तत है सा हर की वडियाई। हर अपनी वडियाई भाम दी जन का जयकार कराई। सो हर जन नाम त्याईंदा हर हर जन एक समान। जन नानक हर का दास है हर पैज रखो भगवान। महला चौथा नानक प्रीत लाई तिन साचै तिस बिन रहन ना जाई। सतगुर मिले ता पूरा पाई हर रस रसन रसाई। पौड़ी रैन दिन सप्रभात तू है ही गावना। जी जंत सरबत नाउ तेरा त्यावना।

जाहि। नानक बख्श लए प्रभ साचा, जे गुर चरनी चित लाहे। पौड़ी संत भगत परवान, जो प्रभ पाया सेब चखण जंत। जिन्नी हर त्याया, अमृत नाम निदान भोजन खाया। संत जना की धूर मस्तक लाया, नानक पए पुनीत हर तीर्थ नाया। स्लोक

तेन निज करवास है, जुग जुग सुबा हुई पौड़ी। तू करण कारण समरथ है करती, मैं तुझ बिन अवर ना कोई। तुदे आपे सिष्ट सिद्धिया, आपे फुन गोई। सब इको शब्द वर्तदा, जो करे सो होई। वडियाई गुरमुख दे प्रभ, हर पावे सोई। गुरमुख नानक आराध्या, सब आखो धन धन धन गुर सोई। शुद्ध राग सोरठ बाणी भगत कबीर जी की, घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद भूतपूर्व।

संसार अंध गहेरा चौ दिस पसरियो है जम जेवरा रहाउ कबत पड़े पड़ कबता मुए कपड़ किदार है जाई जटा तार तार जोगी मुए तेरी गत इन्हें ना पाई दर्ब संच संच राजे मुए गाडले कंचन पारी बेद पड़े पड़ पंडित मुए।

झूठी माया आप बंधाया, ज्यो नरनी भ्रम सूआ। वेद पुराण सबै मत सुन कै करी कर्म की आसा, काल ग्रस्त सब लोग सियाने, उठ पंडित पै चले निरासा। मन रे सरयो ना एक काजा, भजियो ना रघुपति।

ना जाई। हमरा भरम गया पहु भागा, जब राम नाम चित लागा। रहाऊ बाजीगर डंक बजाई, सब

गुरु राम न कर सपतारा, जग जीवन प्राण आधारा रहाउ। तेरे गलह तौक पग बेरी, तू घर घर रमैया।

जित लाई तित लागी चेरी तै समत कहां ते पाई जाते भ्रम की लीक मटाई सो रस कबीर है जानिया मेरो गुर प्रसाद मन मानिया जे बाज ना जिया जाई जो मिलै ता काल अगाई सद जीवन भलो कहाही मुए बिन जीवन नाही अब क्या कथिया ज्ञान बिचारा निज निरखत गत व्यवहारा रहाओ कस कुंकम चंदन गारिया बिन नैन हो जगत निहारिया पूत पिता एक जाया बिन ठाहर नगर बसाया।

सो पंच सैल सुख माने कबीर है सो धन पाया हर भेदत आप मिटाया क्या पढ़ी है क्या गुनी है क्या वेद पुराना सुनिए पढ़े सुने क्या होई जो सहज ना मिले हो सोई हर का नाम ना जप सगवारा क्या सोच है बारंबारा रहाओ अंधियारे दीपक चहिए एक बस्त अगोचर लही है बस्त अगोचर पाई घट दीपक रहे आसमाई कह कबीर अब जानिया जब जानिया तो मन मानिया मन माने लोग ना पतीजे ना पतीजे तो क्या कीजे हृदय कपट मुख ज्ञानी झूठे कहां बलो वस पानी काया मांजस कौन गुना जो घट पीतर है मलना रहाओ लौकी अठ सठ तीरथ नाई

मन पवन सुख बनिया किस जोग प्राप्त गनिया रहाउ गुर दिखलाई मोरी जित मिर्ग पड़त है चोरी मूंदलिए दरवाजे बाजी अले अनहद बाजे कुंभ कमल जल भरिया जल मेटिया उभा करिया।

तह अनहद शब्द भजंता ज्योति ज्योत समानी मैं गुर प्रसादी जानी रतन कमल कोठरी चमकार भी जुल तही नेरे नाही दूर निज आत्म रहया भरपूर।

आओ मिल पारस कंचन होया मुख मन सारतन परोया निज पाओ पया ब्रह्म पागा गुर पूछे मन पति आगा जल पीतर

नाही। अनल अगम जैसे लहर मैं उदद, जल केवल जल माही। माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, जैसा मानिए हुए ना तैसा रहा। नरपत एक संघासन सोया, सुपने पया पेखारी। अच्छत राज बिसरत दुख पाया, सो गत पई हमारी। राज पोय अंग प्रसंग जैसे है, अब कछ मर्म जनाया। अनक कटक जैसे भूल परे, अब कहते कहन ना आया। सर्वे एक अनेक स्वामी, सब कट भोग वै सोई। कह रविदास हाथ पै नीरे, सहजे हुए सो होई। जो हम बांधे मोह फास, हम प्रेम बंधन तुम बाधे। अपने शूतन को जतन करो,

सब जगत व्यापियो भगत नहीं संतापा कह रविदास भगत एक बाडी अब एह का स्यो कही है जा कारण हम तुम आराधी सो दुख अजबू सही है दलभ जन्म पुन फल पायो बिरथा जात अब बिकै राजे इंद्र समसर ग्रह आसन बिन हर भगत कहो के लेख ना बिचार्यो राजा राम को रस यह रस अनरस बीसर जाही रहाओ जान अजान पए हम बावर सोच असोच दिवस जाही इंद्री सबल निबल विवेक बुद्ध परमार्थ प्रवेश नहीं कहियत ज्ञान अचरियत अनकश समझना पर अपर माया कह रविदास उदास दास मत पर हर कोप करहु जी दया सुख सागर सुरतर चिंता मन काम तेन बस जाके चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध नवनिध कर तल ताके हर हर हरना जपह रसना अवर सब त्याग वचन रचना रहाओ नाना ख्यान प्राण बेद बिद चौतीस अखर माही व्यास विचार कहो परमार्थ राम नाम सरनाही सहज समाद उपाद रहत फुन बड़े भाग लिव लागी कह रविदास प्रगास हृदय धर जन्म मरण पै भागी जो तुम गिरवर तो हम मोरा जो तुम चंद तो हम पये है चकोरा माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरह तुम स्यो तोर कमन स्यो जो रह रहाओ जो तुम दीवरा तो हम बाती जो तुम तीरथ तो हम जाती साची प्रीत हम तुम स्यो जोरी तुम स्यो जोर अवर संग तो।

जल की पीत पवन का थंबा रक्त बूंद का गारा हाड़ मास नाड़ी को पिंजर पंखी।

बेदन उपज खरी पई वाकाय औखद नाही हर का नाम अमृत जल निर्मल एहो औखद जग सारा गुर प्रसाद कह।

किश पाई पुरब लिखे का लहना नाम खसम का चेतना किया कपटी कपट कमाना जाम द्वार जा पकड़ चलाया।

गुरुपद साधी जीवत मरे। सो ब्राह्मण जो ब्रह्म विचार है, आप तरे सगले कुल तारे। दान संबंध सोई दिल धोवे, मुसलमान सोई मल खोवे। पढ़िया बूझे सो परवान, जिस सिर दरगाह का निशान। तनासरी महला पहला कर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। काल नाही जोग नाही, नाही सत का टप। था नष्ट जग प्रिट होए, डूबता इव जग। कल मह राम नाम सार, अखी ता मीट है नाक पकड़ है। ठगण को संसार रहाओ, आंट सेती नाक पकड़ है। सूझते तिन लो मगर पाचे, कछ ना सूझे एहो पदम अलो। खतरिया ता धर्म छोड़िया, मलेस भाख्या गही। श्रेष्ठ सब एक वर्ण होई, धर्म की गत रही। अष्ट साज साज प्राण सोदह, करहें वेद अभ्यास। बिन नाम हर के मुक्त नाही, कह नानक दास। तनासरी महला पहला आरती, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। धूप मल आलो पवन चवरो करे, सगल बनराए फूलंत ज्योति। कैसी आरती होए, भव खंडना तेरी आरती। अनहता शब्द वाज

सुख मानी अंतर सहज समाणी, एक अचरज जन देखो भाई, दुबदा मार हर मन वसाई, नाम अमोलक ना पाया जाय, गुर प्रसाद वसै मन आई, सब मह वसै प्रभ एको सोए, गुरमति घट प्रगट होए, सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया, नानक नाम मिलै मन मानिया, तनासरी महला तीजा, हर नाम तन निर्मल अथ पारा, गुर कै शब्द भरे भंडारा, नाम तन बिन होर सब बिख जान, माया मोहे जलै अभमान, गुरमुख हर रस चाखै कोई, किस सदा आनंद होए दिन राती।

मैं मलत होए साची भगत सदा सुख होए। जिन हर रस चाखिया सो हर जन लोग किस सदा हरख नाही।

बिन सतगुर सब मुई बिल लाए, अन दिन दा जह शांत ना पाए। सतगुर मिले सब त्रिशन बुझाए, नानक नाम शांत सुख पाए। तनासरी महला तीजा, सदा धन अंतर नाम संभाले, जी जंत जिन्हें प्रतपाले।

हर सरनाई, राम नाम राते भगत दिरड़ाई, भगत करे जन वड्याई पाई, काच रते सुख सहज समाई।

रूप सत तृष्णा यज्ञ बुझाई अंतर शांत सहज सुख पाए गुर कै भाणे चले ता आप जाए साच महल पाए हर गुण गाए।

क्या पावा तनासरी महला तीजा। मन मरे तात मर जाए, बिन मन बुए कैसे हर पाए। यो मन मरे दारू जाने कोई। मन

समावे ता इस मन की सोजी पावे। मन मैं मत मैगल मिकदारा गुरु अंकस मार जवानन हारा। मन असाद सादे जन कोई अचार चरै ता निर्मल होई। गुरमुख एहो मन लया सुवा।

नानक गुरमुख नाम पछाणे तनासरी महला तीजा काचा तन संचह मूर्ख गवार मनमुख भूले अंध गवार बिख्या कै तन सदा दुख होए ना साथ जाए ना प्राप्त होए साचा तन गुरमति पाए काचा तन हुनिया वै जाए रहाउ मनमुख भूले सब मरह गवार भवजल डूबे ना उरवार ना पार सतगुर भेटे पूरै भाग साच रखे अहनस बैराग चहो जुग मह अमृत साची बाणी

क्या है सोवे, उत्तम ब्रह्म पछाण है कोई, सच साचा सच आप दिरड़ाई, नानक आपे वेख आपे सच लाए। तनासरी महला तीजा, नावे की कीमत मित कही ना जाए, से जन तन जिन एक नाम लिव लाए। गुरमत साची साचा विचार, आपे बख्शे दे विचार, हर नाम अचरज प्रभ आप सुनाए। कली काल विच गुरमुख पाए, रहाओ हम मूरख मूरख मन माहे, हम मैं विच सबकार कमाहे। गुर प्रसादी हम मैं जाए, आपे बख्शे लय मलाए। भिख्या का तन बहुत अभमान, अहंकार डूबे ना पावे मान। आप छोड़ सदा सुख होई, गुरमत सालाही सच सोई। आपे साजे करता सोए, तिस बिन दूजा अवर ना कोए। जिस सच लाए सोई लागे, नानक नाम सदा सुख आगे। राग तनासरी महला तीजा, कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हम भीखक पे खारी तेरे, तू निज पत है दाता। ओ दयाल नाम देहो मंगत जन को, सदा रहो रंग राता। हम बलिहार है।

हर उरतारी हर हर हर औखद जग पूरा जप हर हर हों मैं मारी हर हर अगम अगाध बोध अपरंपर पुरख अपारी जन को कृपा करो जग जीवन जन नानक पैज सुवारी तनासरी महला चौथा हर के संत जना हर जप्यो तिनका दुख परम पौ भागी अपनी सेवा आप कराई गुरमत अंतर जागी हर कै नाम रत्ता बैरागी हर हर कथा सुनी मन पाई गुरमत हर

निक कीरे तुम वड पुरख वडागी तुम्हारे गात में तो कह ना सक है प्रभ हम क्यों कर मिल है अपागी हर प्रभ स्वामी कृपा तारो हम हर हर सेवा लागी नानक दासन दास करो प्रभ हम हर कथा कथागी तनासरी महला चौथा हर का संत सतगुर सतपुरखा जो बोले हर हर बानी जो जो कह सुने सो मुक्ता हम तिस कह सद कुर्बानी हर के संत सुनो जस कानी हर हर कथा सुनो एक निमख पल सब किल विख पाप लह जानी रहाव ऐसा संत साध जिन पाया ते वड पुरख वडानी तिनकी तूर मंग है प्रभ स्वामी हम हर लोच लुचानी हर हर सफल हो बिरख प्रभ स्वामी जिन जपे हो से त्रिपतानी हर हर अमृत पी त्रिपता से सब लाथी भूख पुखानी जिनके वड्डे भाग वाडी विचे तिन हर जपे हो जपानी तिन हर संगत मेल प्रभ स्वामी जन नानक दास दसानी तनासरी महल।

हर जपना हर संत चले हर नाली जिन हर जपया से हर होए हर मिलया केल के लाली हर हर जपन जप लोच लुचानी हर कृपा कर बनवाली जन नानक संगत साध हर मेलो हम साध जना पग राली तनासरी महा।

करहु प्रभ अपनी मुख देव हो हर निमखाती हर बेन रह ना सको एक राती ज्यों बिन अमले अमली मर जाई है त्यों हर बिन हम मर जाती रहा तुम हर सरवर आते अगाह हम लह ना सक है अंत माती तू परे परे अपरंपर स्वामी मित जानो आपन गाती हर के संत जना हर जपेओ गुर रंग चलो लहराती हर हर भगत बनी अत सुबा हर जपेओ उत्तम पाती आपे ठाकुर आपे सेवक आप बनावे पाती नानक जन तुमरी सरनाई हर राखो लाज पगाती तनासरी महला चौथा कर युग का धर्म कहो तुम पाई के विशुट है हम छुट काकी हर हर जप बेड़ी हर तुलहा हर जपे हो तरह तराकी हर जी लाज रखो हर जन की हर हर जपन जपावो हो अपना हम मांगी भगत एकाकी रहाओ हर के सेवक से हर प्यारे जिन जपियो हर बचना की लेखा चित्र गुप्त जो लिखिया सब छूटी जम की बाकी हर के संत जपियो मन हर हर लग संगत साध जना की दिनियर सूर तृष्णा अग्न बुझानी शिव चरयो चंद चंदाकी तुम वड पुरख वड अगम अगोचर तुम आपे आप अपाकी जन नानक कहो प्रभ कृपा की जय कर दासन दास दसाकी तनासरी महला चौथा कर पंजवा दुपदे।

समझ पीने अदृष्ट अगोचर अपरंपर स्वामी गुरपुरै प्रगट कर दीने राम पारस चंदन हम काष्ट लोस हर संग हरे सतसंग पहे हर कंचन चंदन कीने रहाओ नव से खट बोल है मुख आगर मेरा हर प्रभ इव नाप तीने जन नानक हर हिरदय सद त्याव हो इं हर प्रभ मेरा पीने तनासरी महला चौथा गुण कहो हर लहो कर सेवा सतगुर इव हर हर नाम त्याई हर दरगह पाव है फिर जन्म ना आव है हर हर हर ज्योत समाई जप मन नाम हरी हो हे सर्व सुखी

भगत हर दीनी, तब हर स्यो प्रीत बन आई, बहु चिंत वसारी, हर नाम उर तारी, नानक हर पये है सखाई, तनासरी महला चौथा, हर पढ़ हर लिख, हर जप हर गाओ, हर पौ जल पार उतारी, मन बचन हृदय त्याए हर हुए संतुष्ट, इव भण हर नाम मरारी, मन जपिए हर जगदीश, मिल संगत साधु मीत, सदा आनंद होए दिन राती, हर कीरत कर बनवारी, रहाओ हर हर करी दृष्ट, तब पयो मन उत्तम, हर हर नाम जपियो गत पई हमारी, जन नानक की पात राख मेरे स्वामी, हर आए परयो है संत मारी, तनासरी महला चौथा, चौरासी सिद्ध बुद्ध, तेतीस कोट मुन जन, सब चाह हर जियो तेरो नाओ, गुर प्रसाद को विरला पावे, जिनको ललाट लिखिया तुर पाओ, जप मन रामे नाम, हर जस उत्तम काम, जो गावे सुने तेरा जस स्वामी।

हर कथा जिन जनहु जानी रहाओ आपे गुर चेला है आपे आपे हर प्रभु चोज बडानी जन नानक आप मलाए सोई हर मिलसी अवर सब त्याग ओहा हर पानी तनासरी महला चौथा इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर जाके वास है काम तीना सो ऐसा हर त्याय मेरे जियड़े ता सर्व सुख पावे मेरे मना जप मन सतनाम सदा सतनाम हलत पलत मुख उज्जल हुई है नित त्याय हर पुरख निरंजना रहाओ जह हर सिमरन भया तह अपाद गत कीनी वड भागी हर जपना जन नानक कहो गुर एह मत दीनी जप हर पवजल करना।

तेरा किया सच सब होए, झूठा किस को आखिया ऐसा, दूजा नाही कोए, सबना विच तू वरतदा सा, सब तुझे त्याव।

लकिया तेरी कुदरत कौन विचारे जल थल महियल रविया सरब ठाई अगम रूप गिरधारे कीर्त करह सगल जन तेरे तू अबनासी पुरख मरारे ज्यों पावै त्यों राख स्वामी जन नानक सरन द्वारे तनासरी महला पंजवा दिन जल प्राण तजे है मीना जिन जल स्यों हेत बढ़ायो

तंदा गुर की चरणी लाई। साध संग चिंत बरानी छाडी, अहम बुद्ध मोह मन बासन

मन गायो भयो परगास सदा सुख मन मह सतगुर पूरा पायो रहाओ गुण निदान रिद भीतर वसिया ता दुख भरम भउ भागा भई प्राप्त।

सुख सुबा बाजे अनहत बानी कहो नानक निश्चल घर बांधियो गुर कियो बंधानी तनासरी महला पंजवा वड्डे वड्डे राजने अर भूवन ताकि त्रिशन ना बूजी लपट रहे माया रंग माते लोचन कशु ना सूजी बिख्या मह किन्हीं त्रिपत ना पाई ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रापे बिन हर कहां अगाई रहा दिन दिन करत भोजन बहु बिंजन ताकि मिटै ना भूखा।

पूजा ऐसी दृढ़ी विपरीत, माया मोह भूलो अवरहित, हर चंदौरी बन हर पातरे यह तुहारो बीत रहाओ, चंदन लेप होत देखो सुख गर्दभ भस्म संगीत, अमृत

सदा सदा तुद त्याई रहाओ। तुमरी कृपा ते मोह मान छूटे, बिन सजाए परमाई, अंध रूप रवे ओ सब मदे।

आनंद राज पाई मुकटे निमुख बुलाई जाप ताप भगत सा पूरी जो प्रभ कै मन पाई नाम जपत कृष्णा सब बुझी है नानक त्रिपति अगाई तनासरी महला पंजवां जिन कीने वस अपने त्रै गुण भवन चतुर संसारा जग इशनान ताप थान खंडे क्या एहो जंत विचारा प्रभ की ओट गही तो छूटो साध प्रसाद हर हर हर गाए।

ऐसी ठगौरी पाए पलावे मन सब कह लागे मीठी माए बाप पूत हित प्राता उन घर घर मेले ओ दुआ किस ही वाद घाट किस ही पह सगले लर लर मुआ हम बलिहारी सतगुर अपनी जिन ओह चलत दिखाया गुजी पाहे जले संसारा भगत ना व्यापै माया संत प्रसाद महा सुख पाया सगले बंधन काटे हर हर नाम नानक धन पाया अपने घर लै आया खाते तनासरी महला पंजवा तुम दाते ठाकुर प्रतपालक नायक खसम हमारे निमख निमख तुम ही प्रतपालो हो हम बारक तुमरे तारे।

एक है। मन विश्वास प्रभ धारिया चरण रेन बांछ नित नानक पुनः पुनः बलिहारिया तनासरी महला पंजवा मेरा लागो राम स्यों हेत सतगुर मेरा सदा सहाय दिन दुख का

हार बंधन काट ले हो अपने कर कभू न आवह हार तेरी शरण पया हो जीवा तू सम्राट पुरख मेहरवान आठ पहर प्रभ को आरादी नानक सद कुर्बान राग तनासरी।

काल आन संयम किछ ना सूझै ए जतन काट कल काल रहाउ आद अंत दयाल पूरन तिस बिना नहीं कोए जन्म मरण निवार हर जप सिमर स्वामी सोए वेद सिमरत कथै शास्त्र भगत करह बिचार मुक्त पाई साध संगत बिन सजाए अंदा।

मन होवह एकत्र तह हर जस गावह नाद कवित साध सभा मह आनंद विश्राम उन संग सो पाई जिस मस्तक करा।

जा की रास मिल साध संगत होवत परगास जीयन का दाता पूर्ण सब ठाए कोट क्लेश मिटह।

जन को प्रभ अपने का तान, जो तू करह करावह स्वामी, सा मसलत प्रवान रहाव। पत परमेश्वर गत नारायण, धन गोपाल गुण साखी, चरण सरन नानक दास हर, हर संति ए बिद जाति। तनासरी महला पंजवा, सगल मनोरथ प्रभ ते पाए, कंठ लाए गुर राखे, संसार सागर मह जलन ना दीने, किनै ना दुत्तर पाखे।

तिने ओट गही संत पल्ला तिन नाही रे जम संतावे साधु की संगना पायो रे परम निदान मिट्यो है अभमान एक निरंकार नानक मन लगना तनासरी महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर एक सिमर एक सिमर प्यारी काल कलेश लोभ मोह महा पौजल तारी रहाओ सास सास निमख निमख दिन सरहन चितारी साध संग जपन संग मन निदान तारी चरण कमल नमचकार गुण गोविंद बिचारी साध जना की रेन नानक मंगल सुख सधारे तनासरी महला पंजवा कर अठवा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिमरौ सिमर सिमर सुख पावौ सास सास समाले एह लोक परलोक संग सहाय जत कत मोहे।

हाव निरतन कौ तन अंदले कौ टेक मात दूध जैसे बाले सागर मैं बोहित पायो हर नानक करी कृपा कृपाली तनासरी महला पंजवा पये कृपाल दयाल गोविंदा अमृत हृदय सिंचाई नव नित रिद सिद्ध हर लाग रही जन पाई संतन को अंध सगल ही जाई ग्रह बाहर ठाकुर भगतन का।

कर आई, संत अनुग्रह पय मन निर्मल, नानक हर गुण गाय। तनासरी महला पंजवा, जाको हर रंग लागो इस युग में, सो कहियत है सूरा। आत्म जिने सगल वस ताकै, जाका सतगुर पूरा।

मन भरमा तब लग मुक्त ना कोई। कहो नानक दयाल स्वामी संत भगत जन सोई। तनासरी महला पंजवां नाम गुर दियो है अपने जां कै मस्तक करमा। नाम दृढ़ावै नाम जपावै ताका जुग मह धर्मा।

जिस जन कै पाले सोई पूरा साहा नाम व्यवहारा नानक अधारा नाम प्राप्त लाहा तनासरी महला पंजवा नेत्र पनीत।

युगल रूप तुमरे बचन अनूप रसाल हृदय चरण शब्द सतगुरु को नानक बांधियो पाल। तनासरी महला पंजवां अपनी उकत खिलावै भोजन अपनी उकत खिलावै सर्ब सुख भोग रस देवै।

नानके आनंद पये दुख भागे सदा सदा हर जाप तनासरी महला पंजवा चतुर दिशा कीनो बल अपना सिर ऊपर कर धारियो कृपा कटाक अवलोकन कीनो दास का दुख बिदारियो हर जन राखे गुरु गोविंद कंठ लाए अवगुण सब मेटे दयाल पुरख बक

राम नाम रंग जागा, आलस सीज गया सब तन ते, प्रीतम स्यों मन लागा रहाउ, जह जह पेखो तह नारायण, सगल कटा महतागा, नाम उदक पीवत जन नानक, त्यागे सब अनुरागा, तनासरी महला पंजवां, जन के पूर्ण होए काम, कली काल महा बिख्या मह, लज्जा राखी राम रहाउ, सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना, निकट न आवे जाम, मुक्त बैकुंठ साध की संगत, जन पायो हर का ताम, चरण कमल हर जन की थाती, कोट सूख विश्राम, गोविंद दामोदर सिमरों दिन रैन, नानक साध कुर्बान, तनासरी महला पंजवां, मांगो राम ते एक दान, सगल मनोरथ पूर्ण होवे हैं, सिमरो तुमरा नाम रहाओ, चरण तुम्हारे हृदय वास है, संतन का संग पाऊ, सोग अग्न मह मन ना व्यापे, आठ पहर गुण गावो, स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा, मदहंत प्रभ जापन, नानक रंग लगा परमेश्वर, बहुड़ जन्म ना छापन, तनासरी महला पंजवां, मांगो राम ते सब थोक, मानुख को जाचत शर्म पाईए, प्रभ कै सिमरन मोख रहाउ, कोखे मुन जन सिमरत पुराना, वेद पकार है कोख, कृपा सिंध सेव सच पाईए, दोऐ सुहेले लोक, आन चार व्यवहार है जेते, बिन हर सिमरन फोक, नानक जन्म मरण पै काटे, मिल साधु बिन से सोक, तनासरी महला पंजवां, तृष्णा बुझै हर कै नाम, महा संतोख होवै गुर बचनी, प्रभ स्यों लागै पूर्ण ध्यान रहाउ, महा कलोल बुझै माया की,

मनोरथ राज सुख रस सद खुशियां कीर्तन जप नाम जिसकै कर्म लिखिया तुर करतै नानक जन के पूर्ण काम। धनासरी महला पंजवां जन की कीनी पार ब्रह्म सार निंदक टिकन ना पावन मूले उड़ गए बेकार रहाउ। जह जह देखो तह तह स्वामी कोई ना पहुंचन हार जो जो करे अवग्या जन की होए गया तत्सार। करन हार रखवाला हुआ जाकांत न पारा वार नानक दास रखे प्रभ अपने निंदक काडे मार। धनासरी महला पंजवा घर नौवा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर चरण सरण गोबिंद दुख भंजना दास अपने को नाम देव हो दृष्ट प्रभ धार हो कृपा कर तार हो पुजा गह कूप ते काड लेव हो रहाओ। काम क्रोध कर अंध माया के बंद अनक दोखा तन शाद पूरे प्रभ बिना आन ना राखन हारा नाम सिमराव हो सरन सूरे पतत उदारना जी जंत तारना वेद उचार नहीं अंत पायो गुण है सुख सागरा ब्रह्म रत्नागरा भगत वत्सल नानक गायो। धनासरी महला पंजवां हलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरनो नाम गोविंद का सदा लीजै मिटह कमाणे पाप चिराणे साध संगत मिल मुआ जीजै रहाउ। राज जोगन बिसरंत हर माया महा दुख एहो महात कह आस प्यास रमन हर कीर्तन एहो पदार्थ भागवंत लह। सरन समरथ अकथ अगोचरा पतत उदाहरण नाम तेरा अंतर जामी नानक के स्वामी सर्वत पूर्ण ठाकुर मेरा। धनासरी महला पंजवा घर बारवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय रहाउ। बड़े भाग भेटे गुरदेवा कोट पराध मिटे हर सेवा चरण कमल जाका मन रापे सोग अगन किस जन ना व्यापे सागर तरिया साधु संगे निरपो नाम जपो हर रंगे पर धन दुख किस पाप ना फेड़े जम जंदार ना आवे नेड़े कृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई नानक उदरे प्रभ सरनाई। धनासरी महला पंजवां तृप्त भई सच भोजन खाया मन तन रसना नाम ते आया जीवना हर जीवना जीवन हर जप साध संग रहाउ। अनक प्रकारी बस्तर ओढ़ाए अन दिन कीर्तन हर गुण गाए हस्ती रथ अस असवारी हर का मार्ग हृदय निहारी मन तन अंतर चरण त्याया हर सुख निदान नानक दास पाया। धनासरी महला पंजवा गुर के चरण जी का निस्तारा समुंद सागर जिन खिन मह तारा रहाउ। कोई हुआ क्रम रत कोई तीर्थ नाया दासी हर का नाम त्याया बंधन काटन हार स्वामी जन नानक सिमरै अंतर जामी।

हर देवन हारा, चरण कमल स्यो लागो नेहो, नानक की बेनंती एह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तनासरी महला नौवां, काहे रे बन खोजन जाई, सर्ब नवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई रहाओ। पोहप मद ज्यो बास बस्त है, मुकर माहे जैसे शाई, तैसे ही हर बसे निरंतर, काट ही खोजो पाई। बाहर पीतरे को जानो, एह गुर ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीनै, मिटै ना भ्रम की काई। तनासरी महला नौवां, साधो एहो जग भरम भलाना, राम नाम का सिमरन छोड़िया, माया हाथ बिकाना रहाओ। मात पिता भाई सुत बनता, तां कै रस लपटाना, जोगन धन प्रभता कै मद में, अहनस रह देवाना। दीन दयाल सदा दुख भंजन, तां स्यो मन ना लगाना, जन नानक कोटन मैं किन्हू, गुरमुख होए पछाना। तनासरी महला नौवां, तेह जोगी को जुगत ना जानो, लोभ मोह माया ममता फुन, जेह घट माहे पछानो रहाओ। पर निंदा उस्तत नह जाकै, कंचन लोह समानो, हरख सोग ते रह अतीता, जोगी ताहे बखानो। चंचल मन दह दिस को तावत, अचल जाए ठहरानो, कहो नानक एह बिद को जो नर, मुक्त ताहे तुम मानो। तनासरी महला नौवां, अब मैं कौन उपाऊ करूं, जेह बिद मन को संसा चूकै, पहु निध पार परों रहाओ। जन्म पाए कछ पलो ना कीनो, ताते अधिक डरो, मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, यह जी सोच धरू। गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजियो, पास ज्यो उदर भरो, कहो नानक प्रभ बिरत पछानो, तब हो पतत तरो। तनासरी महला पहला, कर दूजा अष्टपदियां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गुर सागर रतनी परपूरे, अमृत संत चुगह नहीं दूरे, हर रस चोग चुगह प्रभ पावे, सर्वर मह हंस प्राण पत पावे, क्या बग बपड़ा छपड़ी नाए, कीचड़ डूबे मैल ना जाए रहाओ। रख रख चरण तरे विचारी, दुबदा छोड़ पए निरंकारी, मुक्त पदार्थ हर रस चाखे, आवन जान रहे गुर राखे, सर्वर हंसा छोड़ ना जाए, प्रेम भगत कर सहज समाए। सर्वर मह हंस, हंस मह सागर, कथ कथा गुर बचनी आदर, सुन मंडल एक जोगी बैसे, नारना पुरख कहो को कैसे, त्रिभवन ज्योत रहे लिवलाई, सुर नर नाथ सच्चे सरनाई, आनंद मूल अनाथ आधारी, गुरमुख भगत सहज बीचारी, भगत वचल पै काटन हारे, हो मैं मार मिले भगत हारी, अनक जतन कर काल संताए, मरन लखाए मंडल मह आए, जन्म पदार्थ दुबदा खोवे, आप ना तीनस भ्रम भ्रम रोवे, कहतो पढ़तो सुनतो एक, तीर्ज धर्म तरनी तर टेक, जत सत संयम हृदय समाए, चौथे पद को जे मन पति आए, साचे निर्मल मैल ना लागे, गुर कै शब्द भरम पौ भागे, सूरत मूरत आद अनूप, नानक जाचै साच स्वरूप। तनासरी महला पहला, सहज मिले मिलिया परवान, ना तिस मरण ना आवन जान, ठाकुर मह दास दास मह सोई, जह देखा तह अवर ना कोई,
ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਸਹਿਜ ਘਰ ਪਾਈਐ ਬਿਨ ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮਰ ਆਈਐ ਜਾਈਐ ਰਹਾਉ ਸੋ ਗੁਰ ਕਰੋ ਜੇ ਸਾਚ ਦਰੜਾਵੈ ਕਥ ਕਥਾਵੈ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵੈ ਹਰ ਕੇ ਲੋਗ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਕਾਰਾ ਸਾਚੋ ਠਾਕੁਰ ਸਾਚ ਪਿਆਰਾ ਤਨ ਮਹਿਮ

मिलै मलाई। आप दिखावे आपे देखै, हाथ ना पतीजै ना बहु भेखै। कड़ भांडे जिने अमृत पाया, प्रेम भगत प्रभ मन पति आया। पड़ पड़ भूलह चोटा खाहे, बहुत सियाणप आवह जाहे। नाम जपै पहु भोजन खाए, गुरमुख सेवक रहे समाए। पूज सिला तीर्थ बन वासा, परमत डोलत भए उदासा।

आवे पढ़े रे सगल भेद नह चूकै मन भेद एक खिन ना धीरह मेरे घर के पंचा कोई ऐसो रे भगत जो माया ते रहत एक अमृत नाम मेरा हृदय सिंचा जे तेरे तीर्थ नाए हम बुद्ध मैल लाए घर को ठाकुर एक तिल ना माने कद पावो साध संग हर हर सदा आनंद ज्ञान अंजन मेरा मन इशनान सगल अश्रम कीने मनुआ नह पतीने विवेकहीन देही धोए कोई पाई रे पुरख बधाता पार ब्रह्म कै रंग राता मेरे मन की दुर्मत मल खोए कर्म धर्म जुगता निमख ना हेत करता गर्भ गर्भ पढ़े कहीं ना लेखे जिस भेटी है सफल मूरत करे सदा कीरत गुरु प्रसाद को नेत्रों पेखे मन हठ जो कमावे तिल ना लेखे पावे बगल ज्यो ध्यान लावे माया रे तारी कोई ऐसो रे सुखदाई प्रभु की कथा सुनाई जिस भेटे गत होए हमारी सो प्रसन्न गोपाल राय काटे रे बंधन माए गुर कै शब्द मेरा मन राता सदा सदा आनंद भेट्यो निरपै गोविंद सुख नानक लादे हर चरण पराता सफल सफल पई सफल यात्रा आवण जान रहे मिले सादा रहाउ दूजा तलासरी महला पहला शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद तीर्थ नामन जाओ तीर्थ नाम है तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है गुरु ज्ञान साचा थान तीर्थ दास पुरब सदा दसाहरा हौ नाम हर का सदा जाचो देहो प्रभ तरनी तरा संसार रोगी नाम दारू मैल लागे सच बिना गुरवाक निर्मल सदा चानन नित साच तीर्थ मजना साच ना लागे मैल क्या मल धोई है गुणहा हार परोए किस को रोई है विचार मारे तरे तारे उल्ट जोन ना आवे आप पारस परम ध्यानी साच साचे पावे आनंद अनदिन हरक साचा दुख

पूरा नामण गावे गावण हार शब्द सुहावण सलाहे साचे मन सतगुर पुन दान दया मते फिर संग भावे सहज नावे बेणी ता संगम सत सते आराध एक अंकार साचा नित दे चढ़े सुआया गत संग मीता संत संगत कर नदर मेल मलाया कहन कह सब को एक वड़े आखी है हो मूर्ख नीच अजान समझा साखी है सच गुर की साखी अमृत पाखी तित मन मानिया मेरा पूछ करह आवह बेखला दे शब्द सच्चा गुर मेरा आखण तोट ना भगत पंडारी भरपुर रहे आसोई नानक साच कह बेनंती मन मांजै सच सोई तनासरी महला पहला जीवा तेरे नाए मन आनंद है जियो साचो साचा नाओ गुण गोविंद है जियो गुर ज्ञान अपारा।

ना वसारी अन दिन संहारी जा नाम लई ता जीवा श्रवणी सुनी ता यो मन तृपतै गुरमुख अमृत पीवा नदर करे ता सतगुर मेले अन दिन विवेक बुद्ध बिचरै अंदर साचा ने हो पूरे सतगुरै सत संगत मिले बडभाग ता हर रस आवे जियो अन दिन रह निभ लाए ता सहज समावे जियो सहज समावे ता हर मन भावे सदा अतीत बैरागी हलत पलत सोभा जागे अंतर राम नाम लिव लागी हरख सोग दोहां ते मुक्ता जो प्रभ करे सो पावे सत संगत मिले बड़ भाग ता हर रस आवे जियो दूजे पाए दुख होए मनमुख जम जोहिया जियो हाय हाय करे दिन रात माया दुख मोहिया जियो माया दुख मोहिया हो मैं रोहिया मेरी मेरी करत विहावे जो प्रभ दे तिस चेतै नाही अंत गया पछतावे बिन नावे को साथ न चाले पुत्र कलत्र माया धोहिया दूजे पाए दुख होए मनमुख जम जोहिया जियो कर किरपाले हो मलाए महल हर पाया जियो सदा रह कर जोड़ प्रभ मन पाया जियो प्रभ मन भावे ता हुक्म समावे हुक्म मन सुख पाया अन दिन जपत रह दिन राती सहजे नाम ते आया नामो नाम मिली वडियाई नानक नाम मन भावे कर किरपा लिहो मलाए महल हर पावे जियो नासरी महला पंजवां शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर दीन दयाल जिस संग हर गावी है जियो अमृत हर का नाम साध संग रावी है जियो पाज संग साधु एक अरादु जन्म मरण दुख नासे तुर कर्म लिखिया साच सिखिया कट्टी जम की फासे पै परम नाठे छुट्टी गाठे जम पंथ मूल ना आवी है बिनवंत नानक।

कमने सुख पाया कहत कबीर अवर नहीं कामा हमरे मन धन राम को नामा राम सिमर राम सिमर भाई राम नाम सिमरन बिन बूढ़ ते अधकाई रहाउ बनता सुत देह गृह संपत सुखदाई इन मैं कछ नाही तेरु काल अब दे आई अजा मल गज गन का पतत कर्म कीने तेहु पुत्र पार परे राम नाम लीने सूकर कूकर जोन प्रमे तऊ लाज ना आई राम नाम छाड अमृत काहे बिख खाई ताज परम कर्म बिदन खेद राम नाम ले ही गुर प्रसाद जन कबीर राम कर स्नेह तनासरी बाणी भगत नाम देव जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद गहरी करके नीम खुदाई ऊपर मंडप छाई मार कंडे ते को अधकाई जिन त्रेण तार मूंड बलाई हमरो करता राम स्नेही काहे रे नर गर्भ करत हो बिन सजाए झूठी देही रहाओ मेरी मेरी कैरो करते दुर्योधन से पाई बारह योजन शत्र चले था देही गिरजन खाई सर्ब सोइन की लंका होती रावण से अधकाई कहां पयो दर बांधे हाथी खिन मैं पई पराई दुर्बासा स्यों करत ठगा।

आए दास बैरागन मोहे बस कीनी पंचों का मिट नामो सत्तर दोहे परे अमृत सार बिख को मार कढावो पाछे बहुर ना आवन पावो अमृत बाणी घटते उचरो आत्म को समझावो रहाओ बजर कुठार मोहे है सीना कर मिन्नत लग पावो संतन के हम उल्टे सेवक भगतन ते डर पावो ए संसार ते तब ही छूटो जो माया नह लपटावो माया नाम गर्भ

आऊ ज्यो धरणी को इंद्र बालहा कुसुम बास जैसे भवरला ज्यो कोकिल को अंब बालहा त्यों मेरे मन रामैया चकवी को जैसे सूर बालहा मान सरोवर हंसुला ज्यों तरणी को कंत बालहा त्यों मेरे मन रामैया पार्क को जैसे खीर बालहा चात्रक मुख जैसे जल भरा मछली को जैसे नीर बालहा त्यों मेरे मन रामैया साधक सिद्ध सगल मुन चाह बिरले काहू डीठला सगल पवन तेरो नाम बालहा त्यों नामे मन बीठला पहल पुरिये पुंडरक वना तांचे हंसा सगले जना कृष्णा ते जानू हर हर नचंती नाचना पहल पुरसाबरा अथोन पुरसा दमरा असगा अस उसगा हर का बागरा नाचै पिंडी महसागरा रहाऊ।

पतत पावन माधव बिरध तेरा धन ते वै मुन जन जिन ध्यायो हर प्रभ मेरा मेरे माथे लागी ले तूर गोविंद चरणन की सुर नर मुन जन तिन्हू ते दूर रहाओ दीन का दयाल माधो गर्भ परहारी चरण सरन नामा बल तिहारी तनासरी भगत रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम सर दीन दयाल ना तुम सर अब पतियार क्या कीजै बचनी तोर मोर मन माने जन को पूर्ण दीजै हौ बल बल जाऊ रमैया कारने कारण कमने अबोल रहाओ बहुत जन्म बिछरे थे माधव यो जन्म तुम्हारे लेखे कह रविदास आस लग जीवो चिर भयो दर्शन देखे चित सिमरन करो नैन अवलोकनो श्रवण वाणी सुजस पूर राखो मन सो मधुकर करो चरण हृदय धरो हरसन अमृत राम नाम पाखो मेरी प्रीत गोबिंद सिंह जिन घटै मैं तो मूल महंगी लई जी सटै रहाउ साध संगत बिना भाव नहीं उपजै भाव बिन भगत नहीं होए तेरी कह रविदास एक बेनती हर सिंह पैज राखो राजा राम मेरी नाम तेरो आरती मजन मरारी हर के नाम बिन झूठे सगल पासा।

लगाई पयो उजियारो पवन सगलारे नाम तेरो तागा नाम फूल माला पार अठारह सगल जूठारे तेरो किया तुझे क्या अर्पो नाम तेरा तुही चवर टोलहारे दस अठा अठ सठे चारे खानी यह बर्तन है सगल सन।

कर्मरी रहाव शंकर मस्तक बस्ता सुरसरी स्नान रे कुल जन मधे मिलियो सारग पान रे कर्म कर कलंक मफीत सरी विश्व का दीपक स्वामी ताचे रे स्वार्थी पंखी राय गरुड़ ताचे बांधवा कर्म कार अरुण पिंगलारी अनक पात कहरता त्रे पवन नाथरी तीर्थ तीर्थ प्रमता लह ना पाररी कर्म कर कपाल मुठीट सरी अमृत ससी तेन लक्ष्मी कल्पतर शिखर समागर नदी के नाथं कर्म कार खार मुठीट सरी दादी ले लंका गाड़ उपाड़ी ले रावण बाण सालब साल आण तो खीले हरी कर्म कर कछोटी मफीत सरी पूर्व लो कृत कर्म ना मिटैरी कर गेहन ताचे मोहे जापी अले राम चे नाम बदत त्रलोचन राम जी श्री सैन धूप दीप कृत साजे।

था। जैत श्री मोहल्ला चौथा। हीरा लाल अमूल कह पारी, बिन गाहक मीका काखा। रतन गाहक गुर साधु देखियो, तब रतन बकानू लाखा। मेरा मन गुप्त हीर हर राखा, दीन दयाल मलायो गुर साधु। गुर मिले हीर पराखा रहाओ, मन मुख कोठी अज्ञान अंधेरा। तिन घर रतन ना लाखा, ते उजड़ भरम मोए गावारी। माया पुआंग बिख चाखा, हर हर साध मेलो जन नीके।

जिहवा क्या गुण आख बखान है, तुम वड अगम वड पुरखा, जन नानक हर कृपा धारी, पाखान डुपत हर राखा, जैत श्री महला चौथा, हम बारिक कछु न जान है गत मेत, तेरे मूर्ख मुग्ध एना, हर कृपा।

गुर साधु मिल साधु कपट खला ना रहाउ गुर खिन खिन प्रीत लगावो मेरा ही अरे मेरे प्रीतम नाम पराना बिन नावै मर जाइए मेरे ठाकुर जो अमली अमल लुभाना जिन मन प्रीत लगी हर केरी तिन तुर भाग पुराना तिन हम चरण सरे वह खिन खिन जिन हर मीठ लगाना हर हर कृपा धारी मेरा ठाकुर जन बिछरिया चिरी मलाना तन तन सतगुर जिन नाम दिरडाया जन नानक तिस कुरबाना जैत श्री महला चौथा सतगुर साजन पुरख वड पाया हर रसक रसक फल लाघबा माया पुयंग ग्रस्यो है प्राणी गुरबचनी बिसहर काढ़वा मेरा मन राम नाम रस लाघबा हर किए पत्र पवित्र मिल साध गुर हर नाम हर रस चाखिबा रहाउ तन तन वडभाग मिलियो गुर साधु मिल साधु लिव उन्मन लाघबा तृष्णा अगन बुझी शांत पाई हर निर्मल निर्मल गुण गायबा तिनके भाग खीन तुर पाए जिन सतगुर दर्शना पाएबा ते दूजे पाए पवे गर्भ जोनी सब बिरथा जन्म तिन जाएबा हर देहो बिमल मत गुर साध पग सेव है हम हर मीठ लगाएबा जन नानक रेण साध पग मांगे हर हुए दयाल दुआएबा जैत श्री महला चौथा जिन हर हृदय नाम ना बस्यो तिन मात की जय।

कृपाल कृपा प्रभ धारी गुरु ज्ञान दियो मन समझा रहाउ हर कीरत कल युग पादे उत्तम हर पाइये सतगुर महजा हम बलिहारी सतगुर अपने जिन गुप्त नाम पर गाजा दर्शन साध मिलियो वड भागी सब किल विख गए गवाजा सतगुर साह पाया वड दाना हर किए बहु गुण सांझा जिनको कृपा करी जग जीवन हर उरतार्यो मन महजा धर्म राय दर कागद फारी जन नानक लेखा समझा जय श्री महला चौथा सत संगत साध पाई वड भागी मन चल तो भयो अरूड़ा अनहत धुन वाजह नित वाजे हर अमृत धार।

साकत बंद भय है माया, बिख संच है लाएज कीड़ा, हर कै अर्थ खर्च नह साक है, जमकाल सह सिर पीड़ा, जिन हर अर्थ शरीर लगाया गुर साधु, बहु श्रद्धा लाए मुख धूड़ा, हलत पलत हर सोभा पाव है, हर रंग लगा मन गूड़ा, हर हर मेल मेल जन साधु, हम साध जना का कीड़ा, जन नानक प्रीत लगी पग साध, गुर मिल साधु पाखान हरिउ मन मूड़ा। जैत श्री महला चौथा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर हर सिमरोह अगम अपारा, जिस सिमरत दुख मिटै हमारा, हर हर सतगुर पुरख।

हर हर अमृत बचन सुनावहु, गुर मिलिया प्रगट होई राम, मधुसूदन हर माधु प्राणा, मेरा मन तन अमृत मीठ लगाना, हर हर दया करहु गुर मेलहु।

हर हर हर हर भगत दृढ़ावहु हर हर नाम उमाहाराम हर हर नाम दयाल त्याहा हर कह रंग सदा गुण गाह हर हर हर जस घूमर पावहु मिल सत

खिन खिन भगत करह दिन राती, गुरमत भगत अमाहाराम, हर हर गुण गोविंद जपाहा, मन तन जीत शब्द लैलाहा, गुरमत पंच दूत वस आवह, मन तन हर ओ महाराम, नाम रतन हर नाम।

आपे सतगुर संबंध मथाहा, आपे मथ मथ तत कढ़ाई, जप नाम रतन ओ महाराम, सखी मिलो मिल गुण गावाहा, गुरमुख नाम जपहु हर लाहा, हर हर भगत दृढ़ी मन पहा।

कथा मिल सत संगत संग गुराहा पूंजी नाम गुरमुख वेसाहा हर हर कृपा धार मधुसूदन

तोल अत पहारी गुरमत जप उमाहा राम सब कर्म धर्म हर नाम जपाहा किल विख महल पाप तुवाहा दीन दयाल हो जन ऊपर देहो नानक नाम उमाहा राम जय श्री महला पंजवा घर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोई जाने कमन इहां जग मीत जिस होए कृपाल सोई बिद बूजै ताकी निर्मल रीत रहाओ मात पिता बनता सुत बंदप इष्ट मीत अर भाई

सब महियो वर्ण ना दिसै चिन्ह ना लखियै सुहागन सांत बजहियो सर्व निवासी घट घट वासी लेप नहीं अलपहियो नानक कहत सुनो रे लोगा संत रसन को बसहियो जय श्री महला पंजवां धीरों सुन धीरों प्रभ कौ रहाओ जी प्राण मन तन सब अर्पो नीरो पेख प्रभ को नीरो बेशमार बे अंत बड़ दाता मने गिहीरो पेख प्रभ को जो चाहो सोई सोई पावो आसा मनसा पूरो जप प्रभ को गुर प्रसाद नानक मन वसिया दुख ना कबहू चूरो बुझ प्रभ को जय श्री महला पंजवां लड़िंगड़ा साजन मेरा कर कर मंगल गावो नीके काट

तो सगल मोहे मोहियो तो शरण परयो गुर भाग कर कृपा टहल हर लायो तो जम छोड़ी मोरी लाग तरयो सागर पावक को जो संत भेटे वड भाग जन नानक सर्व सुख पाई मोरो हर चरणी चित लाग जय श्री महला पंजवा मन मह सतगुर ध्यान धरा दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभ जियो मया करा रहाओ काल जाल अर महा जंजाला छुटके जमह डरा आयो दुख हरन शरण करुणा पत

है जिन रस रस हर गुण गाई, जय श्री महला पंजवां। गोविंद जीवन प्राण धन रूप, अज्ञान मोह मगन महा प्राणी, अंधियारे मह दीप रहाउ। सफल दर्शन तुमरा प्रभ प्रीतम, चरण कमल अनूप, अनक बार करो ते बंदन।

या रसम है मग्न हूत कृपाती महाविख्याति तूर आयु शरण दीन दुख भंजन चितवं तुमरी ओर अपै पद दान सिमरन स्वामी को रब नानक बंधन शोर जय श्री महला पंजवा चातरक चितवत बरसत में कृपा सिंध करुणा प्रभ धारु हर प्रेम।

लाड़दास जाने अपने कुदरे उदर नहारे प्रभ सिमर सिमर सिमर सुख पायो नानक शरण द्वारी जय श्री महला पंजवां आए अनक जन्म भ्रम सरणी उधर दे अंध कूप ते लाभ हो अपनी चरणी रहाओ ज्ञान ध्यान किस कर्म ना जाना नाहिन निर्मल करनी साध संगत कै अंचल लाभ हो बिखम नदी जाए तरनी सुख संपत माया रस मीठे ए नहीं मन मह तरनी हर दर्शन त्रिपत नानक दास पावत हर नाम रंग आभरनी जय श्री महला पंजवा हर जन सिमरो हृदय राम हर जन को अपदा निकट ना आवे पूर्ण दास के काम रहाओ कोट बिगन बिन सह हर सेवा निश्चल गोविंद धाम भगवंत भगत को पौ किश नाही आदर देवत जाम तज गोपाल आन जो करनी सोई सोई बिनसत खाम चरण कमल हृदय गहु नानक सुख समूह विश्राम जय श्री महला नौवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद भूल्यो मन माया उरझायो जो जो कर्म कियो लालच लग ते तेह आप बंधायो रहाओ समझ ना परी बिखै रस रचियो जस हर को बिसरायो संग स्वामी सो जानियो नाहिन बन खोजन को तायो रतन राम घट ही के पीतर ताको ज्ञान ना पायो जन नानक भगवंत भजन।

कोत्रास भयो उर अंतर सरन गही कृपा निद तेरी रहाओ। महापतत मुग्ध लोभी फुन करत पाप अबहारा

दह दिस को उठताया घट ही भीतर बसै निरंजन ताको मर्म ना पाया ना हिन गुण ना हिन कश जप तप कौन कर्म अब कीजै नानक हार परियो सरनागत अपै दान प्रभ दीजै जैत श्री

को जोगी खोजत हारे पायो नाहे तेह पारा। सो स्वामी तुम निकट पछानो रूप रेख ते न्यारा। पावन नाम जगत में हर को कबहू नाहे संभारा। नानक शरण परयो जग बंदन राखो हो बिरद तुहारा। जैत श्री महला पंजवां संत घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक दर्शन प्यासी दिन सरात चितवन दिन नीत। खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत। संत सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया। किस मोहन लाल प्यारे हो फिरो खोजंतिया। किस दस प्यारे सिर धरी उतारे एक पूरी दर्शन दीजे। नैन हमारे प्रिय रंग रंगारे।

पूरा पाया सगली तिखा बुजंतिया यार वे प्रिय बे सखिया मुँह कही ना जेहिया यार वे हिक डू हिक चाड़े हों किस चिते हिया हिक डू हिक चाड़े अनक प्यारे नित कर दे भोग बलासा तिना देख मन चाओ उठंदा हों कद पाई गुण तासा जिन्नी मैंडा लाल रजाया हों तिस आग्या मन डेहिया नानक कह सुन बिनो सुहागण मूं दस दिखा पेर के हिया यार वे पेरे आपन पाना किसनीशी छंदा यार वे तैरा व्या लालन मूं दस दसंदा लालन तै पाया आप गवाया जै तन भाग मथाने बाहां पकड़ ठाकुर हों किदी गुण अवगुण ना पछाणे गुण हार तै पाया रंग लाल बनाया तिस हब्बो किस सुहंदा जन नानक तन सुहागण साई जिस संग पता।

आठ पहर कर जोड़, सो प्रभ त्याई है, त्याए सो प्रभ सदा अपना, मन है चिंदिया पाई है, तज मान मोह विकार दूजा, एक स्यों निवलाई है, अर्प मन तन प्रभु आगे, आप सगल मिटाई है, बिनवंत नानक धार कृपा, साच नाम समाई है, सलोक रे मन ता कौ त्याई है, सब बिद जा कै हाथ, राम नाम तन संची है, नानक निभ है साथ संत, साथी अड़ा प्रभ एक, दूसर नाहे कोय, थान थरंतर आप जल थल पूर सोए, जल थल मैयल पूर रहया, सर्वदाता प्रभ धनी, गोपाल गोविंद अंत नाही, बे अंत गुणता के क्या गनी, पाज सरन स्वामी सुखागामी।

दे मरण चीत ना आवे पुत्र मित्र व्यवहार बनता एह करत बिहावे पुज दिवस आए लिखे माए दुख धर्म दूत है जिथेया किरत कर्म ना मिटै नानक हर नाम धन नहीं खटिया उदम कर है अनेक हर नाम ना गावही भरम है जोन असंख मर जन्म है आवही पशु पंखी सैल तरवर गणक कशु ना आवे बीज बोवस भोग भोग है किया अपना पावे रतन जन्म हर अंत जुए प्रभु आप ना पावही बिनवंत नानक भरम है परमाए खिन एक टिकन ना पावही जोबन गया बेतीत जर मल बैठिया कर कंप है सिर डोल नैन ना डीठिया नह नैन दीसै बिन भजन ईसै छोड़ माया चालिया कहया ना मन है सिर खाक छन है जिन संग मन तन जालिया श्री राम रंग अपार पूर्ण नह निमख मन मह वूठिया बिनवंत नानक कोट कागर बिन सबार ना झूठिया चरण कमल सरण आए नानक आया दुत्तर भै संसार प्रभ आप तराया मिल साध संगे भजे श्री तर कर अंग प्रभ जी तारिया हर मान लिए नाम दिए अवर कछ ना बिचारिया गुण निधान अपार ठाकुर मन लोड़ींदा पाया बिनवंत नानक सदा तृप्ते हर नाम भोजन खाया गुण निधान अपार ठाकुर मन लोड़ींदा पाया बिनवंत नानक सदा तृप्ते हर नाम भोजन खाया।

अर्थापदा तिस बिन नहीं कोई। खंड ब्रह्मांड पाताल दीप रविया सब लोई। जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई। सलोक रचंत जी रचना मात गर्भ अस्थापनं सास सास सिमरंत नानक महा अगन ना बनासनं। मुख तले पैरे उपरे बसंदो को हथड़े थाए। नानक सो तनी क्यों वसारे हो उदर है जिस दै नाए। पौड़ी रक्त बिंद कर निम्या अगन उदर मझार। उर्द मुख कुचील बिकल नरक घोर गुबार। हर सिमरत तू ना जल है मन तन उरतार। बिकम थानो जिन रखिया इस तिल ना विसार। प्रभ बिसरत सुख कदे नाही जासह जन्म हार। सलोक मन इच्छा दान करन सर्वत्र आसा पूर्ण है। खंडन कल कलेश प्रभ सिमर नानक नह दूर नह। हब रंग मान है जिस संग तैस्यो लाइय नेहो। सो सहो बिंद ना विसरो नानक जिन सुंदर।

साध संग हर गुण रमहु, बिनसे सब रोग सलोक, कुटुंब जतन करनं, माया अनेक उदम है, हर

साक्षात हुए केत बिद मन तीरे सलोक चरण कमल बिरहं खोजंत बैरागी दह दिसह त्यागंत कपट रूप माया नानक आनंद रूप साध संग मह मन साई मुख उच्चरा वत्ता हबे लो नानक हब अडंबर कूड़िया सुन जीवा सच्ची सोए पौड़ी बस्ता टूटी झुंपड़ी चीर सब छिन्ना जात ना पात ना आदरू उद्यान पर मिन्ना मित्र ना एठ धन रूपहीन किस साक ना सिन्ना राजा सगली सिष्ट का हर नाम मन पिन्ना जिसकी धूड़ मन उदरे प्रभ होए सो प्रसन्ना सलोक अनक लीला राज रस रूपं शतर चमर तख्त आसनं रचंत मूड अज्ञान अंध है नानक सुपन मनोरथ माया।

का बसंत स्वर्ग लोक कह जित ते पृथ्वी नव खंडन है बिसरंत हर गोपाल है नानक ते प्राणी उद्यान भरमण है कौतिक कोड तमाशिया चेतना आवस नाउ नानक कोड़ी नरक बराबरे उजड़ सोई थाउ पौड़ी महापयान उद्यान नगर कर मानिया।

है, होए पवित्र शरीर चरना धूरी है, पार ब्रह्म गुरदेव सदा हजूरी है, सलोक रसना उचरंत नाम सर्वण सुनंत शब्द अमृत है, नानक तिन सत बलिहारं जिन्ना ध्यान पार ब्राह्मण है, हब कूड़ा वे कम इकस साई बाहरी, नानक से धन जिन्ना पिरहड़ी सच स्यों पौड़ी, सद बलिहारी तिना जे सुनते हर कथा, पूरे ते प्रधान निवाव है प्रभ मथा, हर जस लिख है बेअंत सोह है से हथा, चरण पनीत पवित्र चल है प्रभ पथा, संता संग उदार सगला दुख लथा, सलोक भावी अदोत करन हर रमण संजोग पूर्ण है, गोपाल दर्श भेटं।

लंदड़ी परवान जित मलंदड़ो मापिरी पौड़ी सावेला कहो कौन है जित प्रभ को पाई सो मूर्त भला संजोग है जित मिले गुसाई आठ पहर हर त्याई कै मन इच पुजाई बड़े भाग सतसंग होए निव लागा पाई मन दर्शन की प्यास है नानक बल जाई सलोक पतत पनीत गोबिंद है सर्व दुख निवारण है सरन सूर भगवान है जपंत नानक हर हर हरे छड्यो हबे आप लगड़ो चरना पास नठड़ो दुख ताप।

ओट नानक परमेश्वर है चंदन चांदना सरद रुत मूल न मिटे काम शीतल थीवै नानका जपंदड़ो हर नाम पौड़ी चरण कमल की ओट उदरे सगल जन।

पाईऐ वड्डै पुन्न। आठ पहर हर त्याई हर जस नित सुन सलोक, दया करनं दुख हरनं उचरनं नाम कीर्तन है। दयाल पुरख भगवान है नानक लिपत ना माया, पाहे बलंदड़ी बुझ गई रखंदड़ो प्रभ आप। जिन उपाई मेदनी नानक सो प्रभ जाप पौड़ी, जहां प्रभ भये दयाल ना व्यापै माया। कोट अगा गए नास हर एक त्याया, निर्मल भये शरीर जन धूरी नाया। मन तन भये संतोख पूर्ण प्रभ पा।

छपे पार ब्रह्म गुरुदेव नीचो उच थपे काट सिल्क दुख माया कर लीने अप दसे गुण गाए बेअंत रसना हर जसे सलोक दृष्टंत एको सुनियंत एको वर्तंत एको नरहर है नाम दान जा चंत नानक दयाल पुरख कृपा करह हिक सेवी हिक सम्मला हर इकस पह अरदास नाम वखर धन संचया।

गुरप्रसाद राग टोडी महला चौथा घर पहला हर बिन रह ना सकै मन मेरा मेरे प्रीतम प्राण हर प्रभ गुर मेले बहुर न भवजन फेरा रहाऊ मेरे ही अरे लोच लगी प्रभ केरी हर नैन हो हर प्रभ हेरा सतगुर दयाल हर नाम दिरडाया।

लागा मुख मस्तक भाग चंगेरा लोभ विकार जिन्ना मन लागा हर विसरिया पुरख चंगेरा वे मन मुख मूड अज्ञानी कई है तिन मस्तक भाग मंदेरा विवेक बुद्ध सतगुर ते पाई गुर ज्ञान गुरु प्रभ केरा जन नानक नाम गुरु ते पाया तुरम

संतन अवर न काहू जानी, बेपरवाह सदा रंग हर कै, जाको पाख स्वामी रहाउ, ऊच समाना ठाकुर तेरो, अवर न काहू तानी, ऐसो अमर मिलियो भगतन को।

से ओ पेख रंग कसुंभ को परिग्रह जोहन जायो करण कमल स्यो भाउ ना कीनो नह सत पुरख मनायो तावत कहो तावह बहु भांति ज्यो तेली बल्द परमायो नाम दान इशनान ना कियो एक निमख ना कीरत गायो नाना झूठ लाए मन तो खियो नह बूझियो अपनायो पर उपकार न कबहू किए नहीं सतगुर सेवत आयो पंच दूत रच संगत गोष्ट मतवारो मद मायो करो बेनती साध संगत हर भगत वश्चल सुन आयो नानक भाग परयो हर पाछे राख लाज अपनायो टोडी महला पंजवां मनुख बिन बूझे बिरता आया अनक साज सिंगार बहु करता ज्यो मृतक ओढ़ाया रहाओ ताए ताए कृपन शर्म कीनो एकत्र करी है माया दान पुन नहीं संतन सेवा कित ही काज ना आया कर आभरण सवारी सेजा कामन थाट बनाया संग न पायो अपने परते पेख पेख दुख पाया।

प्रभु को किस हृदय नाम वसाया, साध संगत कै पाछै परयो, जन नानक हर रस पाया। टोडी महला पंजवा, कृपा निद बसो हृदय हर मीत, तैसी बुद्ध करहो परगासा, लागै प्रभ संग प्रीत रहाउ। दास तुम्हारे की पावो धूरा, मस्तक ले ले लावो, महापतत ते होत पनीता, हर कीर्तन गुण गावो। आज्ञा तुमरी मीठी लागो, कियो तुहारो पावो, जो तू देहे तही एहो तृप्तै, आन न कतहु तावो, सद ही निकट जानो प्रभ स्वामी।

काल अनेक भोग रस सगल तरवर की श्याम ताए ताए बहु विध कौ तावै सगल निरारत काम बिन गोविंद अव

पंजवां सतगुरे आयो सरन तुहारी मिले सूख नाम हर सोबा चिंता लाहे हमारी रहाओ अवर

सबाया टोडी मोहल्ला पंजवा किरपन तन मन किल विख भरे साध संग भजन कर स्वामी ताकन को एक हरे रहाओ अनक शिदर बोहित के छुटकत थाम ना जाही करे जिसका बोहित तिस अरादे खोटे संग खरे गली सहल उठावत चाहे वे उहां ही है तरे जोर सकत नानक किश नाही प्रभ राखो सरन परे टोडी महला पंजवा हर के चरण कमल मन त्याओ काड कुठार पित बात हंता औखद हर को

नानक सरन परे दुख पंजन जाका बड़ परताप तोड़ी महला पंजवा स्वामी सरन परयो दरबारी कोट अपराध खंडन के दाते तुझ बिन कौन उधारे रहाउ खोजत खोजत बहु परकारी सर्व अर्थ बिचारे साध संग परम गत पाइए माया रच बंद हारी चरण कमल संग प्रीत मन लागी सुर जन मिले प्यारे नानक अंध करे हर जप जप सगले रोग निवारी टोडी महला पंजवा घर तीजा चौपदी

या टोडी महला पंजवा हमारे एकै हरी हरी आन अवर सियान ना करी रहाऊ बड़े भाग गुरे अपना पायो गुरमुख।

सब किस किसके ग्रह में आया, टोडी महला पंजवा घर चौथा दुपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, रूढ़ो मन हर रंगो लोड़ै, गाली हर नीहू ना होए रहाव, हौं टुनेंदी दर्शन कारण, बीती बीती पेखा गुरमिल भरम गवाया ही, एह बुद्ध पाई मैं साधु कन्नो, लेख लिखियो तुर माथे, एह बिद नानक हर नैन अलोई, टोडी महला पंजवा गर्भ गिहिलड़ो मूडड़ो ही ओरे।

आयो रे। महाराज रो गाथ बाहु स्यो लुबड़ियो, नेह भागड़ो पाहे संजोयो रे। सुन मन सीख साधु जन सगलो, थारे सगले परास्त मिट्यो रे। जाको लहणो महाराज री गाठड़ियो, जन नानक गर्भास ना पौड़ियो रे। टोडी महला पंजवा कर पंजवा दुपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन, पंच दुख अर अंग रोग। एह तन ते सगल दूर कीन रहाओ, बंधन तोर छोर बिखियाते।

गहियो मोहे हर रंग पीन, पेखियो लालन पाठ बीच खोए, अनद चिता हर खे पतीन। तिस ही को ग्रहो सोई प्रभ नानक,

राम नाम निर्मल है रीत रहाउ, प्राण आधार जीवन धन मोरे, देखन को दर्शन प्रभ नीत, बाट घाट तुसा संग मोरे, मन अपने को मैं हर सखा कीत, संत प्रसाद भये मन निर्मल, कर कृपा अपने कर लीत, सिमर सिमर नानक सुख पाया।

बिसर नहीं निमकही रेते अपने भगत को पूर्ण दान रहाओ। खोबो परम राख मेरे प्रीतम अंतर जामी सुगड़ सुजान। कोट राज नाम धन मेरे अमृत दृष्ट तारुह प्रभ मान। आठ पहर रसना गुण गावे जस पूर अगावे सम

सदा हजूर जो तुमरा जस गावह करते से गन कभो ना मरते चूर धंद बंद बिनसे माया के साधु संगत मिटे बिसूर सुख संपत भोग इस जी के।

नाम निरंजन करते मन तन ते सब किन विखनास पूर्ण पार ब्रह्म सुख दाते अविनाशी बिमल जा को जास संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ कर कृपा भेटे गुण तास शांत सहज सुख मन उपजेउ कोट सूर नानक प्रगास टोडी महला पंजवां हर हर पतत पावन जी प्राण मान सुख दाता अंतर जामी मन को पावन रहाओ सुंदर सुगड़ चतुर सब बेता रिददास निवास भगत गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी कर्म भूम बीजन सो खावन विस्मन विस्म

सुख कोट आनंद राज सुख भुगवे हर सिमरत बिनसै सब दुख रहाउ कोट जन्म के किल विख नास है सिमरत पावन तन मन सुख देख स्वरूप पूर्ण भई आसा दर्शन भेटत उतरी भुख चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध काम तीन पार जात हर हर रुख नानक शरण गही सुख सागर जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख टोडी महला पंजवा हर हर चरण हृदय उरतारी सिमर स्वामी सतगुर अपना कार्य सफल हमारा।

अतुल सुख पाया, ठाकुर अगमे अपारी, जो जन पार ब्रह्मे अपने कीने, तिनका बहुर कछ ना बिचारे, नाम रतन सुन जप जप जीवा, हर नानक कंठ मजारे, टोडी महला नौवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कहो कहां अपनी अदमाई।

नहीं कब हूँ, होत जो संग सहाई मगन रहे हो माया मैं निस दिन, छुट्टी ना मन की काई, कह नानक अब नाहे अंत गत, बिन हर की सरनाई, टोडी बाणी भगतां की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कोई बोले निर्वा कोई बोले दूर, जल की माछली चरे खजूर, काए रे बकवाद लायो, जिन हर पायो तिन्ह छपायो रहाओ, पंडित हुए कै बेद बखाने, मूर्ख नाम देवरा मह जाने, कौन को कलंक रहयो, राम नाम लेत ही पतत पवित भये, राम कहत ही रहाओ, राम संग नाम देव जन को प्रतज्ञा आई, एकादशी बरत रह काहे को तीर्थ जाई, पंत नाम देओ सो कृत समत भये, गुरमत राम कह को ना बैकुंठ गए, तीन संदे खेल आछै रहाओ, कुंभार के घर हांडी आछै, राजा के कर सांडी गो, बामन के कर रांडी आछै, रांडी सांडी हांडी गो, बाणिये के कर हींग आछै, पैसर मातै सींग गो, देवल मदे लीग आसै, लीग सीग हीग गो, तेली कै कर तेल आछै।

ईश्वर तब हर हर हर जस त्यायो जन नानक को हर पेटे स्वामी दुख हमै रोग गुआयो बैराड़ी महला चौथा हर जन राम नाम गुण गावे जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे रहाऊ जो

हरि आपी पंच तत् विस्थारा विच धातु पंच आप पावे जन नानक सतगुर मेले आपी हरि आपी झगर चुकावे बैराड़ी महला चौथा जप मन राम नाम निस्तारा कोटक तंत्र के पाप सब खोवे हर भवजल पार उतारा रहाउ काया नगर बस्त हर स्वामी हर निर्भउ निर्वैर निरंकारा हर निकट बसत कस नगर ना आवे हर लादा गुर विचारा हर आपे साहू सराफ रतन हीरा हर आप किया पा सारा नानक जिस कृपा करे सो हर नाम विहाजे सो साहू सच्चा बणजारा बैराड़ी महला चौथा जप मान हर निरंजन निरंकारा सदा सदा हर त्याय सुखदाता जाका अंत न पारा वारा रहाउ अगन कुंट मह उर्द लिव लागा हर राख उदर मंजारा सो ऐसा हर सेव हो मेरे मन हर अंत शगावन हारा जा कै हृदय बसिया मेरा हर हर तिस जन को करहो नमस्कारा।

सा व्रत पूजा जित हर स्यो प्रीत लगाए, बिन हर प्रीत होर प्रीत सब झूठी, एक खिन मैं बिसर सब जाए। तू बेअंत सर्व कल पूरा किसकी।

प्रसाद यक अर्ज गुप्तम पेश तो दरगोस पुन करतार हका कबीर करीम तू बेऐब परवदगार दुनिया मुकामे पानी तहकीक दिल दानी मम सर मुए अजराइल गिरफ तह दिल हेच ना दानी रहाउ जन पिसर पदर बिरादरा कस नेस दस्तंगीर आखर बेअपतम कस ना दारद चू स्वद तकबीर सब रोज गस्तम दर हवा कर देम बदी खयाल गाहे ना नेकी कार करदम मम ईच नी अहवाल बद बखत हम चोब खील गाफिल बे नजर बेबाक नानक बुगोयद जन तुरा तेरे चाकरा पाखाक तलंग महला पहला कर दूजा।

दर्शन की भूख मैं दर मांगो नीता नीत तौ दर्शन की करो समाए मैं दर मांगत भीख्या पाए रहाऊ केसर कुसुम मृग मैं हरना सर्ब शरीरी चढ़ना चंदन भगता ज्योत अनेही सर्वे परमल करना के पट भांडा कह ना कोई ऐसा भगत वर्ण मह होई तेरे नाम निवे रहे लिव लाए नानक तिन दर पीछिया पाए तलंग महला पहला कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद एहु तन माया पाया प्यारी लीतड़ा लभ रंगाई मेरे कंपना पावे चोलड़ा प्यारी क्यों धन सीजै।

पाप की जंज लह काबल हो ताया, जोरी मंगे दान वे लालो, शर्म धर्म दोए शप खलोए, कूड़ फिरे परदान वे लालो, काजियां बामणा की गल थकी,

ध्यान गोविंद अनूप सिमर सिमर सिमर जन सोई नानक कर्म प्राप्त होई जिन जपया तिस कौ बलिहार तिस कै संग तरै संसार कहो नानक।

यार बंदे जिस तेरा आधार, गुनाह उसके सगले आपू तेरे जन देख है दीदार। दुनिया चीज फिलहाल सगले, सच सुख तेरा नाम, गुर मिल नानक बूझिया सदा एक सगाव। तलंग महला पंजवा, मीरा दाना दिल सोच, मोहब्बते मन तन बसे सच साहा बंदी मोच रहाओ। दीद ने दीदार साहिब कश नहीं इसका मोल, पाक परवदगार तू खुद खसम वड्डा।

उस्तत है, जो हर प्रभ भावे, जो गुरमुख प्यारा सेम दे, तिन हर फल पावे, जिन्ना हर सेती पिरहड़ी, तिना जी प्रभ नाले, ओए जप जप प्यारा जीव दे, हर नाम संभाले, जिन गुरमुख प्यारा सेविया, तिन को घुम जाया, ओए आप छुटे परवार सिउं, सब जगत छडाया, गुर प्यारे हर सेविया, गुर धन गुर तनो, गुर हर मार्ग दसिया, गुर पुन वड पुनो।

आय आखिए तुस करे पसाऊ हो गुर विटो सद वारिया जिन दितड़ा नाऊ सो धन गुरु सा बास है हर दे सनेहा हो वेख वेख गुरु विगसिया।

आपे हार एक रंग है आपे बहु रंगी जो तिस पावे नानका साई गल चंगी तलंग महला नौ काफी एक ओंकार सतगुर प्रसाद चेतना है तू चेत लै निस दिन मैं प्राणी छिन छिन औद बेहात है फूटे घट ज्यो पानी रहाओ हर गुण काहे ना गावे मूर्ख अज्ञान।

संपत रथ धन राज सिउ अतनेहो लगायो काल पास जब गल परी सब भयो परायो जान बूझ कै बावरे तैं काज बिगारियो।

नाम जपहु तब मथिया इन बिद अमृत पावहु। मन संपट जित सत सर नावन पावन पाती तृप्त करे। पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन बिद साहिब रवत रह।

नानक नाम संभाल तू बदा छुट है जेता सुई महला पहला जप तप का बंद बेड़ला जित लंघ वेहला ना सरवर ना उछले ऐसा पंथ सुहेला तेरा एको नाम मजीठड़ा रत्ता मेरा चोला सद रंग ढोला रहा साजन चले प्यारिया क्यों मेला हुई जे गुण हो।

जोगना देश दसंतर भवे जोगना तीर्थ नहाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत इव पाई है सतगुर भेटै ता सहसा टूटै धावत वर्ज रहाई है निचर चरै सहज धुन लागै घर ही परचा पाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत इव पाई है नानक जीवत आमर रही है ऐसा जोग कमाई है वाजे बाज हो सिंगी वाजे तो निर्भउ पद पाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत तो पाई है सूही महला पहला कौन तराजी कवन तुला तेरा कवन सराप बुला।

हर मेलो सत संगत हम तो वह पग जन के राम नाम सब है राम नामा रस गुरमत रस रस के हर अमृत हर जल पाया सब लाथी तिस तिस के हमरी जात पात गुर सतगुर हम बेचो सिर गुर के जन नानक नाम परयो गुर चेला गुर राखो लाज जन के सुई महला चौथा हर हर नाम भजियो पुरखोत्तम सब बिन से दालत दलगा पहु जन्म मरना मेट्यो गुर शब्दी हर अस्तर सेव सुख समगा मेरे मन पज राम नाम अत पिरगा मैं मन तन अर्प धरियो गुर आगे सिर वेच लियो मुल महगा रहाउ नरपत राजे रंग रस मान है बिन नावै पकड़ खड़े सब कलगा धर्म राय सिर डंड लगाना फिर पछताने हाथ फलगा हर राख राख जन किरम तुम्हारी सरनागत पुरख प्रत पलगा दर्शन संत देहो सुख पावे प्रभ लोच पूर जन तुमगा तुम समरथ पुरख वड्डे प्रभ स्वामी मोको की जय दान हर निमगा जन नानक नाम मिले सुख पावे हम नाम विटो सद घूमगा।

हर हर करह नित कपट कमावह, हृदय शुद्ध ना हुई अन दिन कर्म करह बहुतेरी, सुपने सुख ना हुई ज्ञानी गुर बिन भगत ना हुई, कोरे रंग कदे ना चढ़े जे लोचे सब कोई रहाव, जप तप संयम वर्त करे पूजा मनमुख रोग ना जाई, अंतर रोग महा अभमाना दूजे पाए।

गुण नाम दृढ़ाई, हम हर प्रभ प्यारा ढूंढ टुंडाई, सत संगत मिल हर रस पाई, तुर मस्तक लेख लिखे हर पाई, गुरु नानक तुठा मेले हर पाई, सूही महला चौथा, हर कृपा करे मन हर रंग लाए, गुरमुख हर हर नाम समाए, हर रंग राता मन रंग माणी, सदा आनंद रह दिन राती, पूरे गुर कै शब्द समाने रहाओ, हर रंग को लोचै सब कोई, गुरमुख रंग चलूला होई, मन मुख मुग्ध नर कोरा होई, जिसों लोचै रंग ना होए कोई, नदर करे ता

नानक हर रस हर रंग समावे सूही महला चौथा जिहवा हर रस रही अघाई गुरमुख पीवे सहज समाई हर रस जन चाखो हो जे भाई तौ कत अनत साध लुभाई रहाउ गुरमत रस राखो उरतार हर रस राते रंग मरार मनमुख हर रस चाखिया ना जाई हौ मैं करै बहुती मिले सजाई नदर करे ता हर रस पावे नानक हर रस

किसन उतरिया घर जिस जाय, हर की अकथ कथा सुनो जन पाई, जित सहसा दुख भूख सब लह जाय रहाउ। रविदास चमार पुस्तक करे, हर कीरत निमख एक गाय, पतत जात उत्तम भया,

भूख आठ सत तीरथ तिन तिलक कढ़ाई जन नानक तिन को अन दिन परसे जे कृपा करे हर राय सूही महला चौथा तिनी अंतर हर अराध्या जिनको तुर लिखिया लिखत लिलारा तिनकी बखीली कोई क्या करे जिनका अंग करे मेरा हर करतारा हर हर त्याए मन मेरे मन त्याए हर जन्म जन्म के सब दुख निवारण हारा रहाउ तुर भगत जना को बख्शिया हर अमृत भगत भंडारा मूर्ख हो ऐसो उनकी रीस करे किस हलत पलत।

का बीजिया भगत खाए खर्च रहे निखुटै नाही हलत पलत हर तनै की भगतां को मिली वडियाई हर धन निरपो सदा सदा अस्थिर है साचा इहो हर धन अग्नि तस्कर है पानी है जमदूत है किसे का गवाया ना जाई हर धन को उचक्का नेड़ ना आवी जम जा गाती डंड ना लगाई साख तू पाप करके बिखिया धन संचिया तिना एक विख नाल ना जाई हलतै विच साकत दहेले भए हथों छुड़क गया अगे पलत साकत हर दरगाह ढोई ना पाई इस हर धन का साहू हर आप है संतोह जिसनों दे सो हर धन लद चलाई इस

जिसनो हर सो परसन हुए सो हर गुणा रवे सो भगत सो परवान तिसकी महिमा क्या वर्णी है जिसकै हृदय बसिया हर पुरख भगवान गोविंद गुण गाइए जियो लाए सतगुरु नाल ध्यान रहाओ सो सतगुरु सा सेवा सतगुरु की सफल है जिसके पाइए परम निदान जो दूजे पाए साकत कामना अर्थ दुर्गंध सरेम दे सो

जो बिन परतीति कपटी कूड़ी कूड़ी अखी मीट दे उनका उत्तर जाएगा झूठ गमान। जेता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कह

साकार सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तेरे कमन कमन गुण कह कह गावा तू साहिब गुणी निदाना तुमरी महिमा बन ना साको तू ठाकुर ऊच भगवाना मैं हर हर नाम धर सोई

स्वामी मैं तुझे आगे अरदास मैं होर खाऊं नाही जिस पै करूं बेनंती मेरा दुख सुख तुझ ही पास विचे धरती विचे पानी विच काष्ट अगन तरीजै बकरी सिंह इक तै थाए राखे मन हर जाप प्रभ।

त्यों नानक साध जना जगत आन सब पैरी पाई। सूही महला चौथा तू करता सब किसे आप ही जान है। क्या तुद पह आख सुनाई है बुरा भला तुद सब किस सूझै। जेहा को करे तेहा को पाई है। मेरे साहिब तू अंतर की बिद जान है। बुरा भला तुद सब किस सूझै। तुद भावे तिवें भला वह रहाउ। सब मोह माया शरीर हर किया विच देही मनुख भगत कराई। एक ना सतगुर मेल सुख देव है एक मनमुख धंद पिटाई। सब को तेरा तू सबना का मेरे करते तुद सबना सिर लिखिया लेख। जे ही तू नदर करह तेहा को हुआ बिन नदरी नाही को भेख। तेरी वड्याई तू है जान है सब तुदनो नित त्याई।

जिनकै अंतर वस्या मेरा हर हर तिनके सब रूप गवाई ते मुक्त भये जिन हर नाम त्याया तिन पवित परम पद पाई मेरे राम हर जन अरोग पये गुरबचनी जिन्ना जपया मेरा हर हर तिनके हम मैं रोग गए रहाउ ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रै गुण रोगी विच हम मैं कार कमाई जिनकी ये तिसह ना चेतह बपड़ी हर गुरमुख सूजी पाई हम मैं रोग सब जगत ब्यापिया तिनको जन्म मरण दुख भारी गुर प्रसादी को विरला छूटै तिस जन को हौ बलिहारी जिन शिष्ट साजी सोई हर जाने ताका रूप अपारो

तुझ श्रेष्ठ सब साजी, कोई सेवा करियो जे किछ कीता होवै। इकना सतगुर मेल तू बुझावै, एक मन मुख करह से रोवै। हर की वडिआई हौ आख ना साका, हौ

मैं मालत हुई, कहो नानक मेरी परम गत हुई। सूही महला पंजवा, कीता लोड़ है सो प्रभ होई, तुझ बिन दूजा नाही कोई। जो जन सेवे तिस पूर्ण काज, दास अपने की राखो लाज। तेरी सरन पूर्ण दयाला, तुझ बिन कवन करे प्रतपाला। रहाउ जल थल महियल रहया भरपूर, निकट वसै नाही प्रभ दूर। लोक पतियारे कछु ना पाइए, साच लगे ता हूं मैं जाइए। जिसनो लाए ले सो लागे, ज्ञान रतन अंतर तिस जागे। दुर्मत जाए परम पद पाए, गुर प्रसादी नाम त्याए। दोए कर जोड़ करो अरदास, तुद भावे ता आण है रास। कर कृपा अपनी भगती लाई, जन नानक प्रभ सदा त्याए। सूही महला पंजवा, तन सुहागन जो प्रभु।

आवै, सास भागणी अंक समावै, गर्भ गहेली महल ना पावै, फिर पछतावै जब रहण बिहावै, कर्महीन मनमुख दुख पावै, बिनो करी जे जाना दूर, प्रभ अवनासी रहया भरपूर, जन नानक गावै देख हदूर, सूही महला पंजवां, ग्रह वस गुर की ना हो घर की नार, दस दासी कर दीनी पतार, सगल समगरी मैं घर की जोड़ी, आस प्यासी फिर को लोड़ी, कवन कहां गुणकंत प्यारी, सुगड़ स्वरूप दयाल मरारी, रहाउ सत शिंगार पहु अंजन पाया, अमृत नाम तंबोल मुख खाया, कंगन बस्त्र गहने बने सुहावे, तन सब सुख पावे जां फिर घर आवे, गुण कामन कर कंत रिझाया, वस कर लीना गुर भरम चुकाया, सब ते ऊंचा मंदर मेरा, सब

जन नानक पिर धन मिल सुख पाया, सूही महला पंजवा उमके ओहियो मिलन प्रभ ताई, खोजत चरयो देखो प्रिय जाई, सुनत संदेसरो प्रिय ग्रह सेज बछाई, भ्रम भ्रम आयो।

पिंड सब थारी, लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन, तेरे दर्शन को हम बारी रहाओ, प्रभ दाता मोहे दीन पे खारी, तुम सब

कह तू महनी निकट ना आवे, अतीत सदाए माया का माता, मन नहीं प्रीत कह मुख राता, कहो नानक प्रभ बिनो सुनीजै, कुचल कठोर कामी मुक्त कीजै, दर्शन देखे की वडियाई, तुम सुखदाते पुरख सुभाई, रहाउ दूजा सूही महला पंजवां, बुरे काम को ऊठ खलोया।

हरामी, पाहन नाव ना पार गिरामी, गुरमिल नानक ठाकुर जाता, जल फल मही अल पूर्ण बेदाता, सूही महला पंजवां, लालन रावया कमन गतीरी, सखी बता

आई जा कहो बिन सतबार ना काई इव सुपना सोवत नहीं जाने अचेत व्यवस्था मह लपटान रहाउ महा मोहे मोहो गावारा पेखत पेखत ऊठ सधारा ऊचते ऊच ताका दरबारा कई जंत बनाहे अपारा दूसर

देह मनुख अभमानी स्वाद बाद ईरख मद माया इन संग लाग रतन जन्म गवाया दुख भंजन जग जीवन हर राया सगल त्याग नानक सरनाया सूही महला पंजवा पेखत चाखत कहियत अंधा सुनियत सुनिए नाही निकट वस्त को जाने दूरे पापी पाप कमाही सो किस कार जित छुटह परानी हर हर नाम जप अमृत बाण।

गुर के चरण कमल मन त्याए, दुख दर्द इस तन ते जाए रहाओ। भव जल डूबत सतगुर काढ़ै, जन्म जन्म का टूटा गांडै। गुर की सेवा करो दिन रात, सुख सहज मन आवे शांत। सतगुर की रेन वड भागी पावे, नानक गुर को सद बल जावे। सूही महला पंजवा, गुर अपने ऊपर बल जाइए। आठ पैर हर हर जस

केकिल विख जाही कर कृपा प्रभ दीन दयाला नानक मांगे संतर वाला सुई महला पंजवा दर्शन।

साजन सुत बंधप भाई, जत कत पेखों हर संग सहाय। जत मेरी पत मेरी धन हर नाम, सुख सहज आनंद विश्राम रहाव। पार ब्रह्म जप पहर सलाह, कोट आवद तिस बेदत नाही। हर चरण सरन गर कोट हमारे, काल कंटक जम तिस ना बदारे। नानक दास सदा बलिहारी, सेवक संत राजा राम मरारी। सूही महला पंजवा, गुण गोपाल प्रभ के नित गाहा। आनंद बनोद मंगल।

तन तूर बछाहा जन्म जन्म के किल विखलाहा मन तन प्राण जियो अरपाहा हर सिमर सिमर मान मोह कटाहा दीन दयाल करहु उत्साहा नानक दास हर सरन समाहा सुई महला पंजवा बैकुंठ नगर जहां संतवासा प्रभ चरण कमल रिद माहि निवासा सुन मन तन तुझ सुख दिखलावू हर अनक बिंजन तुझ भोग पुंचावू रहाऊ अमृत नाम पुंच मन माही आचर्ज साध ताके बरनी ना जाही लोभ मुआ तृष्णा बुझ थाकी पार ब्रह्म की शरण जन ताकी जन्म जन्म के भय मोह निवारी नानक दास प्रभ कृपा तारी सूही महला पंजवा अनक बींग दास के पर हरिया कर कृपा प्रभ अपना करिया तुम्हें छडाए लियो जाने अपना उर्ज परियो जाल जग सुपना रहाओ पर्वत दुख महा बिकराला किन मैं दूर किए दयाला सोग रोग विपत अत भारी दूर पई जप नाम मरारी दृष्ट धार लीनो लड़ लाए

राम आहार पूदाता प्रभ देवन हार राम रमत संतन सुख माना नानक देवन हार सुजाना सुई महला पंजवा बहती जात कदे दृष्ट ना तारत मिथ्या मोह बंद है नित पारच माधवे पाज दिन नित रहनी जन्म पदार्थ जीत हर सरनी रहाओ करत विकार दो कर चारत राम रतन रिद तिल नहीं तारत परन पोखण संग औद बेहानी जय जगदीश की गत नहीं जानी सरन समराते अगोचर स्वामी।

सिमर रत्नागर सिमर सिमर जीवा नारायण दुख रोग सोग सब बिन से गुरपूरे मिल पाप तजायन रहाउ जीवन पदवी हर का नाउ मन तन निर्मल साच सुआउ आठ पहर पार ब्रह्म त्याई है पूर्व लिखित होए ता पाई है।

पाला रहाउ, कर कृपा तुम ही प्रतपाला, जियो पिंड सब तुमरा माला, अमृत नाम चले जप नाला।

अल्लाह पंजवा दर्शन कौ लोचै सब कोई पूरे भाग प्राप्त होई रहाउ श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई महामोहनी दूता लाई प्रेम बशोहा करत कसाई निर्दय जंत तिस दया ना पाई अनक जन्म बीतियन परवाई घर वास ना देवै दुत्तर माई दिन रैन अपना किया पाई किस दोष ना

कार पली सुहावी छापरी जा मह गुन गाई कित ही कामना तौल हर जित हर बिसराय रहाओ हनद गरीबी साध संग जित प्रभ चेते आए जल जाओ एहो बडपना माया लपटाई पीसन पीस ओढ़ कामरी सुख मन संतोख आए ऐसो राजना कितै काज जित नह त्रिपताई नगन फिरत रंग एक कै ओहो शोभा पाई पाट पटंबर बिरथिया जिहे रच लोभाई सब किस तुमरै हाथ प्रभ आप करे कराई सास सास सिमरत रहा नानक दान पाई सूही महला पंजवा हर का संत प्राण धन तिसका पनिहारा पाई मीत सुत सगल ते जी हूं ते प्यारा रहाऊ केसा का कर बीजना संत चौर टलावो शीस निहारो चरण तल तूर मुख लावो मिष्ट बचन बेनती करो दीन की न्याई ताज अवमान सरनी परो हर गुण निद पाई।

को सुखी ताकै पाछै जाऊं, छोड़ जाहे जो सगल कौ फिर लपटाऊं। करहो कृपा करुणापति तेरे हर गुण गाओ, नानक की प्रभ बेनती साध संग समाओ। राग सूही महला पंजवा घर पंजवा पड़ताल, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, प्रीत प्रीत गुरिया।

रहाउ। निर्गुण हरिया सरगुण धरिया, अनक कोठरिया भिन भिन भिन भिन करिया, विच मन कोट वरिया निज मंदर प्रिया, तहां आनंद करिया नह मरिया नह जरिया, कीर्तन जुरिया बहो विद फिरिया, पर को हिरिया बिखना किरिया, अब साधु संग परिया, हर द्वारे खरिया दर्शन करिया, नानक गुर मिरिया बहोर ना।

करनी आया पुरुष आया कृपा आया ज्यो पावे त्यो राखो स्वामी मार्ग गुरह पठाया रहाउ महा दुत्तर माया जैसे पवन चलाया सुन सुन ही डराया करो धर्म राया गृह अंध कुपाया पावक सगराया गही ओट सधाया नानक हर त्याया अब मैं पूरा पाया राग सूही महला पंजवा कर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सत

जित तुद त्याई निर्मल हुए देहा मेरे राम। हौ सो थान पालन आया खोजत खोजत पया साध संग तिन सरनाई पाया रहाउ। वेद पढ़े पर ब्रह्मे हारे एक तिल नहीं कीमत पाई। साधक सिद्ध फिर है बिल लाते ते पी मोहे माई। दस अवतार राजे हुए वरते महादेव अवतूता तिन भी अंत न पायो तेरा। लाए थके बेपूता सहज सुख आनंद नाम रस हर संती मंगल गाया। सफल दर्शन भेट्यो गुरु नानक ता मन तन हर हर त्याया।

करते का निमक सिमरत जित शूट संतो हो सागर पार उतरी है। जे को बचन कमावे संतन का सो गुर प्रसादी तरिये रहा। कोट तीरथ मज्जन इशनाना इस कान में है मैल प्रिय। साध संग जो हर गुण गावे सो निर्मल कर लीजे। वेद कतेब सिमरत सब सासत इन पढ़िया मुक्त ना हुई। एक अखर जो गुरमुख जापे तिसकी निर्मल सोई। खत्री ब्राह्मण सूद वैस अपदेश चहो वरना को सांझा। गुरमुख नाम जपे उदरै सो कल मह।

जल थल महियल सोई रहाउ, कोट अपराधी संत संग उदर है, जम तां कै नेड़ ना आवे, जन्म जन्म का बिछड़िया हुवे तिन्हा।

परवासा तुमरा जप नाम तुम्हारा उदरे रहाओ अंधकूप ते काड लिए तुम आप भये कृपाला सार संभाल सर्ब सुख दिए आप करे प्रतपाला अपनी नदर करे परमेश्वर बंधन काट छुड़ाई अपनी भगत प्रभ आप कराई आपे सेवा लाई परम गया पै मोह बनासे मिटिया सगल वसूरा नानक दया।

आऊ, चरण धूड तेरे जन की होवा, तेरे दर्शन कौ बल जाई, अमृत बचन हृदय उर धारी, तौ कृपा ते संग पाई, अंतर की गत तुद पह सारी, तुद जेवड़े अवर ना कोई, जिसनो लाए लह सो लागे, भगत तुहारा सोई।

पाओ किछ नाही, जम नहीं आवै नेरे रहाओ। जो तेरा रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा। तेरी बख्शना मेटै कोई, सतगुर का दिलासा। नाम ध्यान सुख फल पाइन, आठ पहर अराध है। तेरी शरण तेरे परवास है, पांच दुष्ट लै साध है। ज्ञान ध्यान किस कर्म न

राग सूही अष्टपदियां महला पहला कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब अवगुण मैं गुण नहीं कोई क्यों कर कंत मलावा होई ना मैं रूप ना बंके नैना ना कुल ढंग ना मीठे बैना रहाओ सहज शिंगार कामन कर आवे ता सुहागण जा कंत पावे ना किस रूप ना रेखिया काई अंत ना साहिब सिमरिया जाई।

मूल ना बूझह आपना से पशुआ से ढोर जियो नित नित खुशियां मन करी नित नित मंगै सुख जियो करता चेतना आवई फिर लगह दुख जियो सुख दुख दाता मन वसै तित तन कैसे।

सच्चे की लिव उबरै बख्शे बख्शन हार जियो अनको की जय मितड़ा खाक रल मर जाए जियो बहु रंग देख पलाया

ना भाल जीओ खिंचो तान विगुची है बुरा भला दुए नाल जीओ बिन शब्द है पैर त्या सब जो ही जमकाल जीओ जिन कर कारण तारिया।

सह मूर्ख मन समझाए आखों के तड़ा गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगे तड़ा नित नित हृदय संभाल प्रीतम अपना जे चलह गुण नाल नाही दुख संतापना मनमुख भरम भुलाना ना तिस रंग है मरसी होए वडाणा मन तन भंग है गुर की कार कमाए लाहा घर आणिया गुरबाणी निर्वाण शब्द पछाणिया एक नानक की अरदास जे तुद भाव सी मैं दीजै नाम निवास हर गुण गाव सी सूही महला पहला ज्यों आरण लोहा पाए भन कढ़ाई है त्यों साकत जोनी पाए भवै पवाई है बिन बूझे सब दुख दुख कमावना हों मैं आवै जाए भरम भुलावना रहाओ तू गुरमुख रखण हार हर नाम ते आई है मेलह तुझे रजाए शब्द कमाई है

देही होवग खाक पमन उड़ाई एहो कित्थे घर औताक महल ना पाई देहो दीवी अंध कोर कब महाई गर्भ मुसे घर चोर किस रुआई है गुरमुख चोर ना लाग हर नाम जगाई है शब्द निवारी आग जोत दी पाई है लाल रतन हर नाम गुरसुरत बुझाई है सदा रहे निह काम जे गुरमत पाई है रात देह हर नाम मन वसाई है नानक मेल मलाए जे तुद पाई है सूही महला पहला मनो ना नाम वसार एहन सत्याई है जो राख है कि

साजिया आपे थाप उथाप शब्द निवाजिया देही पसमर लाए ना जापी कह गया आपे रहया समाए सो विस्माद भया तू नाही प्रभ दूर जान है सब तू है गुरमुख।

गुरमुख गावे गुरमुख बूजे गुरमुख शब्द बिचारी जियो पिंड सब गुरते उपजे गुरमुख कारज सुवारी मनमुख अंधा अंध कमावे भिख खटे संसारी माया मोहे सदा दुख पाए बिन गुर अत प्यारी सोई सेवक जे सतगुर सेवे चाले सतगुर पहाई साचा शब्द सिफत है साची।

साचा, साचा शब्द सुनाई। गुरमुख काले गुरमुख खटे, गुरमुख नाम जपाए। सदा अलिपत साचे रंग राता, गुर कै सहज सुपाई। मनमुख सद ही कूड़ो बोले, बिख बीजै बिख खाए। जमकाल बादा तृष्णा दादा, बिन गुर कवन छिडाए। सच्चा तीरथ जित सत सर नावन, गुरमुख आप बुझाई। अठ सठ तीरथ गुर शब्द दिखाए, तित नातै मल जाए। सच्चा शब्द सच्चा है निर्मल, ना मल लगे ना लाए। सच्ची सिफत सच्ची सलाह, पूरे गुर ते पाए। तन मन सब किश हर तिस केरा, दुरमत

अलख न लख आ जाई मनमुख मुगध बूझै नाही बाहर पालन जाई सतगुर सेवे सदा सुख पाए सतगुर अलख दिता लिखाई काया अंदर रतन पदार्थ भगत परे भंडारा इस काया अंदर नौ खंड पृथ्वी हाट पट्टन बाजारा इस काया अंदर नाम नौ निद पाइय गुर कै शब्द विचारा काया अंदर तोल तलावे आपे तोलन हारा इहो मन रतन जवाहर मानक तिसका मोल अफारा मोल कित ही नाम पाइय नाही नाम पाइय गुर बिचारा गुरमुख होवै सो काया खोजै होर सब भरम भलाई जिसनो दे सोई जन पावै होर क्या को करे चतुराई काया अंदर भाओ भाओ वसै गुर प्रसादी पाई काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेशा सब ओपत जित संसारा सच्चै अपना खेल रचाया आवा गौण पा सारा पूरे सतगुर आप दिखाया।

जो मर खाक थी। वाह मेरे साहिबा वाह, गुरमुख सदा सलाही है, सच्चा वे परवाह रहाओ। दुनिया केरी दोस्ती मनमुख दज मरन, जमपुर बद्दे मारी है वेला ना लाहन। गुरमुख जन्म सकार था सच्चा शब्द लगन, आत्म राम पर गासिया सहजे सुख रहन। गुर का शब्द वसारिया दूजे भाए रचन, तिसना भूख ना उतरे अन दिन जलत फिरन। दुष्टा नाल दोस्ती नाल संता वैर करन, आप डुबे कुटंब स्यों सगले कुल डोबन। निंदा भली किसे की नाही मनमुख मुग्द करन, मुह काले तिन निंदका नरके घोर पवन। ए मन जैसा सेवह तैसा होवह, तेहे कर्म कमाए आप बीज आपे ही खावना, कहना किशु ना जाए। महापुरखा का बोलना हुए किते पर थाए, कोई अमृत भरे भरपूर है ओना तिल ना तमाए। गुणकारी गुण संग्रह अवरा अपदेसेन, सेवड़ भागी जे ओना मिल रहे अन दिन नाम लेन। देसी रिजक संभाहे जिन उपाई मेदनी, एको है दातार सच्चा आप धनी। सो सच तेरे नाल है गुरमुख नदर निहाल, आपे बख्शे मेल लए सो प्रभ सदा संभाल। मन मैला सच निर्मला क्यों कर मिलया जाए,

आग्या धरी विचों आप गवाए खिंचो तान विगुची है एक सस्यों लिवलाए हौ मैं मेरा छड तू ता सच रह समाए सतगुर नो मिले से पाहिरा सच्चा शब्द लगन सच मिले से ना बिछड़ है दर सच्चा दिसन से भाई से सजना जो सच्चा सेवन अवगुण वेकण पलरन गुण की सांझ करन गुण की सांझ सुख उपज सच्ची भगत करेन सच वणंज है गुर शब्द स्यों लाहा नाम लेन सोइना रूपा पाप कर कर संची है चलै ना चल दिया नाल विण नावै नाल ना चल सी

मिलन जो सतगुर सेवन अंतर नव निध नाम है खान खर्चन ना निखुटे हर गुण सहज रवन ना ओए जन्म है ना मर है ना ओए दुख सहन गुर राखे से उभरे हर सिउ केल करन सज्जन मिले ना विछड़ है जे अन दिन मिले रहन इस जग मह विरले जानिय है नानक सच लहन सूही महला तीजा हर जी सूखम अगम है कित बिद मिलिया जाय गुर कै शब्द भ्रम कटी है अचिंत वसै मन आय गुरमुख हर हर नाम जपन हौ तिन कै बलिहार न मन हर गुण सदा रवन रहाउ गुर सरवर मान सरोवर है वड भागी पुरख लहन सेवक गुरमुख खोजिया से हंसले नाम लहन नाम त्याइन रंग सिउ गुरमुख नाम लगन तुर पूर्व होऐ लिखिया गुर भाणा मन लेन वड भागी घर खोजिया पाया नाम निदान गुरपूरै वे खालिया प्रभ आत्म राम पछान सबना का प्रभ एक है दूजा अवर ना कोए गुर प्रसादी मन वसै तित घट प्रगट होए सब अंतर जामी ब्रह्म है ब्रह्म वसै सब थाए मंदा किसनो आखिए शब्द वेखो हो लिवलाए बुरा भला तिचर आखदा जिचर है दोहो माहे गुरमुख एको बुझिया एक समाहे समाए सेवा सा प्रभ भावसी जो प्रभ पाए थाए जन नानक हर अरादिया गुर चरणी चित लाए राग सूही अष्टपदिया।

सुत्या गुर सलाहिया उठदिया पी गुर अलाव। कोई ऐसा गुरमुख जे मिले हौ ताके धुआ पाव। कोई ऐसा सज्जन लोड़ लहो मैं प्रीतम दे मलाए। सतगुर मिलिया हर पाया मिलिया सहज सुपाए। सतगुर सागर गुण नाम का मैं तिस देखन का चाऊ। हौ तिस बिन घड़ी ना जीवं बिन देखे मर जाऊ। ज्यों मछली बिन पानी है रह ना कित उपाय। त्यों हर बिन संत ना जीवई बिन हर ना मैं मर जाए। मैं सतगुर सेती पिरहड़ी

गुर तुठा देव माए, मैं धर सच्चे नाम की, हर नाम रहा लिव लाए। गुर ज्ञान पदार्थ नाम है, हर नामो दे दृढ़ाए। जिस परापत सोल है, गुर चरणी लागे आए।

प्रभ दरबारा आस अंदेसा बंद पराना महल न पावे फिरत बेगाना सगल ब्याद कै वस कर दीना फिरत प्यास जो जल बिन मीना कशु सियानप उकत ना मोरी एक आस ठाकुर प्रभ तोरी करो बेनती संतन पासे मेल लहो नानक अरदासे पयो कृपाल साध संग पाया नानक तृप्ते पूरा पाया रहाओ दूजा राग सूही महला पंजवा कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिथन मोह अगन शोक सागर कर कृपा उधर हर नागर चरण कमल सरनाए नारायण दीना नाथ भगत परायण रहाओ अनाथा नाथ भगत पै मेटन साध संग जम दूत ना भेटन

अंत प्रभ सोई, नानक तिस बिन अवर ना कोई। राग सूही महला पंजवा, अष्टपदियां कर नौवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जिन जिथिया मन रहसी है, क्यों पाई है तिन संग जियो। संत सज्जन मन मित्र से, लाइन प्रभ स्यो रंग जियो।

मन गुठा निरंकार जियो कां का अंत ना पाई है। ऊंचा अगम अपार जियो जिस प्रभ अपना विसर सो मर जमै लख वार जियो। साच नेहो तिन प्रीतमा जिन मन गुठा आप जियो। गुण सांझी तिन संग बसे आठ पहर प्रभ जाप जियो। रंग रते परमेश्वर है बिनसे सगल संताप जियो। तू करता तू करनहार तू है एक अनेक जियो। तू समर्थ तू सर्व मैं तू है बुद्ध विवेक जियो। नानक नाम सदा जपी भगत जना की टेक जियो। राग सूही महला पंजवा अष्टपदियां कर

मलाए जियो सोई दस उपदेसड़ा मेरा मन अनक ना काहू जाए जियो एहो मन तै कूडे वसा मैं मार्ग देहो।

संसार न जानी भरम पलानी जोगन बाद गुआया वार घर दर दर्शन नहीं जाता पिरका सहज ना पाया सतगुर पूछना मार्ग चाली सूती रहन विहानी नानक बाल तनरा डेपा बिन पिर तन कुमलानी बाबा मैं वर दे मैं हर वर भावे तिसकी बलराम जियो रव रहिया जुग चार त्रिभवन बाणी जिसकी बलराम जियो त्रिभवन कंतर वै सुहागण अवगण मंती दूरे जैसी आसा तैसी मनसा पूर रहिया पर पूरे हर की नार सो सर्व सुहागण रांड ना मैलै वेसे नानक मैं वर साचा पावै जुग जुग प्रीतम तैसे बाबा लगन गणाए हम पी वन्या सोहरे बलराम जियो साहा हुक्म रजाए सो ना तले जो प्रभ करे बलराम जियो किरत पया करते कर पाया मेट ना सके कोई जानी ना नरह ने केवल रव रहिया तिहो लोई माए नरासी रोए बछुनी बाली बालै हेते नानक साच शब्द सुख महली गुरचरणी प्रभ चेते बाबुल दितड़ी दूर ना आवे कर पेय बलराम जियो रहस्ती वेख हदूर पिर रावी कर सोही है बलराम जियो साचे पिर लोड़ी प्रीतम जोड़ी मत पूरी परदानी संजोगी मेला थान सुहेला गुणवंती गुरज्ञानी सत संतोख सदा सच पल्ले सच बोले पिर पाए नानक बिछड़ ना दुख पाए गुरम

प्रसाद हम कर साजने आए साचे मेल मलाए सहज मलाए हर मन पाए पंच मिले सुख पाया साई वस्त प्राप्त होई जिस सेती मन लाया अन दिन मेल भया मन मानिया कर मंदर सोहाई पंच शब्द तुन अनहद वाजी।

सोहाया कार्य शब्द सुवारी ज्ञान महारस नेत्री अंजन त्रिभवन रूप दिखाया सखी मिलो रस मंगल गावो हम घर साजन आया मन तन अमृत भिन्ना अंतर प्रेम रतन्ना अंतर रतन पदार्थ मेरे परम तत् विचारू जंत भेख तू सफले उदाता सिर सिर देवन हारू तू जान ज्ञानी अंतर जामी आपे कारण कीना सुनो सखी मन मोहन मोहिया तन मन अमृत तीना आत्म राम संसारा साचा खेल तुम्हारा सच खेल तुम्हारा अगम अपारा तुद बिन कौन बुझाए सिद्ध साधक सियाने केते तुझ बिन कवन कहाए काल बिकाल पये देवानी मन राखिया गुर ठाई नानक अवगण शब्द जलाए गुण संगम प्रभ पाए राग सूही महला पहला कर तीजा।

मेरा परवासा दर्शन देख पई ने केवल जन्म मरण दुख नासा सगली जोत जाता तू सोई मिलिया भाई सुभाई नानक साजन को बल जाइए साच मिले घर आए घर आयड़े साजना ता तन खरी सरसी राम हर मोहे अड़ी साच शब्द ठाकुर देख रहंसी राम गुण संग रहंसी खरी सरसी जहां रावी रंग रात अवगुण मार गुणी घर छाया पूरे पुरख बधाते तस्कर मार वसी पंचायन अदल करे विचारी नानक राम नाम ने सतारा गुरमत मिलह प्यारे वर पायड़ा बालड़िए आसा मनसा पूरी राम फिर रावे अड़ी शब्द रली रव रहया नह दूरी राम प्रभ दूर ना होई घट घट सोई तिसकी नार सबाई आपे रसिया आपे रावे ज्यों तिस दी वडियाई अमर अडोल अमोल अपारा गुरपूरे सच पाईए नानक आपे जोग संजोगी नदर करे लिवलाईए फिर उचड़िए माडड़िए तेहो लोआ सिर ताजा राम हों बिसम भई देख गुणा अनहद शब्द अगाजा राम शब्द विचारी करनी सारी राम नाम निशानो नाम बिना खोटे नहीं ठाहर नाम रतन परवानो पत मत पूरी पूरा परवाना ना आवे ना जास्ती नानक गुरमुख आप पछाणे प्रभ जैसे अवनास्ती।

मीता हों बलिहारी साजना मीता अवरीता गुणा का हुए वासला कड वासली जै जे गुण होवन साजना मिल सांझ करी जै सांझ करी जै गुणा केरी छोड़ अवगण चलिए पहरे पटंबर कर अडंबर अपना पिड़ मलिए जिथे जाए बहिए भला कहिए झोल अमृत पीजे गुणा का हुए वासुला कड वास लीजे आप करे किस आखिए होर करे ना कोई आखण ता को जाइए जे भूलड़ा होई जे होए भूला जाए।

प्रीतम स्यों मन मानिया हर सेती राता साहिब रंग राता सच की बाता जिन बिंब का कोट उसारिया पंच भू नायको आप सरंदा जिन सच का पिंड सवारिया हम अवगुण यारे तू सुन प्यारे तुद भावे सच सोई आवन जाना ना थी है साची मत हुई अंजन तैसा अंजी है जैसा फिर भावे समझे सूझे जानिए जे आप जनावे आप जानावे मार्ग पावे आपे मनुआ लेवे कर्म स कर्म कराए आपे कीमत कौन अपेवे तंत मंत्र।

पर घर जाही साज नराते सच के संगे मन माही मन माही साजन करह रलिया कर्म धर्म सबाया अठ तट तीर्थ पुन पूजा नाम साचा पहाया आप साजे थाप वेख तिसै भाणा पाया साजन।

झूणे ना गुर शब्द सुनाया मन परदेसी जेती है सब देश पराया गुरमहली घर अपने सो भरपुर लीना सेवक सेवा तां करे सच शब्द पतीना शब्दे पतीजे अंक पीजे सो महल महला अंतरे आप करता करे सोई प्रभ आप अंत निरंतरे गुर शब्द मेला तां सुहेला पा जंत अनहद बीना गुर महली घर अपने सो भरपुर लीना कीता क्या साला ही है।

आप भुल ना भुले, जय जयकार करह तुद भाव है, गुर कै शब्द अमुले, हीनो नीच करो बेनंती, साच ना छोड़ो भाई, नानक जिन कर देखिया, देवै मत साई, राग सूई संत महला तीजा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सुख सोह लड़ा हर त्यावहु, गुरमुख हर फल पावहु, गुरमुख फल पावहु हर नाम त्यावहु, जन्म जन्म के दुख निवारे, बलिहारी गुरे अपने विटोह, जिन कार्य सब सवारे, हर प्रभ कृपा करे हर जापहु, सुख फल हर जन पावहु, नानक कह सुनो जन भाई, सुख सोह लड़ा हर त्यावहु, सुन हर गुण पीने सहज सुपाय, गुरमत सहजे नाम त्याय, जिनको तुर लिखिया तिन गुर मिलिया, तिन जन्म मरण पौ भागा, अंदरों दुरमत दूजी खोई, सो जन हर लिव लागा, जिनको कृपा कीनी मेरा स्वामी, तिने अन दिन हर गुण गाए, सुन मन पीने सहज सुपाय, जुग मह राम नाम निस्तारा, गुर ते उपजै शब्द विचारा, गुर

तारा साजन आए उठे घर माही हर गुण गावे है तृप्त अगाही हर गुण गाए सदा तृप्तासी फिर भूख न लागे आए दह दिस पूज हो हर जन की जो हर हर नाम त्याई।

जूनी वासा ज्योति ज्योत मलाई सच समाई सच नाए परगासा जिन्नी सच जाता से सच्चे होए अन दिन सच त्याएन नानक सच नाम जिन हिरदय वसिया ना विछड़ दुख पाएन सच्ची बाणी सच्चे गुण गाव है तित कर सुहला होई राम निर्मल गुण साचे तन मन साचा विच साचा पुरख प्रभ सोई राम सब सच वरतै सचो बोलै जो सच करै सो होई जह देखा तह सच पसरिया अवर ना दूजा कोई सच्चे उपजै सच समावै मर जन्मै दूजा होई नानक सब किछे आपे करता आप करावै सोई सच्चे भगत सोहै दरबारी सचो सच वखाणे राम घट अंतरे साची बाणी साचो आप पछाणे राम आप पछाण है तां सच जान है साचे सोजी होई सच्चा शब्द सच्ची है सुभा साचे ही सुख होई साच रते भगत एक रंगी दूजा रंग ना कोई नानक जिस को मस्तक लिखिया तिस सच प्राप्त होई तू ही महला तीजा जुग चारे तन जे भवै बिन सतगुर सुहाग ना होई राम निश्चल राज सदा हर केरा तिस बिन अवर ना कोई राम तिस बिन अवर ना

सतगुर सेव धन बालणीए, हर वर पाव है सोई राम, सदा होवै है सुहागणी, फिर मैला वेस ना होई राम, फिर मैला वेस ना होई, गुरमुख बूझै।

गुरमति घट चानन होआ। प्रव रव रहिया सब थाई राम, प्रव रव रहिया सब थाई मन वसाई। पूर्व लिखिया पाया सेज सुखाली मेरे प्रभ पाणी, सच सिंगार बनाया कामन निर्मल हमें मल खोई। गुरमत सच समाई नानकिया।

शब्द रवहु, अनदिन शब्द बजाए राम, अनहद शब्द बजाए हर जियो घर आए, हर गुण गावह नारी, अनदिन भगत करह गुर आगै, सा धन कंत प्यारी, गुर का शब्द वसया घट अंतर, से जन शब्द सुहाई, नानक तिन घर सद ही सोहिला, हर कर कृपा घर आई, भगता मन आनंद भया, हर नाम रहे लिवलाए राम, गुरमुखे मन निर्मल हुआ, निर्मल

जन निस्तरे कट कट शब्द समाणी तेरे गुण गाव है सहज समाव है शब्दे मेल मलाई नानक सफल जन्म तिन केरा जे सतगुर हर मार्ग पाई संत संगत सियो मेल भया हर हर नाम समाए राम गुर कै शब्द सद जीवन मुक्त भये हर कै नाम लिव लाए राम हर नाम चित लाए गुर मेल मलाए मनुआ रत्ता हर नाले सुखदाता पाया मोह चकाया अन दिन नाम संभाले गुर शब्दे राता सहजे माता नाम मन वसाए नानक तिन घर सद ही सोहला जे सतगुर सेव समाए बिन सतगुर जग भरम भुलाया।

दुख गवाया जा हर मन पाया सदा गावह रंग राते हर के भगत सदा जन निर्मल जुग जुग सद ही जाते साची भगत करह दर जापह घर दर सच्चा सोई नानक सच्चा सोहिला सच्ची सच बाणी शब्दे ही सुख होई सूही महला तीजा जे लोड़ है वर बालड़िए ता गुर चरणी चित लाए राम सदा होवह सुहागणी हर जियो मरे न जाए राम हर जियो मरे न जाए गुर कै सहज सुपाई सा धन कंत प्यारी सच संजम सदा है निर्मल गुर कै शब्द शिंगारी मेरा प्रभ साचा सद ही साचा जिने आपे आप उपाया नानक सदा पिर रावे अपना जिन गुर चरणी चित लाया फिर पायड़ा बालड़िए अनदिन सहजे माती राम गुरमति मन आनंद भया तित तन मैल न राती राम तित तन मैल न राती हर प्रभ राती मेरा प्रभ मेल मलाए अनदिन रावे हर प्रभ अपना विचो हो आप गवाए गुरमत पाया सहज मलाया अपने प्रीतम राती

हर मन तनो गुरमुख भीजै, राम नाम प्यारे राम, राम नाम प्यारे सब कुल उधारे, राम नाम मुख बाणी आवन जान रहे सुख पाया, कर अनहद सुरत समाणी, हर हर एको पाया हर प्रभ,

प्रभ अत ऊचा क्यों कर मिलिया जाए राम। गुर मेली बहु कृपा तारी हर कै शब्द सुपाए राम। मिल शब्द सुपाए आप गवाए रंग स्यों रलिया माणी। सेज सुखाली जा प्रभ पाया हर हर नाम सुमाणी। नानक सुहागन सावड भागी

ताटक ते सबना विच एको एको राम पतारो राम इकना प्रभ दूर वसै इकना मन आधारो राम इकना मन आधारो सिरजन हारो वड भागी गुर पाया घट घट हर प्रभ एको स्वामी गुरमुख अलख लखाया सहजे आनंद हुआ मन मानिया नानक ब्रह्म बिचारो घट घटे सबना।

हर धूड देव हो मैं पूरे गुर की, हम पापी मुक्त कराया राम, पापी मुक्त कराए आप गुआए, निज कर पाया वासा बबेक बुद्धि सुख रैन विहानी, गुरमत नाम परगासा हर हर आनंद भया दिन राती।

परम गत पाई, पंच मेले सुहाया, गया क्रोध ममता तन नाथी, पाखंड भरम गवाया, हों मैं पीर गई सुख पाया, अरोगत पये शरीरा, गुर प्रसादी ब्रह्म पछाता, नानक गुणी गहीरा, मनमुख विछड़ी दूर, महल ना पाए बल गई बलराम जियो, अंतर ममता कूर, कूड़ विहाजे कूड़ लई बलराम जियो, कूड़ कपट कमावे महा दुख पावे, विन सतगुर मग ना पाया, उज्जड़ पंथ भ्रमे गावारी, खिन खिन धक्के खाया, आपे दया करे प्रभदाता, सतगुर पुरख मलाए, जन्म जन्म के विछड़े जन मेले, नानक सहज सुभाए, आया लगन गणाए, हिरदय धन ओमाहिया बलराम जियो, पंडित पांदे आन, पत्ती बह वाचाइया बलराम जियो, पत्ती वाचाई मन बजी वधाई, जब साजन सुने घर आए, गुणी ज्ञानी बह मता पकाया, फेरे तत दिवाए, वर पाया पुरख अगम अगोचर, सद नवतन बाल सिखाई,

वेद धर्म दृढ़ हो पाप तजाया बलराम जियो धर्म दृढ़ हो हर नाम त्याव हो सिमरत नाम दृढ़ाया सतगुर गुरु पूरा आराध हो सब किल विख पाप गुआया सहज आनंद हुआ बड़ भागी

स्वामी सर्व रहया पर पूरे अंतर बाहर हर प्रभ एको मिल हर जन मंगल गाए जन नानक दूजी लाम चलाई।

संत जना हर मेल हर पाया, बड भागिया बलराम जीओ, निर्मल हर पाया हर गुण गाया, मुख बोली हर बाणी, संत जना बड भागी पाया, हर कथिया अकथ कहानी, हृदय हर हर हर धुन उपजी, हर जपिए मस्तक भाग जियो, जन नानक बोले तीजी लावे, हर उपजे मन बैराग जियो, हर चौथड़ी लाम मन सहज भया, हर पाया बलराम जियो, गुरमुख मिलिया सुपाए, हर मन तन मीठा लाया बलराम जियो, हर मीठा लाया मेरे प्रभ पाया, अन दिन हर लिव लाई, मन चिंदिया फल पाया स्वामी, हर नाम वजी वाधाई।

हर पाया प्रभ अविनाशी, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। राग सूई संत महला चौथा, कर दूजा गुरमुख हर गुण गाए, हृदय रसन रसाए, हर रसन रसाए मेरे प्रभ पाए। मिलिया सहज सुपाए, अन दिन भोग भोगे सुख सोवै, शब्द रह लिवलाए। वड्डे भाग गुरपूरा पाई, अन दिन नाम त्याए, सहजे सहज मिलिया जग जीवन, नानक सुन समाए। संगत संत मलाए, हर सर निर्मल नाए, निर्मल जल नाए मैल गवाए। भये पवित्र शरीरा, दुर्मत मैल गई भ्रम भागा, हम मैं बिनठी पीरा। नदर प्रभु सत संगत पाई, निज कर होआ वासा, हर मंगल रस रसन रसाई, नानक नाम परगासा। अंतर रतन बीचारी, गुरमुख नाम प्यारी, हर नाम प्यारे शब्द निसतारी। अज्ञान अंधेर गवाया, ज्ञान प्रचंड बलिया घट चानन, कर मंदर सोहाया। तन मन अर्प शिंगार बनाई, हर प्रभ साचे पाया, जो प्रभ कह सोई पर की जय, नानक अंक समाया। हर प्रभ काज रचाया, गुरमुख व्याहन आया, व्याहन आया गुरमुख हर पाया।

पूजा नानक गुरमुख एक पछाणे अवर ना जाने दूजा सब मह राव रहया सो प्रभ अंतर जामी राम गुर शब्द रवे राव रहया सो प्रभ मेरा स्वामी राम प्रभ मेरा स्वामी अंतर जामी कट कट रवया सोई गुरमत सच पाई है सहज समाई है तिस बिन अवर ना कोई सहजे गुण गावां जे प्रभ पावां आपे लय मलाए नानक सो प्रभ शब्दे जापै अहनस नाम त्याए एहो जगो दुत्तर मनमुख पार न पाई राम अंतरे हउमै ममता काम क्रोध चतुराई राम अंतर चतुराई थाए ना पाई बिरथा जन्म गवाया जम मग दुख पावे चूटा खावे अंत गया पछताया बिन नावे को बेली नाही पुत कटंब सुत पाई

प्रसाद गुर संत जनु प्यारा मैं मिलिया मेरी तृष्णा बुझ गई आसे हो मन तन देवा सतगुर है मैं मेले प्रभ गुण तासे तन तन गुरु वड पुरख है मैं दसे हर साबासे वड भागी हर पाया जन नानक नाम बगासे गुर सज्जन प्यारा मैं मिलिया हर मार्ग पंथ दसाहा कर आवहु चिरी विछुनिया मिल शब्द गुरु प्रभ नाहा हौ तुझ बाजो खरी उडीनिया ज्यो जल बिन मीन मराहा वड भागी हर त्याया जन नानक नाम सुमाहा मन दह दिस चल चल भरमिया मन मुख परम भुलाया नित आसा मन चितवै मन तृष्णा भूख लगाया अनता धन धर दबिया फिर बिख पालन गया जन नानक नाम सलाहे तू बिन नावै पच पच मोया गुर सुंदर मोहन पाए करे हर प्रेम बाणी मन मारिया मेरा हिरदय सुध बुध विसर गई मन आसा चिंत वसारिया मैं अंतर वेदन प्रेम की गुर देखत मन साधारिया वड भागी प्रभ आए मिल जन नानक खिन खिन वारिया सूही संत महला चौथा मारे हिस्वे जन हूं मैं बिखिया जिन हर प्रभ मिलन ना दितिया दे कंचन वे वनिया इन हूं मैं मार विगुतिया मोह माया वे सब कालखा इन मन मुख मूड सजुतिया जन नानक गुरमुख उबरे गुर शब्दी हूं मैं छुटिया बस आने हो वे जन इस मन को मन बासे ज्यो नित पौंदिया दुख रहन वे विहानिया नित आसा आस करेंदिया गुर पाया वे संत जनो मन आस पूरी हर चौधिया जन नानक प्रभ देहो मती साडे आसा नित सुख सौंदिया सा तन आसा चित करे राम राजिया।

अत गुलाला शब्द चीन गुर मीठा मिथ्या मोहे मगनसी रहया झूठ संग लपटाना नानक दीन सरन किरपा निद राख लाज भगताना सुन बावरे सेव ठाकुर नाथ पुराणा सुन बावरे जो आया तिस जाना निश्चल हब वैसी सुन परदेसी संत संग मिल रही है हर पाई भागी सुन बैरागी चरण प्रभु गह रही है एहो मन दीजै संक ना कीजै गुरमुख तज बहु माणा नानक दीन।

रहन आस तुम्हारी, सफल दर्श भेटिया गुरपूरा, नानक सद बलिहारी, संभलिया सच थान मान महत, सच पाया बलराम जियो, सतगुर मिलिया दयाल, गुण अविनाशी गाया बलराम जियो, गुण गोविंद गाओ नित नित,

नासे रहस उपजय मन घना मन तन निर्मल देख दर्शन नाम प्रभ का मुख भणा होए रेण साधु प्रभ आराधु अपने प्रभ पावा बिनवंत नानक दया धारहु सदा हर गुण गावा गुर मिल सागर तरिया हर चरण जपत निस तरिया हर चरण त्याय सब फल पाए मिटे आमन जाना पाए भगत सुपाए हर जप अपने प्रभ पावा जप एक अलख अपार पूर्ण तिस बिना नहीं कोई बिनवंत नानक गुर परम खोया जत देखा तत सोई पतत पावन हर नामा पूर्ण संत जना के कामा गुर संत पाया प्रभ त्याया सगल इच्छा पुनिया हौ ताप बिन से सदा सरसे प्रभ मिले चिरी बछुनिया मन शांत आई वजी वधाई मनो कदे ना विसरै बिनवंत नानक सतगुर दरड़ाया सदा भज जगदीसरै राग सूही संत महला पंजवां घर तीजा।

तुम गौहर अत गहर गंभीरा, तुम पेर हम बहुरिया राम। तुम वड्डे वड्डे वड ऊचे, हौ इतनी कलहरिया राम। हौ किस नाही एको तू है, आपे आप सुजाना। अमृत दृष्ट निमख प्रभ जीवा, सर्ब रंग रस माना। चरण सरनी दास दासी, मन मौल तन हरिया। नानक ठाक

वन्या तू पर्वत मेरा ओला राम हौ बल जाई लख लख लख बरिया जिन भ्रम परदा खोला राम मिटे अंधारे तजे बिकारी ठाकुर सिउ मन माना प्रभ जी पाणी पई निकाणी सफल जन्म परवाना पई अमोली पारा तोली मुकत जुगत दर खुला कहो नानक हौ निरपो होई सो प्रभ मेरा ओला। सूही महला पंजवा साजन पुरख सतगुर मेरा पूरा तिस बिन अवर न जाना राम मात पिता भाई सुत बंदप जी प्राण मन पाणा राम जियो पिंड सब तिसका दिया सर्ब गुणा पर पूरे अंतर जामी सो प्रभ मेरा सर्ब रहे पर पूरे ताकी सरन सर्ब सुख पाए हुए सर्ब कल्याण सदा सदा प्रभ कौ बलिहारे नानक सद कुर्बाना ऐसा गुर वड भागी पाईए जित मिलिया प्रभ जापै राम जन्म जन्म के किल विख उतर है हर संत धूड़ी नित नापै राम हर धूड़ी नाइए प्रभु त्याईए बहुड़ जोन ना आईए गुर चरनी लागे भ्रम पौ भागे मन चिंदिया फल पाईए हर गुण नित गाए नाम त्याए फिर सोग नाही संतापै नानक सो प्रभ जी का दाता पूरा जिस परतापै हर हरे हर गुण निदे हर संतन।

सगल मनोरथ पाई शांत सहज आनंद कनेरे गुर चरणी मन लाए पूर रहया घट घट अबनासी थान थनंतर साई कहो नानक कार्य सगले पूरे।

प्यारे मुख हर अरादे मेरा राम हर अरादे जम पंथ साधे दुख ना व्यापै कोई जल थल मही अलपू

तेरा कोट करण दीजै प्रभ प्रीतम हर गुण सुनिए है अबलासी राम सुन सुन एहो मन निर्मल हुवै कटिए काल की फासी राम कटिए जम फासी सिमर अबनासी सगल मंगल सुगयाना हर हर जप जपिए दिन राती लागे सहज ध्याना कलमल दुख जारे प्रभु चितारे मन की दुर्मत नासी कहो नानक प्रभ कृपा की जय हर गुण सुनिए अवनासी करोड़ हस्त तेरी।

वाजे पार ब्रह्म मन बूठा राम गुरमुखे सच करनी सारी बिनसे भ्रम भय झूठा राम अनहद बाणी गुरमुख बखाणी जस सुन सुन मन तन हरिया सर्व सुखा तिस ही बन आए जो प्रभ अपना करिया कर्म है नवनिध भरे भंडारा।

सगली तपत बनासी राम दुख पाप का डेरा ढाठा कारज आया रासी राम हर प्रभ फुरमाया मिटी बलाया साच धर्म पुन फलिया सो प्रभ अपना सदा त्याई सोवत बैसत खलिया गुण निधान सुख सागर स्वामी जल थल महियल सोई।

प्रभ परसे हर राया राम। मेरा मन सुहया मीत साजन सरसे, गुण मंगल हर गाया राम। गुण गाए प्रभु त्याए साचा, सगल इच्छा पाईया

मते आए सगल समग्री पूरन होई मन इच्छे फल पाए संत सज्जन सुख मान है रलिया दुख दर्द भ्रम नास्ती शब्द सवारे सतगुर पूरे नानक सद बल जासी दात खसम की पूरी होई नित नित चढ़े सवाई राम पार ब्रह्म खसमाना किया जिस दी वड्डी वड्याई राम आद जगाद भगतन का राखा सो प्रभ भया दयाला जी जंत सब सुखी वसाए प्रभ आपे कर प्रतपाला दह दिस पूर रहया जस स्वामी कीमत कहन ना जाई कहो नानक सतगुर बलिहारी जिन अब चल नीम रखाई ज्ञान ध्यान पूर्ण परमेश्वर हर हर कथा नित सुनिए राम अनहद चोज भगत पाव पंजन अनहद वाजे तुनिए राम अनहद चुनकारे तत बीचारे संत गोष्ठ नित होवे हर नाम अराध है मैल सब काट है किलविक सगले खोवे तह जन्म ना मरना आमन जाना बहुड़ ना पाईऐ जुनी है नानक गुर परमेश्वर पाया जिस प्रसाद

ताल सुहावा विच अमृत जल छाया राम अमृत जल छाया पूर्ण साज कराया सगल मनोरथ पूरे जय जयकार पया जागे अंतर लाथे सगल विसूरे पूर्ण पुरखा चुत अबनासी जस वेद पराणी गाया अपना बिरद रखिया परमेश्वर नानक नाम त्याया नवनिद सिद्ध रिद दीने करते तोट न आवे काई राम खात खर्चत बिलशत सुख पाया करते की दात सवाई राम दात सवाई न खुट न जाई अंतर जामी पाया कोट बिगन सगले उठ नाठे दुख ना नेड़े आया शांत सहज आनंद कनेरे बिनसी भूख सबाई नानक गुण गावह स्वामी के अचरज जिस वड्याई राम जिसका कार्य तिन्ही किया मानस क्या वेचारा राम भगत सोहन हर के गुण गावह सदा करह जयकारा राम गुण गाए गोविंद आनंद उपजे साध संगत संग बनी जिन उद्म किया ताल केरा तिसकी उपमा क्या गनी हठ सठ तीरथ पुन किरिया महानिर्मल चारा पतत पावन बिरद स्वामी नानक शब्द अधारा।

दान की जय बिसर नाही एक खिनो गुण गोपाल उचर रसना सदा गाइये अन दिनो जिस प्रीत लागी नाम सेती मन तन अमृत पीजै बिनवंत नानक इच पुन्नी पेख दर्शन जीजै राग सूही महला पंजवा शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

जाने अवगण को ना चितारी, पतत पावन हर बिरद सदाई, एक तिल नहीं भन्ने काली, घट घट वासी सर्ब नवासी, नेरा ही ते नेरा, नानक दास सदा सरनागत, हर अमृत सज्जन मेरा, हों बिस्म भई जी, हर दर्शन देख अपारा, मेरा सुंदर स्वामी जी, हों चरण कमल पग शारा, प्रभ पेखत जीवा ठंडी थीवा, तिस जे वड़े अवर ना कोई, आदि अंत मद प्रभ रविया, जल कल मही अल सोई, चरण कमल जप सागर तरिया, पवज

आवै जाई, धर्म अर्थ काम सब पूरन, मन चिंदी इच पुजाई, श्रुत सिमरत गुण गावह करती, सिद्ध साधक मुन जन त्याया, नानक सरन कृपा निज स्वामी, वड भागी हर हर गाया।

खिन मैं झूठ सब बिन सजाए, ज्यों टिकै ना बिरख की शाम। गुरमुख लालो लाल है, ज्यों रंग मजीत सचड़ाओ। उल्टी सकत सिवै घर आई, मन वस्या हर अमृत नाम। नानक बलिहारी गुरे अपने, जित

जिस पूर्व होवै लिखिया किस सतगुर मिलै पतार सुहावेश सब उतार धरे गल पहरै खिमा शिंगार पेयै सोहरै बहु सोभा पाए तिस पूज करे सब संसार ओहर लाई किसै दी नार लै जिस रावे सिरजनहार नानक गुरमुख सदा सुहागणी जिस अवनासी पुरख परतार महला पहला सूहा रंग सुतनै निसी बिन तागे गलहार सच्चा रंग मजीठ का गुरमुख ब्रह्म बीचार नानक प्रेम महारसी सब बुरियाईयां शार पौड़ी एहो जग आप उपायुन कर चोज वडान पंच धात विच पाईयन मोह झूठ गमान आवै जाहे पवाईऐ मनमुख अज्ञान इकना आप बुझायुन गुरमुख हर ज्ञान भगत खजाना बख्शियोन हर ना

परहर हो लाल कर हो श्रृंगार आवण जाना विसर गुर शब्दी विचार मुंद सहावी सोहनी जिस कर सहज पतार नानक सा धन रावी है रावे रावण हार पौड़ी मोह कूड़ कटंब है मनमुख मुग्ध रत्ता हम मैं मेरा कर मोए किस साथ ना लिता सिरे उपर जमकाल ना सुजई दूजे परमिता फिर वेला हाथ ना आवई जमकाल वस किता जेहा तुर लिख पायुन से कर्म कमिता सलोक महला तीजा सतियां एह ना आखियन जो मरिया लग जलन नानक सतियां जानियन जे बिरहे चोट मरन महला तीजा पीसो सतियां जानियन सील संतोख रहन सेवन साई अपना नित उठ संभालन महला तीजा कंता नाल मेहदियां सेती अग जलाहे जे जान है तेरे अपना ता तन दुख सहाहे नानक कंत ना जाननी से क्यों अग जलाहे भावे जीवो कै मरो दूर हो ही भज जाहे पौड़ी तुद दुख सुख नाल उपाया लेख करतै लिखिया नावै जेवड़ होर दात नाही तिस रूप ना रिखिया नाम अखुट निदान है गुरमुख मन वसिया कर कृपा नाम देव सी फिर लेख ना लिखिया सेवक भाए से जन मिले जिन हर जप जपिया।

0: हुआ। नानक सो सलाही है जिन कारण किया पौड़ी, सच ध्यान से सच्चे
1: गुर शब्द विचारी।
0: हम मैं बाहर मन निर्मला हर नाम पुरतारी, कोठे मंडप माड़िया लग पए गावारी, जिन किए तिसह ना जाननी मन मुख गोबारी। जिस बजाए सो बुझसी सच्चिया
1: क्या जंत विचारी।
0: श्लोक महला तीजा। कामन तो शिंगार कर जा पहला कंत मनाए, मत से जय कंत ना आवई इवें बिरथा जाए।

ओ पुरख सजान गुर प्रसादी सेवी सच शब्द निशान पूरा थाट बनाया रंग गुरमत मान अगम अगोचर अलख है गुरमुख हर जान।

तीर्थी मन खोटे तन चोर एक भाव लथी नातिया दोए भा चढ़ी अस होर बाहर धोती तू मड़ी अंदर विस निकोर साध भले अन्नातिया चोर से चोरा चोर पौड़ी आपे हुक्म चलाएंदा जग धंदे लाया एक आपे ही आप लायन गुरते सुख पाया दह दिस इहो मन धामदा गुर ठाक रहाया नावै नू सब लोच दी गुरमती पाया तुर लिखिया मेट न सकी है जो हर लिख पाया।

हरि कबह ना पावे मान पौड़ी काया कोटर चाहया हर सच्चै आपी एक दूजे भाई खुआयन होमै विच व्यापी यो मानस जन्म दलंब सा मनमुख संतापी जिस आप बुझाए सो बुझसी जिस सतगुर थापे सब जग खेल।

कुवार कन्या जैसे करत शिंगारा, क्यों रलिया मान बाज पतारा। काग उडावत पुजा पिरानी, कह कबीर ए कथा सिरानी। सूही कबीर जियो अमल सरानो लेखा देना, आए कठन दूत जम लेना। क्या तै खटिया कहां गवाया, चलो सताप दीवान बुलाया। चल दरहाल दीवान बुलाया, हर फुरमान दरगाह का आया। रहाओ करो अरदास गाम किश बाकी, लेओ नबेर आज की राती। किस पी खर्च तुम्हारा सारो, सुबह निवाज सराई गजारो। साध संग जाको हर रंग लागा, तन तन सो जन पुरख सुभागा। ईत ऊत जन सदा सुहेले, जन्म पदार्थ जीत अमोले। जागत सोया जन्म गवाया, माल धन जोरिया भया पराया। कहो कबीर तेई नर भूले, खसम बसार माटी संग रूले। सूही कबीर जियो ललित, थाके नैन श्रवण सुन थाके। थाकी सुंदर काया जरा हाक दी, सब मत थाकी। एक ना थाकस माया।

तह की सार सुहागण जाने, ताज अभमान सुख रलिया माने, तन मन दे न अंतर राखे, अवरा देख न सुने अपाखे, सो कत जाने पीर पराई, जां कै अंतर दर्द ना पाई, रहाउ दुखी दुहागण दोए पाख हीनी, जिन नाहा निरंतर

आया, बहुत प्यास जवाब ना पाया। कह रवदास सरन प्रभ तेरी, ज्यों जान हो त्यों कर गत मेरी। सूही जो दिन आवह सो दिन जाही, करना कूच रहन फिर नाही। संग चलत है हम भी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना। क्या तू सोया जाग आना, तै जीवन जग सच कर जाना। रहाओ जिन जियो दिया, सो रिजिक अंबरावे। सब घट भीतर हाट चलावे।

मूर्ख कहन ना जाई, तेरे गुण गावा दे बुझाई। जैसे सच मैं रहूं रजाई रहाऊ, जो किश हुआ सब किश तुझते, तेरी सब असनाई।

अगम अगोचर अलख अपारा चिंता करहु हमारी जल थल मही अल भरपुर लीना घट घट जोत तुम्हारी सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी मंदिर छावा तेरे तुझ बिन अवर ना जाना मेरे साहिबा गुण गावा नित तेरे जी जंत सब सरन तुम्हारी सर्ब चिंत तुद पासी जो तुद भावे सोई चंगा एक नानक की अरदासी बुलावल महला पहला आपे शब्द आपे निशान।

अलख अपेहो रहाव, माया मोह तरकटी नार, पूंडी कामन कामन यार, राज रूप झूठा दिन चार, नाम मिले चानन अंधियार, चख छोड़ी सहसा नहीं कोई, बाप दिसै वे जात ना हुए, एक एक को नाही पौ कोई, करता करे करावे सोए, शब्द मोए मन मन ते मारिया, ठाक रहे मन साचे तारिया, अवर न सूझै गुर को वारिया, नानक नाम रते निसतारिया, बिलावल महला पहला, गुरबचनी मन सहज त्यानी, हर कै रंग रत्ता मन मानी, मन मुख परम भुले बौरानी, हर बिन क्यों रही है गुर शब्द पछानी, बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई, हर बिन जियरा रह ना सकै, छिन सत गुर बूझ बुझाई रहाव, मेरा प्रभ बिसरै हो मरो दुखाली, सास ग्रास जपो अपने हर पाली, सद बैरागन हर नाम निहाली, अब जानी गुरमुख हर नाली, अकथ कथा कहिए गुर पाए, प्रभ अगम अगोचर दे दिखाए, बिन गुर करनी क्या कार कमाए, हों मैं मेक चले गुर शब्द समाए, मनमुख विछड़ै खोटी रास, गुरमुख नाम मिले साबास, हर कृपा धारी दासन दास, जन नानक हर नाम धन रास, बिलावल महला तीजा कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया, त्रिग त्रिग कापड़े अंग चढ़ाया, त्रिग शरीर कतंब सहत सिंह, जित हुण खसम ना पाया, पौड़ी छुड़की फिर हाथ ना आवे, पहला जन्म गवाया, दूजा भाऊ ना देही लिव लागण, जिन हर के चरण वसारी,

जंत विचारे मुक्त बंद सब तुझ ते होए ऐसा आख बखाणी गुरमुख हो ऐ सो मुक्त कही है मनमुख बंद विचारे सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी सदा रह हर नाले तिनकी गहन गत कही ना जाई सच्चे आप सुवारी परम पलाने से मनमुख कही है ना उरवार ना पारी जिसनो नदर करे सोई जन पाई गुर का शब्द संभाली हर जन माया माहे निस्तारी नानक भाग हुए जिस मस्तक काल है मार बदारी बलावल महला तीजा अतुल क्यों तोलिया जाए दूजा हुए ता सोजी पाए तिस ते दूजा नाही कोए तिस दी कीमत किको होए गुर प्रसाद वसै मन आए ताको जाने दुबदा जाए रहाउ आप सराप कसवट्टी लाए आपे परखे आप चलाए आपे तोले पूरा होए आपे जाने एको सोए माया का रूप सब तिसते होए जिसनो मेले सो निर्मल होए जिसनो लाए लगे तिसे आए सब सच दिखाले ता सच समाए आपे लिव धात है आपे आप बुझाए आपे जापे आपे सतगुर शब्द है आपे नानक आख सुनाए आपे बलावल महला तीजा साहिब ते सेवक सेव साहिब ते क्या को कह बहाना ऐसा एक तेरा खेल बनिया है सब मह एक समाना सतगुर पर क्या हर नाम समाना जिस कर्म हो ऐसो सतगुर पाए अन दिन लागे सहज त्या ना रहाओ क्या कोई तेरी सेवा करे क्या को करे अब मानना जब अपनी जोत

कर कृपा मोहि मार्ग पावहु, साध संगत कै अंचल लाभहु। क्यों तरिये बिख्या संसार, सतगुरु बोहित पावे पार। रहाउ पवन चिलारी माया दे, हर के भगत सदा थिर से। हरख सोग ते रह निरारा, सिर ऊपर आप गुरु रखवारा। पाया वेड़ माया सर्ब पोयंगा, हम मैं पचे दीपक देख पतंगा। सगल शिंगार करे नहीं पावे, जा हुए कृपाल ता गुरु मलावे। हों फिरो उदासी मैं एक रतन दसाया, निर्मूलक हीरा मिले ना उपाया। हर का मंदिर तिस महलाल, गुर खोलिया पड़ता देख भई निहाल। जिन

पंजवा सर्व कल्याण की ये गुरुदेव सेवक अपनी लायो सेव विघ्न ना लागे जप अलख अपेव तरत पनीत भई गुण गाय दुर्त गया हर नाम त्याय रहाव सबनी थाई रवे आयाप आद जगाद जाका वड प्रताप गुर प्रसाद ना हुए संताप गुर के चरण लगे मन मीठे निर्विघ्न हुए सब थाई बूठे सब सुख पाए सतगुरु तूठे पार ब्रह्म प्रभ भय रखवाली जितै कितै दिसह नाली नानक दास खसम प्रतपाली बिलावल महला पंजवां सुख निधान प्रीतम प्रभ मेरे अगणत गुण।

आप ही जुगता, नानक के प्रभ सद ही मुक्ता। बलावल महला पंजवा, आप उपावन आप सधरना, आप करावन दोष ना लेना, आपन बचन आप ही करना, आपन विभव आप ही जरना, रहाउ आप ही मस्त आप ही बोलना, आप ही अशालना जाई चलना, आप ही गुप्त आप प्रगटना, आप ही घट घट आप अलिपना, आपे अवगत आप संग रचना। कहो नानक प्रभ के सब जचना, बलावल महला पंजवा, भूले मार्ग जिने बताया, ऐसा गुरु वड भागी पाया, सिमर मना राम।

रहाउ। अनक जुगत कर बहुत विचारों, साध संग इस मन है उदारों, मत बुद्ध सुत नाही चतराई, ता मिलिए जा लई मलाई, नैन संतोखे प्रभ दर्शन पाया, कहो नानक सफल सो आया, बलावल महला पंजवा, मात पिता सुत साथ न माया, साध संग सब दुख मिटा।

मन तन निर्मल पाप जल खीना, कहो नानक प्रभ भये परसीना। बिलावल महला पंजवां, सगल मनोरथ पाई है मीता, चरण कमल स्यों लाई है चीता। हों बलिहारी जो प्रभु ते आवत, जलन बुझै हर हर गुण गावत। रहाउ सफल जन्म होवत वडभागी, साध संग रामह लिव लागी। मत पत धन सुख सहज आनंदा, एक निमख न विसरहु परमानंदा। हर दर्शन की मन प्यास कनेरी, भणत नानक शरण प्रभ तेरी। बिलावल महला पंजवा, मोहे निर्गुण सब गुणै बिहुना, दया धार अपना कर लीना। मेरा मन तन हर गोपाल सुहाया, कर कृपा प्रभ घर मह आया। रहाउ भगत वच्छल पै काटन हारी, संसार सागर अब उतरी पारी। पतत पावन प्रभ बिरद भेद लेखिया, पार ब्रह्म सो नैन उपेखिया। साध संग प्रगटे नारायण, नानक दास सब दुख पलायन। बिलावल महला पंजवा, कवन जाने प्रभ तुमरी सेवा, प्रभ अवनासी अलख अपेवा। गुण बेअंत प्रभ गहर गंभीरे,

तुम ही जानो अपनी पूजा, आप हो कछु ना होवत पाई, जिस प्रभ देवै सो नाम पाई। कहो नानक जो जन प्रभ पाया, गुण नान प्रभ तिन ही पाया। बलावल महला पंजवा, मात गर्भ मह हाथ दे राखिया, हर रस छोड़ बिख्या फल चाखिया। पज गोविंद सब छोड़ जंजाल, जब जम आए संघारे मूड़े, तब तन बिन सजाए बेहाल रहाव। तन मन धन अपना कर थापिया, करन हार एक निमख ना जापिया। महा मोह अंध कूप परिया, पार ब्रह्म माया पटल बिसरिया। वड्डे भाग प्रभ कीर्तन गाया, संत संग नानक प्रभ पाया। बलावल महला पंजवा, मात पिता सुत बंधप पाई, नानक होआ पार ब्रह्म।

सहाई सुख सहज आनंद घने गुर पूरा पूरी जाति बाणी अनक गुणा जाके जाहि ना गणे रहाओ सगल सरंजाम करे प्रभ आपी भय मनोरथ सो प्रभ जापी अर्थ धर्म काम मोख का दाता पूरी भई सिमर सिमर बेधाता साध संग नानक रंग माणिया कर आया पूरे गुर आणिया बिलावल महला पंजवां सर्व निधान पूर्ण गुरदेव रहाव हर हर नाम जपत नर जीवे मर खवार साख नर थीवे राम नाम होआ रखवारा चख मारो साकत बेचारा निंदा कर कर पचह कनेरे मृतक फास गले सिर पैरी कहो नानक जप है जन नाम ताके निकट न आवे जाम राग बुलावल महला पंजवां कर चौथा दुपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद कवन संजोग मिलो प्रभ अपने पल पल निमक सदा हर जपने चरण कमल प्रभ के नित ध्यावो कमन सो मत जित प्रीतम पावो रहाओ ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे हर नानक बिसर न काहू बेरे बुलावल महला पंजवां चरण कमल प्रभ हिरदय त्याय रोग गए सगले सुख पाए गुर दुख काटे अधीनो दान सफल जन्म जीवन परवान रहाउ अकथ कथा अमृत प्रभ बाणी कहो नानक जप जीवे ज्ञानी बुलावल महला पंजवां शांत पाई गुर सत गुर पूरे सुख उपजे बाजे अनहद तूरे रहाउ ताप पाप संताप बनासे हर सिमरत किल विख सब नासे आनंद करहु मिल सुंदर नारी गुरु नानक मेरी पैज सुवारी बलावल महला पंजवां ममता मोह त्रोह मद माता बंधन बांधिया अत बिकराल दिन दिन सिजत बकार करत औद फाही फाता जम कै जाल तेरी शरण प्रभ दीन दयाला महा बिखम सागर अत भारी उधरहु साधु सांगर वाला रहाउ प्रभ सुखदाते समरथ स्वामी जियो पिंड सब तुमरा माल भ्रम के बंधन काटहु परमेश्वर नानक के प्रभ सदा कृपाल बलावल महला पंजवां सगल आनंद किया परमेश्वर अपना बिरद समारिया साध जना हुए कृपाला बिगसे सब परवारिया कारज सतगुर आप सुवारिया वड्डी आर जा हर गोबिंद की सुख मंगल कल्याण बिचारिया रहाउ वण तिण त्रि भवन हरिया होए सगले जी साधारिया मन इच्छे नानक फल पाए पूर्ण इच्छ पुजारिया बिलावल महला पंजवां जिस ऊपर होवत दयाल हर सिमरत काटे सो काल रहाउ साध संग भजिए गोपाल गुण गावत टूटे जम जाल आपे सतगुर आपे प्रतपाल नानक जाचे साध रवाल बिलावल महला पंजवां मन मै सिंचहो हर हर नाम अन दिन कीर्तन हर गुण गाम ऐसी प्रीत करो मन मेरे आठ पैर प्रभ जानो नेरे रहाउ कहो नानक जाके निर्मल भाग हर चरणी ताका मन लाग बिलावल महला पंजवां रोग गया प्रभ आप गवाया नींद पई सुख सहज घर आया रहाउ रज रज भोजन खावो मेरे भाई अमृत नाम रिद माही त्याई नानक गुर पूरे सरनाई जिन्हें अपने नाम की पैज रखाई बिलावल महला पंजवां सतगुर कर दीने अस्थिर कर बार रहाउ जो जो निंद करे इन ग्रहण की तिसे आगे ही मारे कर

गुर अमर कराया, सो जाने जिन चाखिया हर नाम अमोला। कीमत कही ना जाइए क्या कह मुख बोला, सफल दर्स तेरा पार ब्रह्म गुण निध तेरी बाणी। पावो तूर तेरे दास की नानक कुरबाणी। बलावल महला पंजवां, रख हो अपनी सरन प्रभ मोहे कृपा तारी। सेवा कछु ना जानू नीच मूरखारी, मान करो तुदे उपरे मेरे प्रीतम प्यारे। हम अपराधी सद भूलते तुम बख्शन हारी। रहाओ हम अवगन करहे असंख नीत तुम निर्गुण दातारे। दासी संगत प्रभु त्याग ये कर्म हमारी। तुम देव हो सब किश दया तार हम अकिर्त कनारे। लाग परे तेरे दान स्यों नह चित खसमारे। तुझ ते बाहर किश नहीं भव काटन हारे। कहो नानक सरन दयाल गुर देहो मुगद उधारे। बुलावल महला पंजवा, दोष न काहू दीजिए प्रभ अपना त्याइए। जित सेवे सुख होए कना मन सोई गाइए। कहिए काए प्यारे तुझ बिना तुम दयाल स्वामी। सब अवगुण हमा रहाओ ज्यों तुम राख हो त्यों रहा। अवर नहीं चारा नी धरिया धर तेरिया एक नाम आधारा। जो तुम करहो सोई भला मन लेता मुक्ता। सगल समगरी तेरिया सब तेरी जुगता। चरण पखारों कर सेवा जे ठाकुर पावे। हो कृपाल दयाल प्रभ नानक गुण गावे। बलावल महला पंजवा, मृत हसै श्री उपरे पशुआ नहीं बूझे। बाद साद अहंकार मह मरना नहीं सूझे। सतगुर से वो अपना काहे फिर हो अभागे। देख कसुम्बा रंगुला काहे भूल लागे। रहाओ कर कर पाप दर्ब किया वर्तन कह ताई। माटी स्यो माटी रली नांगा उठ जाई। जा कह किया श्रम करे ते बैर विरोधी। अंतकाल भज जाहेंगे काहे जलो क्रोधी। दास रेण सोई हुआ जिस मस्तक कर्मा। कहो नानक बंधन छुटे सतगुर की सरना। बलावल महला पंजवा, पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर्भ कीता। अंधले त्रिपवन सूजिया गुर पेट पनीता। महमा साधु संग की सुनो मेरे मीता। मैल खोई कोट अग हरे निर्मल पे कीता। रहाओ ऐसी भगत गोविंद की कीत हस्ती जीता। जो जो कीनो अपनो तिस अपै दान दीता। सिंह बलाई होए गयो त्रिण मेर दखीता। श्रम करते दम आड को ते गनी तनीता। कवन वडाई कह सको बे अंत गुनीता। कर कृपा मोहे नाम देहो नानक दर सरीता। बलावल महला पंजवा, हम बुद प्रबाद नीत लोभ रसना साध। लपट कपट ग्रह बेदया मिथ्या बिख्याद। ऐसी पेखी नेत्र मह पूरे गुर प्रसाद। राज मिलख धन योगना नामै बिन बाद। रहाउ रूप धूप सुगंधता कापर पोगहाद। मिलत संग पापिष्ट तन होए दुर्घाद। फिरत फिरत मानुख भया खिन भंगन देहाद। एह अवसर ते चूकिया बहु जोन परमाद। प्रभ कृपा ते गुर मिले हर हर बिस्माद। सुख सहज नानक आनंद ताकै पूर्ण नाद। बलावल महला पंजवा, चरण पए संत बोहिथा तरे सागर जीत। मार्ग पाए उद्यान मह गुर दसे भेत। हर हर हर हर हर हरे हर हर हर हेत। उठत बैठत सोवते
हर हर हर चेत रहाउ। पंच चोर आगे भगे जब साध संगेत, पूंजी साबत घणो लाभ ग्रह सूबा सेत। निश्चल आसन मिटी चिंत नाही डोलेत, परम पलावा मिट गया प्रभ पेखत नेत। गुण गंभीर गुण नायका गुण कहिए केत, नानक पाया साध संग हर हर अमरेत। बिलावल महला पंजवा, बिन साधु जो जीवना एतो बिरथारी, मिर्त संग सब भ्रम मिटे गत पई हमारी। जा दिन पेटे साध मोहे वा दिन बलिहारी, तन माने अपनो जियरा फिर हों वारी। रहाउ एत सडाई मोहे ते इतनी दृढ़ तारी, सगल रेन इह मन भया बिनसी अपतारी। निंद किंद पर दुख नाए खिन मह जारी, दया मया अर निकट पेख नाही दूदारी। तन मन शीतल भये अब मुक्ते संसारी, हीत चीत सब प्राण तन नानक दरसारी। बिलावल महला पंजवा, टहल करो तेरे दास की पग।

तुम मिलो दयाल निस्बासर मन आनंद होत चितवत कृपाल रहाओ जगत उदारन साध प्रभ इन लागो पाल मोको दीजै दान प्रभु संतन पागराल उकत सियानप कछ नहीं नाही कछ काल परम पै राखो मोहते काट हो जमजाल बिनो करो करना पते पिता प्रतपाल गुण गावो तेरे साध संग नानक सुख साल लावल महला पंजवा कीता लोड़ है सो कर है तुझ बिन कछ नाही प्रताप तुम्हारा देख कै जमदूत छड जाए तुमरी कृपा ते शूती है बिनसै अहमेव सर्व कला समर्थ प्रभ पूरे गुरुदेव रहाओ खोजत खोजत खोजया नामै बिनकूर जीवन सुख सब साध संग प्रभ मनसा पूर जित जित लावो तित तित लग है सियानप सब जाली जत कत तुम भरपूर हो मेरे दीन दयाली सब किश तुम ते मांगना वड भागी पाए नानक की अरदास प्रभ जीवा गुण गाए बलावन महला पंजवा साध संगत कै बास बै कल मल सब नसना प्रभ सेती रंग रातिया ताते गर्भ ना ग्रसना नाम कहत गोबिंद का सूची पई रसना मन तन निर्मल हुई है गुर का जप जपना रहा हर रस चाखत त्रापिया मन रस लै हसना बुद्ध प्रगास प्रगट पई उल्ट कमल बिगसना शीतल शांत संतोख होए सब बूझी तृष्णा दह दिस धावत मिट गए निर्मल थान बसना राखन हारे राखिया पई भ्रम पसना नाम निधान नानक सुखी एक साध दर्शना बलावल महला पंजवा पानी पखा पीस दास कै तब होहे निहाल राज मिलक सिकदारियां अग्नि मह जाल संत जना का शोहरा इस चरणी लाग माया तारी शत्रपत तिन छोड़ो त्याग रहाओ संतन का दाना रूखा सो सर्ब निदान ग्रह साकत शक्ति ही प्रकार ते बिखू समान भगत जना का लूघरा ओड नग्न ना होई साकत सिर पाओ रेशमी पहरत पत खोई साकत स्यों मुख जोरे है अद विचो टूटे हर जन की सेवा जो करे इत उत छूटे सब किश तुम ही ते होवा आप बनत बनाई दर्शन भेट तसाद का नानक गुण गाई बलावल महला पंजवा सर्वनी सुनो हर हर हरे ठाकुर जस गावो संत चरण कर सीस तर हर नाम त्यावो कर कृपा दयाल प्रभ एह निध सिद्ध पावो संत जना की रेणुका लै माथे लावो रहाओ नीच ते नीच अत नीच होए कर बिनो बलावो पाम मनोवा आप त्याग संत संग समावो सास सास नह विसरे अनकत है ना तावो सफल दर्शन गुर पेटिया मान मोह मटावो सत संतोख दया धर्म सिंगार बनावो सफल सुहागन नानका अपने प्रभ पावो बलावल महला पंजवा अटल बचन साधु जना सब मह प्रगटाया जिस जन होवा साध संग तिस भेट हर राया एह प्रतीत गोविंद की जप हर सुख पाया अनक बातां सब कर रहे गुर घर लै आया रहाओ सरन परे की राखता नाही सहसाया कर्म भूम हर नाम बोए अवसर दुलभाया अंतर जामी आप प्रभ सब करे कराया पतत पनीत घने करे ठाकुर बिरदाया मत भूलो मनुख जन माया परमाया नानक तिस पत राख सी जो प्रभ पहराया।
ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮਾਟੀ ਤੇ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ ਕਰ ਦੁਰਲਭ ਦੇ, ਅਨਕ ਸਿਧਰ ਮਨ ਮੈਂ ਢਕੇ ਨਿਰਮਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਪ੍ਰਭ ਮਨੈ ਤੇ ਜਿਸ ਕੇ ਗੁਣ ਏ, ਪ੍ਰਭ ਤਜ ਰਚੇ ਜੇ ਆਨ ਸਿਉ ਸੋਰਲੀਐ ਖੇ ਰਹਾਉ। ਸਿਮਰਹੋ ਸਿਮਰਹੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਮਤ ਬਿਲਮ ਕਰੇ, ਛੋੜ ਪਰਪੰਚ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਰਚੋ ਤਜ ਕੂੜੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਅਨਕ ਏਕ ਬਹੁ ਰੰਗ ਕੀਏ ਹੈ ਹੋਸੀਏ, ਕਰ ਸੇਵਾ ਤਿਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਤੇ ਮਤ ਲੇ। ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਵੱਡਾ ਸਭ ਸੰਗ ਬਰਨੇ, ਦਾਸ ਦਾਸ ਕੋ ਦਾਸਰਾ ਨਾਨਕ ਕਰ ਲੇ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਏਕ ਟੇਕ ਗੋਵਿੰਦ ਕੀ ਤਿਆਗੀ ਅਨਿਆਸ, ਸਭ ਉਪਰ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਗੁਣਤਾਸ। ਜਨ ਕਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣੀ ਪਾਹੇ,

साध संग मन तन हितै फिर दुख ना जापै हर हर हर हर जापिय अंतर लिव लाई के लिवक उतर है सुध हुए साधु सरनाई सुनत जपत हर नाम जस ताकी दूर बलाई महामंत्र नानक कथै हर के गुण गाई। बलावल महला पंजवा पै ते उपजै भगत प्रभ अंतर होए शांत नाम जपत गोविंद का बिनसै भ्रम भ्रांत गुरपुरा जिस भेटिया ताकै सुख परवेस मन की मत त्यागी है सुनिए उपदेश रहाउ सिमरत सिमरत सिमरिय सो पुरख दातार मन ते कबहु न विसरै सो पुरख अपार चरण कमल स्यों रंग लगा अचरज गुरदेव जाको कृपा करहु प्रभ ताको लावहु सेव निद निदान अमृत पिया मन तन आनंद नानक कबहु न विसरै प्रभ परमानंद। बलावल महला पंजवा कृष्ण बुझी ममता गई नाथे भय भरमा थित पाई आनंद भया गुर कीने धर्मा गुरपुरा आराध्या बिनसी मेरी पीर तन मन सब शीतल भया पाया सुख बीर रहाउ सोवत हर जप जागया देखिया बिस्माद पी अमृत त्रिपता सिया ताका अचरज स्वाद आप मुक्त संगी तरे कुल कटंब उदारे सफल सेवा गुरदेव की निर्मल दरबारे नीच अनाथ अजान मैं निर्गुण गुणहीन नानक को कृपा पई दास अपना कीन। बलावल महला पंजवा हर भगता का आसरा अन नाही ठाऊं तान दे बाण परवार तन प्रभ तेरा नाऊं कर कृपा प्रभ अपनी अपने दास रख लिए निंदक निंदा कर पचे जमकाल ग्रसिए रहाव संता एक त्यावना दूसर को नाहे एक से आगे बेनती रव्या सर्ब थाई कथा परातन इयों सुनी भगतन की बानी सगल दुष्ट खंड खंड किए जान लिए मानी सत बचन नानक कह प्रगट सब माही प्रभ के सेवक सरन प्रभ तिनको भओ नाही। बलावल महला पंजवा बंधन काटै सो प्रभु जा कह कल हाथ अवर कर्म नहीं छूटी है राखो हर नाथ तौ शरणागत माधवे पूर्ण दयाल छूट जाए संसार ते राखै गोपाल रहाओ आसा परम बकार मोह इन मह लोभाना झूठ समग्री मन वसी पार ब्रह्म ना जाना परम ज्योत पूर्ण पुरख सब

पंजवा खोजत खोजत मैं फिरा खोजो बन थान अशल अशेद अभेद प्रभ ऐसे भगवान कब देखो प्रभ अपना आत्म कै रंग जागण ते सुपना भला बसिए प्रभ संग रहा बरन आश्रम शास्त्र सुनो दर्शन की प्यास रूप ना रेख ना पंच तत् ठाकुर अविनाश ओह स्वरूप संतन कह विरले जोगी सर कर कृपा जा को मिले तन तन ते ईश्वर सो अंतर सो बाहरे बिनसे तह परमा नानक तिस प्रभ भेटिया जाके पूर्ण कर्मा बलावल महला पंजवा जी जंत सो प्रसन्न भय देख प्रभ परताप करज उतारिया सतगुरु करिया हरियाप खात खर्चत निबहत रह गुर शब्द अखूट पूर्ण पई समग्री कबहू नहीं टूट रहा साध संग आराधना हर निद अपार धर्म अर्थ अर काम मूख देते नहीं बार भगत आराध है एक रंग गोविंद गोपाल राम नाम धन संचया जा का नहीं सुमार शरण परे प्रभ तेरिया प्रभ की वड्याई नानक अंत ना पाईए बेअंत गुसाई बलावल महला पंजवा सिमर सिमर पूरन प्रभु

आए भगतन की रास तोट ना आवै कदे मूल पूर्ण भंडार चरण कमल मन तन बसे प्रभ अगम अपार बस्त कमावत सब सुखी किसी ऊन न दिसै संत प्रसाद भेटे प्रभु पूर्ण जगदीसै जय जयकार सबै करहै सच थान सुहाया जप नानक नाम निधान सुख पूरा गुर पाया बलावल महला पंजवा हर हर हर आराधिय होइय आरोग राम चंद की लष्कर का

संयोग जिस सिमरत सुख पाई है बिनसै बेयोग नानक प्रभ शरणागति करन कारण योग राग बलावल महला पंजवा दुपदे घर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद अवर उपाव सब त्यागिया दारू नाम लया।

प्रभ राखता भगतन की आन। जो जो चितव है साध जन सो लेता मान रहाओ। शरण परे चरनारबिंद जन प्रभ के प्राण। सहज सुपाए नानक मिले ज्योति ज्योत समान। बलावल महला पंजवा चरण कमल का आसरा दीनो प्रभ आप। प्रभ शरणागत जन परे ताका सद प्रताप। राखन हार अपार प्रभ ताकी निर्मल सेव। राम राज राम दासपुर कीने गुरदेव रहाओ। सदा सदा हर त्याई है किस बिघन ना लागे। नानक नाम सलाही है भय दुश्मन भागे। बलावल महला पंजवा मन तन प्रभ आराधी है मिल साध समागे। उचरत गुण गोपाल जस दूर ते जम भागे। राम नाम जो जन जपै अन दिन सद जागै। तंत मंत नह जो हुई।

पार ब्रह्म शरणाई चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे ना पाई सतगुर पूरा पेटिया जिन बणत बनाई राम नाम औखद दिया एका लिवलाई रहाउ राख लिए तिन रखन हार सब ब्याध मटाई कहो नानक कृपा पई प्रभ पये सहाई बलावल महला पंजवां अपने बाल के आप रखियन पार

रोग मटाए जिवालियन जा कावड़ परताप दोख हमारे बख्शियन अपनी कल तारी मन बाचत फल दितियन नानक बलिहारी। राग बलावल महला पंजवां चौपदे दो पदे कर शिवां

दाती मिल संगत हर गुण गाए रसना अगह अगह गुण राती नैन दर्श रंग लाए हो कृपाल दीन दुख भंजन।

मोको सतगुर मंत्र दरडाए अतुल अतुल अतुल नह तुलिय भगत वछल कृपाई जो जो सरल परे हो।

बार दंडौत बंदना अनक बार जाओ बारे रहाओ उठत बैठत सोवत जागत एह मन तुझह चितारे सुख दुख इस मन की बिरत।

सोई पल हमरै पेख नानक सुख चरनारै बलावल महला पंजवा सुनियत प्रभ तौ सगल उदारन मोह मगन पतत संग प्राणी ऐसे मनह बसारन रहाउ संच बिख्याले ग्राह जकीनी अमृत मन ते डारन काम क्रोध लोभ रत

उन पूर रही दिन अर रात रहाव कर कृपा अपने प्रभ कीने नाम अपने की कीनी दात आठ पहर गुण गावत प्रभ के काम क्रोध इस तन पे जात तृप्त अगाए पेख प्रभ दर्शन अमृत हर रस भोजन खात चरण सरन नानक प्रभ तेरी कर कृपा संत संग मलात बलावल महला पंजवा राख लिए अपने जन आप कर कृपा हर हर नाम दीनो बिनस गए सब सोग संताप रहाव गुण गोविंद गाव हो सब हर जन राग रतन रसना आलाप कोट जन्म की तृष्णा निवरी राम रसायन आत्म त्राप चरण गहे शरण सुख दाती।

राग बलावल महला पंजवा चौपदी द्रौपदी कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर शब्द उजारो दीपा बिन सेव अंधकार ते मंदर रतन कोठड़ी खुली अनुपा रहाओ बिस्मन बिस्म पए जो पेखियो कहन ना जाए वडियाई मगन पए उहां संग माते पोत पोत लपटाई।

पर अपारा, एक बस तीरन एक संपूर्ण, एक है प्राण अधारा, निर्मल निर्मल सूचा सूचो सूचा सूच।

जरा मरा कछ दुख न व्यापै, आगे दरगाह पूर्ण काम रहाउ। आप त्याग परियै नित सरनी, गुर ते पाइय एहो निदान। जन्म मरण की कटिय फांसी, साची दर

पंजवा अच्युत पूजा जोग गोपाल मन तन अर्प रखो हर आगै सर्व जिया का है प्रतपाल रहाउ सरन समरथ अकत सुख दाता कृपा सिंध बड़ो दयाल कंठ लाए राखै अपने को तिसनो लगे ना ताती बाल दामोदर दयाल स्वामी सर्वस

तरन रहाउ। विश्वंबर पूर्ण सुखदाता सगल समगरी पोखण परन, थान थनंतर सर्व निरंतर बल बल जाई हर के चरण। जी जुगत वस मेरे स्वामी सर्व सिद्ध तुम कारण करन, आद जगाद प्रभ रखदा आया हर सिमरत नानक नहीं दरन। राग बलावल महला पंजवां, दुपदे घर अठवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मैं नाही प्रभ सब किछ तेरा, एक है निर्गुण उग है सरगुण, केल करत बिच स्वामी मेरा रहाव। नगर मह आप बाहर फुन आपन,

पतत पावन प्रभ बिरद तुम्हारू हमरे दुख हृदय मत तारू जीवन प्राण हर धन सुख तुम्ही हम मैं पटल कृपा कर जारू जल बिहून मीन कत जीवन दूध बिना रहन कत बारू जन नानक प्यास।

पाछै कुशल भया गुरपूरै पूरी सब राखी पार ब्रह्म प्रभु कीनी मया रहाउ मन तन रव रहया हर प्रीतम दुख दर्द सगला मिट गया शांत सहज आनंद गुण गाए दूत दुष्ट सब हुए खया गुण अवगुण प्रभ कछ ना बिचारियो कर कृपा अपना कर लया अतुल बढ़ाई अचुत अबनासी नानक उचरै हर की जया बलाव महला पंजवां बिन पै भगती तरन कैसी करहु अनग्रहु पतत उदारन राख स्वामी आप परोसे रहाओ सिमरन नहीं आवत फिरत मद मावत बिख्या राता स्वान जैसी औद बिहावत अधिक महावत पाप कमावत बुढ़े ऐसी सरन दुख भंजन पुरख निरंजन साधु संगत रमन जैसे केशव कलेश नास अग खंडन नानक जीवत दर्श दिसे राग बलावल महला पंजवां।

जब ते शरण तुम्हारी आए तब ते दुख गए रहाओ। ताज अभिमान अरचिंत बरानी साध है शरण पाए, जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तन ते रोग खाए। महामुगद अजान अज्ञानी राखे तार दए, कहो नानक गुर पूरा पेट्यो आवन जान रहे। बलाव महला पंजवा जीवो नाम सुनी, जो सो प्रसन्न पए गुर पूरे तब

सहाई संतना अब चरण गहे रहाउ। आहे मन अवर ना पावे चरनावे चरनावे, उलझियो अलम करंद कमल जियो। अन रस नहीं चाहे एक हर लाहे, अन ते टूटी है रिख ते छूटी है। मन हर रस घूटी है

द्रौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुख हरता हर नाम पछानो अजा मल गण का जेह सिमरत मुक्त भये जी जानो रहाओ गज की त्रास मिटी सिन्हु मह जब ही राम बखानो नारद कहत सुनत ध्रुव बारक भजन माहे लपटानो अचल अमर निरभय पद पायो जगत जाहे हैरानो नानक कहत भगत रस कहार निकट ताहे तुम मानो।

तेहे नर जन्म अकारथ खोया, यह राखो मन माही रहाउ। तीर्थ करै व्रत फुन राखै, नह मनुआ बस जाको,

को दूजा देख कहो पावे मन सोए। नानक कह अवर नहीं कोई बलावल महला पहला। मन का कहया मनसा करे इहो मन पुन पाप उच्चरे। माया मद माते त्रिपत ना आवे त्रिपत मुकत मन साचा पावे। तन तन कलत सब देख अभमाना।

आप न बूझै लोक बुझावै, मन का अंधा अंध कमावै, दर कर महल ठौर कैसे पावे, हर जियो सेविया अंतर जामी, घट घट अंतर जिसकी जोत समानी, इस नाल क्या चले पहनामी, साचा नाम साचा शब्द जाने, आपे आप मिले चूके अभमाने, गुरमुख नाम सदा सदा बखाने, सतगुर सेवे है दूजी दुरमत जाई, औगण काट पापा मत खाई, कंचन काया ज्योति ज्योत समाई, सतगुर मिले वड्डी वड्याई।

द्वार गुरमत मान्या मोख द्वार नानक गुरमत मान्या परवार साधार बलावल महला चौथा अष्टपदियां घर ग्यारवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद आपे आप खाए हों मेटे अन दिन हर रस गीत गवैया गुरमुख परचै कंचन काया निरपौ ज्योति जोत मलैया मैं हर हर नाम आधार रमैया खिन पल रह ना सको बिन नावे गुरमुख हर हर पाठ पढ़ैया रहाओ एक गिरहो दस द्वार है जाकी अहनस तस्कर पांच चोर लगैया धर्म अर्थ सब हिर ले जाव है मनमुख अंदले खबर ना पैया कंचन कोट बहु मानक भरिया जागे ज्ञान तत लिव लैया तस्कर हेरू आए लुकाने गुर कै शब्द पकड़ बंद पैया हर हर नाम पोत बोहिता खेवट शब्द गुर पार लंघैया जम जगाती नेड़ ना आवे ना को तस्कर चोर लगैया हर गुण गावे सदा दिन राती मैं हर जस कहते अंत ना लहिया गुरमुख मनुआ इकत घर आवे मिलो गोपाल निशान बजैया नैनी देख दर्श मन तृप्त श्रवण बाणी गुर शब्द सुनैया सुन सुन आत्म देव है पीने रस रस राम गोपाल रवैया त्रै गुण माया मोहे व्यापे तुरिया गुण है गुरमुख लहिया एक दृष्ट सब सम कर जाने नदरी आवे सब ब्रह्म पसरिया राम नाम है जोत सबाई गुरमुख आपे लख लखैया नानक दीन दयाल पए हैं भगत पाए हर नाम समैया बलावल महला चौथा हर हर नाम शीतल जल त्यावहु हर चंदन वास सुगंध गंधैया मिल सत संगत परम पद पाया मैं हिरड पलास संग हर बुहिया जप जगन्नाथ जगदीश गुसैया सरल परे से ही जन उबरे ज्यों प्रहलाद उधार समैया रहाओ पार अठारह मह चंदन उत्तम चंदन निकट सब चंदन हुईया साकत कूड़े ऊब सुख हुए मन अभमान विछड़ दूर गईया हर गत मित करता आपे जाने सब बिद हर हर आप बनैया जिस सतगुर भेटे सो कंचन होवे जो तुर लिखिया सो मिटे ना मटैया रतन पदार्थ गुरमत पावे सागर भगत पंडार खलैया गुर चरणी एक शरदा उपजी मैं हर गुण कहते तृप्त न पैया परम बैराग नित नित हर त्याय मैं हर गुण कहते भावनी कहिया बार बार खिन खिन पल कहिए हर पार न पावे परे परैया शास्त्र वेद पुराण पकार है धर्म करहो खट कर्म दृढ़ैया मनमुख पाखंड परम विगूते लोभ लहर नाभ भार बडैया नाम जपहो नामे गत पावहो सिमरत शास्त्र नाम दृढ़ैया हउ मैं जाए ता निर्मल होवे गुरमुख परचै परम पद पैया एहो जग वर्ण रूप सब तेरा जित लावह से कर्म कमैया नानक जंत बजाए वाजह जित पावै तित राहि चलैया बलावल महला चौथा गुरमुख अगम अगोचर त्याया हों बल बल सतगुर सत पुरखैया राम नाम मेरे प्राण वसाई सतगुर परस हर नाम समैया जान की टेक हर नाम टिकैया।

सुन गुर बचन मन तीर लगैया, मन की बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर परैया। राम गुर मोहन मोहे मन लैया, हम आकल बिकल पई गुर देखे, हम लोट पोट होए पैया रहाओ। हम निरखत फिरऊं सब देश दसंतर, मैं प्रभ देखन को बहुत मन चैया। मन तन काट देऊ गुरे आगे, जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखैया। कोई आन संदेशा दे प्रभ केरा, हृदय अंतर मन तन मीठ लगैया। मस्तक काट देऊ चरना तल, जो हर प्रभ मेले मेल मलैया। चल चल सखी हम प्रभ प्रबुद्ध है, गुण कामन कर हर प्रभ लहिया। भगत वचन ओवा को नाम कहियत है, शरण प्रभु तिस पाछे पैया। थिमा शिंगार करे प्रभ खुशियां, मन दीपक गुर ज्ञान बलैया। रस रस भोग करे प्रभ मेरा, हम तिस आगे जियो कट कट पैया। हर हर हार कंठ है बनिया, मन मोती चूर वड गहन गहनैया। हर हर शरदा सेज वछाई, प्रभ छोड़ ना सके बहुत मन पैया। कह प्रभ अवर अवर किस कीजै, सब बाद शिंगार फोकट फोकटैया। कियो शिंगार मिलन कै ताई, प्रभ लियो सुहागन।

नानक हर गुर सरण समैया। बलावल महला चौथा। मैं मन तन प्रेम अगम ठाकुर का, खिन खिन शरदा मन बहुत उठैया। गुर देखे शरदा मन पूरी, ज्यो चात्रक प्रियो प्रियो गूंद मुख पैया। मिल मिन सखी हर कथा सुनैया, सतगुर दया करे प्रभ मेले। मैं तिस आगे सिर कट कट पैया, रहाउ रोम रोम मन तन एक बेदन। मैं प्रभ देखे बिन नींद ना पैया, वैदिक नाटक देख पुलानी। मैं हृदय मन तन प्रेम पीर लगैया, हौ खिन पल रह ना सको बिन प्रीतम। ज्यो बिन अमले अमली मर गईया, जिनको प्यास हुए प्रभ केरी। तिन अवर ना पावे बिन हर को दुईया, कोई आन आन मेरा प्रभु मलावे। हौ तिस विटहो बल बल घुम गईया, अनेक जन्म के विछड़े जन मेले। जहां सत सत सत गुर सरन पवैया, सेज एक एको प्रभ ठाकुर। महल ना पावे मन मुख परमैया, गुर गुर करत सरन जे आवे। प्रभ आए मिले खिन ढील ना पैया, कर कर किरिया चार वधाए। मन पाखंड कर्म कपट लो भैया, बेसवा कह कर बेटा जन्मया। पिता ताहे क्या नाम सदैया, पूर्व जन्म भगत कर आए। गुर हर हर हर हर भगत जमैया, भगत भगत करते हर पाया। जहां हर हर हर हर नाम समैया, प्रभ आन आन मेहंदी पसाई। आपे कोल कोल अंग लैया।

सतगुरु प्रसाद। उपमा जात ना कही मेरे प्रभु की, उपमा जात ना कही, ताजे आन शरण गही रहाओ। प्रभु चरण कमल अपार, हौ जाऊं सद बलिहार, मन प्रीत लागी ताहे, ताजे आन कतह ना जाहे। हर नाम रसना कहन, मल पाप कल मल दहन, चढ़ नाव संत उदार, पै तरे सागर पार, मन डोर प्रेम प्रीत, ए संत निर्मल रीत, तज गए पाप विकार, हर मिले प्रभ निरंकार, प्रभ पेखिए बिस्माद, चख अनद पूर्ण साद, नह डोलिए इत ऊत, प्रभ बसे हर हर चीत, तिन नाहे नरक निवास, नित सिमर प्रभ गुणतास, ते जम ना पेख नैन, सुन मोहे अनहत बैन, हर सरन सूर गोपाल, प्रभ भगत वस दयाल, हर निगम लह ना पेव, नित करह मुन जन सेव, दुख दीन दर्द निवार, जा की महा बिखड़ी कार, ता की मित न जाने कोए, जल थल मही अल सोए, कर बंदना लख बार, थक परियो प्रभ दरबार, प्रभ करहो साधु तूर, नानक मन सापूर, बलाव महला पंजवा, प्रभ जन्म मरण निवार, हार परियो द्वार, गह चरण साधु संग, मन मिष्ट हर हर रंग, कर दया ले हो नर लाए, नानका नाम त्याई।

तार बिखिया कूप तम अज्ञान मोहत कूप गह पुजा प्रभ जी ले हो हर नाम अपना दे हो प्रभ तुझ बिना नहीं ठाओ नानका बल बल जाओ लोभ मोहे बांदी दे बिन भजन होवत खे जमदूत महाभयान चित गुप्त कर मह जान दिन रैन साख सुनाए नानका हर सरनाए पै भंजना मरार कर दया पतत उदार मेरे दुख गने ना जाहे हर बिना कतह समाए गह ओट चितवी नाथ नानका दे रख हाथ हर गुण निदे गोपाल सर्ब घट प्रतपाल मन प्रीत दर्शन प्यास गोविंद पूर्ण आस एक निमक रहन ना जाए वड भाग नानक पाए प्रभ तुझ बिना नहीं होर मन प्रीत चंद चकोर ज्यो मीन जल स्यो हेत अल कमल भिन्न ना भेत ज्यो चकवी सूरज आस नानक।

ज्यो महा खुदयारथ भोग ज्यो बात पूतै हेत हर सिमर नानक नेत ज्यो दीप पतन पतंग ज्यो चोर हित न संग मैगल है कामै बंद ज्यो ग्रस्त बिखरी।

गोविंद भजन रंग रसना बखाने नाम नानक दर्शन दान गुण गाए सुन लिख दे सो सर्ब फल हर ले कुल समूह करत उदार संसार उतरस पार हर चरण बोहित ताहे मिल साध संग जस गाहे हर पैज रखे मरार हर नानक सरन द्वार बलावन महला पहला थिती घर दसवां जत एक ओंकार सतगुर प्रसाद एकम एकंकार निराला अमर अजोनी जात ना जाला अगम अगोचर रूप ना रेखिया खोजत खोजत घट घट देखे।

गुर कै शब्द महल घर दिसै रहाउ, दूजै पाए लगे पछताणे, जम दरबांदे आवन जाने, क्या लै आवहै क्या ले जाहे, सिर जमकाल से चोटा खाहे, बिन गुर शब्द ना छूटस कोए, पाखंड कीनै मुक्त ना होए, आपे सच किया कर जोड़, अंडज फोड़ जोड़ विछोड़, तरत आकाश किए बैसन कौ थाऊ, रात दिनंत किए पौ पाऊ।

कीमत पाए रहया भरपूर किस नेड़ किस आखां दूर चौथ अपाए चारे बेदा खानी चारे बाणी भेदा अष्ट दशा।

मुख शरीर सात समुंद भरे निर्मल नीर मज्जन सील सच हृदय विचार गुर कै शब्द पावे सब पार मन साचा मुख साचो पाय सच निशाने ठाक न पाए अष्टमी अष्ट सिद्ध बुद्ध साधे सच निह केवल कर्म अरादे पौन पानी अग्नि बिसराऊ तही निरंजन साचो नाउ किसमें मनुआ रहे लिव लाए प्रणवत नानक काल न खाए नाउ नौमी नवे नाथ नव खंडा कट कट नाथ महा

फल जाए, रस कस खाए साध गवाए, कूड़ै लालच लपटै लपटाए, छूटै गुरमुख साच कमाए, द्वादश मुद्रा मन अवतूता, ऐन सजागै कभै ना सूता, जागत जागत

डर जान तख्त नवास सच मन भाण चौदस चौथे थावे लह पावे राजस तामस सतकाल समावे ससियर कह कर सूर समावे जोग जुगत की कीमत पावे चौदस भवन पताल समाए खंड ब्रह्मांड रहया लिवलाए अमावस्या चंद गुप्त गैनार बूझो हो ज्ञानी शब्द विचार ससियर गगन जोत तिहो लोई कर कर वेख करता सोई गुरते दिसै सो तिस ही माहि मनमुख भूलिया।

बारह प्रभ रहया समाई, आप उपाय सब कीमत पाई, गुरमुख हो ऐसो करे विचार, सच संयम करनी है कार, वर्त नेम नेता प्रत पूजा।

वार वार दिन सनहण तिवें संसार आवा गौण किया करतार निश्चल साच रहया कल धार नानक गुरमुख बूझै को शब्द विचार बिलावल महला तीजा आदि पुरख आपे श्रेष्ठ साजे जी जंत माया मोहे पाजे दूजे पाए परपंच लागे आवह जावह मरह अभागे सतगुर भेटिया सोजी पाए परपंच चूकै सच समाए जाकै।

काई, परमे भूला आवे जाई, सतगुर सेवै सो जन बूझै, हमें मारे तां दर सूझै, एक

मुग्ध गुवार, नानक गुरमुख बूजै सूजी पाए, इकत नाम सदा रहे आसमाय। बलावल महला पहला, शंत दखनी

हर धरी हर लिवलाई राम लिवलाए हर सिंह रही गोयल सहज शब्द शिंगारिया कर जोड़ गुर पह कर बेनंती मिलो साच प्यारिया तन पाए भगती देख प्रीतम काम क्रोध निवारिया नानक मुंद

है मैं अवर ज्ञान ना ध्यान पूजा हर नाम अंतर वस रहे पेख पवनी हठ ना जाना नानका सच गह रहे पिंडरी रहन भली दिन सुहाए राम निज कर।

नव हाण नव धन शब्द जागी अपने फिर पाणिया तज कूड़ कपट सुभाव दूजा चाकरी लोकानिया मैं नाम हर का हार कंठे साच शब्द निशानिया कर जोड़ नानक साच मांगे नदर कर तुद पाणिया जाग सलो नड़िए बोले गुरबाणी राम जिन सुन मन्ने अड़ी अकथ कहानी राम अकथ कहानी पद निर्वाणी को विरला गुरमुख बूजे ओ शब्द समाए आप गवाए रे पवन सोजी सूजे रह अतीत परंपर राता साच मन गुण सारिया ओह पूर रहया सर्ब ठाई नानका उरतारिया महल बुलाएड़िए भगत सनेही राम गुरमत मन रहसी सीजस देही राम मन मार रीजै शब्द सीजै त्रै लोक नाथ पछाणे मन दीक डोल ना।

आया मन सुख सुमाना राम गुरु तुठे हर प्रभ पाया रंग रलिया माना राम वड भागिया सुहागनी हर मस्तक माना राम हर प्रभ हर सुहाग।

को आया नित हर हर जापै राम मेरे हर प्रभ भावै सो करै हर रंग हर रापै राम जन नानक सहज मलाया हर रस हर त्रापै राम मानस जन्म हर पाईऐ हर रावण वीरा राम गुरमुख मिल सोहागनी रंग होए कनेरा राम जिन मानस जन्म ना पाया तिन भाग मंदेरा राम हर हर हर हर राख प्रभ नानक जन तेरा राम गुर हर प्रभ अगम दृढ़ाया मन तन रंग पीना राम भगत वछल हर नाम है गुरमुख हर लीना राम बिन हर नाम ना जीव दे ज्यों जल बिन मीना राम सफल जन्म हर पाया नानक प्रभ कीना राम बलावल महला चौथा सलोक हर प्रभ सज्जन लोड़ लहो मन वसै वडभाग गुर पूरै वेखालिया नानक हर लिव लाग शंत मेरा हर प्रभ रावण आईया हो मैं बिख जागे राम गुरमत आप मटाया हर हर लिव लागे राम अंतर कमल पर गासिया गुर ज्ञानी जागे राम जन नानक हर प्रभ पाया पूरै वड भागे राम हर प्रभ हर मन पाया हर नाम वधाई राम गुर पूरै प्रभ पाया हर हर लिव लाई राम अज्ञान अंधेरा कटिया जोत प्रगट आई राम जन नानक नाम आधार है हर नाम समाई राम तन हर प्रभ प्यारे राविया जा हर प्रभ भाई राम अखी प्रेम कसाईया ज्यों बिलक मसाई राम गुर पूरै हर मेलिया हर रस अघाई राम जन नानक नाम बिगसिया हर हर लिव लाई राम हम मूर्ख मुग्ध मलाया हर कृपा तारी राम तन तन गुरु साबास है जिन हो मैं मारी राम जिन वड भागियां वड भाग है हर हर उर तारी राम जन नानक नाम सलाहे तू नामे बलिहारी राम।

अविनाशी वर सुनिया मन उपजया चाया राम मन प्रीत लागे वड्डे भागे कब मिलिए पूर्ण पति सहजे समाइये गोविंद पाइये देहो सखिए मोहे मते दिन रहन थाडी करो सेवा प्रभ कमन जुगती पाया बिनवंत नानक करो कृपा लहु मोहे लड़ लाया भया समाहड़ा हर रतन वसाहा राम खोजी खोज लद्दा हर संतन पाहा राम मिले संत प्यारे दया धारे कथ है अकथ बिचारू एक चित एक मन त्याए स्वामी लाए प्रीत प्यारू कर जोड़ प्रभ तह कर बेनंती मिले हर जस लाहा बिनवंत नानक दास तेरा मेरा प्रभ अगम अथा।

मिल संत आए प्रभ ते आए बने अचरज जानिया मिल अकत्तर होए सहज ढोए मन प्रीत उपजी मानिया मिल जोत ज्योति पोत पोती हर नाम सब रस भोगो बिनवंत नानक सब संत मेली प्रभ करण कारण जोगो पवन सुहावड़ा धरत सुभागी राम प्रभ घर आयड़ा गुरचरणी लागी राम गुरचरण लागी सहज जागी सगल इच्छा पुनिया मेरी आस पूरी संत धूरी हर मिले कंत विछुनिया आनंद अंदिन वजह वाजे अहंग मत मन की त्यागी बिनवंत नानक सरण स्वामी संत संग लिव लागी बलावल महला पंजवा भाग सलखणा हर कंत हमारा राम अनहद बाजितरा तिस धुन दरबारा राम आनंद अंदिन वजह वाजे दिन सरैण अमाहा तह रोग सोग ना दुख ब्यापै जन्म मरन ना ताहा रिद सिद्ध सुधारा से अमृत भगत भरे भंडारा बिनवंत नानक बलिहार वन्या पार ब्रह्म प्राण अधारा सुन सखे सहेलड़ियो मिल मंगल गावह राम मन तन प्रेम करे तिस प्रभ को रावह राम कर प्रेम रावह तिसै भावह एक निमख पलक ना त्यागी है गह कंठ लाइए नह लज्जाइए चरण राज मन पागी है भगत ठगौरी पाए मोह है अनत कतहु ना ताव है बिनवंत नानक मिल संग साजन अमर पदवी पाव है बिस्मन बिस्म भई पेख गुण अबनासी राम कर गह पुजा गही कट जम की फासी राम गह पुजा लीनी दास कीनी अंकुर अदोत जनाया मरण मोह बिकार नाठी दिवस निर्मल आया दृष्ट धारी मन प्यारी महा दुर्मत नासी बिनवंत नानक भई निर्मल प्रभ मिले अबनासी सूरज किरण मिले

आत्म पसारा करनहारा प्रभ बिना नहीं जानिए। आप करता आप भुगता आप कारण किया। बिनवंत नानक।

सगला बानहरा हर हरा स्वामी सुखागामी आनंद मंगल रस घना नवल नवतन नाह बाला कवन रसना गुण भना मेरी सेज सोही देख मोही सगल सहसा दुख हरा नानक भयम पै मेरी आस पूरी मिले स्वामी अपरंपरा।

पियो सुख सागर प्रभ भेटे है नानक सुखी होत एहो जीओ संत सुख सागर प्रभ पाई है जब होवे भागो राम मानन मान वंजाई है हर चरनी लागो राम छोड़ सियान पचातुरी दुर्मत बुद्ध त्यागो राम नानक पाओ सरनाई राम राय फिर हुए सुहागो राम सो प्रभ ताज कत लागी है जिस बिन मर जाइए राम लाज ना आवे ज्ञान मती दुर्जन बिरमाइए राम पतत पावन प्रभ त्याग करे कहो कत ठहराइए राम नानक भगत पाओ कर दयाल की जीवन पद पाइए राम श्री गोपाल ना उचरह बल गईये दोहचार नरसना राम प्रभ भगत बछल न सेवही काया काक ग्रसना राम भ्रम मोही दुख ना जानही कोट जोनी बसना राम नानक बिन हर अवर जे चाहना बिस्ता क्रिम पसमा राम लाए बिरो भगवंत संगे होए मिल बैरागण राम चंदन चीर सुगंध रसा हौ मैं बिख त्यागण राम ईत ऊत नह डोलिया हर सेवा जागण राम नानक जिन प्रभ पाया अपना सा अटल सुहागण राम बलावल महला पंजवा हर खोज हो वडभागी हो मिल साधु संगे राम गुण गोविंद।

कह सको प्रभ अंतर जामी राम सिमर सिमर नारायण भय पार ग्रामी राम गुण गावत गोविंद के सब इच्छ पजामी राम नानक उदरे जप हरे सबहू का स्वामी राम रसक न्याड़े अपने राम संगे से लोयन नीके राम प्रभ पेखत इच्छा पुनिया मिल साजन जी के राम अमृत रस हर पाया बिखिया रस फीके राम नानक जल जल

था हरि उत्तम हर प्रभु गावया करनाद बलावल राग अपदेश गुरु सुन मन्निया तुर मस्तक पूरा भाग सब दिन सरहन गुण उच्चरै हर हर हर उर लिव लाग सब तन मन हरिया होया मन खिड़िया हरिया बाग अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर चानन ज्ञान चराग जन नानक जीवै देख हर एक निमुख घड़ी मुख लाग महला तीजा बलावल तब ही कीजिय जब मुख होवै नाम राग नाद शब्द सोहणे जान लागै सहज ध्यान राग नाद छोड़ हर सेवी ता दरगाह पाइय मान नानक गुरमुख ब्रह्म बिचारी चूकै मन अभमान पौड़ी तू हर प्रभ आप

हर त्यावुहु भगतोहु दिन सरात अंत लय छाया जिन सेव्या तिन सुख पाया हर नाम समाया सलोक महला तीजा दूजै पाए बलावल ना होवे मन मुख ताए ना पाए पाखंड भगत ना होवे पार ब्रह्म ना पाया जाए मन हट कर्म कमावनी थाए ना कोई पाए नानक गुरमुख आप बिचारी है विचो आप गवाए आपे आप पार ब्रह्म है पार ब्रह्म वस्या मन आए जम्मन मरना कटिया ज्योति जोत मलाई महला तीजा बलावल करे हो तुम प्यारे हो एक सस्यों लिबलाई जन्म मरण दुख कटिया सच्चे रह समाई सदा बलावल आनंद है जे चल है सतगुर पाई।

लाए, हर सुख पल्लर त्यागया, नाम विसार दुख पाए, मन मुख ज्ञानी अंधले, जन्म मरह फिर आवे जाए, कार्य सिद्ध ना होनी, अंत गया पछताए, जिस कर्म हो तिस सतगुर मिले, सो हर हर नाम

गुणी नदान सुखदाता तेरे मन वसै हम मैं जाए अभमान नानक नदरी पाईए अमृत गुणी निदान पौड़ी जितने पातशाह सहारा जे खान उमराव सिकदार है कितने सब हर के किए जो किस हर करावे सो ओहे करह सब हर के अर्थिये सो ऐसा हर सबना का प्रभ सतगुर कै वल है जिन सब वर्ण चारे खानी सब सृष्ट गोले।

हर नाम ना पाया बिरखा जन्म गवाया नानक जम मार करे खुआर पौड़ी जिसनो हर भगत सच बख्शियन सो सच्चा साहु तिसकी महताजी लोक कढ़दा होर त हट ना वथ ना विसाहु भगत जना को सनमुख होवै सो हर रास लय वेमुख भस पाहु हर के नाम के व्यापारी हर भगत है जम जगाती तिन्ना नेड़ ना जा जन नानक हर नाम धन लद्या सदा वे परवाह श्लोक महला तीजा इस जुग मैं भगती हर धन खटिया होर सब जगत परम भलाया।

आप तरिया कुल उदरे धन जनेंदी माया सदा सहज सुख मन वसिया सच्चे स्यों लिवलाया ब्रह्मा विष्ण महादेव त्रै गुण भुले हमें मोह वधाया पंडित पढ़ पढ़ मोनी भुले दूजे पाए चित लाया जोगी जंगम सन्यासी भुले विण गुर तत न पाया मनमुख दुखिए सदा ब्रह्म भुले तिन्नी बिरथा जन्म गवाया नानक नाम रते सही जन समधे जे आपे बख्श मलाया महला तीजा नानक सो सलाही है जिस वस सब किश होए।

हुए कहना किशु ना जाए। नानक तिनका आख्या आप सुने जे लयन पन्ने पाए महला तीजा। काल मार मनसा मनह समाणी अंतर निर्मल नाव। अन दिन जागे कदे ना सोवे सहजे अमृत पियाओ। मीठा बोले अमृत बाणी अन दिन हर गुण गाओ। निज कर वासा सदा सुंदे नानक तिन मिलिया सुख पाओ। पौड़ी हर तन रतन जवेहरी सो गुर हर तन हर पासों देवाया। जे किसै किहो दिस आवे ता कोई किहो मंग लए अकै कोई किहो देवाए। इहो हर तन जोर कीता किसै नाल ना जाए बंडाया। जिसनो सतगुर नाल हर शरदा लाए तिस हर धन की वंड हाथ आवे। जिसनो करतै तुर लिख पाया इस हर धन का कोई शरीक नाही। किसै कै खत नाही किसै कै सीव बन्ने रोल नाही। जे को हर धन की बखीली करे तिसका मुंह।

सबना का अभिमान जिथे को वेखे तिथे मेरा सतगुरु हर बख्शियो सब जहान जे सतगुर नो मिल मन्ने सो हलत पलत सिजे जे वेमुख होवै सो फिरे प्रिष्ट थान जन नानक कै वल हुआ मेरा स्वामी हर सज्जन पुरख सुजान पौंदी भित देख कै सब आए पए।

नारायण का अन्न। पांच चोर तिना घर मोहन, हम मैं अंदर सन्न। साकत मुठे दुर्मती, हर रस ना जानन। जिन्नी अमृत भरम लुटाया, देख सियो रचह रचन। दुष्टा से ती पिरहड़ी, जान सियो वाद करन। नानक साकत नरक मह, जम बदे दुख सहन। पै किरत कमाम दे, जिव राख है तिवै रहन। महला तीजा, जिन्नी सतगुर सेविया, ताणन ताने तिस। सास ग्रास सदा मन वसै, जम जोहे न सकै तिस। हिरदय हर हर नाम रस, कबला सेवक तिस। हर दासां का दास हुए, परम पदार्थ तिस। नानक मन तन जिस प्रभ वसै, हम सद कुर्बान है तिस। जिनको पूर्व लिखिया, रास संत जना सियो तिस। पौड़ी जो बोले पूरा सतगुरु, सो परमेश्वर सुनिया। सोई वर्तिया जगत मह, कट कट मुख भणिया। बहुत वड्याईया साहिब है, नह जाही गणिया। सच सहज आनंद सतगुरु पास, सच्ची गुरमणिया। नानक संत सवारे पार ब्रह्म, सच्चे ज्यों बनिया।

जो हर पाए तिनकी कथा नरारी रे, आवह ना जाहे ना कबहू मरते पार ब्रह्म संगारी रे।

यो बौरा सतगुर जार गयो भ्रम मोरा। मैं बिगड़े अपनी मत खोई, मेरे परम भूलो मत कोई। सो बौरा जो आप ना पछाने, आप पछाने ता एकै जाने। अबह ना माता सो कबो ना माता, कह कबीर रामे रंग राता। बलावल ग्रह तज बन खंड जाइए, चुन खाइए कंदा। अजो विकार ना छोड़ई, पापी मन मंदा। क्यों छूटो कैसे तरो, भवजन निद भारी। राख राख मेरे बीठला, जन सरन तुम्हारी रहाओ। विखै विखै की बासना, तजी नह जाई। अनक जतन कर राखी है।

गागरयान लीपत जियो गयो ताना बाना कछु ना सूझै हर हर रस लपटयो हमारे कुल कौने राम कहयो जबकि माला लई नपूते तब ते सुख ना पयो रहाओ सुनो जेठानी सुनो देरानी अचरज एक पयो सात सूत इन मुंडिये खोए इह मुंडिया क्यों ना मोयो सर्व सुखा का एक हर स्वामी सो गुर नाम दयो संत प्रहलाद की पैज जिन राखी हरनाखस नाख बिदरयो घर के देव पितर की छोड़ी गुर को शब्द लयो कहत कबीर सगल पाप खंडन संतां लै उदरहु बलावल को हर समान नहीं राजा एह भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा रहाओ तेरो जन हुए सोए कत डोले तीन भवन पर साजा हाथ पसार सकै को जन को बोल सकै ना अंदाजा चेत अचेत मूड मन मेरे बाजे अनहद बाजा कह कबीर संसा भ्रम चूको ध्रुव प्रहलाद नवाजा बलावल राख ले हो हम ते बिगरी सील धर्म जप भगत ना कीनी हौ अभमान टेढ़ पगरी रहाओ अमर जान संची एह काया एह मिथ्या काची गगरी जिन्हें नवाज साज हम किए तिसै बसार अवर लगरी संदक तोहे साध नहीं कही ओहो सरन परे तुमरी पगरी कह कबीर एह बिनती सुनियो हो मत कल हो जम की खबरी बलावल धर्मां दे ठाडे दरबार तुझ बिन सुरत करै को मेरी दर्शन दीजै खोल कवार रहाओ तुम तन तनी उदार त्यागी सरवनन सुनियत सुजस तुमार।

तही जैसे पुरवन पात मिथ्या कर माया तजी सुख सहज विचार कह कबीर सेवा करहो मन मंज मरार बलावल जन्म मरण का भ्रम गया गोविंद लिव लागी जीवत सुन समानिया गुर साखी जागी रहाओ काशी ते धुन उपजै धुन काशी जाई काशी फूटी पंडता धुन कहां समाई त्रिकुटी संध मैं पेखिया घट हूं घट जागी ऐसी बुद्ध समाचरी घट माहे त्यागी आप ते जानिया तेज तेज समाना कहो कबीर अब जानिया गोविंद मन माना बलावल चरण कमल जा कहर दे बस है सो जन क्यों डोले देव मानव सब सुख नौ निदता कै सहज सहज जस बोले देव रहाओ तब एह मत जो

राम नाम बिन जीवन मन ही ना रहाओ, नाम दे सिमरन कर जाना, जग जीवन स्यो जियो समाना। बलावल बाणी रविदास भगत की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दारद देख सब को हसै, ऐसी दशा हमारी, अष्ट दशा सिद्ध कर तलै, सब कृपा तुम्हारी।

बर्ण अबर्ण रंक नहीं ईसर बिमल बास जानी है जग सोए रहाउ ब्राह्मण बैस सूद अर क्षत्री डोम चंडार मलेश मन सोए हुए पुनीत भगवंत भजन ते आप तार तारे कुल दोए धन सो गाओ धन सो ठाओ धन पुनीत कतंब सब लोए जिन पिया सार रस तजे आन रस होए रस मगन डारे बिख खोए पंडित सूर सतर पत राजा भगत बराबर और ना कोए जैसे परैन पात रह।

की कार में एक भया भेक धारी कामार्थी स्वार्थी वाकी पैज सवारी तब गुण कहां जगत गुरा जो कर्म ना नासे सिंह शरण कत जाइए जो जम्बुक ग्रास रहाऊ एक बूंद जल कारणी चात्रिक दुख पावे।

चौपदी महला चौथा कर पहला। जे मन चित आस रखे हरि ऊपर ता मन चिंदे अनेक अनेक फल पाई। हर जाने सब किस जो जिए वरतै प्रभ घालिया किसै का एक तिल ना गवाई। हर तिसकी आस की जय मन मेरे जो सब मह स्वामी रहे आसमाई। मेरे मन आसा कर जगदीश गुसाई जो बिन हर आस अवर काहू की कीजै सानिह फल आस सब बिरथी जाई। रहाऊ जो दिसै माया मोह कटंब सब मत तिसकी आस लग जन्म गवाई। इनकै किस हाथ नहीं कहां करह एह बपड़े इनका वाहया काश ना वसाई। मेरे मन आस कर हर प्रीतम अपने की जो तुझ तारै तेरा कटंब सब छडाई। जे किस आस अवर करह परमित्री मत तू जानह तेरै कितै काम आई। ए आस परमित्री भाव दूजा है खिनमह झूठ बिनस सब जाई।

ऐसी मेरे सतगुर बूझ बुझाई, जन नानक की आस तू जान है, हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताई। गोंड महला चौथा। ऐसा हर सेविया नित त्याई है, जो खिन में किलविक सब करे बनासा, जे हर त्याग अवर की आस की जय, ता हर निःफल सब काल गवासा, मेरे मन हर सेवे हो सुख दाता स्वामी, जिस सेवे है सब भुख लहासा, मेरे मन हरि ऊपर की जय परवासा, जह जाइए तह नाल मेरा स्वामी, हरि अपनी पैज रखे जन दासा रहाओ, जे अपनी बिरथा कहो अवरा पह, ता आगे अपनी बिरथा बहो बहुत कढ़ासा, अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पह, जो तुमरे दुख तत्काल कटासा, सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी बिरथा अवरा पह कही है, अवरा पह कह मन लाज मरासा, जो संसार के कटम मित्र भाई दीसह मन मेरे, ते सब अपने स्वाय मलासा, जित दिन उनका सुआव होए ना आवे, तित दिन नेड़े को ना टुकासा, मन मेरे अपना हर सेव दिन राती, जो तुद उपकरे दुख सखासा, इसका प्रवासा क्यों कीजे मन मेरे, जो अंति अवसर रख ना सकासा, हर जप मंत गुर उपदेश ले जाप हो, तिन अंत छडाए जिन हर प्रीत चितासा, जन नानक अन दिन नाम जप हो हर संत हो, इहो छूटण का साचा परवासा। गोंड महला चौथा। हर सिमरत सदा हुए आनंद, सुख अंतर शांत शीतल मन अपना, जैसे सकत सूर बहु जलता, गुर सस देखे लह जाए सब तपना, मेरे मन अन दिन त्याए नाम हर जपना, जहां कहां तुझ राखै सब ठाई, सो ऐसा प्रभ सेव सदा तू अपना रहाऊ, जा मह सब निदान सो हर जप मन मेरे, गुरमुख खोज लहो हर रत्ना, जिन हर त्याया तिन हर पाया मेरा स्वामी, इनके चरण मलहो हर दसना, शब्द पिशान राम रस पाव हो, ओह उत्तम संत भयो बड बडना, किस जन की वडियाई हर आप वधाई, ओह कटे ना किसे की कटाई, एक तिल तिल तिल ना, जिस ते सुख पावे मन मेरे, सो सदा त्याए नित कर जुरना, जन नानक कहो हर दान एक दीजे, नित बसह हृदय हरी मोहे चरना। गोंड महला चौथा। जितने शाह पातशाह उमराव सिकदार चौधरी, सब मिथ्या झूठ।

नाम हरि भज सदा दीवान। जो हर महल पावै गुर बचनी, किस जेवड़ अवर नाही किसै दातान। रहाओ जितने तनवंत कुलवंत मिलखवंत, दिसह मन मेरे सब बिन सजाहे, ज्यों रंग

चौथा हरि अंतर जामी सब तह वरतै जिहा हर कराए तिहा को करै सो ऐसा हर सेव सदा मन मेरे जो तुदनो सब दू रख लई मेरे मन हर जप हर नित पड़ै हर बिन को मार जवाल ना साकै ता मेरे मन कायत कड़ै रहाओ हर परपंच किया सब करता विच आपे अपनी जोत तरही है हर एक को बोले हर एक बुलावे गुर पूरे हर एक दिखई है हर अंतर नाले बाहर नाले कहो तिस पासो मन क्या चोरई है निह कपट सेवा कीजे हर केरी ता मेरे मन सर्व सुख पई है जिस दे वास सब किश सो सब दू वड्डा सो मेरे मन सदा त्यई है जन नानक सो हर नाल है तेरे हर सदा त्याए तू तुद ले छड़ई है गोंड महला चौथा।

मेरा वीर, मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभ के, ले सतगुर की मत तीर, जन नानक की हर आस पुजावहु, हर दर्शन शांत शरीर, शका एक राग गोंड महला पंजवा, चौपदे कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सब करता सब भुगता रहाउ, सुनतो करता पेखत करता, अदृष्टो करता दृष्टो करता, ओपत करता परलो करता, व्यापत करता लिपतो करता, भक्तो करता बूजत करता, आवत करता जात पी करता, निर्गुण करता सरगुण करता, गुर प्रसाद नानक समदृष्टा, गोंड महला पंजवा, फाक्यो मीन कपक की न्याई, तू उर्ज रहो संपाए ले, पग धार है सास लेख लै, तो उदर है हर गुण गाए ले, मन समझ छोड़ आवाए ले, अपने

कंबाइले, ज्यो पंखी एकत्र हुए फिर बिछरे, फिर संगत हर हर त्याएले, जैसे मीन रसन साध बिनसेउ, ओहो मूठो मूड़ लबाएले, तू हो आ पंच वास वैरी कै, छूट है पर सरनाएले, ओहो कृपाल दीन दुख भंजन।

राग गोंड महला पंजवां चौपदे घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जी प्राण किए जिन साज माटी में जोत रखी निवाज बर्तन को सब किश भोजन पुगाए सो प्रभ तज मूड़े कत जाए पार ब्रह्म की लागो सेव गुरते सुजै निरंजन देव रहाओ जिन किए रंग अनक प्रकार उपत पर लो निमख मजार जा की गत मित कही ना जाए सो प्रभ मन मेरे सदा त्याय आए न जावे निश्चल तनी बेअंत गुना ताके केतक गनी लाल नाम जा कै परे पंडार सगल कटा देवे आधार सत पुरख जा को है नाओ मिटै कोट अग निमक जस गाओ बाल सखाई भगतन को मीत प्राण आधार नानक हित चीत गोंड महला पंजवां नाम संग कीनो व्यवहार नामो

तिहाय। काटे अवकट जात कतह सहाय रहाउ। रंक राहु जाके एक समान, कीट हस्त सगल पुराण। बियो पूछना मसलत तरे, जो किस करे सो आपे करे। जाका अंत न जान सकोए, आपे आप निरंजन सोई। आप अकार आप निरंकार, काट काट काट सब काट आधार। नाम रंग भगत भय लाल, जस करते संत सदा निहाल। नाम रंग जन रहे अगाए, नानक तिन जन लागे पाए। गोंड महला पंजवा, जा कै संग इहो मन निर्मल। जा कै संग हर हर सिमरन, जा कै संग किल बिख होहे नास। जा कै संग हृदय परगास, से संतन हर के मेरे मीत। केवल नाम गाइए जा कै नीत रहाउ। जा कै मंत्र हर हर मन वसै, जा कै उपदेश परम पौ नसै। जा कै कीर्त निर्मल सार, जा की रेन बांछै संसार। कोट पतत जा कै संग उधार, एक निरंकार जा कै नाम आधार। सर्ब जिया का जानै पेओ, कृपा निदान निरंजन देव। पार ब्रह्म जब पये कृपाल, तब पेटे गुर साध दयाल। दिन रैन नानक नाम ते आए, सुख सहज आनंद हर नाय। गोंड महला पंजवा, गुर की मूरत मन मह ध्यान।

गुर के सेवक की पूरन का हाल, गुर के सेवक को दुख ना व्यापे, गुर का सेवक दह दिस जापे, गुर की महिमा कथन ना जाए, पार ब्रह्म गुर रहे आसमाय। कहो नानक जाके पूरे भाग, गुर चरणीता का मन लाग, गोंड महला पंजवा, गुर मेरी पूजा गुर गोबिंद, गुर मेरा पार ब्रह्म गुर भगवंत, गुर मेरा देव अलख अपेव, सर्व पूज चरण गुर सेव, गुर बिन अवर नाही मैं थाऊ, अन बिन जपो गुरु गुर नाओ रहाओ, गुर मेरा ज्ञान गुर हृदय ध्यान, गुर गोपाल पुरख भगवान, गुर की शरण रहो कर जोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुर बोहित तारे भव पार, गुर सेवा जमते छुटकार, अंधकार मह गुर मंत्र उजारा, गुर कै संग सगल निस्तारा, गुर पूरा पाई है वड भागी,

नानक निस्तरिए गोंड महला पंजवा गुर के चरण कमल नमस्कार काम क्रोध इस तन ते मार होए रही है सगल की रीना घट घट रमैया सब महचीना इन बिदरम हो गोपाल गोविंद तन तन प्रभ का प्रभ की जिंद रहाओ आठ पहर हर के गुण गाओ जी प्राण को एह सुआओ ताज अभमान जान प्रभ संग साध प्रसाद हर स्यो मन रंग जिन तू किया तिस को जान आगे दरगाह पावे मान मन तन निर्मल होए निहाल रसना नाम जपत गोपाल कर कृपा मेरे दीन दयाला साधु की मन मंगेर वाला हो दयाल देहो प्रभ दान नानक जप जीवै प्रभ नाम गोंड महला पंजवा धूप दीप सेवा गोपाल अनक बार बंदन करतार प्रभ की शरण गही सब त्याग गुरसो प्रसन्न भये वड भाग आठ पहर गाइय गोविंद तन तन प्रभ का प्रभ की जिंद रहाओ हर गुण रमत भये आनंद पार ब्रह्म पूर्ण बख्शंद कर कृपा जन सेवा लाए जन्म मरण दुख मेट मलाए कर्म धर्म एह तत् ज्ञान साध संग जपिए।

पातार पंच दूत भागे बिकराल जुए जन्म ना कबहू हार नानक का अंग किया करतार गोंड महला पंजवा कर कृपा सुख अनद करे बालक राख लिए गुरुदेव प्रभ कृपाल दयाल गोबिंद जी जंत सगले बख्शिंद तेरी शरण प्रभ दीन दयाल पार ब्रह्म जप सदा निहाल रहाओ प्रभ दयाल दूसर कोई नाही घट घट अंतर सर्ब समाही अपने दास का हलत पलत सुवारे पतत पावन प्रभ बिरद तुम्हारे औखद कोट सिमर गोविंद तंत मंत भजिए भगवंत रोग सोग मिटे प्रभ त्याए मन बाशत पूरन फल पाए करन कारण समरथ दयार सर्व निदान महा विचार नानक बख्श लिए प्रभ आप सदा सदा एको हर जाप गोंड महला पंजवा हर हर नाम जपो मेरे मीत निर्मल होए तुम्हारा चीत मन तन की सब मिटे बलाए दुख अंधेरा सगला जाए हर गुण गावत तरिये संसार वडभागी पाइये पुरख अपार रहाओ जो जन करे कीर्तन गोपाल तिसको पोहे ना सकै जमकाल जग मह आया सो परवान गुरमुख अपना खसम पछान हर गुण गावे संत प्रसाद काम क्रोध मिटहै उन्माद सदा हजूर जान भगवंत पूरे गुर का पूर्ण मंत हर तन खाट किए पंडार मिल सतगुर सब काज सुवार हर के नाम रंग संग जागा हर चरणी नानक मन लागा गोंड महला पंजवा पव सागर बोहित हर चरण सिमरत नाम नाही फिर मरन।

देव गुण महला पंजवा संत का लिया तर्त बदारो संत का निंदक आकाश ते टारो संत को राखो अपने जी नाल संत उदारो तत खिण ताल सोई संत जे पावे राम संत गोविंद कै कै काम रहाओ संत कै ऊपर दे प्रभ हाथ संत कै संग बसे दिन रात सास सास संत है प्रतपाल संत का दुखी राज ते टाल संत की निंदा करो ना कोए जो निंदा किसका पतन होए जिस को राखे सिर जनहार चख मारो सगल संसार प्रभ अपने का पया बसास जियो पिंड सब तिस की रास नानक को उपजी प्रतीत मनमुख हार गुरमुख सद जीत गुण महला पंजवा नाम निरंजन नीर नारायण रसना सिमरत पाप बलायण रहाओ नारायण सब माहि निवास नारायण कट कट परगास नारायण कहते नरक ना जाहे नारायण सेव सगल फल पाहे नारायण मन माहे अधार नारायण बोहित संसार नारायण कहत जम भाग पलायन नारायण दंत पानी दायन नारायण सद सद बख्शिन।

नारायण साध संग नारायण बारंबार नारायण गायन वस्त अगोचर गुर मिल लही नारायण ओट नानक दास गई गोंड महला पंजवा जा कौ राख राखन हार तिसका अंग करे निरंकार रहाउ मात गर्भ मह अग्न ना जो है काम क्रोध लोभ मोह ना पो है साध संग जपै

जाए, जो जो गर्व करे सो जाए, गरीब दास की प्रभ शरणाए, जो जो शरण पया हर राय, सो दास रखिया अपने कंठ लाए, जे को बहुत करे अहंकार, ओह खिन महरो ताखा कूनाल, है पी साचा होवन हार, सदा सदा जाई बलिहार, अपने दास रखे कृपा तार, नानक के प्रभ प्राण आधार, गोंड महला पंजवां।

जागे चरण कमल जन का आधार गुण गोविंद रौ सच व्यापार दास जना की मनसा पूर नानक सुख पावे जन तूर राग गोंड अष्टपदियां महला पंजवां घर दूजा।

उमराओ पतियाई, दुष्ट अहंकारी मार पचाई, निंदक कै मुख कीनो रोग, जय जय कार करे सब लोग, संतन कै मन महा आनंद, संत जप है गुरुदेव भगवंत, संगत के मुख उजल पए, सगल थान निंदक के गए, सास सास जन

हृदय प्रगास हुए लिव लागे, गुरमत हर हर नाम सुमानी रहाओ। हीरा रतन जवे हर माणक, बहु सागर भरपूर किया, जिस वड भाग हुए वड मस्तक, तिन गुरमत कड कड लिया। रतन जवेहर लाल हर नामा, गुर काड तली दिखलाया, भाग हीन मनमुख नहीं लिया, त्रिन ओले लाख छपाया। मस्तक भाग हुए तुर लिखिया, ता सतगुर सेवा लाए, नानक रतन जवे हर पावे, तन तन गुरमत हर पाए। राम कली महला चौथा, राम जना मिल भया आनंदा, हर नीकी कथा सुनाई। दुर्मत मैल गई सब निकल, सत संगत मिल बुद्ध पाए। राम जन गुरमत राम बुलाए, जो जो सुने कह सो मुक्ता, राम जपत सोहाए रहाउ। जे वड पाग हो वह मुख मस्तक, हर राम जना पेट हाय। दर्शन संत देहो कर कृपा, सब दालत दुख लह जाय। हर के लोग राम जन नीके, पाग हीन ना सुखाए। ज्यो ज्यो राम कह जन ऊचे, नर निंदक डंस लगाए। त्रिग त्रिग नर निंदक, जिन जन नहीं पाए, हर के सखा सखाए। से हर के चोर वे मुख मुख काले, जिन गुर की पैज ना पाए। दया दया कर राख हो हर जियो, हम दीन तेरी सरनाए। हम बारक तुम पिता प्रभ मेरे, जन नानक बख्श मलाए। राम कली महला चौथा, हर के सखा साध जन नीके, तिनी ऊपर हाथ बतावे। गुरमुख साध से प्रभ पाए, कर कृपा आप मलावे। राम मोको हर जन मेल मन पावे, अमयो अमयो हर रस है मीठा। मिल संत जना मुख पावे रहाउ, हर के लोग राम जन उत्तम, मिल उत्तम पदवी पावे। हम होवत चेरी दास दासन की, मेरा ठाकुर खुशी करावे। सेवक जन सेव है, सेवड भागी, हृद मन

सुख होई, जो इच्छो हो सोई फल पावहु, फिर दुख न व्यापै कोई रहाउ। काचे भांडे साज नवाजी, अंतर जोत समाई, जैसा लिखत लिखिया धुर करतै, हम तैसी किरत कमाई। मन तन थाप किया सब अपना, एहो आवन जाना, जिन दिया सो चित ना आवै, मोहे अंध लपटाना। जिन किया सोई प्रभ जाने, हर का महल अपारा।

व्यापी पूर भंडारा ऐसा रस अमृत मन चाखिया तृप्त रहे आगाई कहो नानक मेरी आसा पूरी।

गहिरा तुम पूर्ण पूर रहे संपूर्ण हम पी संग अगाए मिलत मिलत मिलत मिल रहया नानक कहन ना जाए राम।

तूने अगाजा निरत करे कर मनुआ नाचे आनी घूंगर साजा राम को निरतकारी पेख पेखन हार दयाला जेता साज सिंगारी रहाऊ अखार मंडली तरन सबाई ऊपर गगन चंदोवा पवन बचोला करत अकेला जल ते ओपत होआ पांच तत कर पुतरा कीना किरत मलावा होआ चांद सूरज दोए जरे चरागा चौहों कुंट पीतर राखे दस पातो पांच संगीता एक है पीतर साथे पिन पिन हुए भाव दिखावे सबहु नरारी पाखे कर कर निरत हो दिन राती कट कट वाजे तूरा एक नचाव है एक पवाव है एक आई जाए होए तूरा कहो नानक सो बहुर ना नाचे जिस गुर भेटै पूरा राम कली।

कब ही एक शब्द बंद पाले नार दी नर हर जान हदूरे उंगर खड़क त्याग विसूरे सहज आनंद दिखावे पावे एहो नित कारी जन्म ना आवे जे को अपने ठाकुर भावे कोट मद एहो कीर्तन गावे साध संगत की

पाछै पिसत कोई सुरगिंदु। कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। राम कली महला पंजवां, पवन मैं पवन समाया, ज्योति मैं ज्योत रल जाया। माटी माटी हुई एक, रोवन हारे की कवन टेक। कौन मुआ रे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल कर हो बिचारा। एहो तौ चलत भया रहाउ, अगली किश खबर न पाई। रोवन हार पे उठ सदहाई, परम मोह के बांधे बंद। सुपन भया पखलाए अंध, एहो तौ रचन रचिया।

जानन हारी कहो बल जाऊं। कहो नानक गुर परम चकाया, ना कोई मरे ना आवे जाया।

हों सद बलिहारी काज हमारे पूरे सतगुर बाजे अनहद तूरे सतगुर रहाउ महिमा जा की गहर गंभीर

लाज रह हर सिमरत जम कछ ना कह रहा बिन हर सगल नरारत काम सोइना रूपा माटी दाम गुर का शब्द जाप मन सुखा इहां उहां तेरो उजल मुखा कर कर था।

सहज समाज तुन गहर गंभीरा सदा मुक्तता के पूरे काम जा कर दे बस्से हर नाम सगल सुख।

जन्म जन्म का सोया जाग, हर हर जाप जपला, गुर कृपा ते हृदय वास्तै, पौजल पार परला रहाओ, नाम निदान त्याए मन अटल, तां छूटह माया के पटल, गुर का शब्द अमृत रस पियो, तां तेरा होए निर्मल जियो, सोदत सोदत सोद बीचारा, बिन हर भगत नहीं छुटकारा, सो हर भजन साध कै संग, मन तन रापै हर कै रंग, छोड़ सियाणप बहु चतराई, मन बिन हर नावै जाए ना काई, दया तारी गोविंद गुसाई।

कुशल सेठी घर जाहे पंडित रहाउ। हर का जस निद लिया लाभ, पूर्ण भये मनोरथ साभ। दुख नाथा सुख घर में आया, संत प्रसाद कमल बिगसाया। नाम रतन जिन पाया दान, तिस जन होए सगल निदान। संतोख आया मन पूरा पाए, फिर

दया, बूढ़त दुख मह काढ़ लया, सुन सुन उपजियो मन मह चाऊ, आठ पहर हर के गुण गाओ, गावत गावत परम

पूर्ण परमेश्वर हर ना चेत्यो मन माही रहाओ। अमृत कौरा बिखिया मीठी साकत की बिद नैनो दीठी कूड़।

कबह न उस्तत करे निरपहो निरंकार दातार इस सियो प्रीत न करे गवार सब साहा सिर साचा साह वे मोहताज पूरा पातशाह मोह मगन लपट्यो भ्रम ग्रह नानक तरिया तेरी मेहर राम कली महला पंजवां।

खोजहु संत हो हर ब्रह्म ज्ञानी, बिस्मन बिस्म पये बिस्मादा, परम गत पावह हर सिमर प्राणी रहाव। गण में देखो हो सगल विचार, नाम बिना को सके ना तार, सगल अपाव ना चालह संग, पव जल तरिय प्रभ कै रंग, देही तोये न उतर मैल, हम मैं व्यापै दुबदा फैल, हर हर औखद जो जन खाए, ता का रोग सगल मिट जाए, कर कृपा पार ब्रह्म दयाल, मन ते कभो न बिसर गोपाल, तेरे दास की हो आतूर, नानक की प्रभ शरदा पूर, राम कली महला पंजवा, तेरी शरण पूरे गुरुदेव, तुद बिन दूजा नाही कोई, तू समरथ पूर्ण पार ब्रह्म, सो त्याए पूरा जिस कर्म, तरन तारन प्रभ तेरो नाओ, एका शरण गही मन मेरा।

दुख अंधेरा मन ते जाए, दुर्मत बिन सह राचै हर नाए, चरण कमल स्यों लागी प्रीत, गुरपुरे की निर्मल रीत, पौ भागा निरपौ मन बसै, अमृत नाम रसना नित जपै, कोट जन्म के काटे पाहे, पाया लाभ सच्चा धन लाहे, टूट ना आवै अखुट भंडार, नानक भगत सोहै।

का पूता हर भगता हवाले होता मेरे राम को भंडार खात खर्च कछ टोट ना आवे अंत न

पूंजी संतन हथ राखी पूंजी सुन संवाद गुफा तह आसन केवल ब्रह्म पूर्ण तह बासन भगत संग प्रभ गोष्ठ करत तह हरक ना सोग ना जन्म ना मरत कर कृपा जिस आप दिवाया साध संग तिन हर धन पाया दयाल पुरख ना

आऊ संकरा नहीं जानह पेव खोज तहारे देव देवियां नहीं जानह मर्म सब ऊपर अलख पार ब्रह्म अपने रंग करता केल आप बिछोरै आपे मेल एक परमे एक भगती लाए।

राम कली महला पंजवा राखन हार दयाल कोट भव खंडे निमुख ख्याल सगल अराध जंत मिलिय प्रभ गुर मिल मंत जीयन को दाता मेरा प्रभ पूर्ण परमेश्वर स्वामी घट घट राता मेरा प्रभ रहाउ ताकि गही मन ओट बंधन ते होई छोट हृदय जप परमानंद।

पत सार जित हर सिमरिजै कर कृपा जिसे आपे दीजै सुख सहज आनंद हर नाउ नानक जपया गुरु।

नानक पाया हो निदान हरे हर निर्मल नाम जो जपै तिसकी गत होए नानक कर्म प्राप्त होए राम कली महला पंजवा दलाब दे सवार जाहि न दरगाह हार हलत पलत तुद होए वडियाई अंत की बेला लय छुडाई राम के गुण गाओ हलत पलत होए दोहै सुहेले अचरज पुरख त्याओ रहाओ उठत बैठत हर जाप बिनसै सगल संताप बैरी सब हो वह मीत निर्मल तेरा हो वह चीत सब ते उत्तम एहु कर्म सगल धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर सिमरन तेरा होए उदार जन्म जन्म का उतरै पार पूरन तेरी होए आस जम की कटिया तेरी पास गुर का उपदेश सुनी जय।

तिसका सब कोए, तिसह अराध सदा सुख होए। काहे भ्रम भ्रम है बेगानी, नाम बिना किस काम ना आवे। मेरा मेरा कर बहुत पछताने रहाउ, जो जो करे सोई मान लेहु। बिन माने रल हो वह छेह, किसका पाणा।

जिस चित आए बिन सह दुखा, हलत पलत तेरा उजल मुखा, कौन कौन उधरे गुण गाए, गणन ना जाए कीम ना पाए, बूढ़त लोहो साध संग करे, नानक जिसह प्राप्त करे, राम कली महला पंजवा, मन माहे जाप भगवंत, गुरपुरे इह दीनो मंत, मिटे सगल पै त्रास, पूर्ण होई आस, सफल सेवा गुरदेवा, कीमत किश कहन ना जाई, साचे सच अलख।

चित लागा तन तन संयोग सुभागा संत की धूर लागी मेरे माथे तिल विख दुख सगले मेरे लाथे साध की सच टहल कमानी तब होए मन शुद्ध परानी जन का सफल दर्श डी।

प्रभ पूरे नानक बख्शिंद राम कले महला पंजवां गऊ को चारे सार दूल कौडी का लख हुआ मूल बकरी को हस्ती प्रतपाले अपना प्रभ नजर निहाले।

चिंत जाल काल चक्कर पेल हर चरण कमल सरनाए मना राम नाम जप संग सहाई गुरमुख पावह साच तना रहाउ ऊणे काज न होवत पूरे काम क्रोध मद सद ही चूरे करे बिकार जियरे कै ताई गाफल संग न तसुआ जाई तरत तोहो अनक छल जान कौडी कौडी को खाक सिर छान जिन दिया तिसै न चेतै मूल मिथ्या लोभ न उतरै सूल पार ब्रह्म जब भये दयाल इह मन होवा सादर वाल हस्त कमल लड़ लीनो लाए नानक साचै।

जिस कृपा करे, साध संग सो पव जल तरे, अमृत पीवो हो साध प्यारे, मुख उज्जल साचै दरबारी, आनंद करहो तज सगल विकार, नानक हर जप उतरोह पार। राम कली महला पंजवा, ईंधन ते बैसंतर भागै, माटी को जल दह दिस त्यागै, ऊपर चरण तले आकाश, घट मह सिंध कियो परगास, ऐसा समरथ हर जीव आप, निमख न बिसरै जी भगतन कै।

गर्भ जोन में किरत पया पुरब कमाणी छोड़ह नाही जमदूत ग्रास्यो महा भया बोले झूठ कमावे अवरा कृष्ण ना बूझै बहुत हया असाध रोग उपजया संत दुखन देह बनासी महा खया जिन्हें नवाज

बिन सह अभमान एक तिहाई है साध कै संग पाप बनासे नाम कै रंग गुर परमेश्वर सगल निवास घट घट रव रहया गुणतास दर्श दे तारू प्रभ्यास नित नानक चितवे सच अरदास राग राम कली महला पंजवा कर दूजा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद गाव राम के गुण गीत नाम जपत परम सुख पाईए आवागौन मिटै मेरे मीत रहाओ गुण गावत होवत परगास चरण कमल मह होए निवास संत संगत मह होए उदार नानक भवजन उतरस पार राम कली महला पंजवा गुरपूरा मेरा गुरपूरा राम नाम जप सदा सुहेले सगल मनासे रोग कूरा रहाओ एक अरातो साचा सोए जा की सरन सदा सुख होए नींद सुहेली नाम की लागी भूख हर सिमरत बिन से सब दुख सहज आनंद करहो मेरे भाई गुरपूरै सब चिंत मट।

सुख संत भावनी एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग राम कली महला नौवां ए पदे रे मन ओटले हो हर नामा जा कै सिमरन दुरमत नासै पावह पद निर्वाणा रहाउ बड़ भागी ते जन कौ जानो जो हर के गुण गावै जन्म जन्म के पाप खोए कै हुन बैकुंठ सदावै अजामल को अंत काल में नारायण सुध आई जा गत को जोगी सर्वांशत सो गत शिन मह पाई नाहिन गुण नाहिन कश विद्या धर्म कौन गज कीना नानक बिरद।

ते अब कीजै जाते दुर्मत सगल बनासै राम भगत मन पीजै रहाउ मन माया मह उर्ज रहियो है बूझै नह कछ ज्ञाना कौन नाम जग जा कह सिमरै पावै पद निर्वाणा पय दयाल कृपाल संत जानू।

इस बासुर में निमख एक उर तारे जम को त्रास मिटे नानक तेहे अपनो जन्म सवारे राम कली महला नवा प्राणी नारायण सुध लेह छिन छिन औध घटे निसबासुर बिरथा जात है दे रहाउ तरनापो बिखिन।

बालपन अज्ञाना बिरद भयो अजहू नहीं समझै कौन कुमत उरजाना मानस जन्म दियो जेह ठाकुर सो तै क्यों बिसरायो मुक्त होत नर जा कै सिमरै

नानक कहत चेत चिंता मन हुए है अंत सहाई। राम कली मोहल्ला पहला अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सोई चंद चढ़े से तारे सोई दिन यर तपत रहै सा धरती सो पौन चुलारे। जुग जी खेले थाम कैसे जीवन तलब निवार। हुए परवाना करे तिंगाना कल लखन विचार रहाऊ। कितै देश ना आया सुनिए तीर्थ।

सी पै तप कर तप न होई, जे को नाओ लहे बदनाम, कल के लखन एई, जिस सकदारी तिसह खुआरी, चाकर के हे डरना, जा सिकदार पवै जंजीरी, ता चाकर हथों

बेरी काजी कृष्णा हुआ बाणी ब्रह्मा वेद अथर्वण करनी कीरत लहया पातविण पूजा सतविण संयम जातविण काहे जनेऊ नाव हो तो वो तिलक चढ़ाव हो सोचविण सोच ना होई कल परवान कते बकरान पोथी पंडत रहे पुराण नानक नाव पया रहमान कर करता तू एको जान नानक नाम मिले वडियाई एदू उपर कर्म नहीं जे घर हुंदे मंगण जाइए फिर ओ लामा मिले तही राम कली महला पहला जग प्रबोध है मड़ी बंधावे है।

दुबदा दुख भागे, धर कर मांगत लाज ना लागे रहाउ। गावह गीत ना चीनह आप, ज्यों लागी निवरै प्रताप। गुर कै शब्द रचै मन पाए, भिख्या सहज विचारी खाए। पसम चढ़ाए करह पाखंड, माया मोहे सह जमदंड। फूटै खापर भीख न पाए, बंधन बांधिया आवे जाए। बिंद न राख है जति कहावह, माई मांगत त्रै लभावह। निर्दया नहीं जोत उजाला, बूढ़त बूढ़।

कैसे उतरस पारी, मुंदरा फटक बनाई कान, मुक्त नहीं विद्या विज्ञान। जेवा इंद्री साध लुभाना, पशु पये नहीं मिटे निशाना। त्रिभिद लोगा त्रिभिद जोगा, शब्द विचार चूक ससोगा। उजल साच सो शब्द होए, जोगी जुगत विचारे सोए। तुझ पह नौ नित तू करने जोग, थाप उथापे करे सो होग। जात सत संयम सच सुचीत, नानक जोगी त्रिभवन मीत। राम कली महला पहला, खट मट देही मन बैरागी। सुरत शब्द धुन अंतर जागी, वाजै अनहद मेरा मन नीना। गुरबचनी सच नाम पतीना, प्राणी राम भगत सुख पाई। गुरमुख हर हर मीठा लागे, हर हर नाम समाइय रहाउ। माया मोह विवर्ज समाई, सतगुर भेटै मेल मलाई। नाम रतन निर्मोल कहीरा, तितराता मेरा मन पीरा। हौ मैं ममता रोग न लागे, राम भगत जम का पौ भागे। जम जंदार न लागे मोहे, निर्मल नाम हृदय हर सोहे। शब्द विचार भय निरंकारी, गुरमत जागे दुरमत परहारी। अन दिन जाग रहे लिवलाई, जीवन मुकत गाते अंतर पाई। अलिपत गुफा मह रह निरारी, तस कर पंचो शब्द संघारी। पार कर जाए

सत परूता जग सूता मारे आवे जाए, बिन गुर शब्द ना सोजी पाए। अनहद शब्द बजे दिन राती, अवगत की गात गुरमुख जाती। तौ जानी जा शब्द पछानी, एको रव रहिया निर्बानी। सुन समाद सहज मन राता।

हो मैं जाए शब्द घर नहीं है रहाऊ गण गण ज्योतक कांडी कीनी पड़े सुनावे तातना चीनी सबसे ऊपर गुर शब्द विचार होर कथनी बदो ना सगली चार नावह धोवह पूजह सैला बिन हर राते मैलो मैला गर्भ निवार मिले प्रभ सारथ मुक्त प्राण जप हर किरतारथ वाचे वाद ना बेद विचार आप डुबे क्यों पितरा तार कट कट ब्रह्म चीन जन कोए सतगुर मिले ता सोजी होए गणत गणिये सहसा दुख जीए गुर की सरन पवे सुख थीए कार्य अपराध सरन हम आया गुर हर भेटे पुरब कमाया गुर सरन ना आईए ब्रह्म ना पाईए भरम भलाईए जन्म मर आईए जमदर बहंत हो मरे बेकार ना हृदय नाम ना शब्द आचार एक पांदे पंडित मिस्र कहाव है दुबदा राते महल ना पाव है जिस गुर प्रसादी नाम आधार कोट मध्य को जन आपार एक बुरा भला सच एक बूझ ज्ञानी सतगुर की टेक गुरमत।

राम कली महला पहला हठ निग्रह कर काया सीजै वर्त तपन कर मन नहीं पीजै राम नाम सर अवर ना पूजै गुरसेव मना हर जन संग कीजै।

गुण भिक्षिया जन्म मरीजै, राम नाम बिन दुख सही जै, चारस पवन संघासन पीजै, न्योली कर्म खट कर्म करीजै, राम नाम बिन बिरथा सास लीजै, अंतर पंच अगन क्यों तीर्ज तीजै, अंतर चोर क्यों साध लीजै, गुरमुख होए काया गढ़ लीजै, अंतर मैल तीर्थ परमीजै।

देही दुख दीजै, बिन गुरु ज्ञान तृप्त नहीं कीजै, मनमुख जन्म जन्म मरीजै, सतगुर पूछ संगत जन कीजै, मन हर राचै नहीं जन्म मरीजै, राम नाम बिन क्या कर्म कीजै, उंदर दूंदर पास तरीजै, तुरकी सेवा राम रुबीजै, नानक नाम मिलै कृपा प्रभु कीजै, राम कली महला पहला, अंतर उतपुज अवर ना कोई, जो कही है सो प्रभ ते होई, जुगा जुगंतर साहिब सच सोई, उत्पत पर लहो अवर ना कोई, ऐसा मेरा ठाकुर गहर गंभीर, जिन जपया तिन ही सुख पाया, हर कै नाम ना लगे जम तीर रहाउ, नाम रतन हीरा निर्मोल, साचा साहिब अमर अतोल, जेवा सूची साचा बोल, घर दर साचा नाही रोल, एक बन मह बैस है डूंगर अस्थान, नाम बसार पच है अभमान, नाम बिना क्या ज्ञान ध्यान, गुरमुख पाव है दरगह मान, हठ अहंकार करे नहीं पावे, पाठ पढ़े ले लोक सुनावे, तीरथ परमस ब्याद न जावे, नाम बिना कैसे सुख पावे, जतन करे बिंद किवे न रहाई, मनुआ डोले नरके पाई, जमपुर बहादो लह सजाई, बिन नामे जियो जल बल जाई, सिद्ध साधक केते मुन देवा, हठ निग्रह ना तृप्तावह पेवा, शब्द विचार गह गुर सेवा, मन तन निर्मल अभमान अभेवा, कर्म मिले पावे सच नाउ, तुम शरणागत रहो स्वभाव, तुम ते उपजेओ भगति पाओ, जप जापो गुरमुख हर नाउ, हौ मैं गर्भ जाए मन पीने, झूठ ना पावस पाखंड कीने, बिन गुर शब्द नहीं घर बार, नानक गुरमुख तत विचार, राम कली महला पहला, ज्यों आया त्यों जावह बौरे, ज्यों जन्मे त्यों मरन भया, ज्यों रस भोग किए तेता दुख लागै, नाम विसार भवजल पया, तन तन देखत गर्भ गया, कनक कामनी स्यों हेत वधाई है, की नाम वसार है परम गया रहाऊ, जत सत संजम सील ना राखिया, प्रेत पिंजर मह काष्ट भया, पुन दान इशनान ना संजम, साध संगत बिन बात जया, लालच लागे नाम बसारे ओ, आवत जावत जन्म गया, जां जम ताए केस गह मारे, सुरत नहीं मुख काल गया, अहनस निंदा तात पराई, हृदय नाम ना सर्ब दया, बिन गुर शब्द न गत पत पावह, राम नाम बिन नरक गया, खिन मैं वेस करह नटुआ ज्यो, मोह पाप मह गलत गया, हित उत माया देख पसारी, मोह माया कै मगन भया, करह विकार वथार कनेरे, सुरत शब्द बिन भरम पया, हौ मैं रोग महा दुख लागा, गुरमत लेव हो रोग गया, सुख संपत को आवत देखै, साकत मन अभमान पया, जिसका एहो तन तन सो फिर लेवै, अंतर सहसा दुख पया, अंतकाल किस साथ ना चाले, जो दिसै सब तिसह मया, आद पुरख अपरंपर सो प्रभ, हर नाम हृदय लै पार पया, मुए को रोवह किसे सुनावह, पै सागर असराल पया, देख कटंब माया ग्रह मंदर, साकत जंजाल पराल पया।

दृष्ट समय सर अनहत शब्द रंगीना सात बंद कुपीन भरपुर लीना जेवा रंग रसीना मिलै गुर साचे जिन रच राचे किरत विचार पतीना एक मह सर्ब सर्ब मह एका एह सतगुर देख दिखाई जिन किए खंड मंडल ब्रह्मंडा सो प्रभ लखन ना जाई दीपक ते दीपक परगासिया त्रिपवन जोत दिखाई सच्चे तखत सच महली बैठे निरपव ताड़ी लाई मोहे गया बैरागी जोगी कट कट कुंगरी वाई नानक सरन प्रभु की छूटे सतगुर सच सिखाई राम कली महला पहला आओ हठ हस्त मड़ी कर छाया तरन गगन कल तारी गुरमुख केती शब्द उधारी संत हो रहाओ ममता मार हो मैं सुख है तेरे पवन जोत तुम्हारी मनसा मार मन मह राख है सतगुर शब्द विचारी सिंही सुरत अनाह दवाजे कट कट जोत तुम्हारी परपंच बेन तही मन राखिया ब्रह्म अग्न पर जारी पंच तत् मिल अहनस दीपक निर्मल ज्योत अपारी राव सस लोके इहो तन किंगरी वाजै शब्द निरारी शिव नगरी मह आसन औदू अलख अगम अपारी काया नगरी इहो मन राजा पंच वसह विचारी शब्द रवै आसन घर राजा अदल करे गुणकारी काल बकाल कहे कह बपरी

भूत लाए जोगी ता तीन भवन जन लाया ऐसी किंगरी बजाए जोगी जित किंगरी अनहद वाजै हास्यो रह लिव लाए रहाओ सत संतोख पत कर चोरी जोगी अमृत नाम भुगत पाई ध्यान का कर डंडा जोगी सिंही सुरत बजाई मन दृढ़ कर आसन बैस जोगी ता तेरी कल्पना जाई काया नगरी मह मंगन चढ़ जोगी ता नाम पल्ले पाई इत किंगरी ध्यान न लागे जोगी ना सच पल्ले पाए इत किंगरी शांत न आवे जोगी अभमान ना विचों जाए पाओ पाओ दोए पत लाए जोगी एहो शरीर कर डंडी गुरमुख हो वह ता तंती वाजे इन

जोग जुगत एव पाए नदरी आवंदा सब किस बिनसै हर सेती चित लाए सतगुर नाल तेरी भावनी लागै ता एह सोझी पाए एहो जोग ना होवै जोगी जे कतंब छोड़ पर भवन करहै ग्रह शरीर मह हर हर नाम गुर प्रसादी अपना हर प्रभ लह एहो जगत मिट्टी का पुतला जोगी इसमें रोग वड्डा तृष्णा माया अनेक जतन भेख करे जोगी रोग ना जाए गवाया हर का नाम औखद है जोगी जिसनो मन वसाए गुरमुख होवै सोई बूझै जोग जुगत सो पाए जोगै का मार्ग बिखम है जोगी जिसनो नदर करे सो पाए अंतर बाहर एको वेखै विचों भरम चुकाए बिन बजाई।

सच समाई काया नगरी शब्दे खोजे नाम नमंग निद पाई मनसा मार मन सहज समाना बिन रसना उस्तत कराई लोयन देख रहे बिस्मादी एता अधिष्ट लगाई अधिष्ट सदा रह निरालम ज्योति ज्योत मलाई हों गुरसा लाही सदा अपना।

मुख संतोहु, मन मुख थाई ना पाई। शब्द मरे मन निर्मल संतोहु, एह पूजा थाई पाई। प्रीत पावन से जन साचे, एक शब्द लिव लाई। बिन नावे होर पूज ना होवे, परम भुली लोकाई। गुरमुख आप पछाणे संतोहु, राम नाम लिव लाई। आपे निर्मल पूज कराए, गुर शब्दी थाए पाई। पूजा करह पर भेद नहीं जान है, दूजे पाए मल लाई। गुरमुख होवै सो पूजा जाने, पाणा मन वसाई। पाणे ते सब सुख पावे संत हो, अंते नाम सिखाई। अपना आप ना पछाण है संत हो, कूड़ करह वड्याई। पाखंड कीने जम नहीं छोड़े, लै जासी पत गुआई। जिने अंतर शब्द आप पछाण है, गत मित तिन ही पाई। एह मनुआ सुन समाध लगावे, ज्योति ज्योत मलाई। सुन सुन गुरमुख नाम वखाण है, सत संगत

आई भय भंजन अत पाप निखंजन मेरा प्रभ अंत सखाई सब किसे आपे आप वरतै नानक नाम वडियाई राम कली महला तीजा हम कुचल कचील अत अभमानी मिल शब्दे मैल उतारी संत हो गुरमुख नाम निसतारी सच्चा नाम वस्या घट अंतर करतै आप सवारी रहाउ पारस परसे फिर पारस हुए हर जीव अपनी कृपा तारी एक भेख करह फिर है अभमानी इन जुए बाजी हारी एक अन दिन भगत करह दिन राती राम नाम उरत हारी अन दिन राते सहजे माते सहजे हो मैं मारी भय बिन भगत न होई कब ही भय पाए भगत सवारी माया मोह शब्द जलाया ज्ञान तत बीचारी आपे आप कराए करता आपे बख्श पंडारी तिस क्या गुणा का अंत ना पाया औगावा शब्द बीचारी हर जियो जपी हर जियो सालाही विच हो आप निवारी नाम पदार्थ गुरते पाया अखुट सच्चे पंडारी अपनिया भगतानो आपे तुठा अपनी कृपा कर कल तारी तिन साचे नाम की सदा भुख लागी गावन शब्द विचारी जियो पिंड सब किश है तिसका आखन बिखम बीचारी शब्द लगे से जन निस्तरे भौजन पार उतारी बिन हर साचे को पार ना पावे बूजै को विचारी जो तुर लिखिया सोई पाया मिल हर शब्द सवारी काया कंचन शब्दे राती साचे नाई प्यारी काया अमृत रही परपूरे पाईए शब्द विचारी जो प्रभ खोजह से ही पावह और फूट मुए अहंकारी।

जो किस करना सु कर रहे आ, अवर ना करना जाई। आपे साजे सिरत अपाए, सिर सिर तंदे लाई। तिसह सरेवो ता सुख पावहु, सतगुर मेल मलाई। अपना आप उपाई, लख ना लखना जाई। आपे मार्ज वाले आपे, तिसनो तिल ना तमाई। एक दाते एक मंगते कीते, आपे

करया, सगल जोन मह तू सिर धरया, अब तू सीज पावे नहीं सीजै, कार्य सवरै मन प्रभ त्याइजै, इहां उहां एकै ओही, जत कत देखिए तत तत तोही, तिस सेवत मन

कर मारे गुर बोहित वडभागी मिलिया नानक दास संग पाथर तरिया राम कली महला पंजवा काहू बिहावै रंग रस रूप काहू बिहावै माए बाप पूत काहू बिहावै राज मिलख वापारा संत बिहावै हर नाम अधारा रचना साच बनी सबका एक तनी रहाऊ काहू बिहावै वेद अर बाद काहू बिहावै रसना साध काहू बिहावै लपट संग नारी संत रचे केवल नाम मरारी काहू बिहावै खेलत जुआ काहू बिहावै अमली हुआ काहू बिहावै पर दर्ब चुराए हर जन बिहावै नाम त्याय काहू बिहावै जोग तप पूजा काहू रोग सोग परमीजा काहू पवन धार जात बिहाई

पंजवां दावा अगन रहे हर बूट मात गर्भ संकट पे शूट जा का नाम सिमरत पहु जाए तैसे संत जना राखे हर राय ऐसे राखन हार दयाल

लोभी का धन प्राण आधार त्यों हर जन हर हर नाम प्यार किरसानी ज्यो राखै रखवाला मात पिता दया ज्यो बाला प्रीतम देख प्रीतम मिल जाए त्यों हर जन राखै कंठ लाए ज्यो अंधले पेखत होए आनंद गूंगा भक्त गावै बहु छंद पिंगल पर्वत परते पार हर कै नाम सगल उदार ज्यो पावक संग सीत को नास ऐसे प्रासत संत संग बनास ज्यो साबुन का परिउजल होत नाम जपत सब भ्रम भउ खोत ज्यो चकवी सूरज की आस ज्यो चात्रक बूंद की प्यास ज्यो क्रंक नाद करन समाने त्यों हर नाम हर जन मन है सुखाने तुमरी कृपा ते लागी प्रीत दया।

कोट जाने ऊपर नानक वन्य वारना राम कली महला पंजवा अष्टपदी एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद दर्शन भेटत पाप सब नाश है।

ज्ञान अंधेर बंजाई, करण कारण समरथ स्वामी नानक तिस सरनाई, बंधन तोड़ चरण कमल दृढ़ाई, एक शब्द लिवलाई अंधकूप बिख्या ते काढ़ियो।

जन्म मरण की टेक, मुख उज्जल सदा सुखी, नानक सिमरत एक, मन तन राता राम प्यारी, हर प्रेम भगत बने आ।

निहाला हर सिमरत तृप्त अगाई संतो आत्म राम रविया सब अंतर कत आवे कत जाई संतो आदि जुगादी है पी होसी सब जिया का सुखदाई संतो आप बेअंत अंत नहीं पाई है पूर रहया सब ठाई संतो मीत साजन माल जोगन सुत हर नानक बाप मेरी माई संतो राम कली महला पंजवां मन बच क्रम राम नाम चितारी घूमन घेर महा अत बिखड़ी गुरमुख नानक पार उतारी रहाओ अंतर सूखा बाहर सूखा हर जप मलन भये दुसटारी जिसते लागे तिन्ह निवारी प्रभ जीओ अपनी कृपा तारी उदरे संत परे हर सरनी पच बिन से महा अहंकारी साधु संगत एहो फल पाया एक केवल नाम अधारी ना कोई सूर ना कोई हीना सब प्रगति जोत तुम्हारी तुम समर्थ अकथ अगोचर रविया एक मरारी कीमत कौन करे तेरी करते प्रभ अंत न पारा वारी नाम दान नानक वडियाई तेरिया संत जना रे नारी राम कली महला।

संतोह शब्द तरहु प्यारु साचा नाम मेरा आधारु वाजे पंच शब्द तित कर सा भागै कर सा भागै शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिनको ते नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख हुआ तित कर अनहद वाजे साची लिवै बिन देह निमाणी देह निमाणी लिवै बाजो क्या करे बेचारिया तुद बाज समरथ कोए नाई किरपा कर बनवारिया एस नौ होर थाऊ नाही शब्द लाग सवारी।

आनंद सदा गुरते कृपा करे प्यारिया कर कृपा किल विख कटे ज्ञान अंजन सारिया।

सुर लार मोन जाने अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा कीनी, सच्चा मन वसाया, जी जंत सब तुद उपाय, एक वेख परसन आया, लभ लोभ अहंकार चूका, सतगुरु भला पाया,

भगत हां केरी विखव मार्ग चलना लाभ लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत नाही बोलना थन्योह तिखी वालोह निक्की एक मार्ग जाना गुर प्रसादी जिनी आप तजिया हर वास ना समाणी कह नानक चाल भगतां जुग हो जुग निराली।

नानक शब्द सोहिला सतगुरु सुनाया पवित होए से जना जिन्नी हर त्याया पवित होए गुरमुख जिन्नी त्याया पवित माता पिता कटंब सहत सियो पवित संगत सबाइया

जन्म जूए हारिया, जियो निर्मल बाहरो निर्मल, बाहरो ता निर्मल जियो निर्मल, सतगुर ते करनी कमाणी, कूड़ की सोए पहुंचे नाई, मनसा सच समाणी, जन्म

भेती सनमुख होवै, होवै ता सनमुख सिख कोई, जियो रह गुर नाले, गुर के चरण हिरदय त्याए, अंतर आत्मै सुमाले, आप छड सदा रह परने, गुर बिन अवर न जाने कोई, कह नानक सुनो संतो, सो सिख सनमुख होए, जे को गुर ते वे मुख होए, बिन सत

मेरी मन बन जारा, हर रास मेरी मन बन जारा, सतगुर तेरा आस जानी, हर हर रित जपे हो जियो, लाहा कटे हो दिहाड़ी, एहो धन तिना मिलिया, जिन हर आपे।

प्यास न जाए, प्यास न जाए हूत किते, जिचर हर रस पल्ले न पाए, हर रस पाए पल्ले पीए हर रस, बहुड़ ना तृष्णा लागे आए, एहो हर रस करमी पाईए, सतगुर मिले जिसे आई, कह नानक होर आन रस सब विसरे, जा हर वसे मन आई, ए शरीरा मेरिया हर तुम मह जोत रखी, तां तू जग मह आया, हर जोत रखी तुद विच, तां तू जग मह आया, हर आपे माता आपे पिता, जिन जियो उपाय जगत दिखाया, गुर प्रसादी बुझिया, तां चलत हुआ चलत नदरी आया, कह नानक सृष्ट का मूल रचिया, जोत राखी तां तू जग मह आया, मन चाहो पया प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदर बनिया, हर गाओ मंगल नित सखिए, सोग दुख ना व्यापे, गुर चरण लागे दिन सभागे, अपना फिर जापे, अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो।

तुद कर्मक माया, हे कर्मक माया तुद शरीरा, जां तू जग मह आया, जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन ना वसाया, गुर प्रसादी हर मन वसिया, पूर्व लिखिया पाया, कह नानक एहो शरीर परवान हुआ, जिन सतगुर स्यों चित लाया, ए नेत्र हो मेरे हो, हर तुम मह जोत धरी, हर बिन अवर न देखो कोई, हर बिन अवर न देखो कोई, नदरी हर ने हालिया, एहो इस संसार तुम देख दे, एहो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया, गुर प्रसादी।

भय सरसे पूरे गुरते जानी। सुनते पनीत कहते पवित सतगुर रहे आपर पूरे विद्वंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। राम कली सत एक ओंकार सतगुर प्रसाद जगदाता सोए भगत वसल त्यों लोए जियो। गुर शब्द समावे अवर ना जाने कोई जियो अवरो ना जाने शब्द गुर कै एक नाम त्यावहे। प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावहे आया हकारा चलन वारा हर राम नाम समाया। जग अमर अटल अतोल ठाकुर भगत ते हर पाया हर पाणा गुर पाया गुर जावे हर प्रभ पास जियो। सतगुर करे हर पै बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो। पैज राखो हर जनह केरी हर देहो नाम निरंजनो। अंत चल दिया हुए बेली जमदूत काल निखंजनो। सतगुरु की बेनती पाई हर प्रभ सुनी अरदास जियो। हर धार कृपा सतगुरु मिलाया तन तन कह साबास जियो। मेरे सिख सुनो पुत भाई हो मेरा हर भाणा आओ मैं पास जियो। हर भाणा गुर पाया मेरा हर प्रभ करे साबास जियो। भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभ पाणा पावे आनंद अनहद वजह वाजे हर आप गल मिलावे। तुसी पुत भाई परवार मेरा मन वेखो कर निरजास जियो। तुर लिखिया परवाणा फिरे नाही गुर जाए हर प्रभ पास जियो। सतगुर पाणे अपने बह परवार सदाया मत मैं पिछे कोई रोसी सो मैं मूल ना पाया। मित पैजै मित बिगसै जिस मित की पैज पावे तुसी विचार देखो पुत भाई हर सतगुरु पैदावे। सतगुरु परतख हुंदे बहराज आप टकाया सब सिख बंधप पुत भाई

केशो गोपाल पंडित सद्यो हो, हर हर कथा पढ़े पुराण जियो। हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए, बेबान हर रंग गुर पावे। पिंड पत्तल किरिया दीवा, फुल हर सर पावे। हर पाया सतगुर बोलिया, हर मिलिया पुरख सुजान जियो। रामदास सोडी तिलक दिया, गुर शब्द सच निशान जियो। सतगुर पुरख जे बोलिया, गुरसिखा मन लई रजाए जियो। मोहरी पुत सनमुख होया, रामदास पैरी पाए जियो। सब पवै पैरी सतगुरु केरी, जिथे गुरु आप रखिया। कोई कर बखीली निवै नाही, फिर सतगुरु आण निवाया। हर गुरह भाणा दी वडियाई, तुर लिखिया लेख रजाए जियो। कह सुंदर सुनो संतो, सब जगत पैरी पाए जियो। राम कली महला पंजवां शंत, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। साजनड़ा मेरा साजनड़ा, निकट खलोयड़ा मेरा साजनड़ा। जानियड़ा हर जानियड़ा, नैन अलोयड़ा हर जानियड़ा। नैन अलोया घट घट सोया, हथ अमृत प्रिय गूड़ा। नाल होवंदा लह ना सकंदा, सुआओ ना जाने मूड़ा। माया मद माता होची बाता, मिलन न जाई भरम धड़ा। कहो नानक गुरबिन नाही सूझे, हर साजन सब कै निकट खड़ा। गोविंदा मेरे गोविंदा।

अपर अपारा कट कट अंतर सोहनिया एक दासी तारी सबल पसारी जी जंत लै मोहनिया जिसनो राखै सो सच भाखै गुर का शब्द बीचारा कहो नानक जो

सुगड़ सुजान सुगड़ सुजाना सद परधाना अमृत हर का नामा चाक अगानी सारंग पाने जिनके भाग मथाना तिन ही पाया तिन्ह ते आया सगल तिसै का माणु कहो नानक थिर तक निवासी सच तिसै दी बाणु मंगला हर मंगला मेरे प्रभ कह सुनिए मंगला सोहिलड़ा प्रभ सोहिलड़ा अनहद तुनिए सोहिलड़ा अनहद वाजे शब्द अगाजे नित नित जिसै वधाई सो प्रभ त्याई है सब किश पाई है मरे ना आवे जाई चूकी प्यासा पूर्ण आसा गुरमुख मिल निर्गुणी है।

हर त्याए मना खिन ना विसारी है, राम रामा राम रमा कंठ उर तारी है, उर तार हर हर पुरख पूरन पार ब्रह्म निरंजनो, पै दूर करता पाप हरता दुसह दुख भव खंडनो, जगदीश ईश गोपाल माधो गुण गोविंद बिचारी है, बिनवंत नानक मिल संग साधु दिन सरैन चितारी है, चरण कमल आधार जन का आसरा, माल मिल्क भंडार नाम अनंत धरा, नाम नरहर निदान जिनकै रस भोग एक नारायणा, रस रूप रंग अनंत बीठल सास सास त्याणा, किल विख हरना नाम पुनः चरना, नाम जम की त्रास हरा, बिनवंत नानक रास जन की चरण कमल है आसरा, गुण बेअंत स्वामी तेरे कोई ना जाने, देख चलत दयाल सुन भगत बखाने, जी जंत सब तुझ त्यावह पुरख पत परमेश्वरा, सर्ब जाचिक एक दाता करुणा मैं जगदीशरा, साधु संत सुजान सोई जिसे प्रभ जी माने, बिनवंत नानक करहो कृपा सोए तुझ पछाने, मोहे निर्गुण अनाथ सरनी आया, बल बल बल गुरुदेव जिन नाम दृढ़ाया, गुरु नाम दिया कुशल थिया सर्व इच्छा पुनिया, जल ने बुझाई शांत आई मिले चिरी बछुनिया, आनंद हरख सहज साचे महामंगल गुण गाया, बिनवंत नानक नाम प्रभ का गुरपुरे ते पाया, राम कली महला पंजवा रुण चुनो शब्द अनाहद, नित उठ गाइय संतन कै किल विख सब दुख बनासन, हर नाम जपिय गुरमंतन कै हर नाम लीजै अमयो पीजै, रैन दिनस अराधिय जोग दान अनेक क्रिया, लग चरण कमल है साधी है, पाओ भगत दयाल मोहन दुख सगले पर हरै, बिनवंत नानक तरै सागर त्याए स्वामी नर हरै, सुख सागर गोविंद सिमरन भगत गावह गुण तेरे राम, अंध मंगल गुर चरणी लागे पाए सुख कनेरे राम, सुख निदान मिलया दुख हरिया किरपा कर प्रभ राखिया, हर चरण लागा भ्रम पौ भागा हर नाम रसना भाखिया, हर एक चितवै प्रभ एक गावै हर एक दृष्टि आया, बिनवंत नानक प्रभ करी किरपा पूरा सतगुर पाया, मिल रही है प्रभ साध जना मिल हर कीर्तन सुनिए राम, दयाल प्रभु दामोदर माधो अंत न पाइए गुनिए राम, दयाल दुख हर शरण दाता सगल दुख निवारनो, मोह सोग बकार बिखड़े जपत नाम उदारनो, सब जी तेरे प्रभु मेरे कर कृपा सब रेण थीवा, बिनवंत नानक प्रभ मया कीजे नाम तेरा जप जीवा, राख लिए प्रभ भगत जना अपनी चरणी लाए राम, आठ पैर अपना प्रभ सिमरह है।

है कोई साजन संत जन नानक प्रभ मेलन हार बिन मिल बे शांत ना उपजै तिल पल रहन ना जाए हर साध शरनागति नानक आस पुजाय संत रोत शरद अडम्बरु असु कत के हर प्यास जियो खोजंती दर्शन फिरत तब मिलिए गुणतास जियो बिन कंत प्यारे नह सूख सारे हार कंगन त्रिक बना सुंदर सुजान चतुर बेती सास बिन जैसे तना ईत उत दह दिस अलोकन मन मिलन की प्रभ प्यास जियो बिनवंत नानक तार कृपा मेलो प्रभ गुणतास जियो सलोक जलन बुझी शीतल भये मन तन उपजी शांत नानक प्रभ पूरन मिले दुतिया बिनसी प्रांत साध पठाए आप हर हम तुम ते नाही दूर नानक भ्रम पै मिट गए रमन राम भरपूर शंत रुत सिसियर शीतल हर प्रगटे मंगर पोहो जियो जलन बुझी दर्श पाया बिन से माया त्रोह जियो सब काम पूरे मिल हजूरे हर चरण सेवक सेवया हार डोर शिंगार सब रस गुण गाओ अलख अपेवया पाओ भगत गोविंद बांछत जमना साकै जोहे जियो बिनवंत नानक प्रभ आप मेली तहना प्रेम बशोह जियो सलोक हर तन पाया सुहागनी दौलत नाही कीत संत संजोगी नानका ग्रह प्रगति प्रभ मीत नाद विनोद आनंद कोट प्रिय प्रीतम संग बने मन बांछत फल पाया हर नानक नाम भने संत हिम कर रुत मन भावती माघ फगण गुणवंत जियो सखी सहेली गाओ मंगलो ग्रह आए हर कंत जियो ग्रह लाल आए मन त्याए सेज सुंदर सोहिया वन त्रिण त्रे पवन भये हरिया देख दर्शन मोहिया मिले स्वामी इच्छ पुन्नी मन जपया निर्मल मंत जियो बिनवंत नानक नित करो रलिया हर मिले श्री तारकंत जियो सलोक संत सहाई जी के पवजल तारन हार सब ते उचे जानिए नानक नाम प्यार जिन जानिया से तरे से सूरे से बीर नानक तिन बलिहार न हर जप उतरे तीर संत चरण बराजत सब उपरे मिटिया सगल कलेश जियो आवन जावन दुख हरे हर भगत किया प्रवेश जियो हर रंग राते सहज माते तिल ना मन ते बिसरै तज आप सरनी परे चरनी सर्व गुण जगदीसरै गोविंद गुण निद श्री रंग स्वामी आद कौ आदेश जियो मिनवंत नानक मया तारहो जुग जुगो एक वेश जियो राम कली।

ब्रह्मा उत्पत्त ओंकार किया जिन चेता ओंकार शैल युग पै ओंकार वेद निर्मय ओंकार शब्द उधरी ओंकार गुरमुख तरी उनमें अखर सुनो विचार उनमें अखर त्रि भवन सार सुन पांडे क्या लिखो जंजाला लिख राम नाम गुरमुख गोपाला रहाउ सत्सै सब जग सहज उपाया तीन भवन एक ज्योति गुरमुख वस्त प्राप्त होवै चुन लै माणक मोती समझै सूझै पढ़ पढ़ बूझै अंत निरंतर साचा गुरमुख देखै सात संभाली बिन साचे जग काचा तद्दै धर्म धरे धर्मापुर गुणकारी मन पीरा तद्दै धूल पड़ै मुख मस्तक कंचन भय मनूरा तन धरनी तर आप अजोनी।

पाला उगव्या असरूप दिखावे कर कृपा अपने घर आवे ऊ नव बरसै नी चर तारा।

उगवै सूर असुर संघार है, ऊचो देख शब्द विचार है, ऊपर आदि अंत तिहो लोय, आपे करे कथा सुने सोय, ओ बधाता मन तन दे, ओ बधाता मन मुख सोय, रब जग जीवन अवर ना कोय, नानक नाम रते पत होय, राजन राम रवै हितकारी।

ठग लाहा नाम पूंजी वेसा नानक सच्ची पत सच्चा पातशाह आए विभूता जग जम पंथ आई न मेटन को समरथ आथ सैल नीच घर होए आथ देख निवै जिस दोए आथ होए ता मुगद सियाना भगत बिहूना जग बौराना सब मह वरतै इको सोए जिसनो कृपा करे तिस प्रगट होए।

गुणदाता विरला संसार, साची करनी गुर विचार, अगमय अगोचर कीमत नहीं पाए, ता मिली है जान ले मलाए, गुणवंती गुण सारे नीत, नानक गुरमत मिलिया नीत, काम क्रोध काया कौ गल, ज्यों कंचन सुहागा ढाल, कस कसवटी सह सोताओ, नदर सराफ बन्नी सचड़ाओ, जगत पशु अहंकाल कसाई, कर करते करनी कर पाई, जिन कीती तिन कीमत पाई, होर क्या कहिए किस कहन ना जाई, खोजत खोजत अमृत पिया, खिमा गही मन सतगुर दिया, खरा खरा आखै सब कोए, खरा रतन जुग चारे होए, खात पी अंत मुए नहीं जानिया, हिन मह मुए जा शब्द पछानिया, अस्थर चीत मरन मन मानिया, गुर किरपा ते नाम पछानिया, गगन गंभीर गगन अंतर वास, गुण गावै सुख सहज निवास, गया न आवै आए न जाय, गुर प्रसाद रह लिवलाय, गगन अगम अनाथ अजोनी, अस्थर चीत समाध सुगोनी, हर नाम चेत फिर पवह न जूनी, गुरमत सार होर नाम बिहूनी, घर दर फिर था की बहु तेरे, जात असंख अंत नहीं मेरे, केते मात पिता सुत धियां, केते गुर चेले फुन हुआ, काचे गुरते मुक्त ना हुआ, केती नार वर एक संभाल, गुरमुख मरण जीवन प्रभ नाल, दह दिस ढूंढ करै मह पाया, मेल भया सतगुरु मलाया, गुरमुख गावै गुरमुख बोलै, गुरमुख तोल तलावै तोलै, गुरमुख आवै जाए निसंग, पर हर मैल जलाए कलंक, गुरमुख नाद वेद विचार, गुरमुख मज्जन चज आचार, गुरमुख शब्द अमृत है सार, नानक गुरमुख पावै पार, चंचल चीत न रही ठाई, चोरी मिर्ग अंगूरी खाई, चरण कमल उर तारे चीत, चिर जीवन चेतन नित नीत, चिंतत ही दिसै सब कोई, चित है एक तही सुख होए, चित वसै राचै हर नाय, मुक्त भया पत स्यों घर जाय, सीजै दे खुलै एक गंड, छिया नित देखो जग हंड, धूप शाम जे सम कर जाण, बंधन काट मुक्त घर आण, छाया शूशी जगत भुलाना, लिखिया किरत तुरे परवाना, सीजै जोबन जरुआ सिरकाल, काया सीजै पई से बाल, जापै आप प्रभु तिहु लोई, जुग जुग

जागत जाग रहा तुद पावा, जा तू मेलहै ता तुझै समावा। जय जय कार जपो जगदीश, गुरमत मिलिया बीस अकीस। चख बोलन क्या जग स्यो वाद, झूर मरै देखै परमाद। जन्म मुए नहीं जीवन आसा, आए चले पय आस मरासा। चुर चुर चख माटी रा

पूजै, गुर का कहया अंक समावै, निर्मल सूचे साचो पावै, गुर सागर रतनी नहीं तोट, लाल पदार्थ साची अखोट, गुर कहया साकार कमाव हो, गुर की करनी काहे ताव हो, नानक गुरमत साच समाव हो, टूटै नेहो के बोलह सही, टूटै बाहा दुहू दिस गही, टूट परीत गई बुर बोल, दुर्मत पर हर छाडी ढोल, टूटै गंठ पड़ै विचार, गुर शब्दी घर कारज सार, लाहा साच न आवै टोटा, त्रे पवन ठाकुर प्रीतम मोटा, ठाको मनुआ राखो ठाई, ठहक मुई अब गुण पछताय, ठाकुर एक सबाई नार, बहुते वेश करे कूड़ियार, पर घर जाती ठाक रहाई, महल बलाई ठाक न पाई, शब्द सवारी साच प्यारी, साई सुहागन ठाकुर तारी, डोलत डोलत हे सखी, फाटे चीर सिंगार, दाहपन तन सुख नहीं, बिन डर बिन ठी डार, डरप मुई घर आपणै, दीठी कंत सुजान, दर राख्या गुरे आपणै, निरपौ नाम बखान, डूंगर वास तिखा कणी, जब देखा नहीं दूर, तिखा नवारी शब्द मन, अमृत पिया भरपूर, देह देह आखै सब कोई, जय भावै तै दे, गुरु द्वारै देवसी, तिखा नवारै सोई, टंडोलत टूंडत हौं फिरी, तह तह पवन करार, पारे तह ते तह पए, हौले निकसे पार, अमर अजाची हर मिली, तिनकै हौं बल जाऊं, तिनकी धूड़ अकुली है, संगत मेल मलाऊं, मन दिया गुर आपने, पाया निर्मल नाऊं, जिन नाम दिया तिस सेव सां, तिस बलिहार जाऊं, जो असारे सो ताहसी, तिस बिन अवर ना कोई, गुर प्रसादी तिस सम्मला, तां तन दुख ना होए, ना को मेरा किस गही, ना को हुआ ना हो।

कंध ग्रंत विण नावै क्यों छूटी है जाए रसातल अंत गणत गणावै अखरी अगणत साचा सोए अज्ञानी मतहीन है गुर बिन ज्ञान ना होए टूटी तंत्र बाब की वाजै नहीं वियोग विछड़िया मेलै प्रभु नानक कर संजोग तरवर काया पंख मन तरवर पंखी पंच तत चुगह मिले एक से तिनको फास नारंच।

कर मोए माया किसे ना साथ, हंस चले उठ डुमण माया भूली आथ, मन झूठा जम जोहया अवगुण चले नाल, मन मह मन उल्टो मरे जे गुण होवे नाल, मेरी मेरी कर मोए विणनावे दुख पाल, गढ़ मंदर महला कहां ज्यों बाजी दी बाण, नानक सच्चे नाम।

पुन आए गए पछताहे, लख चौरासी मेदनी कटै न वधै उताहे, से जन उभरे जिन हर पाया,

अपना तन मन आगै देव अस्त्र करता तू धनी तिस ही की मैं ओट गुण की मारी हो मुई शब्द रत्ती मन

राह गुरा पेहावला सर ढूंगर असगाहा मैं तन अवगुण चुर मुई बिन गुण क्यों कर जाह गुणिया गुण ले प्रब मिले क्यों तिन मिलो प्यार तिन ही जैसी थी रहा जप जप हृदय मुरार अवगुणी भरपूर है गुण पी वसह नाल बिन सतगुर गुण ना जापनी जिचर शब्द ना करे बीचार नस करिया घर संभले आए वजह लिखाए कार कमाव है सिर धनी लाहा पल्ले पाए लभ लोभ बुरे आईया छोडे मनहो विसार गढ़ दोही पातशाह की कदे ना आवे हार चाकर कहिए खसम का सौहे उत्तर दे वजहो गवाए अपना तखत ना बैसह से प्रीतम हथ वडे आईया जय भावे तैं दे आप करे किसे आखिए अवर ना कोई करे बीजो सूजे को नहीं बह दलीचा पाए नरक नवारन नरह नर साचो साच नाय वण तृण ढूंढत फिर रही मन मह करो बीचार लाल रतन बहु मान की सतगुर हाथ भंडार उत्तम होआ प्रभ मिले एक मन एक पाए नानक प्रीतम रस मिले लाहा लै परथाए रचना राच जिन रची जिन सिरिया आकार गुरमुख बेअंत त्याई है अंत ना पारावार हड़ाड़ रूड़ा हर जियो सोई तिस बिन राजा अवर ना कोई हड़ाड़ गारड़ तुम सुनो हर वस्तै मन माहि गुर प्रसादी हर पाई है मत को भरम पलाहि सो साहो साचा जिस हर धन रास गुरमुख पूरा तिस साबास रूड़ी बाणी हर पाया गुर शब्दी बीचार आप गया दुख कटिया हर वर पाया नार सोयना रूपा संची है धन का चा बिखशार साहो सदाए संच धन दुबदा हुए खुआर सचियारी सच संचिया।

खरा तू खिमा सच सुख पाए, खर्च खरा तन ध्यान तू आपे वसह शरीर, मन तन मुख जापै सदा गुण अंतर मन धीर, हों मैं खपै खपाए सी बीजो अथ बेकार, जंत अपाय विच पायन करता अलग अपार, सृष्टि प्यो न जाने कोए सृष्टा करै सुनिश्चो होए, संपै को ईश्वर त्याई संपै पुरब लिखे की पाई है, संपै कारण चाकर चोर संपै साथ न चालै होर, बिन साचे नहीं दरगह मान हर रस पीवै छुटै निधान, हेरत हेरत हे सखी होए रही हैरान, हौ हौ करती मैं मुई शब्द रवै मन ज्ञान, हार डोर कंकन घने कर था की शिंगार, मिल प्रीतम सुख पाया सगल गुणा गलहार, नानक गुरमुख पाई हर स्यों प्रीत प्यार, हर बिन किन सुख पाया देखो हो मन बीचार, हर पढ़ना हर बुझना हर स्यों रखो प्यार, हर जपिए हर त्याई हर का नाम आधार, लेख न मिटई हे सखी जो लिखिया करतार, आपे कारण जिन किया कर कृपा पग धार, करते हथ वडियाईया बूझो हो गुर बीचार, लिखिया फेर न सकी है ज्यों भावी त्यों सार, नदर तेरी सुख पाया नानक शब्द विचार, मनमुख भूले पच मोए उबरे गुर बीचार, जे पुरख नदर ना आवे तिसका क्या कर कहया जाए, बलिहारी गुर अपने जिन हिरदय दिता दिखाए, पांदा पढ़िया आखी विद्या विचरै सहज सुभाए, विद्या सोधै तत लहै राम नाम लिवलाए, मनमुख विद्या बिकरदा बिख खटै बिख खाए, मूरख शब्द ना चीनई सूझ बूझ नह काए, पांदा गुरमुख आखी चाटड़िया मत दे, नाम संभालो नाम संग्रहो लाहा जग महले, सच्ची पट्टी सच मन पढ़िए शब्द सो सार, नानक सो पढ़िया सो पंडित बीना जिस राम नाम गलहार, राम कली महला पहला सिद्ध गोष्ट एक ओंकार, सतगुर प्रसाद सिद्ध सभा कर आसन बैठे संत सभा जयकारू, तिस आगे रह रास हमारी साचा अपर अपारू, मस्तक काट तरी तिस आगे तन मन आगे देऊ, नानक संत मिले सच पाईए सहज पाई जस लेऊ, क्या भविए सच सूचा होए साच शब्द बिन मुक्त ना कोए, रहाओ कौन तुम्हें क्या नाओ तुम्हारा कौन मार्ग कौन सुआओ, साच कहो अरदास हमारी हों संत जना बल जाओ, कह बैसो हो कह रही है बाले कह आवो कह जाओ, नानक बोले सुन बैरागी क्या तुम्हारा राहु, घट घट बैस निरंतर रही है चल है सतगुर भाई, सहजे आई हुक्म सदाई नानक सदा रजाई, आसन बैसन फिर नारायण ऐसी गुरमत पाई, गुरमुख बूझै आप पछाणे सच्चे सच समाई, दुनिया सागर दुत्तर कहिए क्यों कर पाईए पारू, चरपट बोले औदू नानक देहो सच्चा बीचारू, आपे आखे आपे समझे तिस क्या उत्तर दीजे, साच कहो तुम पार ग्रामी तुझ क्या बैसन दीजे, जैसे जल मह कमल नरालम

वह गत मित शब्दे पाई आद को विस्माद विचार कथियले सुन निरंतर वास लिया अकलपत मुंदरा गुरु ज्ञान विचारियले कट कट साचा सर्ब जिया गुर बचनी अवगत समाइय तत् निरंजन सहज लह नानक दूजी कार न करनी सेवै सिख सो खोज लह हुक्म विस्माद हुक्म पछाण जी जुगत सच जाने सोई आप मेट निरालम होवै अंतर साच जोगी कहिए सोई अवगत हो निर्मायल उपजे निर्गुण ते सरगुण थिया सतगुर परचै परम पद पाईए साचै शब्द समाए लिया एक एक ओ सच एका जाने हौ मैं दूजा दूर किया सो जोगी गुर शब्द पछाणै अंतर कमल प्रगास थिया जीवत मरै ता सब किछ सूझै।

नानक साचर ते सुख जान, गुरमुख साचे का भउ पावे, गुरमुख बाणी अकाड़ कढ़ावे, गुरमुख निर्मल हर गुण गावे, गुरमुख पवित्र परम पद पावे, गुरमुख रोम रोम हर त्यावे, नानक गुरमुख साच समावे, गुरमुख परचै वेद बीचारी, गुरमुख परचै तरियै तारी, गुरमुख परचै सो शब्द ज्ञानी, गुरमुख परचै अंतर विद जानी, गुरमुख पाईऐ अलाखे अपार, नानक गुरमुख मुक्त द्वार, गुरमुख अकथ कथै बीचार, गुरमुख निबहै सब परवार, गुरमुख जपियै अंतर प्यार, गुरमुख पाईऐ शब्द अचार, शब्द भेद जाणै जानाई, नानक होमै जाल समाई, गुरमुख धरती साचै साजी, तिसमह उपत खपत सो बाजी, गुर कै शब्द रपै रंग लाई, साच रतो पत स्यो घर जाय, साच शब्द बिन पत नहीं पावै, नानक बिन नावै क्यों साच समावै, गुरमुख अष्ट सिद्धि सब बुद्धि, गुरमुख भवजल तरियै सच सुधि, गुरमुख सारे अपसर विद जानै, गुरमुख पर विरत नर विरत पछाणै, गुरमुख तारे पार उतारी, नानक गुरमुख शब्द निसतारी, नामे राते होमै जाए, नाम रते सच रही समाई, नाम रते जोग जुगत बीचार, नाम रते पावह मूख द्वार, नाम रते त्रे भवन सोजी होए, नानक नाम रते सदा सुख होए, नाम रते सिद्ध गोष्ट होए, नाम रते सदा तप होए, नाम रते सच करनी सार, नाम रते गुण ज्ञान बीचार, बिन नावे बोले सब वेकार, नानक नाम रते तिन को जयकार, पूरे गुरते नाम पाया जाय, जोग जुगत सच रह समाय, बारह मह जोगी परमाय, सन्यासी छे चार, गुर कै शब्द जो मर जीवै, सो पाए मुख द्वार, बिन शब्द सब दूजै लागे, देखो हृदय बीचार, नानक वड्डे से वड भागी, जिन्नी सच रखिया उर धार, गुरमुख रतन लह लिवलाय, गुरमुख परखै रतन सुभाय, गुरमुख साची कार कमाय, गुरमुख साचे मन पतियाय, गुरमुख अलख लखाए तिस भावै, नानक गुरमुख चोट ना खावै, गुरमुख नाम दान इशनान, गुरमुख लागै सहज ध्यान, गुरमुख पावै दरगाह मान, गुरमुख पौ भंजन प्रधान, गुरमुख करनी कार कराई, नानक गुरमुख मेल मलाय, गुरमुख शास्त्र सिमरत वेद, गुरमुख पावै घट घट भेद, गुरमुख वैर विरोध गवावै, गुरमुख सगली गणत मटावै, गुरमुख राम नाम रंग राता, नानक गुरमुख खसम पछाता, बिन गुर भरमै आवै जाई।

आपना पुन्न घट घट सुन का जाने पेव आदि पुरख निरंजन देव जो जन नाम निरंजन राता नानक सोई पुरख विधाता सुनो सुन कह सब कोई अनहत सुन कहां ते होई अनहत सुन रते से कैसे जिस ते उपजे तिस ही जैसे कोई जन्म ना मरह ना आवह जाहि नानक गुरमुख मन समझाहि नौ सरस भार दसवै पूरे तह अनहत सुन बजावह तूरे साचै राचे देख हजूरे घट घट साच रहिया पर पूरे गुप्ती बाणी प्रगट होए नानक परख लए सच सोए सहज भाए मिलिए सुख होवे गुरमुख जागे नींद ना सोवे सुन शब्द अपरंपर तारै कहते मुक्त शब्द निस्तारै गुर की दीखिया से सच राते नानक आप गवाए मिलन नहीं प्रांते कबुद्ध चुआवे सो के तठाए क्यों तत न बूझे चोटा खाए जम दर बाते कोई न राखे बिन शब्द नाही पत साखे क्यों कर बूझे पावे पार नानक मन मुख ना बुझे गवार कबुद्ध मिटे गुर शब्द बीचार सतगुर भेटे मुख द्वार तत न चीने मन मुख जल जाए दुरमत विछड़ चोटा खाए माने हुक्म सबे गुण ज्ञान नानक दरगाह पावे मान साच वखर धन पल्ले होए आप तरै तारे पी सोए सहज रत्ता बूझे पत होए ता की कीमत करे ना कोई जह देखा तह रहे आसमाए नानक पार परे सच पाए सो शब्द का कहां वास कथियले जित तरिया भवजल संसारो त्रै सत अंगुल वाई कही है तिस कहो कवन अधारो बोले खेले अस्थिर होवे क्यों कर अलख लखाए सुन स्वामी सच नानक प्रणवे अपने मन समझाए गुरमुख शब्दे सच लिव लागे कर नदरी मेल मलाए आपे दाना आपे बीना पूरे भाग समाए सो शब्द को निरंतर वास अलखं जह देखा तह सोई पवन का वासा सुन निवासा अकाल कला धर सोई नदर करे शब्द घट मह वसै विचो भरम गवाए तन मन निर्मल निर्मल बाणी नामो मन वसाए शब्द गुरु भव सागर तरिया इत उत एको जाने जेहन वर्ण नहीं छाया माया नानक शब्द पछाणे त्रै सत अंगुल वाई औदू सुन सच आहार गुरमुख बुले तत बिरोले चीने अलाखे अपारू त्रै गुण मेटे शब्द वसाई ता मन चूटे अहंकारू

पाए नानक त्यों ते ऊपर साचा सतगुर शब्द समाय मन का जियो पवन कथी अले पवन कहाँ रस खाई ज्ञान की मुद्रा कवन औदू सिद्ध की कवन कमाई बिन शब्द रस न आवे औदू हम मैं प्यास न जाई शब्द रत्ते अमृत रस पाया साचे रहे अगाई कवन बुद्ध जित अस्थिर रही है कित भोजन तृपता सह नानक दुख सुख सम कर जापै सतगुर ते काल ना ग्रासै रंग ना राता रस नहीं माता बिन गुर शब्द है जल बल ताता बिंद ना राखिया शब्द ना भाखिया पवन ना साध्या सच ना अराध्या कथ कथा ले सम कर रह तो नानक आत्म राम कौल है।

आत्म सुख धारी सच अराध्या गुरमुख तर तारी नानक बूझै को विचारी एहो मन मैगल कहां बसी अले कहां बसै एहो पवना कहां बसै सो शब्द औदू ताको चूकै मन का पवना नदर करे ता सतगुर मेले ता निज करवासा एहो मन पाए आपे आप खाए ता निर्मल होए तावत वर्ज रहाए क्यों मूल पछाणे आत्म जाने क्यों सस कर सूर समावे गुरमुख मैं विचों खोवे तव नानक सहज समावे एहो मन निश्चल हृदय बसी अली गुरमुख मूल पछाण रह नाभ पवन घर आसन बैसै गुरमुख खोजत तत लह सो शब्द निरंतर निज घर आसै त्रे भवन जोत सो शब्द लह।

सच सपाखै सच रपै रंग कबहू ना जावे जां एहो हिरदा देह ना होती तो मन कैठै रहता नाभ कमल अस्थंभ ना होतो ता पवन कमन घर सहता रूप ना हो तो रेख ना काई ता शब्द कहां लिवलाई रखत बिंद की मड़ी ना होती मित कीमत नहीं पाई वर्ण भेख असरूप ना जापी क्यों कर जापस साचा नानक नाम रते बैरागी इब तब साचो साचा हिरदा दे ना होती ओदू तौ मन सुन रह बैरागी नाभ कमल अस्थंभ ना होतो ता निज कर बस तौ पवन अनरागी रूप ना रेखिया जात ना होती तौ अकुल लीन रहतो शब्द सोसार गौन गगन जब तब है ना होतो त्रे पवन ज्योत आपे निरंकार वर्ण भेख असरूप सो एको एको शब्द वडाणी साच बिना सूचा को नाही नानक अकथ कहानी कित कित बिद जागे उपजै पुरखा कित कित दुख बिन सजाई हउमै विच जग उपजै पुरखा नाम विसरै दुख पाई गुरमुख होवै सो ज्ञान तत बीचारै हउमै शब्द जलाई तन मन निर्मल निर्मल बाणी साचै रहै समाई नामे नाम रहै बैरागी साच रखिया उर धारी नानक बिन नावै जोग कदे ना होवै देखो हृदय बीचारी गुरमुख साच शब्द बीचारै कोई गुरमुख सच बाणी प्रगट होई गुरमुख मन भीजै बिरला बूझै कोई गुरमुख निज घर वासा होई गुरमुख जोगी जुगत पछाणै गुरमुख नानक एको जाणै बिन सतगुर सेवे जोग ना होई बिन सतगुर भेटे मुक्त ना कोई बिन सतगुर भेटे नाम पाया ना जाई बिन सतगुर भेटे महा दुख पाई बिन सतगुर भेटे महा गर्भ गोबार नानक बिन गुर मुआ जन्म हार गुरमुख मन जीता हो मैं मार गुरमुख साच रखिया उर धार गुरमुख जग जीता जम काल मार बिदार गुरमुख दरगाह ना आवै हार गुरमुख मेल मलाए सो जाणै नानक गुरमुख शब्द पछाणै शब्दै काल बेड़ा सुन तू औदू बिन नावै जोग ना होई नामे राते अन दिन माते नामै ते सुख होई नामै ही ते सब प्रगट होवै नामे सोजी पाई।

है सहसा गया बलाय, ना किस बीजे ना उगवै, जो बख्शे सो खाय, अम्ब है सेती अम्ब रलिया, बहुड़ ना निकसिया जाय, नानक गुरमुख।

कोई, राम कसौटी सो सहै, जो मर जीवा होए महला तीजा। क्यों कर इहो मन मारिए, क्यों कर मृतक होए, कहया शब्द ना मानी, हों मैं छड़ै ना कोई, गुर प्रसादी हों मैं छुट्टै, जीवन मुक्त सो होए। नानक जिसनो बख्शे तिस मिलै, तिस बिघन ना लागै कोई, महला तीजा। जीवत मरना सब को कह, जीवन मुक्त क्यों होए, भय का संयम जे करे, दारू भाऊ लाए, अन दिन गुण गावे सुख सहजे, बिख भव जल नाम तरे, नानक गुरमुख पाईए, जा कौ नदर करे पौड़ी, दूजा भाऊ रचायो, त्रै गुण वरतारा, ब्रह्मा विष्णु महेश उपायन, हुक्म कमावन कारा, पंडित पढ़ दे जोत की, ना बूझह बिचारा, सब किस तेरा खेल है, सच सिरजन हारा, जिस पावै तिस बख्श लै, सच शब्द समाई, श्लोक महला तीजा, मन का झूठा झूठ कमावै, माया नू फिरै तपा सदावै, परमे भूला सब तीर्थ गह, ओह तपा कैसे परम गत लह, गुर प्रसादी को सच कमावै, नानक सो तपा मूखंतर पावै, महला तीजा, सो तपा जे इहो तप काले, सतगुर नो मिलै शब्द संभाले, सतगुर की सेवा इहो तप परवान, नानक सो तपा दरगह पावै मान पौड़ी। रात दिनस उपायन संसार की वर्तन, गुरमति घट चानना अनेर बनासन, हुक्मे ही सब साजियन रबिया सब वन त्रिन, सब किसे आपे आप है, गुरमुख सदा हर भन, शब्दे ही सोजी पई, सच्चै आप बुझाई, श्लोक महला तीजा, अभ्यागत ए ना आखियन, जिनके चित में भरम तिस दै दितै नानका, तेहो जेहा धर्म अपै निरंजन परम पद, ताका भूखा होए तिसका भोजन नानका, विरला पाए कोई महला तीजा, अभ्यागत एह ना आखियन, जे पर कर भोजन करेन, उदरै कारण अपने बहले भेख करेन, अभ्यागत से ही नानका, जे आत्म गौण करेन, पाल लहन सहो अपना, निज कार्य रहन करेन पौड़ी। अंबर धरत विछोड़ियन, विच सच्चा असराव, घर दर सबो सच है, जिस विच सच्चा नाव, सब सच्चा हुक्म वर्तदा, गुरमुख सच समाव, सच्चा आप तखत सच्चा, वह सच्चा करे नियाव, सब सच्चो सच वर्तदा, गुरमुख अलख लखाई।

नानक नौ निद पाई जे चलै तिसै रजाय महला तीजा सहजे सतगुर ना सेवियो विच हों मैं जन्म बनास रसना हर रसना चखियो कमल ना होयो परगास भिख खादी मन मुख मोआ माया मोहे विनाश एक सहर के नाम विण त्रिग जीवन त्रिग वास जाय आपे नदर करे प्रभ सच्चा ता होवै दासन दास ता अन दिन सेवा करे सतगुरु की कबह न छोड़ै पास ज्यों जल मैं कमल अलिप तो वरतै त्यों विचे ग्रह उदास जन नानक करे कराया सबको ज्यों पावै त्यों हर गुण तास पौड़ी।

लोभ रत विचों जाए। ज्यों बैसंतर धात सुध होए त्यों हर का भउ दुरमत मैल गुआए। नानक तेजन सोहणी जो रते हर रंग लाए। महला तीजा राम कली राम मन वसिया तां बनिया शिंगार। गुर कै शब्द कमल बिगसिया तां सौंपिया भगत भंडार।

विचार सतगुर मिले तन आम दड़ाई सब किल विख कटन हार नाम जपे नामो अरादी तिस जन को करहो सब नमस्कार मल कूड़ी नाम उतारियन जप नाम हुआ सचियार जन नानक जिस दे एह चलत है सो जीवो देवन हार पौड़ी तुद जेवड़ दाता नाही किसे आख सुनाई है गुर प्रसादी पाए जिथो हो मैं जाई है रस कस सादा बाहरा सच्ची वड्याई है जिसनो बख्शे तिस दे आप ले मलाई है घट अंतर अमृत रखियोन गुरमुख किसे प्याई सलोक महला तीजा बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करेन जे सतगुरु भावै सो मन लैन से ही कर्म करेन जाए पुछो सिमरत शास्त्र ब्यास सुख नारद बचन सब सृष्ट करेन सच्चै लाए सच लगे सदा सच समालेन नानक आए से परवान पहे जे सगले कुल तारेन महला तीजा गुरु जिना का अंधला सिख पी अंधे कर्म करेन ओए भाणे चलन अपने नित झूठो झूठ बोलेन कूड़ कसत कमावंदे पर निंदा सदा करेन ओए आप डुबे पर निंदका सगले कुल डुबेन नानक जित ओए लाए तित लगे ओए बपड़े क्या करेन पौड़ी सब नजरी अंदर रखदा जेती सिहत सब कीती एक कूड़ को सत लायन मनमुख वे गूती गुरमुख सदा ते आई है अंदर हर प्रीति जिनको पोतै पुन है इन वात सुपीती नानक नाम ते आई है सच सिफत सुनाई सलोक महला पहला सती पाप कर सत कमाही गुरु दीखिया घर देवन जाहि स्त्री पुरख है खटिया भाव भावै आवो भावै जाओ शास्त्र वेद न माने कोई आपो आपे पूजा होए काजी होए कै बह न्याई फेरे तस्बी करे खुदाई बड्डी लै कै हक गवाए जे को पुछै ता पढ़ सुनाई तुरक मंत्र कन हृदय समाई लोक महावह चाड़ी खाई चौंका दे कै सुचा होए ऐसा हिंदू वेखो कोए जोगी गिरही जटा बेपूत आगे पाछे रोवह पूत जोग न पाया जुगत गवाई कित कारण सिर शाही पाई।

संताप औ हट पट्टण में है भीख्या करे सो अवधूती सेवपुर चढ़े बोले गोरख सत स्वरूप परम तंत मह रेख न रूप महला पहला सो उदासी जे पाले उदास अर्ध उर्ध करे निरंजन वास चंद सूरज की पाए गंड जिस उदासी का पड़े न कंद बोले गोपी चंद सत स्वरूप परम तंत मह रेख न रूप महला पहला सो पाखंडी जे काया पखाली काया की अगन ब्रह्म पर जाली सुपने बिंद न दे झरना तिस पाखंडी जरा न मरना बोले चरपट सत स्वरूप परम तंत मह रेख न रूप महला पहला सो बैरागी जे उल्टे ब्रह्म गगन मंडल मह रूपै थम अहनस अंतर रह ध्यान ए बैरागी सत समान।

आई पौड़ी। हर मंदिर सोई आखी है जिथों हर जाता, मानस दे गुरबचनी पाया सब आत्म राम चाता। बाहर मूल ना खोजिए कर माहे बधाता, मनमुख हर मंदिर की सार ना।

मूर्ख के क्या लक्षण है, क्या मूर्ख का करना। मूर्ख ओह जे मुग्ध है अहंकारे मरना, एत कमाण सदा दुख दुख ही मह रहना। अत प्यारा पवे खुहु केहु संयम करना, गुरमुख होए सो करे विचार उस अलिप्तो रहना। हर नाम जपे आप उधरे उस पिछे डुब दे पी तरना, नानक जो तिस पावे सो करे जो दे सो सहना। महला पहला नानक आखे रे मना, सुनिए सिख सही लेखा रब मगेसिया, बैठा कड वही तलबा पौसन आकिया बाकी जिना रही। अजराइल फरिश्ता हुसी आए तई, आवन जान ना सुजई पीड़ी गली फही। कूड़न खुटे नानका ओड़क सच रही, पौड़ी हर का सब शरीर है, हर रब रहया सब आपे। हर की कीमत ना पवे किस कहन ना जापे, गुर प्रसादी सलाही है हर भगती रापे। सब मन तन हरिया होया अहंकार गुआपे, सब किस हर का खेल है गुरमुख किसे बुझाई। श्लोक महला पहला सहंसर दान दे इंद्र रोआया, परशुराम रोवे घर आया अजय सो रोवे भीख्या खाए। ऐसी दरगाह मिले सजाई रोवे राम निकाला पया, सीता लक्ष्मण बिछड़ गया रोवे दह सिर लंक गवाए। जिन सीता आंदी दौरू आए रोवे है पांडव भये मजूर, जिनकै स्वामी रहत हदूर रोवे जनमेजा खोए गया। एकी कारण पापी भया रोवे है सेख मसाइक पीर, अंतकाल मत लागे पीड़ रोवे है राजे कन पड़ाए। कर कर मांग है भीख्या जाए रोवे है किरपन संच है धन जाए। पंडित रोवे है ज्ञान गवाए, बाली रोवे नाहे पतार, नानक दुखिया सब संसार। मन्ने नाओ सोई जन जाए औरी कर्म ना लेख लाए। महला दूजा जप तप सब किश मन्ने है, अवर कारा सब बाद नानक मन्या मन्नी है। बुझिए गुर प्रसाद पौड़ी काया हंस तुर मेल, करतै लिख पाया सब मैं गुप्त वर्तदा गुरमुख प्रगटाया। गुण गावे गुण उच्चरै गुण माहि सुमाया, सच्ची बाणी सच है सच मेल मलाया। सब किछे आपे आप है आपे दे वड़ियाई। श्लोक महला दूजा नानक अंधा होए कै, रत्ना

दूजै भाए बोलै, दूजै भाए सदा दुख है, नित नीर वरोलै, गुरमुख नाम त्याई है, मत तत कडोलै, अंतर परगास घट चानना, हर लद्दा टोलै, आपे परम भुलाए दा किस कहण ना जाई। श्लोक महला दूजा, नानक।

सुई धागा गंढे माह पाख केहो चले नाही करी मोहत किस हंड सच पराणा हुए नाही सीता कदे ना पाटे नानक साहिब सचो सच्चा किचर जापी जापे महला पहला सच की काती सच सब सार घाड़त तिसकी अपर।

रहा बंकुड़ा बंके का यसवार गर्भना की जय नानका माते सिर आवे पार पौड़ी सो सत संगत शब्द मिले जो गुरमुख चले सच ध्यान से सके जिन हर खर्च धन पल्ले भगत सोहन गुण गाम दे गुरमत अचले रतन विचार मन वस्या गुर कै शब्द भले आपे मेल मलाएदा आपे दे वड्याई सलोक महला तीजा आसा अंदर सब को कोई निराशा हुए नानक जो मर जीव्या सहला आया सुए महला तीजा ना किस आसा हथ है क्यों निराशा हुए क्या करे एह बपड़ी जा

निर्जल एहो तन सास सास अराधे निर्मल सोए जन अंतर जामी अगम रसना एक पन राव रहे आसरबत नानक बल जाई। श्लोक महला पहला सरवर हंस तुरे ही मेला खसमै वै पाणा सरवर अंदर ही रामोती सो हंसा का खाना बगला कागना रही सरवर

प्रभ सेविया। तिस जेवड़ अवर ना कोई पौड़ी, देवन हार दतार कित मुख सलाहिया। जिस रखै कृपा तार रिजक समाहिया, कोई ना किस ही वस सबना एक तार। पाले बालक वांग दे कै आप कर, करदा अनद बनोद किशु ना जानिए। सर्ब धार समरथ हो तिस कुरबाणीए, गाइए रात दिनंत गावन जोगिया। जो गुर की पैरी पाहे तिन्नी हर रस भोगिया। सलोक महला पंजवां, भीड़ो मोक लाई कीतियन, सब रखे कटंबे नाल कारज आप सवारियन। सो प्रभ सदा संभाल, प्रभ मात पिता कंठ लाईंदा, लहुड़े बालक पाल। दयाल हुए सब जी जंतर, हर नानक नदर निहाल। महला पंजवां, बिन तुद होर जे मंगना, सिर दुखां कै दुख। देह नाम संतोखिया, उतरै मन की भुख। गुरवण तिन हरिया कीतिया, नानक क्या मनुख। पौड़ी सो ऐसा दातार, मनो ना विसरै। घड़ी ना मोत चसा, तिस बिन ना सरै। अंतर बाहर संग क्या को लुक करै। जिस पत रखै आप सो भवजल तरै। भगत ज्ञानी तपा जिस कृपा करै, सो पूरा प्रधान जिसनो बल धरै। जिसै जराए आप सोई अजर जरै, तिस ही मिलिया सच मंत्र गुरमन धरै। सलोक महला पंजवां, धन सुराग सुरंगड़े अलापत सब तिख जाय। धन सो जंत सुहावड़े जो गुरमुख जप दे नाउ। जिन्नी एक मन एक अरादिया, तिन सद बलिहारै जाउ। तिन की धूड़ हम बाछ दे, करमी पल्लै पाए। जो रते रंग गोविंद कै हो तिन बलिहारै जाउ। आखा बिरथा जी की हर सज्जन में लोहराए। गुर पूरै मेलाया, जन्म मरण दुख जाए। जन नानक पाया अगम रूप।

तार तन सो दिन संजोगड़ा जित डिठा गुर दरसार मन किया इच्छा पूरिया हर पाया अगम अपार हम मैं टुटा मोहड़ा एक सच नाम आधार जन नानक लगा सेव हर उदरिया सगल संसार पौड़ी सिफत सलाहन भगत विरले दितियन सौंपे जिस भंडार फिर पुछ ना लीतियन जिसनो लगा रंग से रंग रत्या ओना इको नाम आधार इका उन पत्या ओना पिछे जग पुंचे भू गई ओना प्यारा रब ओना हां जो गई जिस मिलया गुर आए तिन प्रभ जानिया हौ बलिहारी तिन जे खसम है पाणिया सलोक महला पंजवा हर इक सह नाल मैं दोस्ती हर इक सह नाल मैं रंग हर इको मेरा सजनो हर इक सह नाल मैं संग हर इक सह नाल मैं गोसके मुह मैला करै ना भंग जाने बिरता जी की कदे ना मोड़ै रंग हर इको मेरा मसलती पन्नन करन समरथ हर इको मेरा दातार है सिर दात्या जग हाथ हर इक सह दी मैं टेक है जो सिर सबना समरथ सतगुर संत मलाया मस्तक तर कै हाथ वड्डा साहिब गुरु मलाया जिन तारिया सगल जगत मन किया इच्छा पूरिया पाया तुर संजोग नानक पाया सच नाम सद ही भोगे भोग महला पंजवा मन मुखा केरी दोस्ती

देहो दर्स मन प्यार पौड़ी, जिस तू आवह चेत तिसनु सदा सुख, जिस तू आवह चेता

सुवारिया जिस तू आवह चेता सो परवान जन जिस तू आवह चेता बहुता तिस धन जिस तू आवह चित सो वड परवारिया जिस तू आवह चित तिन कुल उधारिया। सलोक महला पंजवा अंदरों अन्ना बारहों अन्ना कूड़ी कूड़ी गावे देही तो वह चक्र बनाए।

हर हर कहावे वैष्णो नाम कर्म हो जुगता तोह कुटे क्या फल पावे हंसा विच बैठा भग न बनी नित बैठा मच्छी नो तार लावे जां हंस सभा विच

बगला मत हुए मन लखावे जित को लाया तित ही लागा किस दोष दिच्चे जा हर एवै पावे सतगुर सरवर रतनी परपूरे जिस प्राप्त सो पावे सिख हंस सरवर इकट्ठे होए सतगुर कै हुक्मावे रतन पदार्थ माणक सरवर परपूरे खाए खर्च रहे टूट न आवे सरवर हंस दूर न होई करते एवै पावे जन नानक जिस दै मस्तक भाग तुर लिखिया सो सिख गुरु पह आवे आप तरिया कुटंब सब तारी सब

उन गुण गोविंद गाहि सब सैनो कृपाल समाली साहे साहे बिरथा कोई न जाय जे आवे तुदे आहि। श्लोक महला पंजवा दूजा तिस ना बजायो हो पार ब्रह्म नाम देहो आधार अगम अगोचर साहिबो समरथ सच दातार तू निश्चल निर्वैर सच सच्चा तुद दरबार कीमत कहन ना जाइए अंत ना पारावार प्रभ छोड़ होर जे मंगना सब बिखिया रस शार से सुखिए सच साहसे जिन सच्चा व्यवहार जिन्ना लगी प्रीत प्रभ नाम सहज सुख सार नानक एक अर

ना तू आवह वस बहुता दान दे सब को तेरे वस अगम अगोचरा तू भगतां कै वस भगतां तान तेरा। स्लोक।

भोग हरख आनंद हुक्मी जपे निरोधर गुरमंत हुक्मी आवन जान रहाय नानक जाको भगती लाई पौड़ी हौ तिस ढाडी कुर्बान जे तेरा सेवदार हौ तिस ढाडी बलिहार जे गावे गुण अपार सो ढाडी धन धन जिस लोड़े निरंकार सो ढाडी भागठ जिस सत्या द्वार बार वो ढाडी तुद त्याए कलाने दिन रैनार मंगै अमृत नाम ना आवे कदे हार कपड़ भोजन सच रहंदा लिवै धार सो ढाडी गुणवंत।

मन तन हृदय सिमर हर आठ पहर गुण गाओ। उपदेश सुनो तुम गुर सिखो सच्चा एह सुआउ। जन्म पदार्थ सफल होए मन मह लायो पाओ। सुख सहज आनंद घना प्रभ जपत्या दुख जाए। नानक नाम जपत सुख उपजे दरगाह पाईए थाउ। महला पंजवा नानक नाम त्याई है गुरपूरा मत दे। भाणे जप तप संयम भाणे ही कढ ले। भाणे जून पवाई है भाणे बख्श करे। भाणे दुख सुख भोगी है भाणे कर्म करे। भाणे मिट्टी साज कै भाणे जोत तरे। भाणे भोग पगाए दा भाणे मनह करे। भाणे नरक सुरगे अवतारे भाणे धरन परे। भाणे ही जिस भगती लाए नानक विरले पौड़ी। वडियाई सच्चे नाम की हो जीवा सुन सुने। पशु प्रेत अज्ञान उधारे एक खाने। जिनस रहन तेरा नाउ सदा सद जापी है। तृष्णा भुख विकराल नाए तेरे त्रापी है। रोग सोग दुख वंजे जिस नाउ मन वसे तिसह प्राप्त लाल। जो गुर शब्दी रसे खंड ब्रह्मांड बेअंत उदाहरण हारिया। तेरी सोभा तुद सच्चे मेरे प्यारिया। श्लोक महला पंजवा मित्र प्यारा नानक जी मैं छड गवाया। रंग कसुंबै भुली तौ सज्जन की मैं कीम ना पाउंदी। हौ तुद बिन अड ना लहंदी। महला पंजवा सस वरायण नानक जीओ ससुरावादी जेठो पौ पौलू है। हबे भस पुणेंदे वतन जा मैं सज्जन तू है पौड़ी। जिस तू बुठा चित तिस दर्द निवारणो। जिस तू बुठा चित तिस कदे ना हारनो। जिस मिलिया पूरा गुरु सो सर पर तारनो। जिसनो लाए सच तिस सच संभालनो। जिस आया हाथ निदान सो रहया पालनो। जिसनो एको रंग भगत सो जान।

मेरा अंदर ठंडा गुरदर्शन देख निहाली महला पंजवा हठ मंजाहू मैं मानक लद्दा मुल ना किदा मैं कू सतगुर दिता ढूंढ वजाई थिया थिता जन्म पदार्थ नानक जिता पौड़ी जिसका मस्तक कर्म होए सो सेवा लागा जिस गुरमिल कमल परगासिया सुवन दिन जागा लगा रंग चरनार बिंद सब भ्रम पौ भागा आत्म जिता गुरमती आगंजत पागा जिसह त्याया पार ब्रह्म सो कल मह तागा साधु संगत निर्मला अठ सठ मज नागा जिस प्रभ मिलिया आपना सो पुरख सुभागा नानक तिस बलिहार ने जिस एवड भागा।

दिखाया जाहर जन नानक सच्चे सच समाहर महला पंजवा आहर सब करदा फिरे आहर एक ना होए नानक जित आहर जा

जुगत साए सहकाया फेर पलटी है चुल्लै सो छत निरंजनी मल तख्त बैठा गुर हटी है करह जे गुर फरमाया सिल जोग अलूणी चटी है लंगर चलै गुर शब्द हर टूट ना आवी खटी है खर्चे दित खसम दी आप कहंदी खैर दबटी है होए सिफत खसम दी नूर अरसो कुरसो झटी है तुद दिथे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सच जे गुर फुरमाया क्यों एदू बोलो हटी है पुत्री कौल ना पालियो कर पीरो कन मुरती है दिल खोटै आकी फिरन बन भार उचाइन सती है जिने आखी सोई करे

दलाली सतगुरे आखे सच्चा करी सा बात हुए दरहाली गुरे अंगद दी दोही फिरी सच करते बंद बहाली नानक काया पलट कर मल तख्त बैठा सह डाली दर सेवे उम्मत खड़ी मस कल्ले हुए जंगाली दर दरवेश खसम दे नाए सच्चे बाणी लाली बलवंड खीवी नेक जन जिस बहुती छाओ पतराली लंगर दौलत वंडी है रस अमृत खीर कियाली गुरसिखा के मुख उजले मन मुख थीए पराली पए कबूल खसम नाल जा काल मरदी काली माता खीवी सहो सोए जिन गोए उठाली हो रे ओ गंग बहाई है दुनियाई आखे के क्यों नानक ईसर जगन्नाथ उचहदी वैन बिरक्योन माधाना पर्वत कर नेत्र बासक शब्द रिड़क्योन चौदह रत्न निकालियन कर आवा गौन चिलक्योन कुदरत ऐ वे खालियन जिन ऐवड पिंड ठिणक्योन लहणे धरियन छत्र सिर असमान।

क्या सलाही सच्चे पातशाह जां तू सुगड़ सजान दान जे सतगुरु भावसी सो सत्ते दान नानक हमदा सत्तर सिर।

काम क्रोध मद मत्सर काट काट कस दीन रे कोई है रे संत सहज सुख अंतर जा को जप तप देव दलाली रे एक बूंद भर तन मन देवो जो मद दे कलाली रे रहाओ पवन चतर दस पाठी कीनी ब्रह्म अग्न तन जारी रे मुंदरा मदक सहज धुन लागी सुखमन पोचन हारी रे तीर्थ बरत नेम सुच संयम रव सस गहन देओ रे सुरत प्याल सुधा रस अमृत एहो महारस प्यो रे निचार धार चोवै अत निर्मल एह रस मनुआ रातो रे कह कबीर सगले मद छूछै एह महारस साचो रे गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर महुआ पौ पाठी मन धारा सुख मन नारी सहज समानी पीवै पीवन हारा औदू मेरा मन मतवारा उन्मद चढ़ा मदन रस चाखिया त्रे भवन भया उजियारा रहाउ दोए पुर जोर रसाई पाठी पियो महारस भारी काम क्रोध द्वे किए जलेता छूट गई संसारी प्रगट प्रगास ज्ञान गुर गम्मत सतगुर के सुध पाई दास कबीर तास मत माता उचक ना कबहू जाई तू मेरो मेर पर्वत स्वामी।

कै कर जानी हम निर धन ज्यो एहो धन पाया मरते फूट गमानी करै गमान चुभ है तिस सूला को काढ़न को नाही अजै सो चोभ को बिलल बलाते नरके घोर पचाई कवन नरक क्या सुर्ग बिचारा संतन दो रादे हम काहू की कान ना कटते अपने गुर पर सादे अब तो जाए चढ़े सिंघासन।

बोले पांडे दोजक पर है रहा आपनी ऊंच नीच कर भोजन हठे कर्म कर उदर पर है चौदस अमावस रच रच मांग है कर दीपक लै कूप पर है तू ब्राह्मण मैं कांसिक जुल्हा मोहे तोहे बराबरी कैसे कै बन है हमरे राम नाम कह उबरे वेद परोसे पांडे डूब मर है तरवर एक अनंत डार साखा पोहप पत्र रस भरिया ए अमृत की बाड़ी है रे तिन हर पूरे करिया जानी जानी रे राजा राम की कहानी।

जप तप संयम गुरमुख भोगी रहाउ बुद्ध बेपूत चढ़ावो अपनी सिंगी सुरत मलाई कर बैराग फिरो तन नगरी।

जग भीतर जन्म कवन फल पाया भावनिद धर्म तारन चिंतामन एक निमुख नायो मन लाया गोविंद हम ऐसे अपराधी जिन प्रभ जियो पिंड था दिया तिसकी भाऊ भगत नहीं साधी रहा पर तन परती निंदा पर अपवाद ना छूटै आवा गवन होत है फुन फुन एहो प्रसंग ना टूटै जे घर कथा होत हर संतन एक निमख ना कीनो मैं फेरा लंपट चोर दूत मतवारी।

बंधन पाया मुख तै गुरे अनल बुझाया जब नक सिख इहो मन चीना तब अंतर मज्जन कीना पवन पत उन मन रहन खरा नहीं मृत ना जन्म जरा रहा उल्टी ले सकत सहारं पैसी ले गगन मजारं बेदी अले चक्र पुवंगा भेटी अले रायन संगा चूकी अले मोह मै आसा सस कीनो सूर ग्रासा जब कुंभक भर फुर लीना तह बाजे अनहद बीना बकतै बक शब्द सुनाया।

गुड़ी आकाश मदे परम यले पंच जनास्यों बात बतौआ चीत सो डोरी राखी अले मन राम नामा वेदी अले जैसे कनक कला चित मांडी अले रहाउ आनी ले कुंभ पराई ले उदक राजकुमार पुरंदरिये हस्त बनोद विचार करती है चीत सो गागर राखी अले मंदर एक द्वार दस जाके गऊ चरावन छाडी अले पांच कोस पर गऊ चरावत चीत सो बशरा राखी अले कहत नाम देव सुनो तलोचन बालक पालन पौडी अले अंतर बाहर काज विरुद्धि चीत सो बारक राखी अले वेद पुराण शास्त्र अनंता गीत कबेतना गावोगो अखंड मंडल निरंकार मह अनहद बीन बजावोगो वैरागी रामह गावोगो।

दोए सम कर राखो ब्रह्म जोत मिल जाओगो तीर्थ देख ना जल मह पैसो जी जंत ना सतावोगो अठ सठ तीर्थ गुरु दिखाए घट ही भीतर नाओगो पंच सहाई जन की सोबा भलो भलो ना कहा।

घर दूजा बनारसी तप करै उल्ट तीर्थ मरै अग्न दह काया कल्प कीजै असमेध जग कीजै सोना गर्भ दान दीजै राम नाम सर तउ ना पूजै छोड़ छोड़ रे पाखंडी मन कपट ना कीजै हर का नाम नित नित है लीजै रहाऊ गंगा जो गोदावर जाइय कुंभ जो केदार नहाइय गोमती सहस गऊ दान कीजै कोट जो तीर्थ करै तन जो हिवाले।

हिरण हुए कैसी, जो पारस है ना परस है, देव संसय गांठ ना छूटे, काम क्रोध माया मद मत्सर, इन पंचों मिल लूटे रहाओ, हम बड़ कब कलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर हम दाते, एह बुद्ध कब है नानासी, कौरव दास सब है नहीं समझस, भूल पर

बीज मंत्र लय हृदय रह, मनुआ उल्ट सुन मह गह, जागत रह ना अलिया भाख है, पांचो इंद्री बस कर राख है।

धारी असुर नदी का बंदे मूल पच्छम फेर चढ़ावे सूर अजर जरे सोन झर झरे जगन्नाथ स्यो गोष्ट करे चौ मुख जीवा ज्योत द्वार पल्लू अनत मूल बिचकार सर्व कला ले आपे रह मन मानक रत्ना मह गुह मस्तक पदम द्वाले मणि माही निरंजन त्रे पवन धनी पंच शब्द निर्मायल बाजे तुलके चवर शंख कन गाजे।

जप अहनस नाम हरे। कोट कोट दोख बहु कीने, सब पर हर पास तरे रहाउ। हर हर नाम जप है आराध है, सेवक पाए खरे। किल बिख दोख गए सब नीकर, ज्यो पानी मैल हरे। खिन खिन नर नारायण गाव है, मुख बोल है नर नर हरे। पंच दोख असाध नगर में है, एक खिन पल दूर करे। वड भागी हर नाम त्याव है, हर के भगत हरे। तिनकी संगत देहे प्रभ जाच्यों, मैं मूड मुग्ध निस्तरे। कृपा कृपा तार जग जीवन, रख ले वो सरन परे। नानक जन तुमरी सरनाई, हर राख हो लाज हरे। नट महला चौथा, राम जप जन राम नाम रले। राम नाम जपियो गुरबचनी, हर धारी हर कृपले रहाउ। हर हर अगम अगोचर स्वामी, जन जप मिल सलल सलले। हर के संत मिल राम रस पाया, हम जन कै बल बलले। पुरखोत्तम हर नाम जन गायु, सब दालद दुख दलले। विच देही दोख असाध पंच धातु, हर किए खिन परले। हर के संत मन प्रीत लगाई, ज्यों देखै सस कमले। उनवै कन कन कन हर गरजै, मन बिगसै मोर मुरले। हमरै स्वामी लोच हम लाई, हम जीव है देख हर मिले। जन नानक हर अमल हर लाई, हर मेल हो आनंद भले। नट महला चौथा, मेरे मन जप हर हर नाम सखे। गुर प्रसादी हर नाम त्यायु, हम सतगुर चरण पखे रहाउ। उत्तम जगन्ना जगदीश्वर, हम पापी सरन रखे। तुम वड पुरख दीन दुख भंजन, हर दियो नाम मुखे। हर गुण ऊच नीच हम गाए, गुर सतगुर संग।

पाथर भारी हर तारे संग जनखे जिनको तुम हर राखो स्वामी सब तिनके पाप क्रिखे जन नानक के दयाल प्रभ स्वामी तुम दुष्ट तारे हर नखे नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर राम रंगे हर हर कृपा करी जगदीश्वर हर त्यायो जन

पालक स्वामी हमरा कोह वड पाप गे, तुमरी संगत हर को ना उधरियो। प्रभ किए पतत पवगे, गुण गावत शीपा दुष्टारियो। प्रभ राखी पैज जनगे, जो तुमरे गुण गाव है स्वामी। हम बाल बाल बाल तिनगे, पवन पवन पवित्र सब किए। जह तूर परी जन पगे, तुमरे गुण प्रभ कह ना सक है हम। तुम वड वड पुरख वडगे, जन नानक को दया प्रवतारो। हम सेव है तुम जन पगे।

प्रभ तारी मत गुरमत नाम बने रहाउ हर जन हर जस हर हर गायु अपदेश गुरु गुर सुने किल बिख पाप नाम हर काटे जिव खेत किरसान लुने तुमरी उपमा तुम ही प्रभ जानहु हम कह ना सकह हर गुने जैसे तुम तैसे प्रभ तुम ही गुण जानहु प्रभ अपने माया फास बंद बहु बंदे हर जप्यो खुल खुलने ज्यों जल कुंचर तंदुए बांधियो हर चेतियो मोख मुखने स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम खोजो हो जुग जुगने तुमरी था पाई नहीं पावे जन नानक के प्रभ वडने नट महला चौथा मेरे मन काल कीर्त हर प्रवणे हर हर दयाल दया प्रभ तारी लग सतगुर हर जपने रहाउ हर तुम वड अगम अगोचर स्वामी सब त्याव है हर रुड़ने जिनको तुमरे वड कटाख है ते गुरमुख हर सिमरने इहो प्रपंच किया प्रभ स्वामी सब जग जीवन जुगने ज्यो सलल सलल उठ है बहु लहरी मिल सलल सलल समणे जो प्रभ किया सो तुम ही जानो हम नह जानी हर गहने हम बारक कौर दे उस्तत तार हो हम करह प्रभु सिमरणे तुम जल निद हर मान सरोवर जो सेवे सब फलने जन नानक हर हर हर हर बांछ हर देव हो कर कृपणे नट नारायण महला चौथा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन सेव सफल हर काल ले गुर पग रे नरवाल सब दाल पंज दुख दाल हर हो नदर निहाल रहाउ हर का ग्रह हर आप सवारियु हर रंग रंग महल बेअंत लाल लाल हर लाल हर अपनी कृपा करी आप ग्रह आयु हम हर की गुर की है बसीठी हम हर देखे भई निहाल निहाल निहाल निहाल हर आवते की खबर गुर पाई मन तन आनंद आनंद भय हर आवते सुने मेरे लाल जन नानक हर हर मिले भय गलतान हाल निहाल निहाल नट महला चौथा मन मिल संत संगत शुभवंती सुन कथ कथा सुखवंती सब किल बिख पाप लहंती हर हो लिखत लखंती रहाउ हर कीरत कलयुग विति उत्तम मत गुरमत कथा पजंती जिन जन सुनी मन्नी है जिन जन तिस जन कै हो कुर्बानंती हर कथ कथा का जिन रस चाखिया तिस जन सब भूख लहंती नानक जन हर कथा सुन तृप्ति जप हर हर हर होवंती नट महला चौथा कोई आन सुनावे हर की हर गाल तिस को हो बल बल बाल सो हर जन है पल पाल हर हो मेल निहाल रहाउ हर का मार्ग गुर संत बतायु गुर चाल दिखाई हर चाल अंतर कपट चकाव हो मेरे गुर सिख हो निह कपट कमाव हो हर की हर काल निहाल निहाल निहाल ते गुर के सिख मेरे हर प्रभ पाई जिन्ना हर प्रभ जानियो मेरा नाल जन नानक को मत हर प्रभ दीनी हर देख निकट हदूर निहाल निहाल निहाल निहाल राग नट नारायण।

भावे मन प्यास बहुत दर्शावे रहाउ। सोई ज्ञानी सोई जन तेरा जिस ऊपर रुचि आवे, कृपा करहु जिस पुरख बधाते सो सदा सदा तुद त्यावे। कमन योग कमन ज्ञान।

बुद्ध सियानप जित निमखना प्रभ बिसरावे संत संग लग एहो सुख पायो हर गुण सद ही गावे देखियो अचरज महामंगल रूप किस आन नहीं दिसटावे कहो नानक मोर्चा गुर लाहियो तह गर्भ जोन कह आवे नट नारायण महला पंजवां दुपदे

साध संग नानक परगासियो आन नाही रे बियो नट महला पंजवा जाको पई तुम्हारी धीर जम की त्रास मिटी सुख पाया निकसी हम मैं पीर रहाऊ तप्त बुझानी अमृत बानी तृप्ते ज्यो बारक खीर मात पिता साजन संत मेरे संत सहाई भी।

अपना जन आप है आप उधारियो, आठ पैर जन कै संग बस्यो, मन ते नाही बसारियो रहाउ, वर्ण चिन्ह नाही किश पेखियो, दास का कुल ना बेचारियो, कर कृपा नाम हर दियो, सहज सुपाए सुवारियो, महाबिखम अग्न का सागर, तिस ते पारि उतारियो, पेख पेख नानक बिगसानो, पुनः पुनः बलिहारियो, नट महला पंजवा, हर हर मन में नाम कहियो, कोट अपराध मिट है खिन पीतर, ताका दुख न रहियो रहाउ, खोजत खोजत भयो बैरागी, साधु संग लहियो, सगल त्याग एक लिव लागी, हर हर चरण गहियो, कहत मुकत सुनते निस्तारी, जो जो शरण पयो, सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना, कहो नानक आनंद पयो, नट महला पंजवा, चरण कमल संग लागी डोरी, सुख सागर कर परम गत मोरी, रहाउ अंचला गहायो जाने अपने को, मन बीतो प्रेम की खोरी, जस गावत भगत रास उपजियो, माया की जाली तोरी, पूर्ण पूर रहे कृपा निद, आना पेखो होरी, नानक मेल लियो दास अपना, प्रीत ना कबहू थोरी, नट महला पंजवा, मेरे मन जप जप हर नारायण, कबहू ना बिसरहो मन मेरे ते, आठ पहर गुण गायन, रहाउ साधु तूर करो नित मज्जन, सब किल बिख पाप गवायन, पूर्ण पूर रहे कृपा निद, घट घट दिष्ट समा

काल उठत बैठत सोवत जागत जी प्राण धन माल दर्शन प्यास बहुत मन मेरे नानक दर्शन हाल

हर हर नाम उरतारी, हर हर कथा बनियत मीठी, ज्यों गूंगा गटक सम्हारी, रसना साध चखे पाए दूजे, हत फीके लोभ बिकारी, जो गुरमुख साध चखे है राम नामा, सब अनरस साध बिसारी, गुरमत राम नाम धन पाया।

दहलिस हर मुश्की मुश्क गंधारी तेरी निर्गुण कथा कथा है मीठी गुरनी के बचन संहारी गावत गावत हर गुण गाई गुण गावत गुर निस्तारी विवेक गुरु गुरु समदर्शी तिस मिलिए संक उतारी सतगुर मिले परम पद पाया हम सतगुर कै बलिहारी पाखंड कर कर भरमी लोभ पाखंड जग बुरियारी हलत पलत दुखदाई होवे जम काल खड़ा सिर मारी उगवे दिनस आल जाल संभाले बिख माया के बिस्थारी आई रहन भया सुपनंतर बिक सुपने भी दुख सारी कल्लर खेत लै कूड़ जमाया सब कूड़े के खलवारी साकत नार सब भूख पुखानी दर ठाढ़े जम जंदारी मनमुख कर्ज चढ़िया बिख भारी उतरे शब्द विचारी जितने कर्ज कर्ज के मंगिए कर सेवक पग लगवारी जगन्नाथ सब जंतर उपाई नक खीनी सब नथहारी नानक प्रभ खिंचै।

हर अमृत सर नावारे, सतगुरु ज्ञान मज्जन है नीको, मिल कलमल पाप उतारी रहाउ, संगत का गुण बहुत अधिकाई, पढ़ सुआगन के उधारी, परसन परस भय कुबिजा को, लै बैकुंठ सधारी,

विचारी सत संगत मिले ता दृढ़ता आवे हर राम नाम निस्तारी जब लग जियो पिंड है साबत तब लग किसना सम्हारी जब घर मंदिर आग लगानी कड कूप कड्डे पनेहारी साकत स्यो मन मेल ना करियो जिन हर हर नाम बिसारी साकत बचन बिशुआ ज्यो डसी तज साकत परे परारी लग लग प्रीत बहु प्रीत लगाई लग साधु संग सुवारी गुर के बचन सत सत कर मानी मेरे ठाकुर बहुत प्यारी पूर्व जन्म परचून कमाई हर हर हर नाम प्यारी गुर प्रसाद अमृत रस पाया।

गुर सरन प्रभु रखवारे, ज्यो कुंचर तंदुए फकर चलायो, कर ऊपर कढ़ निस्तारे रहाओ। प्रभ के सेवक बहुत आत्मीके, मन श्रद्धा कर हर तारे, मेरे प्रभ श्रद्धा भगत मन भावे।

एका नदर निहारी हर प्रभु ठाकुर रविया सब ठाई सब चेरी जगत समारी आप दयाल दया दान देवे विच पाथर कीरे कारी अंतरवास बहुत मुशकाई भ्रम भूला मिर्ग सिंघारी।

आप सब वरतै कर कृपा आप निस्तारी। नट महला चौथा राम कर कृपा लेहो उभारी। जो पकर द्रौपदी दुष्टायानी हर हर लाज निवारी। रहाउ कर कृपा जाचक जन तेरे एक मांगो दान प्यारे। सतगुर की नित श्रद्धा लागी मोह को हर गुर मेल सवारी। साकत कर्म पानी ज्यों मथी है नित पानी झोल चुलारी। मिल सत संगत परम पद पाया कड माखन के गटकारी। नित नित काया मजन किया नित मल मल दे सवारी। मेरे सतगुर के मन बचन ना पाई सब फोकट चार सिंगारी। मटक मटक चल सखी सहेली मेरे ठाकुर के गुण सारी। गुरमुख सेवा मेरे प्रभ भाई मैं सतगुर अलख लखारी। नारी पुरख पुरख सब नारी सब एको पुरख मरारी। संत जना की रेन मन पाई मिल हर जन हर निस्तारी। ग्राम ग्राम नगर सब फिरिया हृदय अंतर हर जन भारी। श्रद्धा श्रद्धा उपाई मलाई मोह को हर गुर गुर निस्तारी। पवन सूत सब नीका करिया सतगुर शब्द विचारी। निज कर जाए अमृत रस पिया बिन नैना जगत निहारी। तौ गुण ईस वर्ण नहीं साको तुम मंदर हम निक कीरे। नानक कृपा करो गुर मेलो मैं राम जपत मन धीरे। नट महला चौथा मेरे मन भज ठाकुर अगम अपारी। हम पापी बहु निर्गुण यारी कर कृपा गुर निस्तारी। रहाउ साधु पुरख साध जन पाई एक बिनो करो गुर प्यारी। राम नाम धन पूंजी देव हो सब तिसना भूख निवारी। पचै पतंग मृग भृंग कुंचर मीन एक इंद्री पकर संघारी। पंच भूत

सतसंगत गुर निस्तारी, प्रीतम प्रीत लगी प्रभ केरी, जिव सूरज कमल निहारी, मेर सुमेर मोर बहु नाचै, जब उनवै कन कनहारी, साकत को अमृत बहु सिंचो, सब डाल फूल बिस्कारी, ज्यो ज्यो निवह साकत नर सेती, छेड़ छेड़ कड्डै बिख खारी, संतन संत साध मिल रही है, गुण बोले है पर उपकारी, संतै संत मिले मन बिगसै, ज्यो जल मिल कमल सवारी, लोभ लहर सब सुवान हलक है, हलकियो सबह बिगारी, मेरे ठाकुर कह दिबान खबर हुई, गुर ज्ञान खड़ग लै मारी, राख राख राख प्रभ मेरे, मैं राखो कृपा तारी, नानक मैं तारी।

बाद अनक जतन कर रहे हर अंत नाही पाया हर अघम अगम अगाध बोध अदेश हर प्रबराया रहाउ काम क्रोध लोभ मोह नित झगरते झगराया हम राख राख दीन तेरे हर शरण हर प्रभ आया शरणागति प्रभ पालते हर भगत वचल नाया प्रहलाद जन हर नाख पकरियो

हर ठाकुर हर गुरमति प्रभ पाया हर पतत पावन नाम स्वामी पौ भगत भंजन गाया हर हार।

राम नाम सुख दाता, सत संगत मिल हर साध आया, गुरमुख ब्रह्म पछाता रहाऊ, वडभागी गुर दर्शन पाया, गुर मिलिया हर प्रभ जाता, दुरमत मैल गई सब नीकर, हर अमृत हर सरनाता, तन तन साध जिन्नी हर प्रभ पाया, किन पूछो हर की बाता, पाए लगो नित करो जुदरिया, हर मेलो कर्म बधाता, ललाट लिखे पाया गुर साधु, गुर बचनी मन तन राता, हर प्रभ आए मिले सुख पाया, सब किल विख पाप गवाता, राम रसायन जिन गुरमत पाया, इनकी उत्तम बाता, इनकी पंक पाई बड़भागी, जन नानक चरण पराता, माली गौड़ा महला चौथा, सब सिद्ध साधक मुन जना, मन भावनी हर त्यायो, अपरंपरु पार ब्रह्म स्वामी, हर अलख गुरु लखायो रहाओ, हम नीच मध्यम कर्म किए, नहीं चेतेओ हर रायो, हर आन मेलेओ सतगुरु, खिन बंद मुक्त करायो, प्रभ मस्त के तुर लिखिया, गुरमति हर लिवलायो, पंच शब्द दरगाह बाजिया, हर मिलेओ मंगल गायो, पतत पावन नाम नरहर, मंद भागियां नहीं पायो, ते गर्भ जोनी गालिय है, ज्यों लोन जलह गलायो, मत देहे हर प्रभ अगम ठाकुर, गुर चरण मन मैं लायो।

जीव जंतर करे प्रतपाल, सदा सदा सेवो कृपाल, सदा धर्म जाकै दीवान, बे मोहताज नहीं किश कान, सब किश करना अपने आप, रे मन मेरे तू तां को जाप, साध संगत को हों बलिहार, जास मिल हुए उधार।

सदा सुख पाइए जीवन का मूल रव रहे सरबत ठाई सुख मोह असथूल आल जाल बेकार तज सब

सलाहिया जिन कर देखिया खेल संजोगी मेलावड़ा इन तन कीते भोग वे जोगी मिल विछड़े नानक भी संजोग मारू महला पहला मिल मात पिता पिंड कमाया तिन करता लेख लिखाया लिख दात जोत वड़े आई।

मारू महला पहला कर पहला करनी कागद मन मसवाणी बुरा पला दुहि लेख पई ज्यों ज्यों किरत चलाए त्यों चलिए तौ गुण नाहीं अंत हरे।

काल दिन हुआ जेती कड़ी फाही तेती रस रस चोग चुगह नित फस है सूटस मूड़े कमन गुणी काया आरन मन विच लोहा पंच अगन तित लाग रही कोले पाप पड़े तिस ऊपर मन जलिया सन्नी चिंत भई।

पहला बिमल मजार बसस निर्मल जल पद्मन जावल रे पद्मन जावल जल रस संगत संग दुख नहीं रे दादर तू कबह न जानस रे बख्शस बाल बसस निर्मल जल अमृत ना लक्ष रे रहाउ बस जल नेतना वस्त अलियल मेर चचा गुण रे चंद कुमुंदनी दूरों निवसस।

छोड़स किसन प्रीत ज्योरे, पंडित संग वसह जन मूरख, आगम सास सुने अपना आप तू कबहु ना छोड़स, स्वान पूछ ज्योरे। एक पाखंडी नाम ना राच्य है, एक हर हर चरण

का पतत पनीत असंख होहे हर चरनी मन लाग अठसठ तीरथ नाम प्रभ नानक जिस मस्तक भाग शब्द सखी सहेली गर्भ गहेली सुन सह की एक बात सहेली जो मैं बेदन सा किसे आखा माई हर बिन जियो न रह कैसे राखा माई रहाओ हौ दुहागन खरी रजानी गया सो जोबन तन पछताणी।

मेरा नाउ सुभागा गुर की बचनी हाट बिकाना जित लाया तित लागा तेरे लाले क्या चतुराई।

लै जुगत कर मरत सो सन बंध कीजै मीन की चपल सियो जुगत मन राखी है उड़ै नह हंस नह कंध सीजै मूड़े काचे भरम भुला नह तीनिया परमानंद बैरागी रहाओ अजर गहो जार लै अमर गहो मार लै प्रांत तज छोड़ तो अप्यो पीजै मीन की चपल सियो जुगत मन राखी है उड़ै नह हंस नह कंध सीजै भणत नानक जनो रवै जे हर मनो मन पवन सियो अमृत पीजै मीन की चपल सियो जुगत मन राखी है।

नाम अजाची एको हाट साहो सबना सिर बनजारी एक भांति दोए सिरे सतगुरु नबेड़े सो बूझै जिस एक लिव लागी जियो रह ने परांती।

तोड़े परम चुकाए, सहजे सिफती तनख चढ़ाए, गुर कै शब्द मरे मन मारी, सुंदर जोगा तारी जियो, हम है जलिया मनो विसारी।

मारू महला तीजा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जह बसाल है तह बैसा स्वामी जह भेज

पल कहियत है इंद्री किसते होई आपे खेल करे सब करता ऐसा बूझै कोई गुर प्रसादी एक लिव लागी दुबदा तदे बनासी जो तिस पाणा सो सत कर मानिया काटी जम की पासी पणत नानक लेखा मांगे कवना जा चूकै मन अभमाना तास तास धर्म

जपियो नाम सुख जनक गुर बचनी हर हर सरन परी दालद पंज सुदामे मिलियो भगती पाए तरे भगत वच्छल हर नाम किरतारथ गुरमुख कृपा करे मेरे मन नाम जपत उदरे ध्रुव प्रहलाद बिदर दासी सोता गुरमुख नाम तरे रहाओ कलयुग नाम प्रधान पदारथ भगत जना उदरे नामा जय देव कबीर त्रिलोचन सब दुख गए चमरे गुरमुख नाम लगे से उदरे सब किल विख पाप टरे जो जो नाम जपै अपराधी सब तिनके दुख पर हरे बेसवा रवत अजामल उदरे मुख बोले नारायण नर हरे।

गण गंधर बे जपयो रिख बपरै हर गाया शंकर ब्रह्म देवी जपयो मुख हर हर नाम जपया हर हर नाम जिन्ना मन पीना ते गुरमुख पार पया कोट कोट ते तीस ते आयो हर जपत्या अंत ना पाया वेद पुराण सिमरत हर जपया मुख पंडित हर गाया नाम रसाल जिन्ना मन वसया ते गुरमुख पार पया अनंत तरंगी नाम जिन जपया मैं गणत ना कर सकया गोविंद कृपा करे थाए पाए जो हर प्रभ मन पाया।

आई सतगुरु पुरख दयाल प्रभ हर मेले तिल ना पाई जिन हर हर नाम ना चेतेओ से भाग हीन मर जाए हुए फिर जोन पवाई है मर जमह आवै जाए हुए जमदर बदे मारी है हर दरगाह मिले सजाए तू प्रभ हम शरणागति मोको मेल लहो हर राय हर तार कृपा जग जीवना गुर सतगुर की शरणाई हर जियो आप दयाल हुए जन नानक।

मैं हर हर कथा मन पाणी, हर हर कथा नित सदा कर, गुरमुख अकथ कहानी रहाऊ। मैं मन तन खोज टंडोलिया, क्यों पाईऐ कथ कहानी, संत जना मिल पाया, सुन अकथ कथा मन पाणी। मेरे मन तन नाम आधार हर, मैं मेले पुरख सुजानी, गुरपुरख है पुरख मलाए प्रभ, मिल सुरती सुरत समाणी। बड़ भागी गुर सेविया, हर पाया सुगड़ सुजानी।

सुगुण सुजानी जन नानक सरनागती कर कृपा नाम सुमानी। मारू महला चौथा हर भाव लगा बैरागिया वडभागी हर मन राख मिल संगत शरदा उपजै गुर शब्दी हर रस चाख सब मन तन हरिया होया गुरबाणी हर गुण पाख।

नाउ मंगत जन जाचा हर देव पसाउ हर सत सत सदा हर सत मेरा मन पावे जीओ नवे सिदर सर्व है अपवित्रा बोल हर नाम पवित्र सब किता जे हर सो प्रसन्न होए मेरा स्वामी हर सिमरत मन लह जावे जीओ माया मोह भिकम है भारी क्यों तरिए दुत्तर संसारी सतगुर बोहित दे प्रभ साचा जप हर हर पार लगावे जीओ तू सर्वत्र तेरा सब कोई जो तू करह सोई प्रभ होई जन नानक गुण गावे बेचारा हर पावे हर थाई पावे जीओ मारू महला चौथा हर हर नाम जपो मन मेरे सब किल विख काटे हर तेरे हर तन राखो हर तन संचो हर चल दया नाल सखाई जीओ जिसनो कृपा करे सो त्यावे नित हर जप जापै जप हर सुख पावे गुर प्रसादी हर रस आवे जप हर हर पा

पर हर का मन मानिया सो सेवक चौ जुग चौ कुंट जानिया जे उसका बुरा कह कोई पापी तिस जम कंकर खाई जियो सब मह एक निरंजन करता सब कर कर वेखै अपने चलता जिस हर राखै तिस कौन मारे जिस करता आप छडाई दियो हम अन दिन नाम लई करतारी जिन सेवक भगत सबे निस्तारी दस अठ चार वेद सब पूछो जद नानक नाम छडाई जियो मारू महला पंजवां कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद डर पै धरत आकाश नखियत्रा।

सो सुखिया सो सदा सुहेला, जो गुर मिल गाए गुनी रहाओ। देह धार अर देवा दर्पह, सिद्ध साधक डर मोया। लख चौरासी ही मर मर जन्मे, फिर जो नी जोया। राजस सातक तामस डरपह, केते रूप उपाया। छल बपरी ये कौला डरपै, आत डरपै धर्म राया। सगल समगरी डरह ब्यापी, बिन डर करने हारा। कहो नानक भगतन का संगी, भगत सोह है दरबारा। मारू महला पंजवा, पांच बरख को अनाथ ध्रुव बारक। हर सिमरत अमरे अटारी, पुत्र हेत नारायण कहियो। जम कंकर मार बदारी, मेरे ठाकुर केते अगणत उधारी। मोहे दीन अल्प मत निर्गुण, परयो सरद द्वारी रहाओ। वाल्मीक सुपचारो तरियो, वदक तरे बेचारी। एक निमख मन माहे अरादेव, गजपत पार उतारी। कीनी रखिया भगत प्रहलाद, हरनाखस नखह बेदारी। विदर दासी सुत भयो पनीता।

ठाकुर सेवक को सवरे हलत पलाता, धन सेवक सफल ओ आया, जिन नानक खसम पछाता।

पतत किए खिन पीतर महमा कथन न जाय निरपौ भये सगल पै खोए गोविंद चरण उटाई नानक

गुण भ्रम छूटा ज्यो प्रभ भये सहाय मारू महला पंजवां अंतर जामी सब बिद जाने तिसते कहां दुलारियो हस्त पाम चरे खिन पीतर अग्न संग ले जा रियो मूड़े तै मन ते राम बसारियो लून खाई करह हराम खोरी पेखत नैन बिदारियो रहाओ असाद रोग उपजे तन पी

तुम बावर दलाब जन्म अकारथ रे नार ऐसी करह यानथ ताज सारंग तार भ्रम तू भूला मोहे लपट्यो दासी संग सानथ रहाओ धरनी तर त्याग नीच कुल सेव है हौ हौ करत बेहावत फोकट कर्म करह अज्ञानी मन मुख अंध कहावत सत होता असत कर मानिया जो बिन सत सो निचल जानत पर की कहो अपनी कर पकरी ऐसे भूल पलानत खतरी ब्रह्म।

भोगह तपत थम गल लाय रे नर काए पर ग्रह जाय कुचल कठोर काम गर्धब तुम नहीं सुनियो धर्म राय रहाओ बिकार पात्र गलह बांदी निंद पोट सिराय महासागर समुंद लंघना पार न परना जाय काम क्रोध लोभ।

ससी मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी अलिपाई स्वभावत जैसी बैसंतर अलिप्त सदा निर्मलाई जिस कर्म खुले

मनुआ भलो समो सुआउ रहाउ खोए खेड़ा परम मन का सतगुर सरणी जाय। करम जिस कौ तुरहु लिखिया।

सुख पाया, त्रिपत रही आगाई, मारू महला पंजवा, फूटो आंडा परम का, मन पयो परगास, काटी बेरी पगहती, गुर कीनी बंद खलास, आवन जान रहे हो, तपत कड़ाहा बुझ गया, गुर शीतल नाम दियो रहाओ, जब ते साधु संग पया तौ तो

सर्ब को राजा, जिस हृदय नाम तुम्हारा, जा को नाम ना दिया मेरे सतगुर, से मर जन्म है गावारा। मेरे सतगुर ही पत राख, चीत आवह तब ही पत पूरी, बिसरत रलिए खाक रहाऊ, रूप रंग खुशियां मन पू।

माया रंग बिरंग खिन मह ज्यो बादर की छाया से लाल पये गूड़े रंग राती जिन गुर मेल हर हर गाया ऊच मूच अपार स्वामी अगम दरबारा नामो वड़े आई सुबा नानक खसम प्यारा।

मात गर्भ में जिन प्रित पारिया, जियो पिंड दे साज सवारिया, सोई बधाता खिन खिन जपिया, जिस सिमरत अवगुण सब ढकी है।

सठ मूड अज्ञानी काम क्रोध लोभ मद माता कौडी बदले जन्म गवाता अपना छोड़ पराया राता माया मद मन तन संग जाता त्रिशन ना बूझे करत कलोला ऊनी आस मिथ्या सब बोला आवत अकेला जात अकेला हम तुम संग झूठे सब बोला पाए ठगौरी आप पलायो नानक किरत न जाए मटायो पास पंखी भूत अर प्रेता बहु बिद जोनी फिरत अनेता जह जानो तह रहन न पावे थान बिहून उठ उठ फिर तावे मन तन बासना बहुत बिस्थारा अहम में मूठो बेचारा अनक दोख अर बहुत सजाई ता की कीमत कहन ना जाई प्रभ बिसरत नरक में पाया तह मात ना बंद ना मीत ना जाया जिस को होत कृपाल स्वामी सो जन नानक पार ग्रामी प्रमत प्रमत प्रभ सरनी आया दीना नाथ जगत पित माया प्रभ दयाल दुख दर्द बदारन जिस पावे तिस ही निस्तारन अंधकूप ते काढ़ नहारा प्रेम भगत होवत निस्तारा।

मारू महला पंजवां कत कौ डहकावो लोगा मोहन दीन किरपाई ऐसी जान पाई सरन सूरो गुरदाता राखे आप वडाई रहाओ भगतां का आज्ञाकारी।

पंजवा पतत उदारन तारन बल बल बले बल जाइए ऐसा कोई भेटै संत जित हर हरे हर त्याइए।

मोहन अलख अपारा दान पावो संता संग नानक रेन दसारा मारू महला पंजवा त्रिप्त अगाए संता गुर जाने जिन मंता ताकि किछ कहन ना जाई जाको नाम बढ़ाई लाल अमोला लालो अगह अतोला।

सगल तिहानु तजियो मन ते अभिमानु निश्चल तिन का ठाणा गुर ते महल पछाणा अन दिन गुर मिल जागी हर की सेवा लागी पूरन तृप्त अगहाई सहज समाध सुपहाई हर भंडार हाथ।

चेत मन मह हर हर निधाना एह निर्मल रीत रहाउ कृपाल दयाल गोपाल गोविंद जो जपै तिस सीध नवल नवतन चतर

देख सिमर हर हर सदा नानक तरे कई अनेक मारू महला पंजवा पतत पावन नाम जाको अनाथ को है नाथ महा भोजन माहे तुलहो जाको लिखियो माथ डूबे नाम बिन घन साथ करन कारण चेतना आवे दे कर राखे हाथ रहाऊ साध संगत गुण उचारण।

वैदो ना वाई भैणो ना पाई एको सहाई राम ही कीता जसो होवे पापा मलो धोवे सो सिमरहो प्रधान ही कट कटे वासी सर्ब निवासी अस थेर जाका थान ही आवे ना जावे संगे समावे पूरन जाका काम ही भगत जना का राखन हारा संत जीव है जप प्राण अधारा करन कारण समरथ स्वामी नानक तिस कुर्बान ही।

अठ सठ तीर्थ बहु कणा ब्रह्म था के भिखा साचो साहिब निर्मलो मन मान एका तू अजरावर अमर तू सब चालन हारी नाम रसायन पाए ले पर हर दुख भारी रहाओ हर पढ़िए हर बुझिए

यासमुंद मजार कंदी देसना आवई ना उरवार ना पार वंजी हाथ ना खेवटू जल सागर असराल बाबा जग फाथा महाजाल गुर प्रसादी उबरे सच्चा नाम संभाल रहाउ सतगुरु है बोहिथा शब्द लंघावन हार तिथै पवन ना पाव को

ना सकई सच रह लिवलाई जीवन मुक्त सो आखिए जिस विचो हम जाई तंदे तावत जग बांधिया ना बूझे विचार जमन मरन वसारिया मन मुख मुगद गवार।

सो पार गुण नहीं, बिन गुण क्यों कर जाओ। सहज शब्द सुख उपजे, बिन भागा तन नाही। जिनके नाम ना मन वसै,

सुख नहीं गाडे लादे शार विछड़िया मेला नहीं दुख कणो जम द्वार अगे क्या जाना नाही मैं भूले तू समझाए भूले मार्ग जो दसे

चलना मुख अमृत नाम। मेरे ठाकुर हथ वडियाइया मेल है मन चाओ, कीता क्या सलाही है कर देख सोई, जिन किया सो मन वसै मैं अवर ना कोई। सो साचा सलाही है साची पत होई, पंडित पढ़ना पहुंचई बहुआल जंजाला, पाप पुन दोए संग में खुदिया जमका।

खार समुंदर कंडोलिया एक मनिया पावे दोए दिन चार सुहावना माटी तिस खावे गुरसागर सत

थी पारस संग पीजै वन्नी साचे लाल की किन कीमत कीजै पेखी हाथ ना लबई तीरथ नहीं दाने पूछो बेद पढ़ंतिया मूठी बिन माने नानक कीमत।

कर हीरै ग्रह धर्म गवाए सतगुर ना पेटै दुर्मत कुमन केरै दसंतर भवै पाठ पढ़ थाका तृष्णा हुए बधेरै काची पिंडी शब्द ना चीनै उदर भरै जैसे ढूरै बाबा ऐसी रवत रवै सन्यासी गुर कै शब्द एक लिव लागी तेरे नाम रते त्रिपतासी रहाओ कोली गेरू रंग चढ़ाया वस्त्र पेख पेखारी कापड़ फार बनाई खिंथा चोली माया तारी घर घर मांगे जग प्रबुद्ध मन अंधे पतहारी परम पलाना शब्द ना चीनै जुए बाजी हारी अंतर अगन ना गुर बिन बूजै बाहर कुवर तापै गुर सेवा बिन भगत ना होवी क्यों कर चीन से आपै निंदा कर कर नरक निवासी अंतर आत्म जापै अठ सठ तीरथ परम बगूचै है क्यों मल धोपै पापै छाणी खाक बेभूत चढ़ाई

उर्द लिव लागी सो प्रभ सारे दात करे संसार पव जल क्यों तरे गुरमुख नाम निरंजन पाईए अफरे उपार अफार टरे रहाउ ते गुण विसर गए अपराधी मैं बौरा क्या करूं हरि तू दाता दयाल सबै सिर एहन सदात सुमार करी चार पदार्थ ले जग जन्मिया सिर शक्ति घर वास धरी लागी भूख माया मग जो है मुक्त पदार्थ मोहे खरी कर्ण पलाव करे नहीं पावे एते उत ढूंढत थाक परे काम क्रोध अहंकार व्यापे कूड़ कतंब स्यों प्रीत करे खावे भोगे सुन सुन देखे पहर दिखावे काल करे बिन गुर शब्द ना आप पछाणे बिन हर नाम ना काल करे जेता मोह हम मैं कर भूले मेरी मेरी करते शीन खरे तन धन बिन सह सह सह सहसा फिर पछतावे मुख धूर परे बिरद पया जो बन तन खिसिया कप कंठ बरूदो नैनो नीर धरे चरण रहे कर कंपन लागे साकत राम न हृदय हरे सुरत गई काली हूं तौले किसे न पावे रखियो करे बिसरत नाम ऐसे दुख लागे है जम मार समारे नरक खरे पूरब जन्म को लेख न मितई जन्म मरे का को दोष तरे बिन गुर बाद जीवन होर मरना बिन गुर शब्द जन्म जरे खुशी खुआर पय रस भोगण फोकट कर्म विकार करे नाम बसार लोभ मूल खोयो सिर धर्म राय का दंड परे गुरमुख राम नाम गुण गावे जां को हर प्रभ नदर करे ते निर्मल पुरख अपरंपर पूरे ते जग में गुर गोविंद हरे हर सिमरो हो गुर बचन समारोह संगत हर जन पाव करे।

नानक नाहो ना विछड़े तिन सच्चै रतड़िया मारू महला पहला ना भैणा परजाइया ना से ससुड़िया सच्चा साक ना तुटई गुर मेले सहिया बलिहारी गुर अपने सद बलिहारे जाऊं गुर बिन एता भव थकी गुर पिर मेलम।

देव दृष्ट जागे परम चकाई, गुर प्रसाद परम पद पाई, सो जोगी एह जुगत पछाणे, गुर कै शब्द बिचारी जियो, संजोगी तन पिर मेला होवे।

जन सोई सतगुर मिले मरे मंदा होवै ज्ञान बिचारी दियो। एहो शब्द सार जिसनो लाए गुरमुख कृष्णा भुख गवाए। आपन लिया किशु ना पाईए कर कृपा कल तारी जियो। अगम निगम सतगुरु दिखाया कर कृपा अपने घर आया। अंजन माहि निरंजन जाता जिनको नदर तुम्हारी जियो। गुरमुख होवे सो तत पाए अपना आप विचो गवाए। सतगुर बाजो सब धंद कमावे वेखो मन विचारी जियो। एक भ्रम भूले फिर अहंकारी

प्रभ की गही गुर प्रसादी प्रभ आराधी जम कंकर किसना कही मोख मुकत द्वार जाके संतरिदा पंडार जी जुगत सुजान स्वामी सदा राखनहार दुख दर्द कलेश बिन सह जिस बसै मन माहे मृत नरक अस्थान बिखड़े

अगम अगाह सिद्ध साधक देव मुन जान वेद करह ओचार सिमर स्वामी सुख सहज पुंचह नहीं अंत पारावार अनक परासत मिटह खिनमह हृदय जप भगवान।

तीर महासागर नह व्यापै खिनह उतरियो तीर चंदन अगर कपूर लेपन तिस संगे नहीं प्रीता।

मित्र सद्धरना कछु जान सर्ब जी समत कर परगास प्रचंड प्रगट्यो अंधकार बनास पवित्र अपवित्र है किरण लागी।

का हर जस गुर ते मांगना जागना जागन नीका हर कीर्तन मह जागना लागना लागन नीका गुर चरणी मन लागना एह बिदत सह प्रापते जा कह मस्तक भागना कहो नानक तिस सब किश नीका।

हर जस श्रवण सुनावना रहाउ तुदे आवत मेरा मन तन हरिया हर जस तुम संग गावना संत कृपा ते हृदय वासै दूजा पाओ मिटावना भगत दया ते बुद्ध परगासै दुर्मत दुखत जावना दर्शन भेट तो होत पनीता पुनरप गर्भ ना पावना नौ निद रिद सिद्ध पाई जो तुमरे मन पावना संत बिना मैं थाओ ना कोई अवर ना सूजै जावना मोहे निर्गुण को कोई ना राखै संता संग सुमावना कहो नानक गुर चलत दिखाया मन मदे हर हर रावना मारू महला पंजवा जीवना सफल जीवन सुन हर जप जप सद जीवना रहाउ पीवना जित मन आघावै नाम अमृत रस पीवना खावना जित भूख ना लागै संतोख सदा तृप्तीवना पहनना रख पत परमेश्वर फिर नांगे नहीं थीवना भोगना मन मदे हर रस संत संगत महलीवना बिन तागे बिन सोई आनी मन हर भगती संग सीवना मातिया हर रस महराती तिस बहुड़ना कबहू औखीवना मिलो तिस सर्ब निदाना प्रभु कृपा।

ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोरी सो फिरे परमंता, दुहु व्यवस्था तेजो मुक्ता, सोई सोहेला पाली है, ग्रह राज मह नरक उदास करोदा, बहु विध वेद पाठ सब सोदा, देही मैं जो रह अलिपता, जिस जन की पूर्ण काली है, जागत सूता परम भगूता, बिन गुर मुक्त न होइए मीता, साध संग टुट है हो बंधन, एको एक निहाली है, कर्म करे ता बंदा, नह करे ता निंदा, मोह मगन मन व्यापिया चिंदा, गुर प्रसाद सुख दुख सम जाने,

भौ मन माही, तिस ही मह जिसकी पत राख है, तिस साधु चौर टाली है, जो सूरा तिस ही होए मरना, जो भागै तिस जो नी फिरना, जो वरताए सोई पल मानै, बुझ हुक्मै दुरमत जाली है, जित जित लाव है तित तित लगना।

जोबन तन शोड वंजेसा करन करीम ना जातो करता तिल पीड़े ज्यो कहानिया खुस खुस लेंदा वस्त पराई वेखै सुने तेरे नाल खुदाई दुनिया लब पया खाते अंदर

सब आपे एक कड्डे एक लहर व्यापे ज्यों नचाए त्यों त्यों नचन सिर सिर किरत विहानिया मेहर करे ता खसम त्याई संता संगत नरक ना पाई अमृत नाम दान नानक को गुण जीता नित वखानिया।

अनाह ध्यान देन कट कट शब्द रजाई हे। आपे रतन अनूप अमोलो, आपे परखे पूरा तोलो, आपे किस ही कस बक

भये देवानी शब्द सहज रस अंतर मानी आपे मुकत तृप्त वरदाता भगत पाए मन पाई है आप निरालम गुर गम ज्ञाना जो दिसै तुज माहे समाना नानक नीच पिख्या दर जाचै मैं दीजै नाम बढ़ाई है मारू महला पहला आपे तरती तौले अकासं आपे साचे गुण परगासं जति सती संतोखी आपे आपे कार कमाई है जिस करना

साहिब सबना सिर भाए मिले भौ जाई हे भूले चूके मार्ग पावह आप भलाए तू है समझावह।

संगम अठसठ अंक समाई है। आपे सिद्ध साधक विचारी आपे राजन पंचाकारी तख्त बह अगली प्रभ आपे परम भेद पहु जाई।

राई जिस बख्शे तिस दे वडियाई सब सहदाता तिल ना तमाई परपुर धार रहया नेह केवल गुप्त प्रगट सब ठाई क्या सलाही अगम अपार है।

क्या जम्मण मरना, गुर के समझ पड़ी क्या डरना। तू दयाल दया कर देख है, दुख दर्द शरीर हो जाई है। निज कर बैस रहे पहु खाया, तावत राखे ठाक रहाया। कमल विगास हरे सरस पर

राती। हर प्रभ संगी पहो ना परांती, श्रवण स्रोत रजे गुरबाणी, ज्योति ज्योत मलाई है। रख रख पैर तरे पहु तरना।

साच परम पौ पंजन गुरमुख साच सखाई त्रेतै धर्म कला एक चूकी तीन चरण एक दुबदा सूकी गुरमुख हो सो साच पछाण मनमुख पचै अवाई हे मनमुख कदे ना दरगाह सीजै बिन शब्द क्यों अंतर रीजै बांधे आवह बांधे जावह सोजी बूझ ना काई हे दया दुआ पर यदि होई गुरमुख विरला चीन कोई दोए पग धर्म धरे तरनी।

ठाके कर्म कमाई है। कर्म धर्म कर मुक्त मंगाही, मुक्त पदार्थ शब्द सलाही, बिन गुर शब्द मुक्त न हुई, परपंच कर परमाई है। माया ममता छोड़ी न जाई, से छूटे सचकार कमाई, अहनस भगत रते विचारी, ठाकुर स्यों बन आई है। एक जप तप कर कर तीरथ नावह, ज्यों तुद भावै तिवें चलावह, हठ निग्रह अपतीज न पीजै, बिन हर गुर किन पत पाई है। कली काल मह एक कल राखी, बिन गुर पूरे किन ना भाखी,

समाए। त्रे पवन जोत तरी परमेश्वर अवर न दूजा पाई है। जिसके चाकर तिसकी सेवा शब्द पति जय अलख अपेवा। भगता का गुणकारी करता बख्श लय वड्याई है। देंदे तो हुट न आवे साचे लै लै मुकर पौंदे काचे। मूल न बूझ साच नारीजह दूजे परम पलाई है। गुरमुख जाग रहे दिन राती साचे की लेव गुरमत जाती।

सुरत समाई है कूड़ मुठी ठगी ठगवाड़ी ज्यों वाड़ी ओजाड़ उजाड़ी नाम बिना किस साधना लागे हर बिसरे दुख पाई है भोजन साच मिल।

करह पर हर दुख दालत जिन नाही चिंत पराई है। वे जागत रह ना सूते दिसह संगत कुल तारे साच परिसह कलमल मैल नाही ते निर्मल होए।

एकहु कर नंदर बिघन नाही गुरमुख तर तारी इउ पव जल पार लंघाई है देही अंदर नाम नवासी आपे करता है अबनासी ना जियो मरे ना मारिया जाई कर देखै शब्द रजाई है ओह निर्मल है नाही अंधियारा ओह आपे तख्त बह सचियारा साकत कूड़े बंद पवाई है मर जन्म है आई जाई है गुर के सेवक सत गुर प्यारे वही वैसह तखत सो शब्द विचारे तत लह अंतर्गत जान।

युग शक्ति ही तिन्हें वरताई, ज्यों तिस पाणा तिवें चलाई, तिसह शरीक ना दिसै कोई, आपे अपर अपारा ही, गुप्ते बूझो युग चतवारी, घट घट वरतै उधर मझारी, युग युग एका

कर वास न पाई पेयड़ सिर माराही खाजे पेंजे रली करीजे बिन अब भगती बाद मरीजे।

शब्द कर जान किसे ही मंदा आख न चले सच खरा सचियारा ही साच बिना दर सिजै ना कोई साच शब्द पैं

अमृत रस पाई जम जगात नाही कर लागे जिस अग्न बुझी ठर सीनाई काया हंस प्रीत बहुतारी ओह जोगी पुरख ओह सुंदर नारी अहनस भोगै चोज बिनोदी उठ चलतै मता ना की नाही श्रिष्ट अपाय रहे प्रभ साजै पौन पानी बह संतर गाजै मनुआ डोलै दूत संगत मिल सो पाए जो किछ की नाही नाम विसार दोख दुख सही है हुक्म भया चलना क्यों रही है नरक कूप में गोते खावे ज्यों जलते बाहर मीना है चौरासी ही नरक साकत पोगाई है जैसा की चैते सो पाई है सतगुर बाजो मुक्त ना हुई किरत बांधा ग्रस दीना है खंडे तार गली अत पीड़ी लेखा लीजै तिल ज्यों पीड़ी मात पिता कलत्तर सुत बेली नाही बिन हर रस मुक्त ना की नाही मीत सखे केते जग माही।

मुखर लह चलुहु दर्शन पावहु सहज महलुहु गुरमुख खोज लह जन पूरे इयों समदर्शी चीनाहि प्रभ बेअंत गुरमत को पावह गुर कै शब्द मन कौ समझावह सतगुर की बाणी सत सत कर मन।

नाही। एक दर सेव है दर्द बुझाई, कोई दरगाह पैंदे सतगुरु छडाई। हम मैं बंधन सतगुर तोड़े, चित चंचल चलन ना दीना है। सतगुर मिलो चीनो बेदसाई, जित प्रभ पावो गणत ना काई। हम मैं मार करो गुर सेवा, जन नानक हर रंग पीना है। मारू महला पहला, असुर संघारण राम हमारा।

शरण तुम्हारी, कर कृपा प्रभु पार उतारी। अगन पानी सागर अत गहरा, गुर सत गुर पार उतारा ही। मनमुख अंदले सो जी नाही, आवह जाहे मरह मर जाही। पूर्व लिखिया लेख न मिटई, जम दर अंध खुआरा ही। एक आवह जावह कर वास न पावह, किरत के बांधे पाप कमावह। अंदले सोजी बूझ न काई, लोभ बुरा अहंकारा ही। फिर बिन क्या तिस धन शिंगारा, पर फिर राती खसम बसारा। ज्यो बेसवा पूत बाप को कही है, त्यों फोकट कार विकारा ही। प्रेत पिंजर मह दुख कनेरे, नरक पचह

अगन बेख चाला अपत पशु मन मुख बेताला आसा मनसा कूड़ कमावह रोग बुरा पुर आ राही मस्तक पहार कलर सिर पहारा क्यों कर भवजल लंगस पारा।

मन मुख दाजै पढ़ पढ़ पाही अमृत नाम गुरु वद जाना नाम जपो सुख साराही सतगुरु तुठा सच दृढ़ाई सब दुख मेटे मार्ग पाई कंडा पाई न गडई मूले जिस सतगुर राखन हाराही खेहू खेहे रलै तन सीजै मनमुख पाथर सैल न पीजै करन पलाव करे बहुतेरे नरक सुरग अवताराही माया बिख पोय अंगम नाले इन दुबदा कर बहुते गाले सतगुर बाजो प्रीत न उपजै भगत रत्ते पतिया राही साकत माया कौ बहुतावह नाम वसार कहां सुख पावह त्रेहो गुणे अंत।

राम जपहु अंतरगत ध्याने लालच छोड़ रचहु अपरंपर यूं पावहु मुक्त द्वारा ही जिस बिसरे जम जोहन लागे सब सुख जाहे दुखा पुन्य आगे राम नाम जप गुरमुख जी अड़ी।

खोज लहो घर अपना बहुड़ ना गर्भ मझारा ही सच तीर्थ नावहो हर गुण गावहो तत विचारहो हर लिव लावहो।

जिस को सतगुर मेल मलाई तिस चूका जम पै पाराही पंच तत् मिल काया कीनी तिस महराम रतन लै चीनी आत्म राम राम है आत्म हर पाइये शब्द विचाराही सत संतोख रहो जन पाई।

गर्भ जोनी नरक मजारा ही साकत जम की कान ना चूकै जम का डंड ना कबहू मूकै बाकी धर्म राय की लीजै सिर अपरे ओ पार अपारा ही बिन गुर साकत कहो को तरिया हम मैं करता पव जल परिया बिन गुर पार ना पावे कोई हर जपिय पार उतारा ही गुर की दात ना मेटे कोई जिस बख्शे तिस तारे सोई जन्म मरण दुख नेड़ ना आवे मन सो प्रभ अपरे अपारा ही गुर ते भूले आवो जावो जन्म मरहो फुन पाप कमावो साकत मूड अचेत ना चेत है दुख लागे ता राम पकारा ही सुख दुख पूर्व जन्म के किए सो जाने जिन दाते दिए किसको दोष दे तू प्राणी सहु अपना किया करारा ही हम मैं ममता करदा आया आसा मनसा बंद चलाया मेरी मेरी करत क्या ले चाली बिखला दे शार बिकारा ही हर की भगत करो जन पाई अकथ कथो मन मन समाई उठ चलता ठाक रखो घर अपने दुख काटे काटन हारा ही हर गुरपुरे की ओट पराती गुरमुख हर लेव गुरमुख जाती।

संयुक्त रहता ही चार नदी ही अग्नि असराला कोई गुरमुख बूझै शब्द नराला साकत दुर्मत डूबह दाजह गुर राखे हर लिवराता ही अप तेज वाए पृथ्वी आकाशा तिन मह पंच तत् घर वासा सतगुर शब्द रह रंग राता तज माया हो मैं प्रांता ही इह मन पीजै शब्द पतीजै बिन नावै क्या टेक टकीजै अंतर चोर मोह घर मंदर इन साकत दूत ना जाता ही दुंदर दूत पूत पीहाले खिंचो तान करह बेताले शब्द सुरत बिन आवै जावै

कहो क्यों लखिया जिस बख्शे सह पछाता है अंतर प्रेम परापत दर्शन गुरबाणी स्यों प्रीत सो परसन अहनस निर्मल ज्योत सुबाई।

बैरागी मन मनसा मार समाता ही सतगुर सेवह से परदाना तिन घट घट अंतर ब्रह्म पछाना नानक हर जस हर जन की संगत दीजै जिन सतगुर हर प्रभ जाता ही मारू महला पहला साचे साहेब सिरजनहारी जिन तार चक्कर

जिस तन पल्लै शब्द सच्चै ओ माहाही काची सौदी टोटा आवै गुरमुख बणज करे प्रभ पावै पूंजी साबत रास सलामत चूका जम का फाहाही सबको बोलै आपन पाणे मनमुख दूजै बोल ना जाने अंदले की मत अंदली बोली आई गया दुख ताहाही दुख मह जन्मै दुख मह मरना।

अनहद वाजै ब्रह्म पौ भाजै सगल व्याप रहया प्रभ साजै सब तेरी तू गुरमुख जाता दरसो है गुण गाएं दा आद निरंजन निर्मल सो।

जाने जो किछ करे सो आपन पाने लख चौरासी जी अपाई पाने सहा लवाईंदा जो तिस पावे सो निश्चो होवे मनमुख आप गणाई रोवे।

सब कोई गुर बिन सोजी किना ना होई साच मिले सो साची पहाई ना विछड़ दुख पाईंदा तुरहु विछुन्ने ताही रुन्ने मर मर जन्म है मोहलत पुन्ने जिस बख्शे तिस दे वड़ियाई मेल ना पछो ताईंदा आपे करता आपे भुगता आपे तृप्ता आपे मुक्ता आपे मुक्त दान मुक्त।

तद जति सती बनवासी ना तद सिद्ध साधक सुखवासी जोगी जंगम भेख ना कोई ना को नाथ कहाईंदा जप तप संयम ना व्रत पूजा।

लिखे हुक्म सबाया खंड ब्रह्मांड पाताल अरंबे गुप्त हो प्रगटी आएंदा ताका अंत न जाने कोई पूरे गुरते सोजी हुई नानक साच रते

सुन्नो ब्रह्मा विष्णु महेश उपाई, सुन्ने वर्ते जुग सबाई, इस पद विचारे सो जन पूरा, तिस मिलिए परम चुकाएंदा। सुन्नो सप्त सरोवर थापे, जिन साजे विचारे आपे, इत सत सर मनुआ गुरमुख नावे।

पहुण सारे सुन्ने लख पार नरालम सुन्ने ताड़ी लाए दा सुनो धरते आकाश पाए बिन थम्मा राखे सच कल पाए त्रे पवन साज में खुली माया आप उपाय खपाए दा सुनो खाणी सुनो बाणी सुनो उपजी सुन समाणी उत्पुज चलत किया सिर करतै विस्माद शब्द देखाएंदा सुनो रात दिन सदोह किए उपत खपत सुखा दुख दिए सुख दुख ही ते अमर हतीता गुरमुख निज कर पाएंदा शाम वेद रिग जुजर अथर बन ब्रह्मे मुख माया है त्रै गुण ताकी कीमत कह ना सकै को।

दुख पाया जिसनो कृपा करे हर गुरमुख गुण चौथा मुक्त कराईंदा सुनो उपजे दास अवतारा श्रेष्ठ उपाय किया पासारा देव दानव गण गंधर्व साजी सब लिखिया कर्म कमाईंदा गुरमुख समझे रोग ना होई ये गुर की पौड़ी जाने जन कोई जुगा जगंतर मुक्त परायण सो मुक्त पया पत पाईंदा पंच तत् सुनो परगासा देह संजोगी कर्म अभ्यासा बुरा भला दोए मस्त कलीखे पाप पुन भी जाएंदा उत्तम सतगुर पुरख निराली शब्द रत्ते हर रस मतवाली रिद बुद्ध सिद्ध ज्ञान गुरु ते पाईए पूरा भाग मलाएंदा इस मन माया को नेहो कनेरा

शब्द अति शीतल सहज भाई निवलाया त्रै वरताए चौथे घर वासा काल बिकाल किए एक ग्रासा निर्मल ज्योत सर्व जग जीवन गुर अनहद शब्द दिखाया उत्तम जन संत भले हर प्यारी हर रस माते पार उतारी नानक रेण संत जन संगत हर गुर प्रसादी।

संचो रे जन पाई, सतगुर सेव रहो सरनाई। तस्कर चोर न लागे तां को, धुन उपजै शब्द जगाया। तू एक अंकार नरानम राजा, तू आप सवार है जन के काजा। अमर अडोल अपार अमोलक, हर अस्थर तान सुहाया।

कुल निरंजन गाया हम अमित शब्द सुख हुई आप विचारे ज्ञानी सोई नानक हर जस हर गुण लाहा सत संगत सच फल पाया मारू महला पहला सच कहो सच्चे कर रहना जीवत मरहो पव जल जग तरना गुर बोहिथ गुर बेड़ी तुलहा मन हर जप पार लंघाया हूं मैं ममता लोभ बनासन नौ दर मुक्ते दसवै आसन ऊपर परे परे अपरंपर जिन आपे आपे उपाया गुरमत लेव हर लिव तरिया

मोख मुक्त क्यों पाईऐ, बिन गुर राम नाम क्यों त्याईऐ, गुरमत ले हो तरो भाव दुत्तर, मुक्त पये सुख पाया, गुरमत कृष्ण गवर धन तारी, गुरमत शायर पाहन तारी, गुरमत ले हो परम पद पाईऐ, नानक गुर परम चुकाया।

गुरमुख बूजै शब्द पतीजै उस्तत निंदा किस की जै तीनों आप जपो जगदीसर हर जगन्नाथ मन पाया जो ब्रह्मांड खंड सो जानो गुरमुख बूजो शब्द पछाणो कट कट भोगे भोगण हारा रह अतीत सबाया गुरमत बोलो हर जस सूचा गुरमत आखी देखो ऊचा सरवणी नाम सुने हर बाणी नानक हर रंग रंगाया।

नारी देख अदिष्ट रहो निवलागी सब त्रे पवन ब्रह्म सबाया अमृत रस पाए तृष्णा पहु जाए अनुभव पद पावे आप गुआई ऊंची पदवी ऊंचो ऊंचा निर्मल शब्द कमाया अदृष्ट अगोचर नाम अपारा अतरस मीठा नाम प्यारा नानक को जुग जुग हर जस दीजै हर जपिया अंत ना पाया अंतर नाम परापत हीरा हर जपते मन मन ते धीरा दुखट घट पौ पंजन पाई बहुड़ जन्म ना जाया भगत हेत गुर शब्द तरंगा हर जस नाम पदार्थ मंगा हर पावे गुर मेल मलाए हर तारे जगत सबाया जिन जप जपे हो सतगुर मतवा के जम कंकर काल सेवक पगता के उत्तम संगत गत मित उत्तम जग पव जल भारत राया एहो पव जल जगत शब्द गुर तरी अंतर की दुबदा अंतर जरी पंच बाण ले जम को मारे गगनंतर तनख चढ़ाया साकत नर शब्द सुरत क्यों पाई शब्द सुरत बिन आई जाइए नानक गुरमुख मुक्त परायण हर पूरे पहाग मलाया निरपो सतगुर है रखवाला भगत परापत गुर गोपाला तुन आनंद अनाहद वाजे गुर शब्द निरंजन पाया।

नानक गुरमत सो पाया। अंतर की गत सत गुर जाने, सो निरभउ गुर शब्द पछाने। अंतर देख निरंतर बूझे, अनत ना मन डोलाया। निरपौ सो आबे अंतर वसिया, अहनस नाम निरंजन रसिया। नानक हर जस संगत पाई है, हर सहजे सह

आपे सिर सिर हुक्म चलाया, हुक्म चलाए रहे पर पूरे, किस नेड़े किस आखा दूरे, गुपत प्रगट हर कट कट देखो, वरतै ताक सुबाया, जिसको मेले सुरत समाए, गुर शब्दी हर नाम ते आए, आनंद रूप अनूप अगोचर, गुर मिले परम जाया, मन तन तन ते नाम प्यारा, अंत सखाई चलन वारा, मोह पसार नहीं संग बेली, बिन हर गुर किन सुख पाया, जिसको नदर करे गुर पूरा, शब्द मलाए गुरमत सूरा, नानक गुर के चरण सरेव हो, जिन पूला मार्ग पाया, संत जना हर तन जस प्यारा, गुरमत पाया नाम तुम्हारा, जाचक सेव करे दर हर कै, हर दरगाह जस गाया, सतगुर मिले त महल बुलाई, साची दरगाह गत पत पाई, साकत ठोर नाही हर मंदर, जन्म मरे दुख पाया, सेव हो सतगुर समुंद अथाह, पाव हो नाम रतन तन लाहा, बिखिया मल जाए अमृत सर नाव हो, गुर सर संतोख पाया, सतगुर सेव हो संक ना कीजै,

नाम रतन पाया, मनसा मार मन माहि समाया, आपे खेल करे सब करता, आपे दे बुझाई है।

सब सोई गुरमुख विरला बूझै कोई एको रव रहया सब अंतर तिस बिन अवर ना कोई है। लख चौरासी जी उपाय ज्ञानी ध्यानी आख सुनाए सबना रिजक समाहे आपे कीमत होर ना होई है। माया मोह अंध अंधारा हम मैं मेरा पसरिया पासारा अन दिन जलत रह दिन राती गुरबिन शांत ना होई है।

बार तृष्णा अग्न निवारी शब्द चीन सुख होई है। काया कटांब मोह ना बूझै गुरमुख होवै ता आखी सूझै। अन दिन नाम रवै दिन राती मिल प्रीतम सुख होई है। मनमुख तात दूजै है लागा जनमत की नाम वो अभागा।

अल्लाह तीजा जग जीवन सात्याय को दाता गुर सेवा ते शब्द पछाता एको अमर एका पातशाही जुग जुग सिरकार बनाई है सोजन निर्मल जिन आप पछाता आपे आए मिलिया सुखदाता रसना शब्द रति गुण गावे।

हंस बैरागी निज कर ताड़ी लाई हे। शब्द मरे सोई जन पूरा सतगुर आख सुनाए सूरा। काया अंदर अमृत सर साचा मन पीवै पाए सुपाई हे। पढ़ पंडित अवरा समझाए घर जलते की खबर ना पाए। बिन सतगुर सेवे नाम ना पाईए पढ़ था के शांत ना आई हे। एक भस्म लगाए फिर भेख तारी बिन शब्द हुमै किन मारी। अन दिन जलत रह दिन राती परम पेख परमाई हे। एक ग्रह कटम मह सदा उदासी शब्द मुए हर नाम निवासी। अन दिन सदा रह रंग राती पै पाए भगत चित लाई हे। मनमुख निंदा कर कर विगुत्ता अंतर लोभ भौंकै जिस कुत्ता।

पावे कोई, बिन सतगुरु को नाव ना पाए, प्रभ ऐसी बणत बनाई है। एक सिद्ध साधक बहुत विचारी, एक अहनस नाम रते निरंकारी, जिसनो आप मलाए सो बूझे, भगत पाए पहु जाई है। इस नान दान करह नहीं बूझे।

बिनसै तहत ना लागे बारा, कंचन काया गुरमुख बूजै, जिस अंतर नाम नवासी है। सच्चा चौका सुरत की कारा, हर नाम पूजन सच आधारा। सदा त्रिपत पवित्र है पावन, जित घट हर नाम नवासी है। हौं तिन बलिहारी जो साचै लागे, हर गुण गावह अन दिन जागे। साचा सूख सदा तिन अंतर, रसना

सब सच दिखाया सच्चै नाम निवासी हे ब्रह्म ब्रह्म जोनी फिर फिर आया आप भूला जा खसम भुलाया हर जियो मिलै ता गुरमुख बूजै चीनै शब्द अबनासी हे काम क्रोध भरे हम अपराधी क्या मुँह लै बोलहै ना हम गुण ना सेवा सादी डुबदे पा

ਬੀਜੈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਪਤ ਪਾਏ ਇਕਤ ਨਾਮ ਨਵਾਸੀ ਅੰਤਰ ਹਰ ਧਨ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਈ।

जो मन पी जाहि माया लहर शब्द निवारी यो मन निर्मल हो मैं मारी सहजे गुण गावे रंग राता।

विष्ण महेश विचारी त्रै गुण बधक मुक्त निरारी गुरमुख ज्ञान एको है जाता अन दिन नाम रवि जय ही वेद पढ़ है हर

सच्चा तन खटिया कदे टोट न आवै बूझै को विचारी सच्चै लाए से जन लागे अंतर शब्द मस्तक वड भागे।

सच कमावे साची करनी सारी हे कार कमाई जो मेरे प्रभ भाई हम मैं तृष्णा शब्द बुझाई गुरमत सद ही अंतर शीतल हम मैं मार निवारी हे सच लगे तिन सब किछ पावे सच्चे शब्द सच सुहावे एथे साचे से दर साचे नदरी नदर सवारी हे बिन साचे जो दूजे लाया माया मोह दुख सबाया बिन गुर दुख सुख जापे नाही माया मोह दुख भारी हे साचा शब्द जिन्ना मन पाया पूरब लिखिया तिनी कमाया सचो सेव है सच त्याव है सच रते विचारी हे गुर की सेवा मीठी लागी अन दिन सूख सहज समाधि हर हर करत्या मन निर्मल होआ।

जन उबरे होर माया मोह खुआरी। गुरमुख साचा शब्द पछाता, ना तिस कटंब ना तिस माता, एको एक रव्या सब अंतर, सबना जिया काया धारी। हम मैं मेरा दूजा पाया, किसना चल तुर खसम लिख पाया।

तोल, ज्यो भावै त्यो राखै रहना, गुरमुखै को जाताई, जातुद पाणा ता सच्ची कारै लाई, अवगण छोड़ गुण माहि समाई, गुण मह एको निर्मल साचा, गुर कै शब्द पछाताई, जह देखा तह एको सोई, दूजी दुर्मत शब्दे खोई, एक समह प्रभ एक समाना, अपने रंग सद राताई, काया कमल है कुमलाना, मनमुख शब्द न बुझै आना, गुर प्रसादी काया खोजे, पाए जग जीवन दाताई, कोट गही के पाप निवारे, सदा हर जियो राखै उर तारी,

ए सब दुख सबाई, अंतर शब्द नाही क्यों दर जाई। गुरमुख शब्द वसै मन साचा, सद सेवे सुख दाता ही। जह देखा तू सबनी थाई, पूरै गुर सब सोजी पाई। नामो नाम त्याई है सदा सद।

रतने अमोलो आपे नदनी तोले तोलो जी जंत सब शरण तुम्हारी कर कृपा आप पछाताई जिसनो नदर होवे तुर तेरी मरे न जम्मे चूकै फेरी साचे गुण गावे दिन राती जुग जुग एको जाताई माया मोहे सब जगते उपाया ब्रह्मा विष्ण देव सुबाया ज्योत दुपाणे से नाम लागे ज्ञान मती पछाताई पाप

पाई, रत्न अमोलक अग में अपारा, कीमत कमन करे विचारा, गुर कै शब्दे तोलत लाई, अंतर शब्द पछाताई, सिमरत शास्त्र बहुत बिस्थारा, माया मोह पसरिया पासारा, मूर्ख पढ़े शब्द ना बूझे, गुरमुख विरले जाताई, आपे करता करे कराई, सच्ची वाणी सच दृढ़ाई, नानक नाम मिले वड्याई, जुग जुग एको जाताई, मारू महला तीजा, सो सच सेवे हो सिरजनहारा, शब्दे दुख निवारण हारा, अगमय गोचर कीमत नहीं पाई, आपे अगमय अथाहाई, आपे सच्चा सच वरताई, एक

मलाई सच्ची भगती आपे लाई साची बाणी सदा गुण गावे इस जन्म में काला हाही गुरमुख वणज करह पर आप पछाण है एक सबिन को अवर ना जान है सच्चा साहु सच्चे वणजारी पूंजी नाम वसाही आपे साजे सिष्ट अपाई बिरले को गुर शब्द बुझाई सतगुर सेव है से जन साची काते जम का पाही पन्ने कड़े सवारे साजी माया मोहे दूजे जंत पाजी मन मुख फिर है सदा अंध कमाव है जम का जेवड़ा गल पाही आपे बख्शे गुर सेवा लाई गुरमती नाम मन वसाई अनदिन नाम त्याए साचा इस जग में है नाम लाहाई आपे सच्चा सच्ची नाई गुरमुख देव मन वसाई जिन मन वसया से जन सो है तिन सिर चूका काहाई अगम अगोचर कीमत नहीं पाई गुर प्रसादी मन वसाई सदा

सारा मनमुख हुक्म न जाने सारा हुक्मे मन्ने हुक्मे वड़ियाई हुक्मे वे परवाहाई गुर प्रसादी हुक्म पछाणे तावत राखै इकत कर आणे नामे राता सदा बैरागी नाम रतन मन ताहाई सब जग मह वरतै इको सोई गुर प्रसादी प्रगट होई शब्द सलाह है से जन निर्मल निज करवासा ताहाई सदा भगत तेरी सरनाई अगमे अगोचर कीमत नहीं पाई ज्यों तुद भावे है त्यों त्यों राख है गुरमुख नाम त्याहाई सदा सदा तेरे गुण गावां सच्चे साहिब तेरे मन पावां नानक साच कह बेनंती सच देव हो सच समाहाई मारू महला तीजा सतगुर सेवन से वडभागी अन दिन साच नाम निवलागी सदा सुखदाता रव्या घट अंतर शब्द सच्चै ओ माहाई नदर करे ता गुरु मलाई हर का नाम मन वसाई हर मन वसिया सदा सुखदाता शब्दे मन ओ माहाई कृपा करे ता मेल मलाई हूं मैं ममता शब्द जलाई सदा मुकत रह एक रंगी नाही किसे नाल काहाई बिन सतगुर सेवे कोर अंधारा बिन शब्द कोई ना पावे पारा जो शब्द राते महा बैरागी सो सच शब्दे लाहाई दुख सुख करते तुर लिख पाया दूजा भाव आप वरताया गुरमुख होवे सो अलिप तो वरते मनमुख का क्या विसाहाई से मनमुख जो शब्द ना पछाण है गुर के भय की सार ना जाण है भय बिन क्यों निरभउ सच पाई है।

शब्द सुनाई। अन दिन भगत करहो निवलाई, हर गुण गावे है सद ही निर्मल, निर्मल गुण पातशाही। गुण का दाता सच्चा सोई, गुरमुख विरला बूझै कोई, नानक जन नाम।

पूरे सतगुर बूझ बुझाया, हुक्म ही सब जगत पाया, हुक्म मन्ने सोई सुख पाए, हुक्म सिर चाह पात चाहाई, सच्चा सतगुर शब्द अपारा।

नाही, कूट मदे किसे बुझाई, गुर कै शब्द रत्ती रंग लाई, हर सलाह है सदा सुखदाता, हर बख्शे भगत सलाहाई, सतगुर सेव है से जन साची, जो मर जम है काचन काची, अगम अगोचर वे परवाह, भगत वच्छल आथाहाई, सतगुर पूरा साच दृढ़ाई, सच्चे शब्द सदा गुण गाई, गुणदाता वरतै सब अंतर, सिर सिर लिखदा सहाई, सदा हदूर गुरमुख जापै, शब्दे सेवै सो जन त्रापै, अनदिन सेवै सच्ची बाणी, शब्द सच्चै ओ माहाई, अज्ञानी अंधा बहु कर्म दृढ़ाई, मन हठ कर्म फिर जोनी पाई, बिख्या कारण लब लोभ कमावै, दुर्मत का दुराई, पूरा सतगुर भगत दृढ़ाई, गुर कै शब्द हर नाम चित लाई, मन तन हर रविया काट अंतर, मन पीनै भगत सलाहाई, मेरा प्रभ साचा असुर संघारण, गुर कै शब्द भगत निस्तारण, मेरा प्रभ साचा सद ही साचा, सिर शाह पातशाही, से भगत सच्चे तेरे मन पाई, दर कीर्तन करह गुर शब्द सुहाई।

उपाया आपे फर्क करे वेख विगसै सब रस देही माहाई वाजै पौन तै आप बजाई शिव शक्ति देही मह पाई गुर प्रसादी उल्टी होवै ज्ञान रतन।

दाता, गुर कै शब्द ही सुहाही। गुर का शब्द अमृत है बाणी, अन दिन हर का नाम बखाणी। हर हर सच्चा वसै घट अंतर, सो घट निर्मलता हाही। सेवक सेव है शब्द सलाह है, सदा रंग राते हर गुण गाव है। आपे बख्शे शब्द मलाई, परमल वास मन ताहाई। शब्दे कथ कथे सलाही, मेरे प्रभु साचे वे परवाही। आपे गुणदाता शब्द मलाई, शब्द का रस ताहाई। मनमुख भूला ठौर ना पाई, जो तुर लिखिया सो कर्म कमाई। बिख्या राते बिख्या खोजै,